معذبا في قبره، معذبا في قبره، فنسألك

0: दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
1: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने कराम, कुरान मजीद की दास्तानों के इस खूबसूरत और फिक्रंगेज सफर कससुल कुरान में एक मरतबा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तलहा शरफुज़्ज़मान के साथ मैं हूँ सरवर मिर्ज़ा और हम आज साथ मिलकर आप तमाम सुनने वालों को इस खूबसूरत कुरानी सफर में दिल से खुशामदीद कहते हैं।
2: जी, और आज जिस किस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी एक खास बात यह है कि कुरान जब हमें किसी कौम का वाकया सुनाता है तो दरअसल हमारे सामने एक आईना रख देता है। सवाल ये बनता है कि अगर आज हक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करूँगा, क्या मैं उसे सुनूंगा, क्या रुक कर उस पर गौर करूँगा, या सिर्फ इसलिए रद्द कर दूंगा कि वो मेरी पसंद, मेरी रिवायत या मेरी पहले से कायम सोच के मुताबिक नहीं।
3: बिल्कुल तला भाई, और शायद यही एक पुरानी किशोरीज की खूबसूरती है कि कहानी पुरानी होती है लेकिन सवाल बिल्कुल आज का होता है। जब कोई सही बात हमारी कंफर्ट जोन को चैलेंज करे, जब कोई हमें अपनी आदत, अपनी सोच या अपने ईगो पर दोबारा नजर डालने को कहे तो हम सच को देखते हैं या फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं।
2: बिल्कुल सर, वो सूरह यासीन आज हम जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उस किस्से की बात सूरह यासीन में आई है। ये वो सूरत है जिसे हमारे माशरों में बेशुमार लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और बहुत से लोग हिफ्ज भी किए हुए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़बानी तौर पर आयात तो पढ़ लेते हैं मगर इनके अंदर मौजूद दास्तान और उसके पैगाम पर हमारी निगाह नहीं ठहर पाती। आज सूरह यासीन के इन्हीं आयात के सामने हम फोकस करेंगे। इन्हीं आयात पर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, वद्रिब लहुम मसलन असहाबल करियति इज जा अहल मुरसलून, यानी उन लोगों के सामने बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जब उस बस्ती में भेजे हुए लोग आए। ये वाकया अहले मक्का और खुसूसन कुरैश के मुनकरीन के सामने एक मिसाल के तौर पर रखा गया है, यानी जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया उन्हें बताया जा रहा था कि तुमसे पहले भी ऐसी बस्तियां और ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके सामने हक आया लेकिन उन्होंने जिद, गुरूर और इनकार का रास्ता इख्तियार किया। मुसलमान किराम, रिवायती तौज़ीहात में कुरैश के बाज़ मारूफ मुखालिफीन मसलन अबू जहल, अबू लहब, उबै इब्न खलफ और सफ़वान इब्न उमैया, तो इनकी मिसाल दी जाती है। गोया पैगाम ये था कि तुम अपने आप को तारीख से बाहर न समझो, हक को रद्द करने की नफ्सियात तुमसे पहले भी मौजूद रही है।
3: और यहाँ हमारे लिए पहला सबक ये निकलता है कि इंसान को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी सिचुएशन बिल्कुल यूनिक है, मुझसे पहले किसी ने ऐसा फेस नहीं किया। हिस्ट्री पैटर्न्स रिपीट करती हैं, ईगो का पैटर्न वही, ट्रुथ को रिजेक्ट करने का पैटर्न वही और एक्सक्यूज भी अक्सर वही। इसलिए कुरान पुरानी कौमों की कहानी सुनाता है, हमें उन पर सिर्फ कमेंट नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी उस आईने में देखना चाहिए।
2: जी सरवर भाई, और हमारे लोग तो काफी ये सवालात करते रहते हैं कि भाई ये किसी कोई भी वाकया आ जाए कि ये बस्ती कहाँ थी, ये कौन था, उसकी उम्र कितनी थी, इस तरह की क्यूरियोसिटी सब में रहती है।
3: सही।
2: तो दरअसल इस बस्ती के हवाले से भी कुरान मजीद ने उसका नाम मुतय्यन नहीं किया। बास तफसीर रिवायात में उसे अंताकिया कहा गया है जो कि दूसरी आरा में दूसरे मकामात का जिक्र मिलता है। इसलिए असल बात यही है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि बस्ती कहाँ थी, और शायद कुरान का इस मकाम को नाम से मुतय्यन न करना भी हमारे लिए एक माना रखता है।
3: सही।
2: क्योंकि असल सवाल यहाँ जग्राफिया का नहीं, असल सवाल इंसानी रवैये का है। बस्ती का नाम कुछ भी हो, किस्सा हमें यह बताता है कि वहां के लोगों के पास हिदायत पहुंची लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। इस बयान के मुताबिक उनके पास एक के बाद एक पैगाम पहुंचाने वाले आते रहे और लोग उन्हें झुठलाते रहे। फिर अल्लाह ताला ने एक वक्त में उनकी तरफ दो भेजे, वो قرآن کہتا ہے ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا, یعنی ایک دعوت آئی رد کر دی, دوسری آواز آئی اسے بھی رد کر دیا, لیکن اللہ کی طرف سے اتمام حجت اور دعوت کا دروازہ پھر بھی بند نہ ہوا. قرآن آگے فرماتا ہے فعززنا بثالث, پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان دونوں کی تائید کی. اب تصور کیجئے ایک بستی اور اس کے سامنے تین پیغام رساں ایک ہی حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں اور ان سب کی آواز ایک ہے, فقالوا انا الیکم.

0: दोबारा वही रवैया उन्होंने दिखाया जो पहले भी, पहले जो जवाब हमने सुना है उसमें भी यही रवैया हमारे सामने आया। अब वो क्या कहते हैं, तायरुकुम माकुम, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे अपने साथ है, यानी अगर तुम पर कोई बुरा अंजाम आता है तो उसका सबब हम नहीं, तुम्हारे अपने आमाल हैं। मसला तुम्हारे रद्द अमल में है, मसला रसूलों के आने में नहीं, मसला तुम्हारे तकब्बुर, इनकार और हद से तजावुज में है। और फिर फरमाया, इन ज़िक्रतुम बल अंतुम क़ौमुन मुसरिफून, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई, यानी तुम इसलिए हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तुम तो हद से तजावुज करने वाले लोग हो, यानी तुम नसीहत को भी जुर्म समझ रहे हो। तुम्हें कोई अल्लाह याद दिलाए तो तुम उसे मनहूस कहो, तुम्हें कोई जवाबदेही याद दिलाए तो उसे दुश्मन समझो। यही तो असल बीमारी है।
1: तला भाई, मुझे यहाँ एक सिंपल सेल्फ चेक लगता है। जब कोई मुझे करेक्ट करता है, मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है?
0: सही।
1: क्या मैं कंटेंट सुनता हूँ या फौरन डिफेंड करने लगता हूँ? क्या मैं कहता हूँ शायद इसमें कुछ बात हो? ये कहता हूँ इसने मुझे टारगेट क्यों किया? ग्रोथ का दरवाजा तब खुलता है जब हम करेक्शन को इंसल्ट समझना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल सर भाई, और अब हम इस किस्से में एक निहायत खूबसूरत किरदार की तरफ आ रहे हैं। बस्ती के दूर किनारे से एक शख्स खबर सुनता है कि तीन पैगाम रसा अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और बस्ती के लोग उनकी तकजीब कर रहे हैं, उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। तो रिवायती बयानात में शख्स को हबीब नज्जार कहा गया है। बाज़ रिवायत में यह भी आता है कि वो जिस्मानी बीमारी, हत्ता के जुजाम जैसी तकलीफ में मुब्तला था, यानी खुद अपनी जिंदगी में आजमाइश से गुजर रहा था। कमजोर जिस्म, बीमारी, शहर के किनारे घर, कोई जाहिरी ताकत नहीं, लेकिन दिल में ईमान और हक के लिए गैर मामूली हरकत। खबर सुनते ही वो दौड़ कर आता है। कुरान कहता है, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसअ, शहर के दूर किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। तो ये लफ्ज यसअ खुद बहुत कुछ कहता है, यानी वो तमाशाई बनकर नहीं आया, वो ये कहकर नहीं बैठा कि देखते हैं क्या होता है। उसने हक को तन्हा देखा तो खुद उसके साथ खड़ा हो गया, दौड़ कर आया।
1: भाई यहाँ पर तला भाई मुझे पॉइंट बहुत इंस्पायर करता है। अक्सर हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं, मेरा इन्फ्लुएंस कम है, वगैरह वगैरह, मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन कभी कभी एक सिंसियर इंसान चाहे वीक पोजीशन में हो पूरी मॉरल डायरेक्शन बदल देता है। आप हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जहां सच क्लियर हो वहां अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा आया और आते ही अपने कौम से कहा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम, उन भेजे हुए लोगों की पैरवी करो। फिर एक नहायत कवी दलील देता है, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और खुद हिदायत याफ्ता हैं। यानी जरा उनकी नीयत देखो, ये तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, मनसब नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहते। उनकी दावत का मरकज तुम्हारी हिदायत है, उनका जाती मफाद नहीं, और ये दावत देने वाले की सदाकत का एक अहम अखलाकी पहलू है
1: भाई। और ये आज के जमाने में भी यूजफुल फिल्टर है, इसको ऐसे समझिए।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई आपको एडवाइस देता है, देखिए उसका एजेंडा क्या है। क्या वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, क्या वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, या सिंसियरली आपकी भलाई चाहता है। हर फ्री एडवाइस सही नहीं होती, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सिंसियर एडवाइस की पहचान में सेल्फ इंटरेस्ट का लेवल बहुत कुछ बताता है।
0: बिल्कुल सर भाई। फिर वो शख्स, यानी वाकई क्या जो किरदार हम बता रहे हैं हबीब नज्जार के हवाले से, अब ये शख्स सिर्फ यानी नसीहत नहीं करता, ये अपनी जात को मिसाल बनाता है। कहता है, वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन, आखिर मैं उस हस्ती की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सबको भी उसी की तरफ लौटना है। क्या खूबसूरत इस्तदलाल है। देखिए, न फलसफियाना पेचीदगी, न यानी लफ्जी तौर पर कोई इस तरह की पेचीदगी। मैं पैदा हुआ, मुझे किसने पैदा किया, मैं लौट कर भी उसी के पास जाऊंगा, तो इबादत का हक भी उसी का है। फिर वो अपनी कौम के माबूदों पर सवाल उठाता है, अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा और माबूद बना लूं। फिर कहता है, इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग्नि अन्नी शफाअतुहुम शैआ वला युन्किदूनहा, अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे

0: कुछ काम नहीं आएगी और न वो मुझे बचा सकेंगे। यानी जिन बुतों को तुम सहारा समझ रहे हो वो खुद बेबस हैं, न नफा के हकीकी मालिक, न जरर के, न कयामत के दिन नजात देने वाले।
1: भाई और जिंदगियों में देखा जाए तो आइडल्स ही सिर्फ पत्थर के नहीं होते, कभी पैसे को अल्टीमेट सिक्योरिटी समझ लेते हैं, कभी स्टेटस को, कभी पावरफुल कॉन्टेक्ट को, और कभी अपनी इंटेलिजेंस को ही। ये सब टूल्स हैं भाई, खुदा नहीं। इन पर रिलाई करें, यूज करें, लेकिन दिल की फाइनल डिपेंडेंसी अल्लाह सुबहानहु ताला पर होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पैसा भी लिमिट पर होता है, कनेक्शन भी और टेक्नोलॉजी भी।
0: बहुत बहुत खूब कहा। ये जो आपके सवालात होते हैं ना सर भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इन सवालात के रूह से हमें दरअसल इनायत को समझना चाहिए। सवालात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कुछ सीख पाएंगे। तो अब दोबारा वाकई की तरफ लौटते हैं, और जैसे कि उस शख्स ने, यानी हबीबुल नज्जार नामी जो शख्स है, जो खैर के हवाले से जो रसूलों का साथ देने के लिए दौड़ते हुए आया था, अब वो साफ कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह उन बातिल सहारों के पीछे चल पड़ूं तो इन्नी दल्लफी दलाल मुबीन, मैं तो खुली गुमराही में पड़ जाऊँगा। यानी ये शख्स अपने कौम से बात करते हुए मंतिकी तरतीब के साथ यानी उनको ये दलाइल पेश करता है कि वो रसूल तुमसे कुछ नहीं मांगते, वो हिदायत की दावत दे रहे हैं, मेरा खालिक अल्लाह है, मुझे उसी की तरफ लौटना है, गैर अल्लाह मुझे बचा नहीं सकते, तो फिर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को क्यों इख्तियार करूं। और यही एक दाई की खूबसूरती है, जोश भी हो, दलील भी, साथ साथ इखलास भी।
1: क्या बात है भाई, और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा मॉडल है तला भाई। सिर्फ तुम गलत हो कहना काफी नहीं भाई, एक्सप्लेन कीजिए, रीजन दीजिए, अपनी पोजीशन को क्लियर कीजिए और रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने तो हमें सिर्फ पैशन नहीं, क्लियरिटी भी चाहिए।
0: सर भाई, जैसे कि आपने कहा क्लियरिटी की बात
1: जी,
0: अब ये बंदा उसी क्लियरिटी पर उतरता है, वो अपनी बात के खुले ऐलान पर खत्म करता है, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माउन, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ, बस मेरी बात सुनो। यानी अब बात इशारों में नहीं, वो अपनी शनाख्त छुपा नहीं रहा, वो कहता है मैं ईमान ले आया हूँ, मैं उस हक के साथ खड़ा हूँ, तुम नाराज हो या खुश, तुम अक्सरियत हो या ताकतवर, मैं अपनी गवाही वापस नहीं लेता। यहाँ से अब कहानी या वाकया एक नहायत हसास मरहले में दाखिल होता है। एक तरफ पूरी बस्ती का गुस्सा, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो तन्हा खड़ा है, वो शख्स जिसे रिवायती तफसीरी बयानात में हबीबुल नज्जार कहा जाता है, तन्हा था। सामने एक पूरी बस्ती, एक तरफ तादाद, ताकत और गुस्सा, दूसरी तरफ एक फर्द, मगर उसके दिल में यकीन, और फिर उसने अपने ईमान की कीमत भी अदा की। रिवायती बयानात में आता है कि कौम उस पर टूट पड़ी, बाज़ रिवायात में है कि उसे ज़मीन पर गिरा कर पाँव तले रौंदा गया, जबकि बाज़ में उसे पत्थर मारने और इसी तरह कत्ल करने का जिक्र मिलता है। कुरान हमें कत्ल की उन जिस्मानी तफसीलात में नहीं ले जाता, लेकिन उसके अंजाम को एक ऐसे मुख्तसर और अजीम जुमले में बयान करता है जो पूरी दुनियावी तस्वीर बदल देता है। قیل ادخل الجنہ, कह दिया गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो सर भाई, यहाँ जरा देखिए, अहल जमीन ने उसे अपने दरमियान से निकाल दिया और रब आसमान ने उसे जन्नत की जगह दे दी।
1: तला भाई, ये सीन बहुत पावरफुल है। कभी हम सक्सेस को सिर्फ दुनिया के रिजल्ट से मेजर करते हैं। अगर आदमी जीत गया, पोजीशन मिल गई, लोग उसके साथ आ गए, हम कहते हैं भाई ये सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन यहाँ दुनिया के स्केल पर वो आदमी जाहिरी तौर पर हार गया, उसको मार दिया गया, मगर कुरान का स्केल कहता है قیل ادخل الجنة, जन्नत में दाखिल हो जाऊं।
0: बिल्कुल।
1: यानी रियल सक्सेस ये नहीं कि दुनिया ने आपके साथ क्या किया, रियल सक्सेस ये है कि अल्लाह सुभान व तआला के सामने आप किस हाल में पहुंचे।
0: बिल्कुल सर भाई, अब रिवायती बयान में एक और निहायत मुतासिर कुन मंजर मिलता है। कहा जाता है कि जब वो शख्स अपनी कौम के जुल्म का सामना कर रहा था, तब भी उसके दिल में इंतकाम नहीं, हिदायत की तमन्ना थी, वो अपने कौम के लिए खैर और इस्लाह की दुआ करता रहा। यानी जिन हाथों ने उसे तकलीफ दी, उसके दिल में उन्ही लोगों के लिए हिदायत की आरज़ू बाकी थी। और यही कैफियत कुरान के अगले जुमले में एक नाकाबिल फरामोश सूरत इख्तियार करती है कि जन्नत की बशारत मिलने के बाद वो क्या कहता है। क्या वो कहता है कि अब उन्हें पता चलेगा? क्या कहता है कि उन्होंने मेरे साथ जो किया अब उसका बदला देखेंगे? नहीं, कुरान कहता है قال يا ليت قومي يعلمون, वो कहता है काश मेरी कौम जान लेती। फिर بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين,

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समीन, मुसलमान की पूरी जिंदगी विलादत से लेकर वफात तक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में ढली हुई है। जैसे कि अल्लाह सुबहानहु व तआला का इरशाद है, वमन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ये एक इबादत होने के साथ साथ मुसलमान के लिए मुकम्मल तर्ज हयात भी है। सामिन, जब हमारा छोटा नन्ना मेहमान दुनिया में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हिदायत दी कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए, और ये हिदायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलती है। तिर्मिजी की रिवायत है, हजरत अबू राफे बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के कान में अजान दी जब वो फातिमा के यहाँ पैदा हुए थे। और बज़ाहिर ये अमल इस बात की अलामत है कि बच्चे की पहली समात तौहीद और अल्लाह की किबरियाई के कलिमात से आबाद हो। ज़रा सोचिए सामीन, एक नन्ना बच्चा जो अभी दुनिया की किसी बात से वाकिफ नहीं, उसके कान में सबसे पहले ये सदा गूंजती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अजमत, किबरियाई और तौहीद का पैगाम। ये मंजर बताता है कि इस्लाम इंसान की तरबियत का आगाज जिंदगी की पहली सांस से ही करता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, अजान का राज ये है कि इंसान के कान में सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, वहदानियत और कलिमा शहादत की गूंज हो। जैसे जिंदगी के आगाज पर उसे तौहीद सिखाई जाती है, उसी तरह मौत के वक्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है। यूं समझिए कि जिंदगी के दरवाजे से दाखिला भी तौहीद के साथ है और उसका इख्तिताम भी तौहीद के साथ। हम भी अपने घरों में इस सुन्नत को जिंदा करें ताकि आने वाली नस्लों

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक अहम और मुफीद टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बेहतर इम्यून सिस्टम के फायदे और हम और आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी यानी हमारे जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमें सेहतमंद रखता है। आज हम जानेंगे कि अच्छी इम्यूनिटी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और हम इसे किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यानी बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी या हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है कितनी ज़रूरी है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जिस्म का वो नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें वायरसेस, बैक्टीरिया

0: और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स या जरासीम से बचाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा यानी मजबूत होगा तो हम ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं और किसी भी इन्फेक्शन का शिकार होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं। हमारी कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ तक ही महदूद नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है और ये एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता चला जाता है। और लिसनर्स, अगर हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ खराबी है या कुछ कमी हो तो हम ज़्यादा आसानी से बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हम जानेंगे कि कुछ आसान और मुफीद जो तरीके हैं कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं ताकि हम बीमार ना हों। सबसे पहले हेल्दी डाइट है। अगर हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट होगी तो फिर बहुत से मसाइल जो हैं सेहत के वो दूर हो सकते हैं। सबसे पहले तरीका ये है कि अपनी डाइट को बेहतर बनाना है। अच्छे खाने जो विटामिंस और मिनरल से भरपूर हों हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होती है, जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस हैं या मौसमी है, उसमें होता है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, बेल पेपर्स हैं, और ये तमाम भी फ़ायदेमंद हैं। जिंक जो कि नट्स और सीड्स में होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है और जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपको हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी हमें पानी ज़रूर पीना है। अगर हम कहते हैं कि अच्छा एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जो है हमें ज़रूर पीना है, और पानी की कमी से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को एक्टिव रखना। जब आप एक्टिव रहते हैं तो बहुत से मसाइल से जो कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। और एक्सरसाइज से ना सिर्फ हमारी बॉडी फिट रहती है बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। एक्सरसाइज से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है और जो इम्यून सेल्स हैं यानी मुदाफ़ती जो निज़ाम के सेल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नींद जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वीक हो सकता है अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती। नींद हमारे जिस्म को रिपेयर करने और रिचार्ज करने का काम करती है, यानी जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं उनको ज़्यादा करती है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस का एक बहुत अहम रोल है हमारी सेहत के लिए, और स्ट्रेस का लंबा वक्त तक रहना हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मेडिटेशन, योगा या किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बनिए जो आपको रिलैक्स कर सके और स्ट्रेस को कम से कम कर सके। तो लिसनर्स, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट, एक्सरसाइज, अपनी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ज़रिए अपनी इम्यूनिटी को, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं तो अपनी सेहत में बेहतरी ला सकते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे यानी इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं और कुछ मिथ हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अक्सर जो अफराद हैं वो कंफ्यूज होते हैं या फिर ये कि कंफ्यूज कर भी सकते हैं। उसमें एक मिथ ये है कि जो हर्बल सप्लीमेंट हैं वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत जल्द जो बूस्ट करते हैं, बेहतर बनाते हैं, मगर जो रियलिटी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। वो ये है कि जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं यानी, तो उससे हम मदद तो ले सकते हैं मगर उसको अपनी बैलेंस डाइट और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो अपनी जो एक्सेसिव शुगर जो डाइट है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, उन्हें भी आपको दूर रखना है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो हमलावर हो सकती हैं। एक और मिथ है कि अगर मौसम गर्म है तो उसमें फ्लू नहीं हो सकता या कोल्ड नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी मौसम में बीमार हो सकते हैं और अगर आप अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखते तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। अपनी रूटीन में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे ज़रूर बचें। जनरेशन अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो वैक्सीन लगवाते हैं और जो नहीं लगवाते, जैसे कि फ्लू वैक्सीन का सीज़न है, तो अगर जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है फ्लू वैक्सीन, तो उसमें जो रिस्क है इन्फेक्शंस का बड़ों में, एडल्ट्स में, वो तकरीबन 60% कम हो जाता है। और इसी तरह बच्चों में अगर आपने 6 माह से जो ऊपर बच्चे हैं उन्हें आपने वैक्सीनेशन लगवाई है यानी फ्लू वैक्सीन करवाई है, तो वो 75% तक उनमें जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकती है। इसी तरह से जो अलामतें होती हैं मुख्तलिफ, जैसे हम फ्लू की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कम होती हैं और खुदा नखास्ता जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कम होती चली जाती हैं और उसका जो रिस्क है वो 31% तक रह जाता है। और ऐसे अफराद और बच्चे जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो उनमें हॉस्पिटल में एडमिशन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, अलामतें जो हैं वो बहुत सीवियर हो सकती हैं और ये कि और जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका जो रिस्क है वो भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप फ्लू वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए। तो लिसनर्स, ये कुछ आसान और मुफीद तरीके हैं जो हम और आप अपना कर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और याद रखिए, एक बेहतर इम्यून सिस्टम के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक फौजिया शफीक और हमारे साउंड डिज़ाइनर शकीब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
2: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो एफएम 107 दिल से देसी।
1: आज का किस्सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझ में आ गया तो बहुत मजा आएंगे, नहीं आया तो दोबारा सुनना, पूछ लेना सवाल, बट लेट मी बिगिन बिकॉज ये कुछ है भाई। सबसे पहले इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को खुशी से पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, फिल्म 7 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा एकदम असली है और इसीलिए ये बे इंतहा हैरत अंगेज है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेट्स बिगिन। ओके, तैयार हैं? हम एक अलग दुनिया में आपको ले चलता हूं आज, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। तो जो आज का किस्सा है, इसे सुनाने के लिए मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूं, 1896, जगह लिस्बन, पोर्चुगल। यहां पर सितंबर के महीने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था आर्तूर वर्जिलियो अल्वेस दोरेस। डोंट वरी, नाम लंबा है, शॉर्ट में हम इसे आर्तूर ही बोलेंगे। सो आर्तूर साहब जो थे, उनका जन्म हुआ था सितंबर 1896 लिस्बन पोर्चुगल में। आर्तूर के जो फादर थे वो फ्यूनरल होम चलाते थे, और आर्तूर जब 10 साल का हुआ तो उसके फादर साहब जो थे उनका बिजनेस पूरा का पूरा तब तक चौपट हो चुका था, मतलब बैंकरप्सी हो चुकी थी। अब आर्तूर अपने फादर को तड़पता हुआ दिखता था, किस तरीके से वो अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि बैंकरप्सी उन्हें अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, छुप के रहते हैं। वो यही देखता था अपने बाप को इसी तरह से। और पोर्चुगल में अर्ली 1906 उस वक्त आलम ये था कि अगर कोई अपना कर्जा उतार नहीं पा रहा है, और वो शुमार कर दिया गया कि भाई देखो ये आदमी अपना कर्जा नहीं चुका रहा है, तो बदनामी बहुत होती थी, हद से ज्यादा। आज भी हो जाती है, लेकिन तब बहुत ज्यादा ही हो जाती थी, और लोग थोड़े कटे कटे रहते हैं, सोसाइटी दूर भागती है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था कि डिसओन कर दिया पूरी सोसाइटी ने। आर्तूर ने यह नोटिस किया कि उसके फादर से मिलने दो बैंक वाले आए, और दो बैंक वाले आए, पेपर टेबल पर रखा, नजरें भी नहीं मिलाई, देखा भी नहीं उसके फादर की तरफ, और वहां से चले गए। बस चले गए, जैसे कोई कुछ बिसात ही, कोई औकात ही ना हो उसके फादर की, और उसके फादर ने उस पर साइन किया और वहीं सर पकड़ के बैठे रहे। अब आर्तूर एक और चीज देख रहा था इसके साथ साथ, वो देख रहा था कि एक तरफ तो उसके फादर है, दूसरी तरफ उसके चाचा है। उसका जो चाचा है वो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता है म्यूनिसिपैलिटी के, उधारी उसकी भी है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है वो, इनफैक्ट उसके फादर ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास एक पोस्ट है, तो वहां पर जब बैंक वाले पहुंचे तो बाकायदा अपना सर पे से हैट हटाया और नीचे किया, और फिर उससे बहुत ही सलीके से बात करी, जहां उसके फादर से बात तक नहीं करी उन्होंने। मतलब की बात यह है कि इंसान की कीमत नहीं है, कीमत है डॉक्यूमेंट की, कीमत है पद की, पोजीशन की, और कीमत है सिग्नेचर की, दस्तखत की। सिस्टम के लिए जरूरी है जो भी चीज, उसी को सिस्टम बचाता है, उसी को सिस्टम हमेशा संभाल के रखता है। तो आर्तूर ये बचपन से देख रहा था, और उसे समझ में आ गया था कि भाई जिंदगी में हार्ड वर्किंग नहीं करने वाला मैं, मुझे शार्प थिंकिंग करनी है। वो समझ गया कि दुनिया में दिक्कत पैसे की नहीं है, पेपर वर्क की है। पेपर वर्क आपके पास है तो, जैसे वो डायलॉग है रवि किशन का, मनी फॉलोज माई ब्रदर, पर उसके लिए आपको पेपर वर्क होना चाहिए, तब है आपकी बिसात। प्रॉपर स्टैम्प सिग्नेचर होगा तो आपकी औकात है, वरना तो आप कुछ नहीं है। तो 1916 में आर्तूर अभी जब 20 साल का हो चुका था, 2016 में, तो पोर्चुगल में, पोर्चुगल उस वक्त एक कॉलोनियल एम्पायर था, और एंगोला जो जगह थी वो टेरिटरी ऐसी थी कि वहां पे अपॉर्चुनिटी थी, वहां पे अगर कोई मैदान में उतर जाए तो मार्केट खा जाए पूरी की पूरी, काम बहुत था, पर आपके पास पेपर वर्क होना चाहिए। तो आर्तूर जो था वो बैठे बैठे सोच रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने किया ये कि अपने कमरे में बैठ के देखा अपने अब्बा के डिप्लोमास को, डिग्री को, और फिर उसने बैठ के अपने हाथों से सोच समझ के एक डिप्लोमा तैयार किया। उस पे लिखा बड़ा बड़ा हेडर, पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशन जो है ही नहीं, है ही नहीं, मगर उसने लिखा। उसके ऊपर फिर उसने सब्जेक्ट्स लिखे, जियोलॉजी, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, पेलियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर उसके आगे अपने अपने नंबर लिखता गया, ग्रेड देता गया। और फिर ये कागज लेकर, जो कि प्रॉपर एक अच्छा खासा हैवी कागज था जैसे डिग्रीज होती हैं, इनको लेके कॉन्फिडेंटली वो नोटरी ऑफिस चला गया। नोटरी वाले होते ना जिनसे थप्पा लगवाना होता है, उस ऑफिस में गया, सीधा अंदर गया, और ऑफिशियल जो वहाँ पे बैठा हुआ था उसने देखा कि एक यंग बंदा आया है, हाथ में उसकी डिग्री है, बेचारा सा दिख रहा है, उसने स्टैंप मारा और दे दिया। उस कागज पे स्टैंप मारा जो पूरा का पूरा नकली है। हल्की सी स्माइल देखे वहां से आर्टूर निकल गया। वो समझ गया काबिलियत नहीं चाहिए, कागज चाहिए, और कागज उसने बना लिया था।

इसके बाद आर्टूर पहुंचा इस डिग्री के साथ जिसपे नोटराइटी थी, ये लेकर वो अंगोला चला गया उस यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लेके जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है।

अभी तक बना नहीं है, कच्चे कच्चे रोड हैं, पक्के रास्ते किसी ने बनाए नहीं है, धूल मिट्टी उड़ रही है, ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। तो आर्टून ने कहा कि मैं इसमें लग जाऊंगा। आर्टून ने लेबर टीम्स को संभाला, नेगोशिएट किया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, मैनेज किया सप्लाई चेन को, टिम्बर है, आयरन है, सर्वे रूट्स हैं, वो जेन्युइनली काबिल है, मगर उसका डिप्लोमा नकली है। देखे होंगे आपने ऐसे लोग जो डिग्री वालों से, जो डिग्री होल्डर हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे होते हैं, हालांकि उनके पास डिग्री होती नहीं है। आर्टूर उन्हीं में से था, जेन्युइनली बेहद काबिल, लेकिन जो डिप्लोमा उसने दिया था वो नकली था, इंजीनियरिंग उसके अंदर बसी हुई थी। 1918 में आर्टूर ने एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी खोल ली अपने नाम पे, सरकारी नौकरी करते करते, और उसका नाम वहां से फैलना शुरू हुआ, सबसे भरोसेमंद ऑपरेटर के तौर पे। लोग कहने लगे कि भाई ये जो बंदा है ना, नौजवान आर्टूर, क्या मेहनती बंदा है, इसके हाथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट आ गया ये काम जो है ना बिल्कुल टाइम पे पूरा करता है, वेरी वेल मैनर्ड। तो जब ये बात फैली उसकी कामयाबी की, तो उसका पेपर जो था वो आगे जाता गया, उस पे ठप्पे लगते गए, रोड बनाने के अप्रूवल मिलते चले गए रीजनल गवर्नर से लेकर ऑफिस के डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉलोनीज, फाइनेंस ऑफिस, लीगल रिव्यू बोर्ड, हर जगह से ठप्पे ही ठप्पे, 6 स्टैंप लगे, हर साइन एकदम सटीक, एकदम ऑर्डर में। वो लेता चला गया अपने नाम से, कागज का जो वजन है वो स्टैंप से है, वो ये समझ गया था। मैटर नहीं करता कि कागज पे जो लिखा है वो सच है कि नहीं, क्योंकि लोग फैक्ट चेक नहीं करते। मिसाल के तौर पे कि वो रोड के लिए पिच कर रहा है, पर लोगों को भरोसा है रोड तो बनाए लेगा, इसके बारे में बहुत सुना है, तो लोग फैक्ट नहीं देख रहे, रोड बना है या नहीं उससे मतलब नहीं है, स्टैंप है या नहीं वो जरूरी है, और हर कागज पे स्टैंप है, बस रोड नहीं है। रिपोर्ट देखी जाएगी ना, ठीक है कर लेंगे। आर्टून ने यह भी नोटिस करा कि दुनिया इसी फंक्शन पे काम करती है, पूरी दुनिया, और यह भी देखा कि फाइनेंशियली हालत खराब है जिस जगह वो रहता है, और लोगों ने 20-20 साल से, अंगोला जो जगह है उसके वादे पूरे नहीं किए, 20 साल से रोड कंस्ट्रक्शन और फलाना फलाना के वादे करके कभी सरकार ने पूरा नहीं किया। 1922 में एक मौका आया उसके पास, और यह मौका था मदद करने का इस शहर की, और उसने यह कहा कि मैं यहां पे कुछ करना चाहता हूं। अब यहां से कहानी होगी कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, वरना ये कहानी फिर समझ में नहीं आएगी। तो एक कंपनी उसके सामने आई जो रेलवे लाइन डालती थी, यहां तक क्लियर है। इसने बोला कि मैं जो हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, इनफैक्ट मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूं, आपके शेयर्स को मेरा मतलब, और उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाते हैं, एक तरीके की ओनरशिप, यहां तक क्लियर है। तो आर्टून ने अकाउंट ये खरीदने के लिए, कंपनी खरीदने के लिए क्या किया, पैसे तो इतने हैं नहीं ना, कंपनी खरीदने के लिए तो आपकी जेब मोटी होनी चाहिए। आर्टून ने क्या किया, उसने न्यूयॉर्क जाके एक अकाउंट खोला, ठीक है, उस अकाउंट का एक चेक बनाया, एम्बेका वालों के नाम पे दे दिया, जैसे कि उसके अकाउंट में बहुत पैसा हो, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं था। अब ये समझिए कि 1922 में एक चेक को अगर आपने लगाया है बैंक में, तो न्यूयॉर्क से वो फिजिकली ट्रेवल होगा, डिजिटल तो है नहीं जमाना, तो फिजिकल ट्रेवल करने में उसे 8 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। जब तक वो चेक पूरा का पूरा पहुंचेगा तब तक वो खेल जाएगा। तो हुआ क्या कि 8 दिन लग रहे हैं चेक को आने में, तब तक तो उसने कंपनी के जो ओनरशिप के कागज थे वो साइन कर लिए। कॉम्प्लिकेशन यहां पे है। अब उसने क्या किया, उसने कहा जब कंपनी मेरी हो जाएगी तो कंपनी के पैसे

0: ऐसे से ही मैं अपने अकाउंट को बचा लूंगा, चेक बाउंस नहीं होगा। तो उसने क्या किया, इसने सामने वाली कंपनी के पैसे को यूज करके ही कंपनी को खरीद लिया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आप समझ गए हो, क्योंकि इससे ज्यादा आसान नहीं समझा सकता। लेट मी ट्राई दिस वंस मोर। उसने न्यूयॉर्क का एक अकाउंट खोला, ठीक है, उसका एक चेक बनाया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सामने वाली कंपनी खरीद सके। सामने वाली कंपनी को वो चेक थमा दिया कि भाई ये कंपनी मुझे दे दो। अब चेक ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 1920 की बात है, 22 की बात है, तो न्यूयॉर्क से आने तक पोर्चुगल उस चेक को लगेगा टाइम 8 दिन का। उस 8 दिन के अंदर उसने ओनरशिप के कागज पे कर लिया साइन, कंपनी हो गई उसकी। अब उसी कंपनी के शेयर, उसी कंपनी के पैसे से उसने जो चेक आ रहा है, बाउंस होने वाला है, उसको रोकने की कोशिश करी। कंपनी के पैसों से ही कंपनी को खरीद लिया, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। गलती कहां हुई कि कंपनी के रिजर्व थोड़े से कम थे, तो ओवरड्राफ्ट हो गया मामला। तो ज्यादा स्मार्टनेस तो उसने दिखाई और कामयाब भी हो जाता, लेकिन यहां पे ओवरड्राफ्ट हो गया और उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया इस बेईमानी में। तो आर्टूर को पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जुलाई 1924, 27 साल का हो चुका था आर्टूर। आमूमन लोग क्या करते हैं, जो जेल में होते हैं वो अपनी जिंदगी को रिकैलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, नींद ले लेते हैं, सोचते हैं, आजादी के सपने देखते हैं। लेकिन इसने कहा, यार मुझसे गलती कहां हुई, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसने जेल की जो लाइब्रेरी है उसका एक्सेस मांगा और पढ़ाई शुरू करी। उसने पढ़ा कि बैंक ऑफ पोर्चुगल दरअसल काम कैसे करता है, उसके लेजिस्लेशन, उसके रूल्स, उसकी हिस्ट्री, वो कैसे ऑपरेट करता है, सब कुछ। वो बैंकिंग नहीं सीख रहा था। अब आप समझेंगे, इतनी किताबें पढ़ा तो बैंकिंग ही सीख रहा होगा। ना, वो इस पूरे सिस्टम में एक कमी ढूंढ रहा था, कमी मिल जाए बस। वो कहां है लूप होल, कमजोरी का है जिसका वो फायदा उठा सके। अब उसे कमजोरी क्या मिली, उसे ये पता लगा कि बैंक ऑफ पोर्चुगल जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट छापने का दिया हुआ है एक फर्म को, जिसका नाम है वाटरलू एंड सन्स। और ये जो फर्म है ये है ब्रिटेन में, जहां नोट छपते हैं हाई वैल्यू वाले। समझाता हूं मैं, तुम ये समझ लीजिए कि बैंक ऑफ पोर्चुगल के पास खुद का प्रिंटिंग सिस्टम नहीं है, उनके पास ना प्लेट्स हैं, ना कागज हैं, ना इंक है, कुछ नहीं है। उनके नोट छप रहे हैं एक बिल्डिंग में जो कि लंदन में है। तो जब पोर्चुगल के बैंक को नोट चाहिए, पोर्चुगल को नोट चाहिए, तो वो एक ऑथराइजेशन देता है वाटरलू वालों को जो लंदन में है, और वो लोग छापकर पोर्चुगल भिजवाते हैं। ये लाइन जो है उसने 3-4 मर्तबा पढ़ी। उसने वहां पे जेलर से कहा, साहब बस एक नोट देखने के लिए दिखा दीजिए, देखने के लिए। जेलर ने कहा, देखने के लिए? हो सकता है बेचारे ने नोट नहीं देखा, इतने टाइम से तो मांग रहा होगा। तो उसने एक हाई डिनोमिनेशन नोट उसको पकड़ाया, उसने नोट को समझने के लिए देखा, तो उस पर लिखा हुआ था वाटरलू एंड सन्स। उसने देखा नीचे कि गवर्नर के सिग्नेचर भी हैं, और उसे यहां पे कुछ समझ में आया, जिसे समझने के लिए उसने अपने जेल के 6 साल पूरे फोकस के साथ लगाए। वो समझ गया कि सिस्टम को जो चाहिए मैं सिस्टम को वही दूंगा, क्योंकि सिस्टम खुद तो कुछ चेक करता ही नहीं है। डोंट वरी, मैं इस जो मैंने बोला ऐसे आसान बनाऊंगा मैं। तो उसने क्या समझा, उसने ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के हिसाब से 300 मिलियन एसक्यूडोस मतलब करेंसी इकोनॉमी में वो ला सकता है, और बीच का कोई भी प्रोसेस खराब भी नहीं होगा, जिससे वो अपना ही एक बैंक अंगोला में खोल सकता है और उसे खुद पैसे छापने की जरूरत भी नहीं है, वो वाटरलू वालों से छपवा लेगा। कैसे, मैं कहानी के आगे बताऊंगा। मतलब ये हुआ कि आर्टूर ने बचपन से जो देखा कि उसके फादर को डिस्ट्रॉय किया फाइनेंस सिस्टम ने, तो उसने ये फैसला किया कि उसी सिस्टम को वो अपना लेगा और वही सिस्टम वो खुद बन जाएगा। तो उसने ये 6 साल प्रैक्टिस करी इस प्रोसेस को बनाने में, 6 साल सीखा। आर्टूर को जेल से आजादी मिली दिसंबर 1924 में। अब उसे एक टीम चाहिए थी, कुछ कॉन्टैक्ट्स जिनको उस पर भरोसा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं, तो कोई अगर सज़ा किसी को मिल भी रही है तो तीसरे बंदे को पता भी नहीं, बिकॉज नथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, हर खबर छपती नहीं है अखबार में, जगह ही नहीं है। तो उसने एक कहानी बुनी और कहानी अपने दिमाग में स्क्रिप्ट करने के बाद वो एक ट्रेन में बैठने को तैयार हो गया। वो ट्रैवल कर रहा था लिस्बन में, खिड़की से बाहर देख रहा था, खिड़की के बाहर चारकोल फायर, पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि सभी गरीब हो चुके हैं। रिवर से निकलती हुई वो फॉग, वो धुंध, ट्रैम चल रही है, न्यूज़पेपर गली गली बिक रहे हैं। पोर्चुगीज फर्स्ट रिपब्लिक का आलम यह था कि 16 साल हो चुके थे लेकिन 45 मरतबा सरकार बदल चुकी थी, 9 प्रेसिडेंट रह चुके थे 1920 से 1925 के बीच में, और कई दफा यहां पंगे हुए। तो बैंक ऑफ पोर्चुगल जो था वो प्राइवेट था, सरकारी नहीं था, मगर उसके कैश का जो फ्लो है वो सरकारी सिस्टम के थ्रू आता है। तो यूं समझ लीजिए कि बैंक ऑफ पोर्चुगल एक स्टेट एजेंट हुआ, एक ब्रोकर किस्म का, जब आप घर खरीदने जाते हैं बीच में ब्रोकर होता है ना, वो समझ लीजिए। अब एक आम आदमी क्या करता है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो दिया गया उसकी एक वैल्यू है। मैं अभी आपको एक 500 रियाल का नोट दूं तो यू नो कि उसकी वैल्यू है, राइट? 10 में से शायद कोई एक होगा जो उस नोट को चेक करना चाहेगा कि नोट है क्या, है असली है कि नहीं है। करते हैं चेक, अभी भी आप करते हैं चेक? नहीं करते होंगे, हर नोट आप नहीं देख रहे होंगे, स्पेशली अगर आपको लगता है कि ये तो भाई भरोसा है, ये तो सही नोट ही देगा, तो आप चुपचाप अपनी जेब में रख लेंगे। यही है वो फैसला, यही है वो की। तो हुआ कि आर्टोर ने अपने पहले के दोस्त एक बंदे से कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि उसे इन्वेस्टर चाहिए थे अपना बैंक खोलने के लिए, एक कहानी रचने के लिए, और उसे एक दोस्त की याद आई जिसका नाम था कैरल मैरिंग वेन। ये एक डच ट्रेडर था जिसके पास ऑनररी लाइब्रेरियन काउंसलर पासपोर्ट था। मैं आसान कर देता हूं, उसके पास ऐसा पासपोर्ट था कि उसको किसी भी कंट्री तक जाने के लिए कोई मसला नहीं है, कस्टम वाले उसको पूछेंगे भी नहीं कि भाई सामान डिक्लेयर तो करो। तो ये उसका दोस्त था और दोनों की दोस्ती गहरी भी थी। तो आर्टोर ने उसे खत लिखा और उसमें उसने झूठ लिखा, ऑब्वियसली उसने लिखा कि भाई ये काम है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है सरकार का, थोड़ा क्लासिफाइड है, मगर इसमें तुम्हारा भी फायदा है, मिलोगे क्या? उसने बोला हाँ भाई जरूर मिलते हैं। तो दोनों एक होटल में मिले, हैग नाम की जगह है, वहां पे होटल था, दोनों मिले और बैंक और पोर्चुगल के नाम पे इसने कहा कि भाई वो नया बैंक खोल रहे हैं ये लोग, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्लासिफाइड है सब कुछ, मैं पूरा बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन नोट्स मंगवाने हैं, तो देख लो आपका ही फायदा होगा। तो सामने वाला क्या सोच रहा है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ये एक्चुअली में सरकारी एजेंट है, पर ये झूठ है। बहरहाल वो इसमें फंसता चला जा रहा था। उसने बताया पॉलिटिकल सिचुएशन यार पोर्चुगल में बड़ी खराब चल रही है, तो अब वो थोड़ा चुपके से करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, अब मुझे तो जानते ही यार आप, मैं मदद करना चाहता हूं अपने देश के लिए, तो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़े कॉन्टेक्ट्स हो आपके। तो उसने कहा हाँ जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल मैं मदद करूंगा। तो बोला यार वो नोट जब आ जाएंगे यहाँ पे तो अंगोला के नाम पे लगा देंगे। तो कैरल ने कहा ठीक है, क्योंकि कैरल के पास उसके पासपोर्ट की ताकत थी। फिर उसने कहा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाओ, तो जो घर से पेपर तैयार करके नकली बना के लेके आया था वो, उसमें देखा स्टैंप है और सब कुछ था उस पे। फिर उसके बाद एक और बंदा चाहिए था उसे जो कि डिप्लोमेट हो, तो उसे बंदा मिला होजे बेंडेरा। ये जो था ये बंदा एक किस्म का एम्बेसडर टाइप का था, बिजनेसमैन था, ज्यादा वजनदार नहीं था लेकिन बिजनेसमैन था। उसने उसका नाम यूज करना है, टैलेंट नहीं, तो उसने इसको भी डिनर पे बुलाया और बोला भाई अंगोला में ना भाई बहुत बढ़िया काम होने वाला है, आप थोड़े मेरी मदद करोगे तो आपको भी फायदा होगा, मैं थोड़ा क्लासिफाइड काम कर रहा हूँ, देख लो आपको क्या करना है। तो उसने बोला मैं समझ नहीं आया, कोई कमीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बोला हाँ हाँ हाँ हाँ। इसको भी इसने कागज बना के दिखाया जिसमें ये माहिर था, जिसमें लिटरली सिग्नेचर्स और साइन हुए हुए थे। फिर एक और बंदा मिला अडोल्फ हेनिंस नाम का, इसको भी इसने बोतल में उतारा, ये जर्मन नेशनल था। इसको बोला भाई एक पैकेज जो है वो आएगा, जरा क्लियर करवा देना, थोड़ा क्लासिफाइड मामला है, इसमें आपको भी थोड़ा फायदा होगा। इसने कहा ठीक है क्लियर करा दूंगा, क्या आ रहा है वैसे मटेरियल? तो बोला अरे वो कागज हैं बहुत सारे, वो सरकारी काम है ना यार, समझते हो ना। तो अब ये तीनों के तीनों जिनको भरोसे में लिया है आर्थर ने, इन तीनों को नहीं पता है हो क्या रहा है, पर तीनों फंस गए। ये पता कैसा है, मैं आपको और आसान शब्दों में बताता हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको बोलूं सुनो टीचर जो है वो ये एग्जाम लेना चाह रही है आप लोगों से, ये पेपर है ठीक है, इसके सवालों के जवाब दो। आप पूछोगे टीचर ने बोला है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ टीचर ने मुझे बोला है, सरप्राइज टेस्ट है ये, ज्यादा सवाल नहीं करते, चलो जल्दी फेल हो जाओगे वरना। तो आप मुझसे दूसरा सवाल करोगे ही नहीं, बिकॉज यू बिलीव कि हाँ यार ये टीचर जो है इससे जुड़ी हुई है, बड़ा आदमी है ये, गलत थोड़ी बोलेगा। तो आप आ गए भरोसे में, और मैंने आपसे कागज पे जो मर्जी चाहा पूछा और आपने लिख दिया, ये बिल्कुल वही हो रहा है। सो दिसंबर 1924 में पूरी टीम तैयार हो गई, अब डॉक्यूमेंट बनाना बाकी था। इस बंदे ने घर पे एक मेजर डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में था बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ अंगोला और बैंक ऑफ पोर्चुगल, दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। इसमें ऑथराइजेशन इसने दी 100 मिलियन एस्क्यूडेस की, 500 नए नोट अंगोला के डेवलपमेंट के लिए, और इसने इस पे ऊपर लिखा क्लासिफाइड। क्लासिफाइड लिखने का मतलब है कि कोई भी इस कागज को चेक नहीं करेगा, ये बाईपास कर जाएगा स्टैंडर्ड सारे के सारे प्रोसीजर। एक एक वर्ड इस कॉन्ट्रैक्ट का झूठ था, एक एक वर्ड। दो कमजोरियां थी बैंक ऑफ पोर्चुगल की, प्रिंटिंग सिस्टम, ऑथराइजेशन है। तो वाटरलू वालों के पास जब पहुंचेगा तो वाटरलू वाले चेक नहीं करने वाले, कॉल करके हाँ जी आपने भेजा कागज, जी आपका ही डॉक्यूमेंट है। नहीं, वो लोग सिर्फ ठप्पा देखते हैं, स्टैंप देखते हैं, बस स्टैंप है सरकारी स्टैंप हो जाएगा काम, वो कॉल नहीं करते। दिस इज बैक इन द डे, और वो ये चीज जानता था। इससे फायदा यह होगा कि कोई भी सीरियल नंबर ट्रैक ही नहीं होगा, लोकल ट्रैक तो बैंक वैसे भी नहीं कर रहा, तो नेशनल कहां से चेक कर लेगा। तो हो ये रहा है, मैं और आसान करता हूं कि मार्केट में एक ही सीरीज के दो नोट हैं, मगर आपको पता ही नहीं है। आपके हाथ में जब तक सेम सीरियल नंबर के दो नोट नहीं आएंगे, आपको कुछ नहीं पता कि आपके पास नोट जो है वो असली है भी कि नहीं। ऊपर से उसने नोटों पे कहा कि इससे मुझे वास्को डगामा की फोटो चाहिए, क्योंकि भाई ये डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है, वो बंदा अफ्रीका तक गया था भाई, तो उसकी फोटो चाहिए। तो एक पूरी पिक्चर, एक पूरा सिनेमा इस अकेले बंदे ने, आर्टू ने पेंट किया विद कन्विक्शन। अब स्टेप वन ये था कि उसे चाहिए सिग्नेचर। वॉलेट से उसने 500 का पत्ता निकाला और उसके ऊपर जो गवर्नर के साइन थे उस पर ट्रेसिंग पेपर लगाया और उसकी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस कि उसे अब फ्री हैंड वो सिग्नेचर साइन कर सकता है। स्टेप टू, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना। कॉन्ट्रैक्ट पे उसने जितना जेल में पढ़ाई करी थी कि बैंक किस तरीके से फंक्शन करता है, एक लीगल पेपर की भाषा क्या होती है, सारी की सारी लैंग्वेज उसने, सारी जुबान उस पर लिखी, उसमें हेडिंग, क्लॉज और पेपर वजनदार, एकदम कड़क भारी पेपर के लगे, हाँ यही है लीगल डॉक्यूमेंट। अब स्टेप तीन था नोटरी सील। वो फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर असिस्टेंट के पास गया, लेकिन असिस्टेंट के पास गया, चीफ के पास नहीं गया, और बोला ये क्लासिफाइड है, बड़े साहब ने बोला ठप्पा लगा के तू जल्दी से। असिस्टेंट ज्यादा सवाल नहीं करते, बड़े साहब के बातों को काटोगे, उसने लगा दिया थप्पा बिना पड़े, काम खत्म। अब स्टेप फोर, नोटरी पे जो ठप्पा लगा हुआ है वो मेन है, अब ठप्पा लगवाना है बाकी एम्बेसी वालों से, क्योंकि नोट आएंगे कैसे। तो वो गया ब्रिटिश काउंसिलेट, लग गया वहां पे ठक्का। ब्रिटिश काउंसिलेट ने क्या देखा, भाई नोटरी वाले ने सील लगा रखी है, लगा दी। फिर गया फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच वालों ने क्या देखा, भाई ब्रिटिश काउंसिलेट ने लगाया है नोटरी सील भी है, उसने भी लगा दी। फिर गया जी जर्मन वालों के पास, जर्मन वालों ने क्या देखा, भाई ब्रिटिश, फ्रांस, इन सब के ठप्पे हैं, उसने भी लगा दिया। किसी ने नहीं पढ़ा, सब क्या देख रहे हैं, पिछले वाले का ठप्पा है कि नहीं, कोई पेपर नहीं देख रहा, कोई पेपर नहीं देख रहा, सभी देख रहे हैं पिछले वाले का ठप्पा है या नहीं। अब जो पेपर तैयार करने हैं इन तीन सो कॉल टीममेट को, जिन्हें कुछ अलग तस्वीर दिखाई है, इनको पेपर देने के लिए पुराने कागजों में से ब्लेड लेके डॉक्यूमेंट से स्टैंप और सील फाड़ फाड़ के इसने चिपकाई, बहुत कायदे से, ताकि ऑथराइजेशन एकदम असली दिखे। दिसंबर 1924 में कैरल मैरिन, जिसको लग रहा है कि उसका बहुत फायदा होने वाला है, जिसके पास बहुत ताकतवर पासपोर्ट है, वो ट्रेवल कर रहा था लंदन। उसके पास था लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही रसूखदार डच फर्म का, जिसका नाम था जेन एनसेदा। पहली मीटिंग हुई और मीटिंग सीधा विलियम वाटरलू से हुई, मतलब डायरेक्टर ऑफ वाटरलू एंड सन्स, वो कंपनी, वो फर्म जो नोट छापती है पोर्चुगल के लिए, पूरे पोर्चुगल के लिए। अब इसने क्या देखा, इसके पास जब कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस पर भाई साहब इतने सारे गवर्नमेंट के स्टैंप लगे हुए हैं, तो ये कौन होता है सवाल करने वाला। और इसने बताया कि विलियम साहब, वो पोर्चुगल में 500 के डिनोमिनेशन के नोट चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है आपको पता ही है, तो आप देख लो। विलियम वाटरलू ने कागज देखना शुरू किया, नोटरी है, एम्बेसी के सिग्नेचर है, वो कौन होता है शक करने वाला। उसने ये तक नहीं पूछा कि ये प्राइवेट बंदा क्यों बैठा हुआ है, मेरे सामने नोट क्यों मांग रहा है पूरे देश के लिए, कुछ नहीं, उसने ठप्पा देखा। अब एक मसला था, सब कुछ क्लियर हो चुका है, सीरियल नंबर का क्या किया जाए, डुप्लीकेशन हो जाएगा मार्केट में। तो आर्टूर ने कॉन्टेक्ट किया, एक खत में लिखा कि मैं आपको सीरियल नंबर सीरीज दे रहा हूं इस नंबर के नोट छापने। विलियम वाटरलू ने कहा ठीक है हो जाएगा। आर्टूर के अलावा सबको लग रहा है कि वो बहुत ही शरीफ और सीधा काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि कितना बड़ा गेम चल रहा है, किसी को नहीं पता है कि आर्टूर ने अपनी जेब से नोट निकाल के उसी का सीरियल नंबर, उसी की सीरीज भेज दी है छपने के लिए। उसने ये बोला कि अरे वो आप इस सीरीज में छाप दीजिए, ऊपर से अंगोला ओवर प्रिंट तो वैसे भी होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। उन्होंने बोल दिया ओके। तो फरवरी से नवंबर 1925 प्रोड्यूस किए गए 58,000 बैंक नोट्स 500-500 के, जिन पे शक्ल थी वास्को डगामा की, सेम पेपर, सेम इंक, प्लेट्स, नोट्स, सब कुछ एकदम असली, यानी कि 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग प्रोड्यूस किए गए, जो कि 1% था पोर्चुगल की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आर्टूर ने प्रिंट नहीं किए, करवा दिए। वाटरलू बैच अब जो है बस पहुंचना बाकी है उस तक। तो कैसे पहुंचेगा, केरल के पास बहुत ताकतवर पासपोर्ट है, उसने ये सारे के सारे बहुत नॉर्मल से बैग्स में भरवाए और ये बंडल लेकर, एक ऑर्डिनरी सूट केस लेकर पहुंच गया। और उसके बाद ऑफिसर्स ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि पासपोर्ट भारी है तो कोई कस्टम चेक नहीं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है, और वो आ गया पोर्चुगल, कोई मसला नहीं है, ये करेंसी पोर्चुगल में आ चुकी थी। जून 1925, आर्टूर ने इन पैसों से, या यूं कहूं उस करेंसी से एक बैंक खोल डाला, एक बैंक, द बैंको दे अंगोला ई मेट्रोपोले, जिसका ओनर और डायरेक्टर कौन है, आर्टूर एल्वेस दोरेस। 300 मिलियन करेंसी को साइकिल कर दिया, जिसको जितना हिस्सा देना था दे दिया। सबको लग रहा है कि हमने तो बहुत नेक काम किया है। अब इस बैंक में जितना पैसा है इसको रोटेट करने के लिए इसने सबको लोन बांटना शुरू किया, आ जाओ लोन ले लो, आ जाओ। बाकियों के मुकाबले 3 गुना कम, क्योंकि लोन उस वक्त उन लोगों को मिलता था जिनके पास कुछ तो पैसे हो, लेकिन ये सबको ही बांट रहा था, आ जाओ लोन ले लो। और लोग बोलते थे यार ये तो फरिश्ता है। वो इस वक्त 28 साल का था, मगर रुकने वाला नहीं था। अब एक और फेज था, फाइनल फेज, अब उसे इस पूरे फाइनेंस सिस्टम को अपना लेना है। वो बिल्कुल चुपके से बैंक ऑफ पोर्चुगल के शेयर्स खरीदने शुरू कर चुका था। वो चाहता था कि वो इसका शेयर होल्डर बने, सबसे बड़ा, यानी कि खुद सिस्टम बन जाए। तो कुछ भी करता रहेगा, पैसे इधर उधर, कोई सवाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद से क्यों सवाल करेगा, वो खुद ही कानून बन जाएगा। तो बैंक ऑफ पोर्चुगल का ओनर बनने के लिए 45,000 वोट शेयर चाहिए थे, मेजॉरिटी, और इसके पास ये करने का मौका था, जल्दी करना पड़ेगा बस। तो क्रॉस ओनरशिप के जरिए, मतलब अलग अलग कंपनीज के जरिए अपने शेयर खरीदता गया, क्योंकि एक बंदे को सारे शेयर नहीं दिए जा सकते। तो इसके पास 10,000 शेयर इकट्ठे हो गए और अभी भी बाकी थे काफी ज्यादा शेयर लेना। मगर इस बीच एक चीज हो गई जो बहुत दिक्कत थी। दरअसल इस टाइम पे एक बंदे के हाथों में अक्टूबर 1925 में एक नोट, दो नोट लगे सेम सीरियल नंबर की, और इसी टाइम पे रिपोर्टर्स को शक हुआ, ये कैसा बैंक है भाई, ये बैंक तो नया नया खुला है, ये सबको नोट इतनी जल्दी लोन कैसे बांट रहा है, और उन्होंने रिपोर्टर लगा दिए पीछे, हेडलाइंस छपने लगी, इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं घुसपैठिए, ये सब छपने लगा, और इसलिए सब इसके पीछे पड़ गए। दिसंबर 1925 अखबार में हेडलाइन बनी, ओपेस एम क्राइस, यानी कि कंट्री इन क्राइसिस। अब पुलिस वाले पीछे लग गए, अब वो छोड़ने वाले नहीं थे। सीरियल नंबर सेम निकल रहे थे और अब एक पुलिस वाले को मार्केट में उतारा गया, तिशेरा दी ब्रेटो पोर्टो, और वो जब मार्केट में उतरे तो उन्होंने बैंक में जा जाकर नोटों को मैन्युअली मैच करना शुरू किया, सबको बिठा के गिनवाया कि डुप्लीकेट कितने हैं, अभी के अभी गिनो। और बैंक ऑफ पोर्चुगल पूरे आफ्टरनून यही काम करता रहा, नकली और असली के बीच में। अब दिक्कत ये थी कि अगर वो नोट रुकवा दें तो जिनकी बेचारों की सेविंग है वो तो खराब हो जाएगी, और अगर वो नहीं रुकवाते तो उन्हें सरकार की मदद लगेगी। तो यानी 300 मिलियन का चूना लग चुका है, पर सबको लाइन में लगवाना पड़ेगा। सबसे कहा गया कि अपने अपने नोट बदलवाने के लिए आप लोग पहुंच जाइए। लाइन लगी हुई थी पोर्चुगल में हर जगह, और पुलिस अब पीछे पड़ी थी आर्टोर की। उन्हें पता लगा कि आर्टोर एक जहाज के जरिए ट्रेवल कर रहा है, और अब वो उसके पीछे लग गए कि अब इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और फाइनली उन्होंने एक जहाज में बोर्ड करके आर्टोर को बाकायदा अरेस्ट कर लिया। वो उस वक्त कहां जा रहा था, किधर जा रहा था, ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 6 दिसंबर 1925 में उसे कस्टडी में लिया गया, लिस्बन लाया गया, और उसके बैंक में जो उसने बैंक बनाया था वहां जाके भी चेक किया, तो एक एक चीज का खुलासा हुआ। उन्होंने उसके बनाए हुए पेपर को फ्रैंकेनस्टाइन पेपर कहा, कि स्टैंप असली है लेकिन जिस कागज पर स्टैंप लगे हुए हैं वो कागज जिंदा ही नहीं है। उसका प्लान ये था कि वो बैंक ऑफ पोर्चुगल का ओनर बन जाए पकड़े जाने से पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1930 में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई, 1945 में वो बाहर आया, और 10 साल के बाद दुनिया से चला गया, लोगों ने बुला दिया। लेकिन पीछे जो वो छोड़ के गया था, नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ पोर्चुगल ने वाटरलू वालों पे केस कर दिया कि भाई तुमने नोट ऐसे छाप कैसे दिए, भरोसा तोड़ा है तुमने हमारा, और डैमेज में उन्हें 6,10,392 पाउंड भरने पड़े। कंपनी डूब गई, पोर्चुगल की गवर्नमेंट लूट चुकी थी। 6 महीने बाद अरेस्ट के, आर्टोर के आखिरी दिन जो बीते बहुत दर्दनाक थे। वो जिस सिस्टम को ओन करना चाहता था उसी सिस्टम को उसने तोड़ कर रख दिया, और उसने निकलने के बाद ये कहा कि हर गवर्नमेंट यही तो करती है, कागज ही तो है, पर आपको मानना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू है, और आप मानते हैं। 12,501 शेयर दूर था आर्टोर, अगर उसे ये वाले शेयर आखिरी में मिल जाते तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। तो जैसे लोग कहते हैं कि डिग्री है सब कुछ नहीं होता, आई एम सॉरी, मुझे मानना पड़ेगा कि सही कहते हैं। आर्टोर पे मूवी बहुत जल्द बन के सामने आने वाली है, एंड नोबडी हैज मेड इट टिल नाउ, बट आई बिलीव ये बंदा बड़े से बड़े कौन आर्टिस्ट से बड़ा है। सो आर्थुर वर्जिलियो अल्वेस दोरेस, ये नाम मुझे तो याद रहेगा। अब आपके पास ये कहानी है। आई होप कि इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी में समझा पाया हूं, क्योंकि इस अकेले बंदे ने जो किया है आई नेवर थॉट किसी ने किया होगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM107 दिल से देसी।
0: आज की कहानी जो है मेडिकल मिस्ट्री है, ठीक है, तो तैयार हो जाइए बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ओके जी, शुरू करें क्या? तो रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी के मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। तैयार? चलो भाई शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। मैं दोहा वाला कबीर FM107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 1983 में, 1983। इस वक्त एक 21 साल का लड़का टॉम स्टैम्पी अपनी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा खुश था। अभी तक तो He was doing well, कॉलेज में भी एकदम बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दी। अभी करियर बनाने के लिए बाहर आ चुका था, he was already working और उसकी एंगेजमेंट तक हो चुकी थी अपने हाई स्कूल स्वीट हार्ट से। तो लाइफ एकदम सेट चल रही है और हेल्थ वाइज भी एकदम बढ़िया, एथलेटिक बॉडी एकदम, he was a definition of perfect health। 1983 जुलाई तक उसकी लाइफ ऐसी चल रही थी जिसके लोग सपने देखते हैं। जिस जगह पे वो रहता था इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग आइलैंड, और आसपास जो भी उसके रहा, चाहे उसके माँ बाप हों या उसके दोस्त हों, उसके बारे में हमेशा यही कहते आए कि यार बंदा कुछ है, इसकी एनर्जी कुछ अलग है। एक तो लॉयल है, ऊपर से एनर्जी बहुत इसकी ज़बरदस्त है, और टेंशन नहीं लेता ये। बट एवरी थिंग वॉज अबाउट टू चेंज जब अगस्त का महीना आया। अगस्त के महीने में अराउंड 3 PM जब वो घर वापस आया, और इस वक्त वो काम से जल्दी वापस आया, तो सबसे पहले तो घर वाले शॉक थे कि यार इतना मेहंदी लड़का हमारा वक्त से पहले आ गया, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने जेन्युइनली पूछा कि टॉम इज एवरीथिंग ओके? एंड टॉम स्टैम्पी, पूरा नाम थॉमस स्टैम्पी, हम उसे पूरी कहानी में टॉम बोलेंगे। तो टॉम ने कहा नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, पर पता नहीं मेरा आज मन नहीं कर रहा है काम करने का। तो माँ बाप ने कहा ठीक है, होता है कभी कभार, इट्स ओके। लेकिन टॉम जो था उसके बाद खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में गया तो उसे दर्द होने लगा सर में, और आमूमन जब सर में दर्द होता है तो आपके दिमाग में आगे की चीज़ इतनी आती नहीं है, यू ओनली से कि यार सर बहुत दर्द कर रहा है यार। देसी आदमी को तो बोलेगा भाई चाय पिला दो, कॉफ़ी पिला दो। एंड वही टॉम के साथ था, सर में दर्द हो रहा था, इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था कि माइग्रेन वाला पेन है लेकिन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, और ये समझाना बड़ा मुश्किल था। तो उसने बोला अपने माँ बाप को कि मेरे सर में बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, और सबको लगा कि शायद आँख खराब होती है, कोई दिक्कत होती है तो विजन प्रॉब्लम होगी इसलिए दर्द ज्यादा हो रहा है, पर पहले कभी हुआ नहीं था। तो उसने सीधा बाहर जाके फैसला किया जो आम मूमन हर कोई करता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने का फैसला किया कि भाई ठीक है नॉर्मल दवाई खा लूंगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, आराम कर लूंगा। लेकिन कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, हर दिन उठे, हर दिन यही हाल है, सर का दर्द जा ही नहीं रहा है। और जब एक दिन से ज़्यादा सर का दर्द हो जाता है जब आपको सोचना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है। इसके साथ भी ये हुआ, ये अपने रेगुलर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो वो एकदम चिल थे, उन्होंने बोला टॉम अरे यार क्या इतनी टेंशन ले रहे हो। ही वॉज नॉट अलार्म्ड एट ऑल। उसने पेन किलर्स लिखे और बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे लग रहा है सगाई के बाद ना तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। और हंस के उसको गोली पकड़ाई, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के और कह दिया ये खाते रहो ठीक हो जाओगे। टॉम वॉज वेरी चिल, उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। टॉम घर की तरफ गया, उसने खाना खाया, दवाई ली, दर्द थोड़ा सा कम हुआ उन पेन किलर से, लेकिन फिर जब दर्द उठा तो फिर वो बद से बदतर होता गया। ये दर्द 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता क्रॉस कर रहा था और कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद 6वें-7वें दिन कुछ बहुत ही अलग हुआ, बहुत ही अलग हुआ। हुआ दरअसल ये, उसका जो पूरा सर है, पूरा का पूरा सर, वो ट्विच करने लगा, हल्के हल्के राइट की तरफ हिलने लगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसने ये प्रॉब्लम अपनी मां को बताई। मां ने बोला, बेटा शायद तुम गलत सो गए होगे, इस वजह से गर्दन में झटका आ गया होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट डोंट वरी, यू विल बी फाइन। पर ये जो चीज थी ये बढ़ती ही जा रही थी। अब ऐसा हो रहा था कि उसको दर्द के साथ साथ लग रहा था जैसे उसका सर जो है वो राइट हैंड की साइड कोई खींच रहा है, और ये हर आधे घंटे 15 मिनट के बाद उसका सर धीरे धीरे राइट की तरफ खींचा चला जा रहा, जैसे कोई सच में पकड़ के खींच रहा हो। और तब तक वो समझ पाता कि क्या हो क्या रहा है, उसका राइट की तरफ सर जाते जाते राइट शोल्डर पे जाके जैम हो गया। अब आपको अगर मैं बोलूं कि भाई अपनी गर्दन को है पूरा राइट अपने कंधे पे बिल्कुल तरफ करके बैठे रहो, आप बामुश्किल शायद 2 मिनट बैठ पाएंगे, अगर कोई टास्क हो, कोई नाम विनाम हो तो शायद आप थोड़ी देर और बैठ लें, मगर जस्ट इमेजिन खुदा ना खासा जैम हो जाए तो क्या होगा। तो उसका जो सर था वो राइट पे शोल्डर पे आके जैम हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने सर को वापस सीधा भी नहीं कर पाएगा, कोई चीज जैसे पकड़ के रखी हुई है। और इतना दर्द हो रहा था कि समझ के बाहर था। उसने फौरन, एक तो रोना आ रहा था, वो अपने आप को रोक रहा था, फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने बोला कुछ नहीं है, मसल पुल है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक। उन्होंने फिजिकल थेरेपी के लिए बोल दिया। तो फिजिकल थेरेपी जो थी वो 3 महीने चली, पर जो पूरा सर था वो चिपक गया था राइट शोल्डर पे, और वो थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। थेरेपी से हुआ ये कि टेम्पररीली थोड़ा सा दर्द जरूर कम हो गया, लेकिन पूरा का पूरा सर बस राइट कंधे पे रखा हुआ था और चिपक गया था, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसे हटा भी नहीं पा रहा था। अब ये भी लगने लगा था कि लेफ्ट साइड की तरफ से उसकी गर्दन को कोई दबा रहा हो राइट शोल्डर पे। अब काम पे कैसे जाएगा, बट ही स्टिल ट्राइड। टॉम उनमें से था जो बहुत रेजिलियंट बच्चे होते हैं ना, यंगस्टर्स जिनको जोश होता है नो मैटर व्हाट, उनको आप आलसी नहीं देख सकते। इतने दर्द के बाद, इतना अजीब हो जाने के बाद, जहां उसकी गर्दन को वो सीधा भी नहीं कर पा रहा है, राइट शोल्डर पर चिपक गई है गर्दन उसकी, उसके बावजूद वो 50 किलोमीटर ड्राइव करके स्पेशल मिरर लगा के जा रहा था डेली ऑफिस। कैसे चला रहा होगा गाड़ी, जस्ट इमेजिन। ऑफिस में लोग कुछ हंस रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि ये नाटक कर रहा है, क्योंकि ये नाटक ही लगेगा ना कि गर्दन जो है बिल्कुल राइट शोल्डर पर रखी हुई है और वो हट नहीं रही है। तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, एंड उनके हिसाब से ये नाटक ही चल रहा था। उन्होंने बोला कि भाई तुम डॉक्टर के पास जाओ, कुछ बताया उन्होंने, बट कोई कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। इसने डिसाइड किया कि भाई मैं डॉक्टर के पास वापस जाता हूं, क्योंकि मामला सीरियस हो रहा है। उसने अपने फैमिली डॉक्टर के पास वापस जाकर बोला, डॉक्टर साहब कोई दवाई काम नहीं आ रही, मुझे प्लीज बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, जो स्पोर्ट्स और मेडिसिन डॉक्टर होते हैं ना उनके पास जाओ, उनके पास स्पेशल टीम होती है जो इस चीज को देखती है, तो शायद उन्हें कुछ दिख जाए जो हमें नहीं पता लग रहा। तो ये वहां पर भी चला गया, नंबर लगा के बैठ गया वेटिंग रूम में। अब जो नए डॉक्टर साहब थे वो आए, उन्होंने कहा मेरे पास इसका इलाज तो नहीं है, पर मुझे पता है कि हुआ क्या है तुम्हें, और इलाज भी ऐसा है जो लंबा चलेगा। तो बड़ा खुश हुआ टॉम कि फाइनली चलो किसी ने तो बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। तो इन्होंने कहा कि हाँ तुम्हें एक प्रॉब्लम है, और तुम्हें प्रॉब्लम जो है उसका नाम है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस क्या होता है, ये सिंपल गर्दन की मूवमेंट जो होती है ना, मसल अटक जाती है तो होती है ये प्रॉब्लम। ये पर उसने पूछा डॉक्टर साहब आगे क्या करना है, मतलब आपने बीमारी को नाम तो दे दिया पर आगे क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला आगे थेरेपी चलेगी तो पेन थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद मसल

रिलीज होंगे. तो उसने बोला ठीक है. पहला राउंड थेरेपी का कुछ नहीं हुआ, सेकंड राउंड फेल्ड, गर्दन वहीं की वहीं है, राइट कंधे पर रखी हुई, ही कुड नॉट मूव. अब वो काम पे जा तो रहा था, लेकिन काम वालों को, जिनको लग रहा था कि भाई नौटंकी कर रहा है, उन्होंने ऑफिस के फिजिशियन को भी दिखाया, जो कि ऑब्वियसली इस काबिल नहीं था कि वो समझ पाए क्या हो रहा है. और उसने कहा सब कुछ ठीक है यार तुम्हारे साथ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा. एंड उसके इस बयान की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठा टॉम. एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे जब उसे नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया गया, सिंपल सॉरी बोल के. कहा कि तुम परफॉर्म कैसे करोगे यार. और टॉम स्टैम्पी का ये बुरा वक्त और भी बुरा होता चला जा रहा था. टॉम अभी डिप्रेस हो चुका था बहुत ज्यादा, अपने आप को कमरे में लॉक कर देता था, दिल उसका पूरा चकना चूर हो गया था. वो किसी भी कॉल नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि हर कोई उसे कॉल पे दो चीजें बोलता था, या तो सामने वाले को लगता था कि ये नाटक कर रहा है और वो सरकास्टिक होके बात करते थे, या फिर दूसरे जो लोग होते थे वो सिर्फ यही बोलते थे बेटा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, दैट इज ऑल. और वो सुन सुन के थक चुका था, बिकॉज उसने खुद इतने डॉक्टर्स को ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. अब जब उसे लग रहा था टॉम को कि इससे बुरा मेरी लाइफ में क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा क्या हो जाएगा, तभी उसकी फियांसे, जिससे एंगेजमेंट करी थी, जो हाई स्कूल से उसे जानती थी, उसने सवाल करने शुरू कर दिए कि तुम सपोर्ट कैसे करोगे हम दोनों को, हम कैसे रहेंगे. आई एम रियली सॉरी टॉम, बट वी कैन नॉट कंटिन्यू, आई एम रियली सॉरी. और उसने सगाई तोड़ दी और वो भी टॉम की जिंदगी से चली गई. टॉम ऑलरेडी टूटा हुआ था, उसको और ज्यादा बिखेर दिया उसके आसपास के लोगों ने. एक साल हर रोज इस दर्द में टॉम जी रहा था. माँ बाप उसके बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा. जब वो कमरे से बाहर आना छोड़ चुका था तो उसके जो डैड थे उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसे नहीं रहेगा. और उन्होंने फिर हिम्मत बांधी, उनका बेटा अभी हमें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, मैं ढूंढ के निकालूंगा, कोई तो होगा जो समझ पाएगा. रिश्तेदारों ने तो हाथ पीछे खींच लिए थे, उनके लिए टॉम अभी एक फ्रीक था. होता ना जैसे म्यूजियम में कोई रखी हुई चीज, लोगों को बताने की चीज कि तुम्हें पता है एक ऐसा भी लड़का है हमारे खानदान में जिसकी गर्दन उसके सीधे कंधे पे चिपक गई है, और वो एक शोपीस बना के बताते थे जो माँ बाप को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने भी बैन कर दिया था कि कोई रिश्तेदार ना आए. मगर माँ बाप हमेशा साथ में रहे टॉम के. और माँ ने एक चीज नोटिस करी कि रात के वक्त जब उनका बेटा गहरी नींद में होता है तो कुछ अलग होता है. वो एक रात कमरे में गई, उन्होंने देखा उनका बेटा जो है टॉम सो रहा है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, बोला इधर आइए देखिए टॉम की गर्दन एकदम सीधी है. एंड दोनों के दोनों माँ बाप बड़े हैरान थे कि गर्दन अभी सीधी कैसे यार, ये क्या है. उनको लगा कि जगा के अच्छी खबर देनी चाहिए कि टॉम तुम्हारी गर्दन सीधी हो चुकी है एकदम. पर जैसे ही उन्होंने उसे जगाया, माइक्रोसेकंड के अंदर गर्दन वापस राइट साइड की तरफ चली गई. उसके बाप ने कहा बेटा अभी के अभी मेरे साथ चल. और वो रोते रोते अपने आंसुओं को काबू करके उसे लेकर वहां से निकले और एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए. उसी वक्त लोकल हॉस्पिटल में पेशेंट्स और बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ बड़ा हैरान था, उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था. एंड दे वर जस्ट वंडरिंग कि क्या चीज है, मे बी कोई चोट लगी होगी. लेकिन यहां पर मिले एक न्यूरोलॉजिस्ट. जो न्यूरोलॉजिस्ट इस लोकल हॉस्पिटल में मिले, उन्होंने टॉम पे तमाम टेस्ट कर लिए. दुनिया के जितने भी टेस्ट वो जानते थे उन्होंने सब के सब करके देख लिए. और पहली मरतबा लगा कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो टॉम को एक्चुअली में सीरियस ले रहा है, जो ये नहीं कह रहा कि टॉम नाटक कर रहा है. ये पहले डॉक्टर थे जो सीरियस ले रहे थे. उन्होंने बोला कि टॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और इसमें मैं कुछ इंजेक्ट करूंगा तो आई होप इट वर्क्स. तो टॉम एक्साइटेड हो गया कि हो सकता है ये काम कर जाए. तो वो जो इंजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसे कहते हैं वैलियम. वैलियम जो है वो डोज उसे दी जा रही थी 120 mg की. मैं आपको ये डिटेल क्यों बता रहा हूं,
बताता हूँ क्यों। इन

इंजेक्ट डायरेक्टली की जा रही थी. वैल्यूम बेसिकली ओरली दी जाती है, ठीक है, सीधा नसों में नहीं दी जाती है, नॉर्मली ओरली दी जाती है. और ये बहुत अलग किस्म की दवाई है, इससे एंग्जाइटी के लिए दी जाती है, किसी को एंग्जाइटी है, कुछ अलग परेशानियां हैं तो उसके लिए दी जाती है. मगर हद से हद जो मैक्सिमम डोसेज डॉक्टर्स देते हैं वो 30 mg की होती है, 30 mg मैक्सिमम पर डे की बात कर रहा हूं. पर जो डोज टॉम को दी जा रही थी वो 4 गुना ज्यादा थी, वो भी डायरेक्टली उसके मसल्स में इंजेक्ट की जा रही थी. जो नर्सेस भी थी वो भी हैरान थी कि डॉक्टर साहब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रास्टिक मेजर है, ये बिल्कुल लिमिट क्रॉस करने वाली चीज है. और नर्स ने बोला कि ये जिंदा कैसे इतनी ज्यादा वैल्यूम के इंजेक्शन के बाद, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. जब ये डोज उसे मिलती रही, 1 महीने के बाद शोल्डर पे से जो सर है वो थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा, 1/2 inch, पर ये बड़ी बात थी. मगर टॉम जो था वो वैल्यूम क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में उसकी बॉडी में जा रही है तो उसको होश नहीं आ रहा था, बेहोशी की हालत में ही रह रहा था मोस्टली, क्योंकि डोसेज बहुत ज्यादा थी. मगर 1 महीने के बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला कि टॉम की हिम्मत टूट गई. डॉक्टर साहब बोले, टॉम मैंने यार सब करके देख लिया है, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. टॉम आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम्हें इसी कंडीशन के साथ जीना पड़ेगा. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. और उन्होंने सीधा डिस्चार्ज पेपर तैयार किया और टॉम को डिस्चार्ज कर दिया. टॉम वॉज इन टोटल शॉक. जिंदगी में पहली मरतबा टॉम को लगा था कि शायद वो ठीक हो सकता है, शायद, मगर वो शायद भी छीन लिया गया. टॉम वॉज क्रश्ड पूरी तरह से. टॉम की जो मां थी वो तो ये सोचती थी कि मेरे साथ ही हो जाता, मेरा बेटा जवान है अभी, उसे दुनिया देखनी है, उसके साथ नहीं होना चाहिए था. एंड घर का माहौल ऐसा था कि सबने एक तरह से उन्हें अकेला छोड़ दिया था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग बस फोन पे पूछते थे, दूर से पूछते थे, किसी को लगता था ये बीमारी ऐसे तो नहीं कि फैल जाएगी, तो लोग पास भी नहीं आ रहे थे. मगर टॉम के पास माँ बाप थे, सबसे बड़ी ताकत. टॉम की माँ ने अपने कॉन्टेक्ट्स खंगाले और दिस इज 1984-5 आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उस टाइम पे कॉन्टेक्ट्स ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. अभी तो आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट है, आपको खुद भी नहीं याद होगा कितने हजारों में कॉन्टेक्ट्स है, बट दैट पॉइंट टाइम ऐसा नहीं था. उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स में एक नंबर देखा जो उन्हें याद आया उनकी दोस्त का है, जिस दोस्त के खानदान में भर के डॉक्टर्स हैं. तो उन्होंने ऐसी हवा में तीर मारा क्योंकि कुछ तो करें. और जिसको वो कॉल करने जा रही थी, ये औरत खुद तो डॉक्टर नहीं थी, काफ़ी रिलीजियस थी, पर इनके कनेक्शन में सारे के सारे डॉक्टर्स थे घर में. तो उनको कॉल करके सारे के सारे सिम्टम्स बताए और उस खातून ने बोला कि डोंट वरी, मेरे ख़ानदान में एक जान पहचान के हैं, मैं उनका नंबर देती हूँ. और उन्होंने नंबर दिया डॉक्टर मिचेल ब्रिन का. डॉक्टर मिचेल ब्रिन कहा कि कॉन्टैक्ट याद रखो, इनसे मिलने के लिए चले जाओ. अपॉइंटमेंट ली गई. अपॉइंटमेंट लेने के बाद वेटिंग रूम में बैठा था. टॉम को तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है, मगर फिर वेटिंग रूम में बैठे बैठे 20-25 मिनट के बाद एक यंग डॉक्टर उनके सामने आए. रेड बाल थे उनके, यंग डॉक्टर थे, और जो बैच लगा हुआ था उनके सीने पे डॉक्टर मिचेल ब्रिन, छोटी छोटी मूछें थी, हल्की सी दाढ़ी थी, और उन्होंने एक बहुत ही वार्म वेलकम दिया. उन्होंने देखा और बोला टॉम को, टॉम हाय, कैसे हो टॉम, तुम्हारे बारे में बहुत सुना यार मैंने, एंड आई कैन क्लियरली सी कि तुम दर्द से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं समझना चाहता हूं तुम्हें, तो मुझे जरा शुरुआत से बताओ टॉम, क्या हुआ, मतलब सिम्टम्स क्या क्या हैं. और टॉम ने डॉक्टर के इस अप्रोच को देख के, ना जाने उसके दिल ने कहा कि मैं अच्छे से बात करूं, आई शुड नॉट बी रूड, और उसने अच्छे से बात करी. डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने कहा ओके ठीक है, कुछ स्कैन करेंगे हम. उन्होंने स्कैन जो था वो चालू किया, गर्दन का, सर का और स्पाइनल टैप. बेसिकली स्पाइनल फ्लूइड को चेक किया जाता है कि उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, और पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा उन्होंने, मेडिकल रिकॉर्ड सारे के सारे देखे और बहुत ध्यान से देखे. और फिर सब कुछ करने के बाद डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने कहा कि यू नो व्हाट टॉम, मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है. एंड टॉम वाज लाइक, है आपको पता है क्या हुआ, बिकॉज वो उम्मीद ही नहीं कर रहा.

0: कोई डॉक्टर समझ पाएगा?
1: और अचानक से सामने वो डॉक्टर था जो कह रहा है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ है. तो उसने बोला, यस डॉक्टर, क्या क्या हुआ क्या है? और उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल डिस्टोनिया है. अब सर्वाइकल डिस्टोनिया क्या है? सर्वाइकल डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसकी वजह से गर्दन की मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने आप ट्विच करने लग जाती है, अपने आप एबनॉर्मल पोस्चर बन जाता है उसके हिलने से. और ये होता क्यों है आपका सवाल होगा, तो ये होता इसलिए जब ब्रेन जो हमारा दिमाग है उसकी जड़ का एक हिस्सा होता है, बेजल गैंग्लिया कहते हैं उसको, बेजल गैंग्लिया अगर काम ठीक से ना करे, डैमेज हो जाए, तब ऐसा होता है. अब डैमेज कैसे होता है? किसी को चोट लग जाती है, कोई जो है किसी डिजीज की वजह से शिकार हो जाता है. तो अगर ये जड़ जो है ये खराब हो जाए तो दिक्कत होती है, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया ये रिस्पॉन्सिबल उठता है आपके मूवमेंट्स के लिए, हाथ पैर गर्दन चलना फिरना, इसके मूवमेंट की जिम्मेदारी होती है इसकी. मगर हाफ केसेस ऐसे होते हैं जहां पता नहीं चलता कि बेसल गैंग्लिया डैमेज कैसे हुआ, इस पर चोट कैसे आई, पता नहीं लग पाता है. टॉम बहुत खुश था कि यार डॉक्टर साहब ने ये पता कर लिया, इट्स अ ह्यूज थिंग. और उसने सीधा बोला, डॉक्टर साहब पे ठीक कर दीजिए ना, प्लीज ठीक कर दीजिए. बिकॉज वो डेस्परेट था, साल भर के ऊपर हो चुका था मामला और उसकी गर्दन राइट शोल्डर पे चिपकी हुई थी. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. वो इसी बात से कुछ खुश था कि डॉक्टर ब्रिन ने कम से कम नाम तो बताया इस चीज का. तो डॉक्टर ब्रिन से मां ने पूछा टॉम की, कि डॉक्टर साहब लेकिन जब ये रात में सोता है तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है. तो डॉक्टर ब्रिन ने इसका भी आंसर दिया. वो बोले कि देखो, गर्दन स्ट्रेट इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रेन सो रहा होता है. जब ब्रेन सो रहा होता है तो बेसल गैंग्लिया डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मूवमेंट नहीं होता है. मगर जब वो जग जाता है, ब्रेन जाग जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है. कई सारे डॉक्टर्स सालों से इसे साइकोजेनिक प्रॉब्लम कहते आए हैं, कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते. और ये सुन के तो टॉम और भी खुश कि वाह डॉक्टर साहब को कितनी डेप्थ में चीजें पता है. उसने बोला, डॉक्टर साहब बस बस पता ही आप क्या करना है, फैंटास्टिक, मुझे बस ठीक कर दीजिए, आई एम टायर्ड ऑफ दिस. लेकिन फिर डॉक्टर मिचेल ब्रिन के चेहरे पर एक शिकन थी. उन्होंने बोला कि वेल टॉम, दिक्कत यही है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बहुत टाइम हो चुका था उसे ऐसे रहते हुए, दिल टूट गया टॉम स्टैम्पी का. बोले, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों में किसी ने जवाब नहीं दिया था. और अब फाइनली डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने इतनी डिटेल में बताया डिसऑर्डर का, ही फेल्ट गुड कि चलो शायद किसी के पास इलाज होगा. क्योंकि ये जो बीमारी होती है, डिसऑर्डर है, सर्वाइकल डिस्टोनिया, ये 11,000 में एक को होता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है. जब उसे उदास देखा डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने, तो उन्होंने बोला, ओके टॉम तुम थोड़ी देर रुकोगे यहां पे? एंड टॉम ने बोला, ठीक है डॉक्टर साहब. उसको रोक के मिचेल ब्राउन ने कुछ सोचा, थोड़ा सा घूम फिर के वापस आए और फिर बोले, टॉम एक इलाज है, अभी मेडिकल फील्ड में अप्रूव्ड नहीं है, पर तुम शायद परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हो. तो बोले, डॉक्टर साहब इलाज है? तो बोला, हाँ इलाज है मगर ये अप्रूव्ड नहीं है, तो देख लो, यू वांट मी टू ट्राई. तो बोला, ठीक है. माँ बाप ने भी कहा, ठीक है अब क्या कर सकते हैं. और जो वो इलाज था वो आज की तारीख में बहुत कॉमन है. इलाज जानते क्या था? बोटॉक्स, जो आज कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिकली बेसिकली यूज किया जाता है. बोटॉक्स कहां से आया ये बताऊं आज आपको. बोटॉक्स आया है एक टॉक्सिक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बोचोलिनम. तो ये कंटेमिनेटेड खाने वाने में इधर उधर हो जाता है और बहुत डेडली होता है. ये क्या करता है? पैरालिटिक बीमारियां पैदा करता है, लकवा मार जाता है ना कभी कभार, खुदा ना खास्ता, तो ये वैसी बीमारियां पैदा करता है और उसे कहते हैं बोचोलिज्म. तो ये बहुत डेंजर बैक्टीरिया है. मगर इसका जो प्यूरिफाइड फॉर्म है, इसी जहर को दवाई की तरह बना देता है. तो मेडिकल ग्रेड फॉर्म में जो बोचोलिनम होता है, ये मसल्स को, हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है. अब जरूरत थी कि मसल्स में लगा के देखना कि कैसे काम करेगा, क्योंकि अभी तक ये टेस्ट नहीं किया गया था. इनफैक्ट अप्रूव भी नहीं था, पर डॉक्टर मिशेल ब्रिन ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया इस चीज में, और उन्होंने माइंड यू ये आपको चीज हैरान कर देगी, उन्होंने बोटॉक्स के 30 के आसपास इंजेक्शंस उसके गर्दन के दोनों साइड लगाए, राइट और लेफ्ट में 30 तकरीबन। अब इससे हो ये रहा था कि थोड़ी सी वो जो ना टिकलिश सी होती, थोड़ी अंदर से गुदगुदी सी महसूस होती है, तो वो टॉम को हो रही थी, एंड टॉम फिर भी उदास हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। तो डॉक्टर मिशेल ब्रिन ने उसे जोकिंगली कहा भी कि ये कोई नट टाइट करने जैसा सीन नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेट मी ट्राई, पैनिक मत करो, तुम पैनिक करोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसके साथ। तो टॉम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उन्होंने मजाक करके ऐसा बोला, एंड ज़्यादा मत सोचो बोला, उन्होंने बोला कि 3 महीने बाद वापस आओ। तो 3 महीने के बाद वो वापस आया, सेकेंड राउंड वापस वो कोलंबिया जाके प्रॉपर वापस 30 बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाए उसने गर्दन के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे। इस बार उसकी जो गर्दन थी जो 2.5 सालों से चिपकी हुई थी उसके राइट शोल्डर पे, वो थोड़ी सी और ऊपर हुई। टॉम की मां बेहद खुश थी देखकर, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। हर रोज ऐसे देख के वो भी तड़प रही थी, मगर ये जो बोटॉक्स के इंजेक्शन थे ये लगते चले गए। 3 महीने, हर 3 महीने में डोज बड़ा बड़ा के डॉक्टर मिशेल ब्रिन लगाते चले गए। जब तीसरी ट्रीटमेंट का आखिर आया तो गर्दन हिलने लगी, पेन बेहद कम हो गया, एब्सोल्यूट फ्रीडम। मेडिकल साइंस में ये गोल्ड मेडल के बराबर था, क्योंकि इससे पहले किसी ने किया ही नहीं था, ये बेहद रेयर था, बेहद रेयर। और धीरे धीरे डोसेज फिर कम करते करते देखा गया कि गर्दन जो है अब एकदम ठीक हो चुकी है टॉम की, अब वो काम कर पा रहा था, एंड लाइफ एकदम अलग अलग रुख ले चुकी थी। आगे जाके थॉमस टैम्पी उर्फ टॉम ने एक पूरी फाउंडेशन खोली, डिस्टोनिया फाउंडेशन, ताकि उसके जैसे और भी केसेस इलाज ले सके, ताकि किसी को दौलत की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम ना हो। इस तजुर्बे ने थॉमस टैम्पी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। उसकी शादी भी हुई, उसे एक सही पार्टनर मिली, 3 बच्चियां हुई, 3 लड़कियां, एंड ही बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर। और थॉमस टैम्पी से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहेंगे, तो थॉमस टैम्पी ने एक बहुत खूबसूरत बात की जो मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई कहे कि अपनी जिंदगी को क्या तुम बदलना चाहोगे जो बीच में खराब पीरियड आया, तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगा, 1% भी चेंज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दर्द मुझे 2.5 साल तक मिला है, इसी की वजह से मुझे वो जिंदगी मिली है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था, इससे बेहतर जिंदगी तो शायद मैं बना भी नहीं पाता जब मैं पूरी तरह से हेल्दी था। उनकी जिंदगी का एटीट्यूड, रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। एंड ये केस मेडिकल फील्ड में भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक गोल्ड मेडल की तरह है, बिकॉज देन बोटॉक्स बिकेम फेमस एंड नाउ सबको पता है इसके बारे में। तो बट शुरुआत कहां से हुई इस चीज की और इस डिजीज की, सो दिस वॉज अ मेडिकल मिस्ट्री। और अब आपकी बारी है, आप बताएंगे कि आपको किस्सा कैसा लगा। 666-221-07 पर

0: गया हो, जिससे कीना निकाला गया हो, हसद झाड़ा गया हो, जुल्म की ख्वाहिश को बाहर निकाला गया हो। सामने किराम, हम ये नहीं कहते कि मैंने पिछले दिनों घर साफ किया था तो अब घर साफ करने की जरूरत नहीं। साल गुजर जाता है, दिल पुरानी बात को दोबारा जिंदा कर देता है। सामने वाला शायद भूल चुका हो, लेकिन हम हर मुलाकात में अंदर ही अंदर वही पुरानी फाइल खोल लेते हैं। तो ये गिल दिल को थकाता है कि किसी का नाम आ जाता है तो दिल सख्त हो जाए, उसकी कोई अच्छी बात भी सुने दिल कबूल नहीं करे, तो दिल में मुसलसल जहर पालने से बचा जाए। हदूद रखी जा सकती हैं, मगर दिल को नफरत की आग में जलाना जरूरी नहीं। इसी तरह मजीद एक और कैद का जिक्र किया गया है, वाला हसद, हसद ना हो। और आप सब जानते हैं कि हसद ये है कि किसी दूसरे के पास नेमत देखकर दिल चाहे ये उससे छिन जाए। ये कैफियत इंसान को अंदर से खाती रहती है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। अगर हर दूसरे की नेमत हमें जलाएगी तो हमारी जिंदगी दूसरों की कामयाबियों की सजा बन जाएगी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, वला बगी, यानी दिल में जुल्म और ज्यादती का जज्बा न हो। यानी साफ दिल होने का मतलब सिर्फ नरम एहसास नहीं, ये दूसरों के हक की हिफाजत भी है। किसी से इख्तिलाफ है उसका हक मत खाइए, किसी से नाराजी है उस पर झूठा इल्जाम न लगाइए, किसी ने आपसे ज्यादती की जवाब में आप भी हद न तोड़िए। दिल की सफाई ये है कि नाराजी इंसाफ को न खा जाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल ना करता हो। अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता तो फिर ये समझा जाता है कि वो शायद इस जमाने में नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मोबाइल या मुख्त जो डिवाइसेस हैं उन्हें इस्तेमाल करने से हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों में खुश्की, धुंधलापन और सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी हमारी आंखों पर बहुत ही ज्यादा उसके असरात देखने में आते हैं। इसी तरह जब हम डिवाइस पर या मोबाइल पर आप झुक कर कोई काम करते हैं और झुक कर देखते हैं तो उसमें कमर और गर्दन में दर्द जो है वो शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि हमारा जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल हेल्थ है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डिप्रेशन ज्यादा होता है और इसी तरह आप अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, यानी तन्हाई ज्यादा हो जाती है। अब बहुत सारे जो तजुर्बात किए गए, बहुत सारी रिसर्चेस की गई, उसमें देखा गया कि सोने से पहले जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी नींद की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि स्क्रीन टाइम को कम से कम करना है। हर घंटे के बाद हमें एक वक्फा लेना जरूरी है और रात को सोने से एक घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए। एक नौजवान हमेशा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करता था, उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह स्कूल में वो ऊँगता रहता, पढ़ाई में पीछे हो गया और जब उसने मोबाइल का वक्त कम किया और नींद बेहतर हुई, इसके अलावा उसकी जो क्वालिटी ऑफ जो स्लीप थी वो बेहतर हुई, पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। तो लिसनर्स, एक बहुत अहम बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी सहूलत के लिए है मगर ये कि हमारी गुलामी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल को अपने वक्त का कैदी ना बनाइए और इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जब सही मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या जो तरीका है सही उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे ना हमारी जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज होती है, इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो काम की सलाहियत भी आप देखेंगे कि बेहतर होती चली जाएगी। और सबसे अहम बात कि अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं। एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी, उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। ओके, सो वेबसाइट नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com, POW coloring, COLORING coloring.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। मैं फ्री बोल रहा था, फ्री कलरिंग वेबसाइट, तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है, बढ़िया वाला मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट, मैं बता देता हूँ, POW coloring.com। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और मेजर सिखाने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, MUSICCA, MUSICCA.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मतलब मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूंगा अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ OTP के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io, receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पर डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए, तो आप ये वाला नंबर डाल के OTP मंगा सकते हैं। वो OTP वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं, उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is. तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much, much, much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product, जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। Alright, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने आके गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है, कपा दिया है ये कहूंगा मैं। ये जो है DLSS 5 है, जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है, पर हर गेम पे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पे अच्छा भी नहीं लग रहा, बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, ये सिर्फ उन गेम्स में अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिमसन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है, और अगर PC गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया DLSS 5, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने PC बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा रमेश बाबू, ट्राई करके जरूर देखिएगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे साइनिंग आउट।
2: टेक अपडेट, टेक अपडेट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफ एम 107 दिल से देसी।
4: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो दोस्तों सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
5: आप सुन रहे हैं एफएम 107
6: दिल से देसी
7: स्कैम अलर्ट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं और आज भी हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं दी हाई मॉम फैमिली स्कैम यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह लें या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता निंदनीय है एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड मेरा पुराना फोन खो गया है पानी में गिर गया है टूट गया है इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो है ना जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं जिनके बच्चे अलग रहते हैं एक शहर में नहीं रहते तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं बेटा क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया है क्योंकि फोन खराब हो गया है या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके या उनका बैंक अकाउंट यू नो कॉम्प्रोमाइज हो गया है कार्ड खराब हो गया है स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है इसके भी तरीके हैं वो चार तरीके क्या है जिससे आप बच सकते हैं जरा उस पर नजर डालते हैं और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना ईमेल पर मैसेज करना है ना डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे बिना उनसे चैट बढ़ाए फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट। उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें, किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें। इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माई खराब है तो समझ जाइए कि ये 100% फ्रॉड है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं कि नए जमाने के जो नए स्कैम मैं बताता रहता हूँ उनसे आप कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने फ्रॉड के बारे में आपको बताया आपसे कभी नहीं होगा, कोई आपके पास मैसेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको बचना कैसे है ये आपको पता होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में जहां पर हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
8: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम ए जमाना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिवायत थी। उनके वालिद मोहम्मद अजीज बख्श खुद एक मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बचपन ही से गामा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गामा का कद जो था वो तकरीबन 5'7" का, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत और स्टैमिना देखकर बड़े बड़े पहलवान हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अपने लंबी करियर के दौरान गामा ने हजारों दंगलों में शिरकत की और उनकी अनबीटन रेप्यूटेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में गामा ने जोधपुर के एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी का सबूत दिया। इस कंपटीशन में सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा ने सबको मुतासिर किया। That was the talent, an inborn talent that he had. फिर जब वो जवान हुए तो उनका मुकाबला अपने वक्त के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ ने गामा की शोहरत को कम नहीं किया बल्कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये नौजवान पहलवान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चैलेंज करेगा, और यकीनन उन्होंने किया। फिर आया सन 1910, गामा लंदन पहुंचे जहां उनका मकसद था दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स को चैलेंज करना। उन्होंने यूरोपीय और अमरीकी पहलवानों के खिलाफ मुकाबले किए और अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। उनका सबसे मशहूर मुकाबला स्टैनिलॉस सिप्सको के साथ हुआ जो उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स में शुमार होते थे। गामा ने सिप्सको को चैलेंज किया और पहले मुकाबले में उन्हें गिराकर अपनी सुपीरियर रेसलिंग एबिलिटी का सबूत दिया, और यह मुकाबला बाद में दोबारा हुआ जहां गामा की जीत ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को और मजीद मजबूत कर दिया। दोस्तों, गामा को बाद में टाइगर का टाइटल भी दिया गया, एक ऐसा टाइटल जो उनकी फाइटिंग स्टाइल और शिकार की तरह ओपोनेंट पर झपटते हुए अंदाज को जाहिर करता था। लेकिन गामा की कुव्वत सिर्फ कुछ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: नादा, जैसे हो तुम वैसे ही तुम।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतरी दस्तरखान पर मिठाइयों का अपना एक खास मकाम है। खाना खत्म होने के बाद या किसी खुशी के मौके पर मीठी चीज पेश करना अपनाइयत और इज्जत का इजहार होता है। मिठाई सिर्फ जायके की चीज नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और खुशी बांटने का एक प्यारा तरीका भी है। कतरी मिठाइयां आमतौर पर सादा अज्जा से तैयार होती हैं, लेकिन उनका जायका बहुत दिलकश होता है। चावल, दूध, खजूर, आटा, शहद, चीनी, जाफरान, इलायची और अरबी मसाले उनमें अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अज्जा की खुशबू और मिठास मिलकर एक ऐसा जायका पैदा करती हैं जो महफिल को यादगार बनाती है। लुकेमात खलीज की मशहूर मिठाइयों में से एक है। ये छोटी छोटी गोलियां नुमा होती हैं जो आमतौर पर आटे से बनाई जाती हैं और तलने के बाद शीरा या शहद डाला जाता है। बाहर से हल्की सी खस्ता और अंदर से नरम, लुकेमात अक्सर कहवे के साथ पेश की जाती है। लुकेमात का ताल्लुक खास तौर पे खुशी के मौके से जुड़ा होता है। रमजान, ईद, घर की दावत या किसी खानदानी मुलाकात में ये दस्तरखान की जीनत बन सकती हैं। इसकी छोटी छोटी गोल शक्ल और मीठा जायका बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। फिर साथ खजूर की मिठाइयां भी कतर के दस्तरखान का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। खजूर को कभी अकेला, कभी बादाम या दूसरे मेवे के साथ और कभी मिठाई के तौर पर पेश किया जाता है। खजूर की कुदरती मिठास की वजह से ये कम या ज्यादा सादगी के साथ मुख्तलिफ तरीकों से तैयार की जा सकती है। दूध और चावल से बनने वाली मिठाइयां भी अरब खानों में मकबूल हैं। नरम बनावट, हल्की मिठास और इलायची या जाफरान की खुशबू उन्हें खास बना देती है। ऐसी मिठाइयां अक्सर छोटी छोटी सी प्यालियों में पेश की जाती हैं और मेहमान के लिए एक खूबसूरत पेशकश साबित होती हैं। रिवायती मिठाइयों में खुशबू का भी अपना किरदार होता है। इलायची, जाफरान और गुलाब जैसी खुशबुओं का इस्तेमाल जायके के साथ एक दिलकश एहसास पैदा करता है। जब मिठाई तैयार होती है तो उसकी खुशबू अक्सर घर के माहौल को खुशी से भर देती है। कतरी घरों में मिठाई बनाने का अंदाज और जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। किसी घर में मिठास ज्यादा पसंद की जाती है, किसी में खजूर का जायका नुमाया होता है, जबकि किसी में मेवे या खुशबू पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन छोटे छोटे से फर्कों की वजह से हर घर की मिठाई अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। मिठाई बनाने का हुनर

0: अक्सर घर की खवातीन से नई नस्ल तक पहुंचता है। माँ, दादी या नानी अपने तजुर्बे से बताती हैं कि अज्जा की मकदार कैसी रखनी है और मिठाई की बेहतर तरतीब कैसे बनानी है। ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ तरकीब नहीं बल्कि खानदानी यादों और मोहब्बत को भी आगे पहुंचाता है। किसी मेहमान के लिए मिठाई तैयार करना मेजबान की तवज्जो और खुलूस का इजहार भी होता है। मेहमान को सिर्फ तैयार चीज नहीं दी जाती बल्कि उस वक्त की मेहनत, वक्त और मोहब्बत भी पेश की जाती है। इसीलिए घर की बनी हुई मिठाई को खास कदर मिलती है। ईद और दूसरी खुशी की तकरीबात में लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं। सलाम, मुबारकबाद, कहवा और मिठाई इस मुलाकात का हिस्सा होते हैं। मिठाई की पेशकश खुशी को शेयर करने और रिश्तों में मिठास बढ़ाने का जरिया होती है। कतरी मिठाइयों का ताल्लुक दस्तरखान के आदाब से भी है। मेहमान के सामने सफाई से मिठाई रखना, हर घर की पसंद का ख्याल रखना और पेशकश के वक्त नरमी से बात करना अच्छे रवैये की अलामत है। पेशकश छोटी हो या बड़ी, असल खूबसूरती आदाब में होती है। आज के जदीद कतर में रिवायती मिठाइयों के साथ नई किस्म के जो डेजर्ट्स हैं वो भी मकबूल हैं। फिर भी लुकेमात, खजूर और दूध से तैयार होने वाली पुरानी मिठाइयाँ अपनी पहचान रखती हैं। कैफे, बाजार और सकाफती प्रोग्राम अपनी नई नस्ल और नए मेहमानों से करीब लाने का जरिया बनते हैं। मिठाइयों की ये रिवायत हमें सिखाती है कि मीठा सिर्फ जायका नहीं होता, मीठा रवैया, प्यारी गुफ्तगू और दिल से की गई पेशकश भी इतनी ही अहम होती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम ये है कि कतरी मिठाइयाँ वर्से, मेहमान नवाजी और खानदानी मोहब्बत का मीठा इजहार हैं। एक छोटी सी लुकामात या खजूर की मिठाई में भी खुशी की एक बड़ी कहानी छुपी होती है। ये रिवायत हमें याद दिलाती है कि जब चीजें दिल से शेयर की जाती हैं, तो हर मुलाकात और भी खूबसूरत हो जाती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi.

0: रिसर्च प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मौसम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बदल रहा है मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी है, तो इसमें आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, पानी भी कितना पीना है ये भी गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो पीक आवर्स हैं धूप के, उनमें भी आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है वो बाहर आप जाएँ। चलिए सर, हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं तो आज भी एक बहुत अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं, और स्किन जो कि बहुत ही अहम है, हर जो ऑर्गन है, हर उज़्व जो है वही अहम है, मगर हम जब स्किन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो निकात हैं वो सामने आते हैं। कभी किसी के जो है वो एक्नी है, कभी कोई और बहुत सारे निशानात हैं, कभी हेयर ग्रोथ जाता है, कभी ये के और भी बेशुमार जो मसाइल हैं वो होते हैं स्किन के, मगर ये कि उसका ट्रीटमेंट भी है। मगर आज हम जो एक स्पेसिफ़िक बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट की, और लेज़र की वजह से जो इलाज किए जाते हैं, आज इसी पर हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और क्यों होती है, कितना उसका बेनिफिट है, और ये कि उसकी एहतियात क्या है, इन सब पर बात करेंगे। तो लिसनर्स, आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा कफायत जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। मैं वेलकम करूंगी अपने तमाम लिसनर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजी, आपने इनवाइट किया।
0: और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे साथ हैं, और आज बहुत अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। और लिसनर्स, आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4433477 पर, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए, कोई भी सवाल हो तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, तो आपको फिर डॉक्टर साहिबा जो है उसका जवाब ज़रूर देंगी 6662107। और अगर आप QMC नाउ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप जहां कहीं भी हैं तो हमारे साथ साथ होंगे।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: लिसनर्स, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि बहुत ही अहम टॉपिक है लेज़र ट्रीटमेंट क्या है, और ये कि कब इस्तेमाल होता है, कौन सी ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इसे इस्तेमाल होना चाहिए, या ये कि हम जो है अपने आप को ज़्यादा पैम्पर तो नहीं करते कि जो लेज़र ट्रीटमेंट है वही ज़रूरी है। बहरहाल इन सब पर बात होगी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये लेज़र ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉब्लम्स हम पूछेंगे ही आपसे कि कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनमें होगी, और इसके अलावा क्या हमें एहतियात जो है वो करनी है।
1: जी देखिए, बेसिकली लेज़र जो है वो ख़ास किस्म की फोकस्ड लाइट को कहते हैं
0: जी,
1: और वो लाइट जब स्किन के अंदर जाती है तो स्किन के मुख्तलिफ खुलियों को जाके वो इफ़ेक्ट करती है। तो हम लेज़र के इस एक्शन को जो है यूटिलाइज़ करते हैं कि हम इससे जो है स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें
0: जी।
1: तो इसमें बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, जो बंदा कर रहा हो उसको प्रॉपर नॉलेज हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, और उससे इम्प्रूवमेंट कितनी आनी है
0: जी।
1: इंडिकेशन तो बहुत सारी हैं और मशीन्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन समहाउ लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस पर्पज़ के लिए कौन सी लेज़र दरकार है
0: जी।
1: तो आज हम इसी पे बात करेंगे
0: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की कुछ पेशेंट्स में बताते हुए हमें मिलते भी हैं कि हाँ ये जो है इसके लिए इस्तेमाल होती है, मगर ये कि मैं अपने लिसंस के साथ साथ हूँ, मेरे नॉलेज में भी ज़रूर इजाफा होगा कि किस वक्त कौन से जो ट्रीटमेंट है या जो लेज़र मशीन जिनकी आपने बात की है वो ज़्यादा अहम है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
1: जी देखिए, लेज़र जो है बेसिकली कोई 10 से 15 साल से ऑलमोस्ट FDA अप्रूव्ड है कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम उन प्रॉब्लम्स का ज़िक्र करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्किन के ऊपर आपके हैं पिगमेंटेशन
0: जी,
1: तो उसके लिए FDA अप्रूव्ड लेज़र्स मौजूद हैं। अगर आपकी स्किन पे कुछ स्कार्स

हैं, आसार हैं, जैसे एक्नी होती है, दाने निकलते हैं उसके बाद निशान रह जाते हैं, तो उनको हम लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर जिस्म पे और किसी किस्म के निशानात हैं, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ

0: कोई स्ट्रेच मार्क्स हैं ग्रोथ की वजह से, उन सब को हम लेजर से ठीक कर सकते हैं
1: जी.
0: इसके अलावा कुछ छोटे मोटी स्किन की आउट ग्रोथ्स होती हैं, जैसे कि मोल हो गया या कोई फ्रैकल हो गया या स्किन टैग्स हो गए, इन सब को भी हम लेजर की मदद से ठीक कर सकते हैं. और कुछ बर्थ मार्क्स ऐसे हैं जो या सर्जरी या लेज़र से ठीक होते हैं, वो उसके अलावा क्रीम्स या नॉर्मल मेडिकेशन से नहीं ठीक हो सकते
1: जी.
0: तो ये कुछ मेजर इंडिकेशंस हैं लेज़र की, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं. और एक नॉट टू मेंशन के नॉट ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं इनके लिए लेज़र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है.
1: ठीक ठीक, जो हेयर रिमूवल के लिए
0: जी,
1: बहुत
0: हेयर रिमूवल लेज़र
1: ठीक है जी. और ये कुछ साल पहले जैसे कि मुख्तलिफ जो एस्थेटिक मार्केट में देखा गया कि उसमें 38% तक जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हो रहे हैं पूरे उसमें, तो ये बहुत बड़ी एक रेंज है.
0: और ये फिगर जो है ये इंक्रीज हो रहा है
1: और
0: हर साल
1: जी. ठीक ठीक,
0: क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में और इसी वजह से जो है, और इनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, इन मशीन्स की, इन इक्विपमेंट की अब अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है
1: जी.
0: और हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल भी है
1: जी. जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे हेयर रिमूवल की बात की तो इसमें पूछा ही चाहूँगी

0: जी
1: अगर मोटे और काले बाल हैं तो उसकी पहले वजह मालूम करना ज़रूरी है. मोस्ट केसेस में वजह कोई ना कोई हार्मोनल निकलती है.
0: अच्छा.
1: अगर हार्मोनल वजह हो तो उसका साइड बाय साइड इलाज ज़रूरी है. और मोटे बाल पे ब्लेज़र बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. हर सेशन में आपको 10-15% इम्प्रूवमेंट मिलती है. और जो टोटल इम्प्रूवमेंट होती है आफ्टर 8-10 सेशन आप लगा लें, एक एवरेज इंसान के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट जो होगी वो 90% तक हो सकती है. पर शर्त ये है कि आपके हार्मोन्स या कोई और ऐसा प्रॉब्लम साइड बाय साइड ना चल रहा हो जिसकी वजह से जो है दोबारा से बालों को जो है कोई एक सिग्नल मिल रहा हो जिससे वो ग्रो कर जाएं. बारीक बाल, बिल्कुल पतले बाल, फाइन बाल, ब्राउन कलर के बाल, उनके लिए जिसको रुआ हम कहते हैं उनके लिए लेज़र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है. तो इसलिए जब करवाना हो किसी ने तो उसको ये मद्देनज़र रखना है कि मैंने सिर्फ अपने उस चेहरे के उस हिस्से से लेज़र करानी है जहाँ पे मोटा और काला बाल है, क्योंकि वही रिजल्ट देगा. बारीक बाल जो है वो नहीं जाएगा, इसलिए उस पे लेज़र कराने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है.
0: ठीक है. तो इसमें जैसे आम जैसे ज़ुबान में हम पूछें आपसे कि यही कहा जाता है कि अच्छा फेस जो लेज़र है वो, तो उसमें भी फिर आप देखते हैं कि किस कौन से एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफिक हैं जिन पर आप करते हैं या पूरे फेस की जैसे
1: जी, बिल्कुल. इसलिए यही मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर ही डिसाइड करे कि कितने एरिया पे लेज़र करना है जो इफ़ेक्टिव होगा. बस दफ़ा हमारे पास बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं कि जी मुझे पूरा ही करा दें, मेरा पूरा ही कर दें, मैं फेस का लेज़र कर रही हूँ तो मैं क्यों एक पोर्शन का कराऊँ, मैं पूरे चेहरे पर क्यों ना करा लूँ. तो उससे हम उनको जो है मना करते हैं, क्योंकि फॉर टू रीज़न्स. एक तो ये कि मोटे बाल पर ही रिजल्ट आना है, बारीक बाल पे नहीं आएगा. दूसरा, अगर बारीक बाल पे लेज़र होती रहेगी तो आपको अननेसेसरी एक एक्सपोजर मिल रहा है एक चीज़ का, आपकी स्किन थोड़ी डैमेज हो सकती है. और सम टाइम्स अगर आप इस तरह रेगुलर करते रहें तो जैसे 8-10 सेशन के बाद बारीक बाल जो है वो खुद स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है. अगर लोगों को ये नहीं अवेयरनेस या अगर करने वाला बंदा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा डॉक्टर या लेज़र टेक्नीशियन के भाई यहाँ पे लेज़र कराने का नुकसान भी हो सकता है, तो
0: ऐसा होता है.
1: जी बिल्कुल. अगर बारीक बाल पे 8-10 सेशन या उससे भी ज़्यादा लेज़र के चल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाल स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी एक चीज़ की.
0: जी,
1: इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है ताकि बच्ची आगे जाकर सफ़र ना करें. जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, चाहे हम उसको 80% ठीक करें, 90% ठीक करें, लेकिन हम उन्हें एक नए प्रॉब्लम में ना डालें.
0: जी,
1: तो ये हमारा ये बहुत मेजर रोल है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि फेस के किस एरिया पर आपको लेज़र कराने का फ़ायदा है और किस पर नहीं.
0: ठीक. तो इसमें कोई एज लिमिट है कि कब किस एज में ये ट्रीटमेंट जो है हो सकता है या नहीं, जैसे अगर हम फेस की हम बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस है वो फेस का ही होता है. जी,
1: देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है इस सेंस में कि इसको हम एज से रिलेट ज़रूर करते हैं. अगर बहुत छोटी एज की बच्ची है या बच्चा है, मोस्टली बच्चियां ही कराती हैं
0: जी,
1: तो उसमें हम पहले एक चीज़ ये एडवाइस करते हैं कि क्योंकि लेज़र थोड़ा अनकंफर्टेबल है, उससे हीट होगी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, तो वो बच्चा मूव करेगा, लड़की या बच्ची मूव करेगी, तो इतने छोटे में हम एडवाइस नहीं करते. यानी कोशिश करते हैं हम के 16-17 साल या 18 साल इनके करीब ही एजेस हों तो हम लेज़र को स्टार्ट करें, इससे कम में नहीं करनी चाहिए. और जो मैक्सिमम एज की लिमिट है उसमें ये है कि अगर बाल ब्लैक कलर का है
0: जी
1: तो लेज़र से वो ट्रीट होगा. अगर एज ऐसी है या अगर किसी की ग्रेइंग ऑफ हेयर जल्दी शुरू हो गई है तो जो बाल ग्रे हो जाएगा
0: जी
1: उस पे लेज़र काम नहीं करेगी. तो इसलिए ब्लैक जब तक बाल है उम्मीद है कि ये लेज़र से चला जाएगा. तो इसलिए एक इसमें एज बनती है, यानी 30s-40s के में करा लें तो बेहतर है. 50 या उसके करीब जाके कराएंगे तो सिर्फ जो बाल काला होगा वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा, वही ख़त्म होगा. वाइट या जो ग्रे होना स्टार्ट हो गया वो रिज़ल्ट नहीं देगा.
0: अच्छा, तो उसके लिए फिर आप कुछ और ऐड करते हैं उसमें?
1: जी, एक और ट्रीटमेंट होता है उसमें बाल के नीचे जो जड़ है वहाँ पे एक बारीक सी नीडल डाल के उसको एक करंट से जलाया जाता है उस बाल की रूट को जो वाइट या ग्रे होता है. तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है जी. इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. तो उसकी रूट को जला देते हैं तो वो बाल भी फिर शेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. और अगर अगली दफ़ा आए भी तो वो बहुत ही बारीक सा आता है. तो ये इसके भी 2-3 सेशन कराने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है सफ़ेद बालों पर. लेकिन اگر بال بہت زیادہ ہیں تو یہ کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ مثال کے طور پر اگر 1,000 بال ہیں تو ایک ایک بال کی روٹ میں جا کے اس کو الگ سے نیڈل سے ٹارگیٹ کرنا اس میں ٹائم بھی بہت درکار ہے, اس میں بہت فوکس چاہیے کرنے والے کو اور اس کا ایکسپیرینس بھی بہت چاہیے.

0: वो भी आपने क्या डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है। वैसे आमतौर पर कुछ बच्चियाँ 2 वीक्स पे भी कर रही होती हैं, तो जो उनके घर पर करते हैं, तो ये पूछना चाहूँगी कि उनका ख्याल ये है कि जल्दी जो है वो रिजल्ट्स जो है उनके सामने आए।
1: घर पे अगर कर रहे हैं और ख़ुद से कर रहे हैं, तो अगर आपने एक सेशन किया है और अगर आपने प्रॉपर सेशन किया है, विच मीन्स कि आपने कोशिश की है कि मैं सारे बालों को टारगेट करूँ, तो कम अज़ कम आपने 1 मंथ वेट करना है।
0: अच्छा,
1: जो पिछले लेजर का ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है उसमें फील होगा आपको कि कुछ बाल कम हुए हैं या कुछ बाल गिरे हैं, तो आपको उन गिरे हुए बालों को वापस आने का टाइम देना चाहिए। जो पहले थिक था बाल, वो अगली दफ़ा जब आएगा वो बारीक होके आएगा। जब वो आएगा तब अगला लेजर का सेशन करने का फ़ायदा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आप करते रहें, हर 2 हफ्ते करते रहें, एक दफ़ा करें, प्रॉपर करें और फिर महीने के बाद करें।
0: ठीक ठीक, इस तरह से। यानी सर, आपके जहन में कोई भी और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं डॉक्टर साहिबा से। हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा कफायत, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बर्थ मार्क्स की बात की, तो हम उस पर अब जाएंगे, मगर ये कि हमारे लिसनर हैं, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, सलाम कह रहे हैं आपको।
1: वालेकुम सलाम।
0: और कह रहे हैं कि उनका बर्थ मार्क है जो कि सर पर, जो कि मोटा और ब्लैक हो गया है, सर के ऊपर है, और क्या उसे हम लेज़र करवा सकते हैं?
1: जी, इसके हिसाब से मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि ये बालों के यानी कवर्ड एरिया के अंदर है, इसके अंदर से बाल भी होंगे। तो ये एक आउट ग्रोथ टाइप चीज़ है।
0: अच्छा,
1: जो सर के अंदर है।
0: ठीक है।
1: और अगर ये बाय बर्थ है तो 2-3 इसके नाम हैं, उन्हीं में से कोई होगा। इसका डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है। अगर साइज़ छोटा है
0: जी,
1: तो फिर इसको लेज़र से बर्न कर दिया जाएगा, तो वो वहाँ पे हल्का फुल्का कोई निशान रह जाएगा, लेकिन ये ख़त्म हो सकता है।
0: ठीक है।
1: अगर ये बड़ा है, इसमें डिपेंड करता है साइज़ का, यानी अगर ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इतने वाले जो हैं, इनको हम इजीली लेज़र से कर सकते हैं।
0: ठीक है।
1: लेकिन अगर बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे 10 इंच का है या कुछ इस, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है, उसमें फिर लेज़र का उतना फ़ायदा नहीं होता।
0: अच्छा।
1: उसमें हमें सर्जन को या प्लास्टिक सर्जन को स्पेशली इन्वॉल्व करना होता है मशवरा करने के लिए कि भाई वो किस हद तक इस पर काम कर सकते हैं। समटाइम्स वो नहीं कर पाते उसको ठीक, तो फिर हमें उसको लेज़र से ही इम्प्रूव करना होता है। यानी वी सिट टुगेदर एंड वी डिसाइड कि उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा और हमारे ट्रीटमेंट से कितना फ़र्क पड़ेगा।
0: ठीक।
1: तो बड़े जो है ट्रीट करने मुश्किल होते हैं, जितना छोटा होगा उतना लेज़र से ट्रीट करना ईजी होगा।
0: ठीक ठीक, इसलिए ये डिपेंड करता है। तो अब वो क्या करें, आप क्या कहेंगे कि
1: वो मशवरा करें ज़रूर किसी लेज़र वाले डॉक्टर से जो लेज़र करते हों, और वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा जो भी है।
0: जी, मगर आपका ये ख्याल है कि डिपेंड्स ऑन द साइज और ये थिकनेस क्या है उसकी।
1: बिल्कुल।
0: और आप वो जैसे ही कंसल्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कि लेज़र जो है किस हद तक वो बेनिफिशियल है उसके लिए।
1: जी
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी हैं और 17 ईयर्स की, और उनके बाल जो हैं वो बहुत गिर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई लेज़र ट्रीटमेंट की कोई
1: बाल अगर नहीं? गिर रहे हैं तो बालों को रीग्रो करने के लिए कुछ वेवलेंस है, यानी कुछ लाइट के ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं
0: जी,
1: कुछ वेवलेंस लाइट की ऐसी हैं, जैसे रेड लाइट है, उसको कहते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी भी। तो इनसे जो है कुछ सेशंस में जाके बालों की ग्रोथ इम्प्रूव होती है
0: जी,
1: लेकिन इसमें मैजिकल रिजल्ट्स नहीं है। हमें पहले वजह मालूम करनी चाहिए कि वजह क्या है जिसकी वजह से बच्ची के बाल कम हैं। जो वजह है उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। वजह ठीक होगी तो हो सकता है ऑटोमेटिकली बाल आ जाए। और इस केस में लाइट या लेज़र का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो मेन ट्रीटमेंट नहीं है।
0: ठीक। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने वजह बताई, जैसे कि 17 ईयर्स है, बहुत यंग है, तो आपके ख्याल में क्या कोई डाइट डेफिशिएंसी हो सकती है या कुछ
1: जी, और? इस एज में हमें सबसे पहले जो है ना बच्ची का आयरन लेवल्स चेक करने हैं, विटामिन डी चेक करना है, और एक थायराइड को हार्मोन है वो चेक करना है, उसके अलावा विटामिन B12। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये चेक करा लें, मोस्ट लाइकली इन्हीं में से कहीं ना कहीं गड़बड़ निकलेगी, और अगर निकलेगी तो उसी को ही अगर हम उसको इम्प्रूव कर फोकस करें कि हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो हो सकता है कि अगले 3 महीनों में हेयर फॉल खुद ब खुद बेहतर हो जाए।
0: ठीक ठीक। इसलिए सब जो रूट कॉज है उसको जानना, जैसे टेस्ट कराने जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया हमें कि कोई भी ट्रीटमेंट जो लेने से پہلے آپ کو ٹیسٹ جو ہیں وہ کرانے ضروری ہیں, باقی اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے, باقی لیزر کی جو پری اور پوسٹ ہے وہ الگ الگ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, برتھ مارک پر ہی ہم دوبارہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیں گے کہ اور کون کون سے برتھ مارکس جو ہوتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک ایریا پہ ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ ہمیں بتائیں گے؟
1: دیکھیے, برتھ مارکس باڈی پہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں جی. اور برتھ مارکس ایسا نہیں ہے کہ واقعی وہ برتھ پہ موجود ہوں. برتھ مارکس کچھ ایسے بھی ہیں جو تھوڑی لیٹ ایج میں آ کے اپیئر ہوتے ہیں, جیسے سات آٹھ سال, دس سال, گیارہ بارہ سال میں بھی آ جاتے ہیں. تو اسکن کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ود ایج نمایاں ہونی شروع ہو ان دا فرسٹ فیو ایئرز آف لائف, ان سب کو ہی برتھ مارکس کہتے ہیں.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: زیادہ پرابلمیٹک وہ ہوتے ہیں جو ویزیبل ایریاز پہ ہوں, جیسے چہرے پہ ہے, ہاتھ پہ ہے, گردن پہ ہے, سر پہ ہے. جو ویزیبل ایریاز پہ ہوں گے ان کا جو پریشر ہے یا ان کا جو سوشل امپیکٹ ہے بچے کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور فیملی پہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا کلر کس طرح کا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بلیک ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ریڈ ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ بالکل براؤنش یا گرینش سے کلر کے ہوتے ہیں یا بلوئش سے کلر کے ہوتے ہیں. جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کا علاج فرق ہے, جو اسکن کے اندر ہوتے ہیں ان کا علاج فرق ہے. لیکن اس میں دو تین قسم کی لیزرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں. ریڈنیس کی لیزر الگ ہوتی ہے,
0: براؤنش ہوتے ہیں, کچھ بلیک,
1: براؤنش کی الگ ہے. اور اگر کوئی بلوئش یا گرینش کلرز ہیں تو ان کی لیزر الگ ہوتی ہے. اور کچھ ایسا جیسے جن صاحب نے پہلے بتایا کہ میرے سر میں ہے اور وہ کچھ گرو کر رہا ہے, اگر وہ سائز میں بڑا ہے, وہ گرو کر رہا ہے, وہ بلیک
0: بھی ہے,
1: تو اس کو تو پورے کے پورے کو ہی برن کر دیا جاتا ہے. یعنی سمجھ لیں اس کو جلانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, اس کو جلا کے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
0: ٹھیک ٹھیک, کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ الگ الگ ہی سائز کیا ہے ان کا, تھکنس کیا ہے,
1: ان کے ٹائپ کیا,
0: ٹائپ کیا ہے,
1: کیونکہ جو ان میں چیز موجود ہوگی نا اسی پہ ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کون سی لیزر سلیکٹ کرنی ہے.
0: ٹھیک,
1: جیسے کہ اگر ریڈ ایک برتھ مارک ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر بلڈ سپلائی اچھی ہے.
0: اچھا,
1: تو اس بلڈ سپلائی کے لیے ہم وہ لیزر کریں گے جو ریڈ کلر, یعنی وہ جو ہیموگلوبن ہوتا ہے, جب وہ آکسیڈائز ہوتا ہے, وہ آکسی ہیموگلوبن بنتا ہے, وہ ایک ریڈ کلر کا پگمنٹ ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو ہم وہ لیزر کریں گے جو اس ریڈ پگمنٹ کو ٹارگیٹ کرے گی, تبھی وہ اس ریڈ والے برتھ مارک کے سائز کو ریڈیوس کرے گی.
0: ٹھیک ٹھیک.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ہلو,
6: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپ ڈیٹ.
5: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
0: جلسز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسکن کی مختلف جو پرابلمس ہیں ان کے لیے لیزر کا جو علاج کیا جاتا ہے, لیزر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے ہیئر ریموول کی بات کی, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ برتھ مارک جو کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بھی ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں پھر ٹریٹمنٹ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اور ایک جو ہے اور کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, جیسے کہ پیشنٹ کو مارک کی پگمنٹیشن ہے, یہ بھی بہت ایک مسئلہ ہے پگمنٹیشن کا, کیونکہ بہت ساری کریمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں, اور بھی آپ ظاہر زیادہ جانتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہیں گے تو اس کا کیا آپ کہیں گے؟
1: دیکھیے, پگمنٹیشن جو ہے نا بیسیکلی اس کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, چاہے فیمیل پیشنٹ ہے چاہے میل پیشنٹ ہے. کوشش کرنی چاہیے وجہ معلوم ہو جائے. سم ٹائمز اس میں ہارمونل ریزنز آ جاتے ہیں, سم ٹائمز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ جاتا ہے, تو وجہ کو
0: ضرور دیکھنا. پریگننسی یا ڈیلیوری کے بعد
1: ہارمونل ڈسٹربنسز کی وجہ سے भी जो है चेहरे पे पिगमेंटेशन या छाइयां जिसको हम कहते हैं वो आ सकती हैं. ऐसी सिचुएशन में जो है मेन जो प्रॉब्लम है कि अगर हम प्रॉब्लम या वजह मालूम कर लें तो हम उसको भी साथ-साथ ठीक करें और हम इसका इलाज शुरू करें. इलाज में आपने बस ये एहतियात करनी कि कोई भी खुद से मिक्स करके क्रीमें नहीं इस्तेमाल करनी कि किसी फ्रेंड के कहने पे किसी दोस्त के कहने पे किसी नेबर के कहने पे क्योंकि उस तरह की क्रीम्स में अमूमन स्टीरॉयड्स शामिल होते हैं और स्टीरॉयड्स जो हैं वो स्किन को काफ़ी हद तक बारीक कर देते हैं पतला कर देते हैं.
0: अच्छा.
1: उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो पिगमेंटेशन तो शायद थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन नीचे से स्किन की जो दूसरी लेयर में आपकी खून की शरियाने पड़ी हुई हैं वो सारी दिखना शुरू हो जाती हैं.
0: अच्छा.
1: तो वो जगह पिगमेंटेशन तो हट जाती है लेकिन वो जगह पूरी लाल हो जाती है और वो फिर अगर धूप में निकले या गर्मी में है किचन में है कुछ कोई

0: अच्छी तरह ना की जी हो, ऐसा पॉसिबल है?
1: बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल मरीज को तो नहीं ब्लेम करूंगी कि इन्होंने एहतियात नहीं की होगी, जाहिर इन्होंने की होगी एहतियात, लेकिन
0: मगर बार दफा हमें पता नहीं चलता। तो
1: कुछ चीज़ों के लिए मल्टीपल सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीज़ें एक ही सेशन में चली जाती हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने जिस तरह से एडवाइस किया होता है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए।
0: ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब, और क्या जैसे आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं मसाइल हैं, जैसे एक्नी का भी पूछना चाहूँगी कि एक्नी के बहुत स्कार्स हैं, ये भी बहुत अहम है, बहुत सी बच्चियाँ बच्चे जो हैं वो भी इसमें होते हैं, तो एज भी पूछूँगी कि कब तक जो है वो सही हो सकता है।
1: जी देखिए, एक्नी और एक्नी के स्कार्स ये दोनों जो है एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है और जो बहुत कॉमन है कि हर दूसरा बंदा इससे इफ़ेक्टेड है। एक्नी का इलाज इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी वजह से स्कार्स पड़ जाते हैं स्किन पे, जो कि काइंड ऑफ परमानेंट होते हैं अनलेस कि उसके ऊपर लेज़र की जाए। लेज़र से वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो 100% स्किन आपकी बैक टू नॉर्मल नहीं होती।
0: अच्छा।
1: इसलिए एक्नी का इलाज लाजमी है। आजकल तो एक्नी का इलाज में मेडिकेशंस के अलावा एक्नी की अपनी भी कुछ लेज़र आ गई हुई हैं।
0: अच्छा।
1: कुछ लेज़र्स हैं जो स्पेशली एक्नी जो कि आपके ऑयल ग्लैंड के अंदर होती है उस पे जाके टारगेट करते हैं और आपके ऑयल ग्लैंड का साइज़ ही रिड्यूस कर देती हैं, तो अच्छा। इसलिए एक्नी में बहुत वाज़े फ़र्क पड़ता है। तो एक्नी के इलाज के लिए भी लेज़र मौजूद है, लेकिन जो मेन ज़्यादातर हमारे पास लोग देखने में आते हैं वो एक्नी के लिए लेज़र कराने कभी नहीं आते, वो सिर्फ स्कार्स के लिए लेज़र कराने आते हैं। जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है उसको ठीक करना फिर ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए।
0: ठीक है, तो आप क्या कहती हैं कि जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है एक्नी की, किस एज में ये भी पूछना चाहूँगी, तो वो कुछ ये सोचें लेज़र्स की तरफ, लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ?
1: देखिए एक्नी मोस्टली 12-13-14 में स्टार्ट हो जाती है। इन एजेस में एटलीस्ट पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ बच्चे को ये कह के तसल्ली दे देते हैं कि भाई ये तो खैर है, तो
0: ठीक हो,
1: तो एज रिलेटेड है, तो खैर है तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा, इस एज में हमें भी थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बच्चे की एज कम भी है फिर भी अगर उसको एक्नी निकल रही है, उसका एक तो सोशल इम्पैक्ट है, वो अपने फ्रेंड्स में सोशलाइज नहीं कर पा रहा या कर पा रही, दूसरा क्या फैमिली का हर मेम्बर आके उसको कहेगा ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया। तो इस इनके अलावा हमें पता है कि जब वो ठीक होगी तो वो किस तरह के निशान बाद में छोड़ेगी। जब निशान पड़ जाएगा उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं, तो इसलिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा छोटा भी है और लेकिन एक्नी आनी शुरू हो गई है, तो सिर्फ ये कह के कि ये नॉर्मल है उसको तसल्ली ना दें, कोशिश करेंगे उनका इलाज करवाएं, जो कि लगाने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ खाने वाली होती हैं, उससे हम काफ़ी हद तक इस मसले को कंट्रोल में रख सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं एक्नी की, लेकिन वो एक ख़ास एज के बाद शुरू करते हैं, जैसे 17-18 की एज के बाद हम उनको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देने से होता है कि ग्रोथ जो है ना आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।
0: ठीक।
1: तो जब एक बच्चे की अच्छी हाइट निकल चुकी हुई है, लड़का है या लड़की है, 16-17 या 18 प्रेफरेबली इन एजेस के बाद हम मेडिकेशंस बड़े कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं कि अब जो है फुल डोज में दवाई दी जाए ताकि मामला जो है 90% तक ख़त्म हो जाए। ये हम एक्टिव एक्नी की बात कर रहे हैं
0: जी। ठीक।
1: लेकिन अगर स्कार्स पड़ गए हैं तो फिर क्या करना है? स्कार्स में जो लेज़र इस्तेमाल होती हैं बेसिकली वो लेज़र ऐसी हैं जो स्किन को पहले डैमेज करती हैं
0: अच्छा
1: और फिर स्किन को टाइम देती हैं रिपेयर होने का
0: जी।
1: जैसे आज लेज़र की है तो आपकी स्किन को हमने डैमेज किया और बड़ा कंट्रोल्ड डैमेज दिया जाता है। बीच में से कुछ पोर्शन स्किन के जो हैं उनको हम टारगेट करते हैं, अभी में कुछ जगहों को खाली छोड़ देते हैं, यानी समझ लें एक पैटर्न सा बनाते हैं। जहाँ से स्किन डैमेज होती है वो खुद ब खुद अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर शेड ऑफ होती है, और जहाँ से हमने स्किन को डैमेज नहीं किया होता वो बेसिकली वहाँ से स्किन नई रिपेयर हो रही होती है।
0: ठीक है।
1: तो यानी समझ लें अगर आपकी 50% स्किन को हमने उड़ा दिया, हमने 50% स्किन को रखा है
0: जी।
1: तो जिसको रखा है वो एक बाकी की 50% स्किन को नई को बनाएगी।
0: अच्छा,
1: ये
0: ठीक।
1: हफ्ते से 10 दिन का प्रोसेस होता है पूरा हीलिंग का। उसके बाद जब स्किन आती है तो वो काफ़ी हद तक नीट स्किन होती है, उसका कलर भी बेहतर होता है, उसमें निशान भी कम होते हैं, चाहे पोर्स हैं वो भी कम है, स्कार जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो इम्प्रूवमेंट एक सेशन में आनी है वो 10-15% ही आएगी।
0: अच्छा, ठीक ठीक। इसमें डॉक्टर साहब आपने जो एक्नी का हमें बताया कि उसमें पहले ट्रीटमेंट जो है वो, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस टाइप की एक्नी हो, क्योंकि एक्नी के तो बहुत सही टाइप्स हैं, कुछ सिर्फ खाली कुछ थोड़े छोटे दाने से होते हैं या कुछ ऐसे हैं, तो क्या हों किस तरह से हों, तो पेशेंट को इस तरफ सोचना है कि उसे एक्नी के लिए भी लेज़र की तरफ जाना है।
1: देखिए जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है ना ये भी एक्नी की किस्म है, लेकिन ये ख़तरनाक वाले नहीं हैं क्योंकि इनके बाद उतने

0: गंदे स्कार्स नहीं पड़ते
1: जी,
0: जो रेड मोटा पस वाला दाना होगा या जो पेनफुल होगा, गिल्टी नुमा होगा,
1: अच्छा,
0: या आपको फील होगा स्किन के ऊपर हाथ लगाने से कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ या ये बहुत डीप है,
1: अच्छा,
0: इस तरह की जो एक्ने होती है, चाहे वो उस तरह का एक या दो ही दाने हों चेहरे पे, वो एक अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि वो जब भी हील होगी अपने टाइम से या किसी दवाई के इफेक्ट से, वो वहाँ पर कोई ना कोई परमानेंट डैमेज करके जाएगी।
1: ठीक,
0: तो इसलिए इसमें साइज मैटर करता है, थोड़ा सा बड़ा हो, पेनफुल हो, रेड हो, उसमें से कोई पीप वगैरह निकलती हो, नोड्यूल की तरह का हो, या एक टर्म होती है सिस्ट,
1: अच्छा सिस्ट,
0: उसमें नीचे उसके ना समझ ले कलेक्शन होती है फ्लूइड की,
1: जी जी,
0: तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को कुछ हद तक इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उनका इतना लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है कोई।
1: जी ठीक ठीक, इसलिए ये अल्सर्स जिसके ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बाज़ दफ़ा जो एक्नी है वो डिफरेंट टाइप्स की है, बाज़ बहुत मोटे मोटे दाने हैं और नोड्यूल भी होते हैं सिस्ट की तरह, तो उसे हम लेज़र की मदद ले सकते हैं उसके इलाज में ही, जैसे कि अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट, उसमें भी आप मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे या?
0: जी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड भी चलती हैं, किसी एक चीज़ पे मुकम्मल तौर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्किन के केस में, लगाने वाली खाने वाली साथ में कुछ एहतियाती तदाबीर, ये सब चीज़ें मिल के ही एक अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं।
1: ठीक ठीक, बिल्कुल, इसीलिए हमारा मकसद भी यही है कि आज अवेयरनेस जो है वो दी जा सके, क्योंकि लेज़र जो है बहुत आम भी है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी चल रहा है।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: यंगस्टर्स, आज हम बात कर रहे हैं लेज़र ट्रीटमेंट की, जो कि जो स्किन के बहुत सारे मसाइल हैं उसमें उसकी लेज़र से इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब ने बात की बहुत ही अहम, जो कि हेयर रिमूवल की, इसके अलावा जो बर्थ मार्क्स हैं वो, और जो बिल्कुल साइड बाय साइड हम चल रहे हैं क्या एहतियात करनी है, एक्नी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कि डिफरेंट टाइप्स की है और फिर बहुत उसके स्कार्स भी होते हैं, मगर उससे पहले जो एक्नी है उसकी टाइप है उसे भी लेज़र से जो है वो इलाज उसका किया जा सकता है। अब हम कुछ और आगे चलेंगे, मुख्तलिफ और भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के लिए, जैसे कि एंटी एजिंग है, रजी, वो भी डॉक्टर साहब बहुत आम है, सुनने में भी आता है, वो क्या है, उसमें क्या करते हैं आप?
0: देखिए, जैसे स्किन एज करती है वो बेसिकली कुछ हमारे सन डैमेज से एज कर रही होती है, कुछ हमारे अपने स्ट्रेसेस से एज कर रही होती है, अगर हमारा खाना पीना प्रॉपर नहीं, स्लीपिंग प्रॉपर नहीं, तो ये सब चीज़ें हमारे चेहरे के ऊपर दिखती हैं। इसमें जो एज के साथ स्किन में चेंजेस आते हैं, स्किन बारीक हो जाती है, थोड़ी लटक जाती है, स्किन में फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, बारीक झुर्रियाँ जिन्हें कहते हैं, और पोर जो हैं स्किन के ऊपर, मसाम जो होते हैं वो खुल जाते हैं, या छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या जिनको हम एज स्पॉट्स कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं स्किन के ऊपर बननी शुरू हो जाती हैं।
1: जी,
0: इस सिचुएशन में भी हमारे पास बहुत सारी लेज़र्स हैं, कुछ ऐसी लेज़र होती हैं जो बिल्कुल जो है माइल्ड सी होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ज़रा स्ट्रॉन्ग लेज़र्स हैं। पर्पज़ इन दोनों लेज़र्स का एक ही होता है कि इन्होंने स्किन को नए सिरे से बनने का जो है ना एक समझ लें कि स्टिम्यूलस देना है कि स्किन को हम नए सिरे से थोड़ा सा बनाएं। तो जैसे रीजुविनेशन, जी बिल्कुल, इसको रीजुविनेशन कहेंगे। तो ये किसी भी मिडल एज एंड ऑनवर्ड्स के लिए इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको है कि जी मैं कोई महीने के बाद कोई इवेंट है और मेरे स्किन डैमेज लग रही है, या मुझे थोड़ी सी इम्प्रूव्ड स्किन की क्वालिटी चाहिए, तो फ्रैक्शनल लेज़र कहते हैं, या फ्रैक्शनल एबलेटिव लेज़र कहते हैं, या CO2 लेज़र भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन लेज़र है। इसको एक सेशन भी अगर आप लेंगे तो एक दफ़ा आपकी स्किन नए सिरे से आ जाएगी। इफ़ेक्ट काफ़ी विजिबल होता है, यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर जब स्किन हील होगी तो आपको बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें एक होगा कि आपकी जो बारीक झुर्रियाँ थी वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी, पोर जो है वो भी श्रिंक होकर बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, स्किन का बेसिकली कलर जो है वो इम्प्रूव होगा, एक जैसी टोन की स्किन आपको दिखेगी, अगर पहले आपको पैची लग रही थी या लग रहा था कहीं से डार्क है कहीं से कम है, सरफेस स्मूथ होगा, उसमें अगर अप्स एंड डाउन्स कुछ थे तो वो सब जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो रिजुविनेशन में भी इसका बहुत रोल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ फिर भी आके लेज़र कराना चाहते हैं कि ज़रा फ्रेश दिखे स्किन। तो इसमें भी हम अमूमन एजिंग के हिसाब से डिपेंड करता है, समटाइम्स ज़्यादा सेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर एक भी कराएंगे तो आपको उसमें डिफरेंस फील हो,

0: अच्छा ठीक है, इसमें जैसे आपने कहा एज पर, एज जो है वो कितनी एज में इस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं जब पेशेंट जो कहते हैं तो?
1: जी मिडिल एज के बाद किसी भी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 30-35 अच्छा। जब आपको फील हो जाए कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि आपको एजिंग वाले साइंस दे रही हैं, वो देखें एजिंग हर किसी की फर्क फर्क होती है, किसी की एजिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कुछ की 50 साल में भी नहीं होती, तो इसलिए स्किन को चेक करके उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं
0: जी।
1: और क्योंकि हर किसी की लाइफ की स्ट्रगल्स भी अलग अलग हैं, हर किसी के एक्सपोजर अलग अलग है, तो लेकिन ये कि इनको एज अर्ली एज 30-35 भी स्टार्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
0: ठीक ठीक, इस तरह से जी। तो सब ये तो हो गई, इसमें तो रिंकल्स जो हैं वो, फाइन लाइंस जो हैं वो इस तरह से वो करवा सकते हैं, टैटूज भी होते हैं बार दफ़ा, तो उन्हें रिमूव करना वो भी लेज़र से करवा सकते हैं
1: जी। देखिए कुछ टैटूज होते हैं जो कि लोगों ने शौकिया बनवाए होते हैं, और कुछ टैटूज ऐसे हैं जो कि लोगों ने जैसे आईब्रोज में करा लिए कि भाई इधर आईब्रोज की शेप अच्छी दिखे, या कुछ लोगों ने डिफरेंट कलर के जैसे मिसाल के तौर पर रेड कलर का टैटू लिप्स पे कराने का आजकल बहुत ट्रेंड है, स्पेशली जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इट्स लाइक आप उसको लुक दें मेकअप वाली, मेकअप करें अच्छा। ना लेकिन मेकअप वाली लुक दें।
0: अच्छा, ये भी लेजर के थ्रू ही कर रहे हैं?
1: लेजर हम लेजर से रिमूव करेंगे।
0: अच्छा,
1: इनको
0: रिमूव करेंगे,
1: लोग करवाते हैं उसके ट्रीटमेंट और होता है।
0: अच्छा,
1: समटाइम्स ब्यूटिशियंस करते हैं, समटाइम्स अच्छा। उसके टैटू वाले कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो करते हैं।
0: अच्छा, आप रिमूव,
1: लेकिन हमने उनको रिमूव करना है।
0: ठीक है,
1: तो उसमें भी होता है कि बेसिकली स्किन के अंदर एक कलर डाल दिया जाता है, हमने लेजर से उस कलर को डैमेज करना होता है और उस कलर को जो है निकालना होता है।
0: तो क्या ऐसे आते हैं आपके पास पेशेंट जो कि खुद एक दफ़ा करवा लिया और फिर उसको रिमूव भी करवाना है?
1: जी, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ज़ाहिर है जो करवाते हैं फिर उनको समटाइम्स पसंद आता है, समटाइम्स नहीं आता। समटाइम्स टैटू का ये मसला है कि टैटू से इंसान बोर हो जाता है कि ये मैंने क्या करा ली, या अगर कुछ टैटूज ऐसे होते हैं जो रिग्रेट के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं कि मैंने ये क्यों करवाया था, मुझे ये नहीं करवाना चाहिए था। तो करवाना आसान है, वो एक बारी में हो जाता है, लेकिन रिमूव करने में समटाइम्स सेशंस लग जाते हैं।
0: अच्छा ठीक ठीक,
1: और करवाना भी पेनफुल है टैटू, और टैटू रिमूव करवाना भी पेनफुल है।
0: अच्छा,
1: इट्स नॉट इजी, इट्स अनकंफर्टेबल। अगर ज़्यादा काला टैटू है, ज़रा बड़ा टैटू है, तो वो पेनफुल होता है मरीज के लिए।
0: ठीक,
1: लेकिन रिजल्ट्स उसके अच्छे हैं। ब्लैक टैटू, ब्राउन या ब्लू, इस तरह डार्क कलर्स के टैटू के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी ने रेड, ग्रीन या येलो, इस तरह के कोई डिफरेंट ऑड कलर्स करवाए हुए हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी नहीं आती।
0: अच्छा ठीक,
1: तो जिसका अगर काला टैटू है या डार्क कलर का टैटू है और वो उससे खुश नहीं है, तो देर इज़ होप कि आपको बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाए अगर आप लेजर करवाएंगे तो।
0: बिल्कुल, इस तरह से जैसे ये कि जो परमानेंट मेकअप है वो?
1: जी एग्जैक्टली, वो भी एक किस्म का टैटू ही होता है, क्योंकि स्किन के अंदर पिगमेंट डालने को टैटू कहते हैं। जो सेमी परमानेंट मेकअप भी कराते हैं उसमें भी स्किन के अंदर पिगमेंट ही डाला जाता है।
0: ठीक ठीक, तो इसमें क्या है, उसके बाद फिर स्किन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है?
1: देखिए, हाँ, अगर टैटू को हम लेजर से डैमेज कर देते हैं तो स्किन वक्त के साथ साथ जो है नॉर्मलाइज होगी। समटाइम्स टैटू 100% नहीं जाता
0: जी,
1: 70-80% तक चला जाता है मोस्टली केसेस में, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फेंट सा मार्क रह भी जाए तो मरीज समटाइम्स उस पर खुशी होता है कि भाई एटलीस्ट दिख तो नहीं रहा था, वाजे तो नहीं है।
0: ठीक है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि जैसे बल्जिंग बाजू का, लिप्स की इस तरह, तो वो भी लेज़र से करते हैं क्या है? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल ये हमारे लिसनर्स जो है वो पूछे हैं कि वो क्या करते हैं।
1: देखिए, लिप्स के अंदर जो लिप्स के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है उसको फिलर कहते हैं।
0: फिलर
1: से लिप्स बड़े होते हैं,
0: इसमें लेज़र नहीं
1: है। और अगर कलर उसमें कोई डाला है, उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए रेड या पिंक का कोई शेड, तो वो दैट इज़ लाइक अ टैटू।
0: अच्छा,
1: तो इसमें लेज़र का कोई रोल नहीं है। लेजर का काम सिर्फ ये कि अगर कलर लिप्स में डाला हुआ है तो वो उसको रिमूव करेगी, उसको बर्न करेगी।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि कितने, जैसे आपने डिफरेंट हमें जो है मसाइल भी बताए, इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने हमें बताया कि
1: जी दो तीन को बस टच कर दूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम रह गया
0: है। जी जी बिल्कुल,
1: कुछ स्किन की बीमारियां हैं जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह, और जैसे विटिलाइगो,
0: सोराइसिस की भी,
1: और विटिलाइगो जिसमें स्किन सफेद कलर के निशान बन जाते हैं। कुछ मशीन्स ऐसी हैं लेज़र की जो इन डिजीज़ में भी काम देती हैं, तो ये वो डिजीज़ हैं जो कि लार्ज बॉडी एरिया को इन्वॉल्व बार दफ़ा कर लेते हैं, तो लेज़र इसमें भी इफेक्टिव है। तो ये कुछ प्रॉपर बीमारी बीमारियां हैं जिनमें काम आती है लेजर उसके अलावा
0: सोरायसिस की जैसे लास्ट टाइम भी पूछा था सवाल भी था हमारे लिसनर की तरफ से तो क्या उसमें लेजर जो हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं मगर कोई
1: एक्साइमर लेजर उसका नाम है लेकिन मशीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि किस एरिया से मरीज ताल्लुक रखता है वहां पर अगर मशीन हो तो इफेक्ट अच्छा आता है उसके अलावा कुछ और स्कार्स जैसे मैंने कहा स्ट्रेच मार्क्स हैं कोई सर्जरी कराई है उसका निशान है जल गया था बचपन का कोई ट्रॉमा है स्टिचेस लगे हुए हैं इन सब के निशानात के लिए भी लेजर की जा सकती है एक और कंडीशन होती है स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है उसको रोजेशिया कहते हैं पिंक चीक्स जो होते हैं बहुत सारे लोगों के होते हैं स्पेशली वाइट स्किन या जो गोरे हैं उनकी स्किन में ज्यादा कॉमन है लेकिन हमारे एशियन अफ्रीकन या मिडिल ईस्टर्न इस तरह की स्किन्स में भी देखने में आती है
0: ठीक है
1: इसका भी लेजर से बहुत अच्छा इलाज है इस कंडीशन को रोजेशिया कहते हैं और रेड कलर की जो लेजर होती है वो इसमें बहुत हद तक इफेक्टिव होती है
0: अच्छा अच्छा अच्छा उसमें जैसे आपने कहा कलर्स डिफरेंट हैं या मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तो वो
1: रेड कलर की जो मशीन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है
0: ठीक
1: रेडनेस को ट्रीट करने के लिए क्योंकि इस तरह का मरीज जो है वो बहुत अपसेट रहता है कि उसके चीक्स इतने लाल हो जाते हैं समटाइम्स कैसे लगता है कि उनमें से ब्लड आ जाएगा और समटाइम्स मरीजों ने जो स्टीरॉयड लगा के भी अपने चेहरे को लाल किया होता है उसमें भी जो है
0: अच्छा खुद से भी ऐसे करते हैं
1: बेसिकली स्टीरॉयड्स का साइड इफेक्ट है कि उससे जल्द बारीक होती है तो वो लाल हो जाती है तो उसमें भी रेडनेस वाली जो लेजर है वो इफेक्टिव है
0: डॉक्टर साहब जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन के लिए देख रही थी तो उसमें देखा मैंने कि जो ख्वातीन हैं वो 82% तक जो है वो पेशेंट एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेज़र की तरफ जाते हैं और जो मर्द हज़रात हैं सिर्फ 18% तो इसमें क्या कहेंगे आप
1: देखिए ज़ाहिर ख़वातीन में ट्रेंड है ज़्यादा खूबसूरत दिखने का मर्दों में कम है लेकिन मर्दों में भी जो है रेट सब बहुत इम्प्रूव मर्दों में इम्प्रूव हो रहा है रेट मर्द भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं
0: जी
1: और ख़वातीन में मशीन्स या लेज़र्स के अलावा कुछ इंजेक्शंस जो हैं इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स के भी रुझान जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है
0: जी
1: तो अन करीब ख़वातीन तो खूबसूरत दिखेंगे ही मर्द भी बहुत हसीन दिखेंगे
0: बिल्कुल जी डॉक्टर साहब इसमें जो सक्सेस रेट है जैसे वो भी पूछना चाहूँगी कि क्या है कितने बहुत से जो मसाइल हैं उनमें कितना जो है वो बेनिफिशियल है
1: कुछ कंडीशंस में जैसे हमने बात की लेज़र की एक्नी स्कार्स की लेज़र हेयर रिमूवल में स्पेशली जो है अराउंड 80-90% है एक्नी स्कार्स में अराउंड 70% तक है
0: अच्छा
1: और उसके अलावा रिजुविनेशन में जितने सेशन कराएंगे उतनी बेहतर स्किन हो जाएगी बर्थ मार्क्स में उनके साइज पे डिपेंड करता है उनकी टाइप पे डिपेंड करता है
0: जी।
1: तो आप अंदाज़ा कर लें कि जैसे 50% एंड अबव अगर आप कुछ सेशन लेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है मोस्टली केसेज में 50% एंड अबव ही होगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक
1: विच इज़ अ गुड परसेंटेज
0: ठीक है इसमें जो है डॉक्टर साहब मैं बिफोर ट्रीटमेंट तो आपने मैं बता दिया कि क्या क्या देखते हैं आपके कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ एक बार फिर पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो खुद से ख़ास तौर पर घर में जो करती हैं तो उनके लिए और जो पोस्ट या पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो भी और इसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि हम लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ डिजीज़ लाइक कोई भी जैसे कोई एलर्जीज हैं या प्रेगनेंसी है या समथिंग और इस तरह
1: देखिए किसी भी प्रेगनेंसी में तो लेज़र करनी नहीं है एलर्जीज़ भी अगर एलर्जीज़ की टेंडेंसी है तो लेज़र नहीं करनी कुछ स्किन डिजीज़ हैं जैसे अगर किसी को कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है यानी जिस जगह पे एक्जिमा है वहाँ पे कोई लेज़र नहीं करनी सवाए एक्जिमा की लेज़र के
0: अच्छा ठीक है
1: इसलिए स्किन में कोई एलर्जी उस टाइम पे ना हो स्किन ड्राई ना हो जब भी लेज़र की जा रही है स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन ना हो कोई इचिंग ना हो वो स्किन जो है जो स्ट्रांग होगी अपनी अच्छी हालत में होगी उस पर लेज़र करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा
0: ठीक
1: मरीज़ को कोई उस जगह पर इन्फेक्शन ना हो जैसे कि हर्पीस का इन्फेक्शन है अक्सर लोगों को लिप्स के ऊपर होता है वो नहीं होना चाहिए मरीज की हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए कोई ऐसी मेडिकेशन वो ना ले रहा हो

0: है। चीन ने दोनों मुल्कों के चीन ने अपने हुरमुज को दोबारा खोलने और कशीदगी को यमन और बहरे अहमर तक फैलने से रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सऊदी अरब के जाजान इलाके में हौसी जमात की जानिब से किए गए हमले के नतीजे में दो अफराद जख्मी हो गए और एक मस्जिद, मुतअद्दद इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सऊदी सिविल डिफेंस ने शहरी तंसीबात को निशाना बनाने को बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा पट्टी में इसराइली हमले के नतीजे में जख्मी होने वाला एक फलस्तीनी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया है। सामाइन रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमारे साथी सलमान अल मोमिन, मोहम्मद हसन सूदानी और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 1986 का फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टेंशन हाई, क्राउड क्रेजी और डिएगो मैराडोना फुल मोड में। लेकिन फिर हुआ वो जो फुटबॉल हिस्ट्री में कॉमेडी और कॉन्ट्रोवर्सी का कॉकटेल बन गया। मैच चल रहा था, इंग्लैंड की डिफेंस टाइट थी, लेकिन मैराडोना ने सोचा फुट से गोल करने की क्या जरूरत है जब हाथ ही काफी है। एक क्रॉस आया, गोलकीपर जंप कर रहा था और उसी वक्त मैराडोना ने चीकी स्टाइल में हाथ उठाया, बॉल नेट में और इट वाज वन अप फॉर अर्जेंटीना, यानी गोल मिल गया। रेफरी ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, गोल दे दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चीख चीख कर बोला कि ये हाथ था और हाथ था लेकिन रेफरी नजरअंदाज कर दिया इस बात को। लेकिन इसके बाद भी रेफरी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लीगल लगा और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए एंड उनको भी लगा कि ये क्या हेडर था या हाथ से। और दूसरा कमेंटेटर को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि नहीं, वो तो लग रहा है कि वो थप्पड़ था, बॉल के ऊपर थप्पड़ मारा गया था। बाद में जब मैराडोना से पूछा गया कि ये क्या सीन था भाई, तो हुजूर ने स्माइल देके बोला, थोड़ा मैराडोना का सर और थोड़ा हैंड ऑफ गॉड। और इंग्लैंड फैंस जो मौजूद थे वो थोड़ा सा क्रेजी हो गए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए, और वहीं अर्जेंटीना खुश। और मीम्स जो है अगर उस वक्त होते तो आज तक वायरल हो रहे होते। और एक फैन ने लिखा था, गॉड ने हैंड यूज किया, रेफरी ने आईज बंद कर दी। And that was such an interesting anecdote, agar main kahun, ek brilliant caption of Maradona's hand of God goal, jo 1986 World Cup mein hua tha. Uske baare mein aaj hum baat kar rahe hain, and how it turned out to be a goal, aaj bhi ek mystery hai. England ke khiladi shayad ab tak us referee ko WhatsApp pe block kiye baithe hain. Aur Maradona, wo legend ban gaya. Aur goal illegal tha, lekin confidence 100% legal tha. इस मैच ने हमें दिखाया कि कभी कभी फुट नहीं बल्कि फेथ चाहिए होता है, और थोड़ी सी चालाकी जो मैराडोना के पास था। और आज भी इस बात पे हर कोई कहता है कि क्या डिएगो मैराडोना वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ, क्या डिएगो मैराडोना का वो गोल जिससे उन्होंने हाथ से किया था, पीटर शिल्टन को बीट किया था, क्या उस गोल को ऑफिशियली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जा सकता है। There are a lot of debates. आज भी है 1986 और ये है 2026. तो 40 साल में आज भी लोग ये कहते हैं, फैंस भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा उस वक्त भी it was not that powerful, कैमरा टेक्नोलॉजी was not that, लेकिन जो क्लोज इन फोटोग्राफ्स है आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पता चलेगा एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली डिएगो मैराडोना का हाथ जो है उस गेंद पर हवा में, वो गेंद है, और पीटर शिल्टन इंग्लैंड के मशहूर गोलकीपर उस बॉल को लपकने के लिए वो भी डिड अ स्पॉट जंप, और मैराडोना भी डिड अ स्पॉट जंप, और मिड एयर में मैराडोना का हाथ दिख रहा था कि वो गेंद पर यानी बॉल पर चपट लगाते हुए। एंड यही चीज लाइन्समैन यानी उस टाइम में लाइन्समैन कहते थे, असिस्टेंट रेफरी भी नजरअंदाज किया, नजरअंदाज के साथ साथ रेफरी को भी उन्होंने बताया कि भाई नहीं नहीं ये गोल है, क्योंकि बॉल जो है ये नेट पर ऑलरेडी एट मेड इट्स एंट्री एंड दैट वाज अ गोल। एंड जिस वक्त ये गोल हुआ, अब मैराडोना के जो वो सेलिब्रेशन जिस टाइम में वो सेलिब्रेट करते थे, टच लाइन पर जाकर थोड़ा सा डांस करना एंड अर्जेंटीनियन फैंस के साथ पार्टिसिपेट करना, उससे ये एक कंप्लीट ड्रामा को सबके सामने एक रियल बना दिया था। एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी जो आज भी हम कहते हैं कि हैंड ऑफ गॉड, इट वाज नॉट हैंड ऑफ मैराडोना, एज मैराडोना सेड, ये हैंड ऑफ गॉड था और मैंने तो सिर्फ चापट मार। एंड आज भी इस बात को लेकर काफी डिस्कशंस होते हैं फुटबॉल के महफिल में, फुटबॉल के टॉपिक जब भी इस गोल को लेकर होता कि जो कंट्रोवर्शियल गोल्स हैं।

वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में तो माराडोना का गोल जो है ये सबसे ऊपर एंड ऊपर है मींस ये एक माराडोना से हुआ है एंड माराडोना आपको पता है कि माराडोना इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम ड्यूरिंग हिज एरा मोस्ट स्किलफुल प्लेयर अगर कहें तो इसमें कंट्रोवर्सी के साथ ये भी है कि माराडोना के साथ कंपेयर किया जाता है विद लियोनेल मेसी विद पेले विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेकिन माराडोना वाज माराडोना आई मीन इस गोल को अगर हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें कि हाँ भाई इन्होंने अपने करियर में कुछ इस तरह के हरकतें की हैं अदरवाइज माराडोना वाज अ ट्रूली लेजेंडरी प्लेयर इनफैक्ट अगर इस गोल को अगर देखें तो वो गोल भी फेमस हो गया आई मीन वो गोल भी इनफेमस नहीं बल्कि फेमस है माराडोना को बहुत सारे लोग जानते भी हैं जो फैंस हैं आज के दौर में जो नौजवान फॉलोअर्स हैं वो भी माराडोना के जानते हैं अच्छा वो ही खिलाड़ी था जिन्होंने हाथ से गोल किया था एनीवे माराडोना इज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट और आज भी हम इस गोल को याद करते हैं उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें फी अमानिल्लाह

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। में दो हवाले कबीर FM 107 पे। और भाई बहुत जरूरी वेबसाइट्स हैं, आज भी बहुत काम की वेबसाइट्स हैं, ये ढूंढ ढूंढ कर मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बता भी रहा हूँ तो फायदा आपको हो रहा था, इसमें मुझे खुशी हो रही है। ये अलग ही किस्म का खुशी का आदान प्रदान है, विच आई एम रियली रियली ग्लैड इट्स हैपनिंग। सो बढ़िया है, तो मैं आपको बहुत जरूरी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ। नंबर वन ऑन द लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए है जिनका PDF का बड़ा काम रहता है। बहुत मतलब मैं परेशान हूँ, बहुत सारे PDF टूल्स काम नहीं करते, एंड नाउ फाइनली देर आर वेबसाइट जो कि बहुत हेल्पफुल है और एकदम फ्री है। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है pdffly.com pdffly.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो PDF के सारे टूल्स एकदम फ्री 100% आपको मिलेंगे। बता दो एग्जांपल, PDF से कोई और फाइल की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, PDF टू वर्ड करना है या वर्ड टू PDF करना है, किसी भी फाइल से PDF तक जाना है, PDF से किसी भी फाइल तक जाना है, किसी भी फॉर्मेट तक जाना है, बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा PDF फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा PDF के ऊपर का जो वाटरमार्क होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये वेबसाइट आप फैला दो कॉर्पोरेट जगत में भाई साहब बांध दिया जाएगी। जिन्हें नहीं पता ना उनका काम बहुत आसान होने वाला है, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है वो जब एडिट करना होता है ना PDF फाइल को, भाई साहब। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप वो भी कर सकते हैं, एंड एक्सट्रीमली इजी। मैं दोबारा से बता देता हूं नाम इसका, pdffly.com। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब अगली वेबसाइट जो है ये भी बड़ी कमाल की है। ये भी उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जो फोटो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई थोड़ा सा मुफ्त में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है opencut.app। ठीक है, opencut.app opencut.app। इस वेबसाइट पर चले जाइएगा आप, आपको CapCut का क्लोज कजन मिल जाएगा और ये एकदम फ्री है। आप इस पे स्टिकर्स, एडिटिंग टूल्स सब कुछ देख सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। आपका बेसिक से जो ऊपर का काम है जो कि काफी है, हालांकि प्रोफेशनल है आज के जमाने में, वो सारा का सारा काम हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको जरूर जरूर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो भाई अगली वेबसाइट का नाम है reccloud.com reccloud.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे AI जनरेटर्स नजर आएंगे, AI वीडियो जनरेटर्स नजर आएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं हर एक का नाम लेने बैठूंगा तो फिर अगली अपडेट तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करने वाला हूं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करें।

0: इंपॉर्टेंस ऑफ इट एंड आई थिंक आपको बहुत बहुत बढ़िया लगने वाला है. ठीक है, अब जरा बढ़ते खबरों की तरफ, क्योंकि हम अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास एप्पल की अपडेट आ चुकी है, तो वो अपडेट मैं दे देता हूँ. जो उसके प्रोडक्ट डिजाइन से तो वाकिफ है, लेकिन अंदरूनी चीजों के बारे में उन्हें शायद कम पता हो. शुरू करते हैं. तो देखो, रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल फोन आईफोन डियो, जो 23 अक्टूबर को मार्केट को हिट भी कर जाएगा. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ऑब्वियसली इसका प्राइस अप किया गया है और बाकी आईफोन्स के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाएगा. अब लोगों का सवाल ये रहता है कि ये है कैसा, मतलब फोल्डेबल है क्या ये सैमसंग कॉम्पिटिशन में? देखो, सैमसंग ने अभी आगे निकल गया, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगा. हालांकि एप्पल ने कुछ चीजें करी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिनमें इन्होंने जो अपने डुओ पे काम किया है, ये लोग अभी फेस आईडी तो लगा नहीं पाए, ऑब्वियसली मुश्किल था लगाना, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको जो है इनविजिबल एक बार वो दे देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपना वेबसाइट. साइड बटन दिया है फॉर अनलॉकिंग बेसिकली, और जो केस है वो इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम. और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो कैमराज बड़े हुए हैं, हालांकि कैमराज का काफी बेसिक है. और एक चीज जो अच्छी है फोल्डेबल दुनिया में फोन के साथ, वो ये है कि इन्होंने हिंजिस पे बहुत बढ़िया काम किया है. एंड आई थिंक प्राइस इसका कम तो नहीं होगा, पर जो भी लेगा उसको प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आएगा. इसी के बेसिस पे एप्पल अपना फोन बेचता है, एंड अगेन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. ये थी अपडेट. मैं दुहा वाला कभी FM 107 पे. स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का एक नया दिन और एक नया एपिसोड. ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं आपको बचाता हूं और किन तरीकों से लोग आपको फ्रॉड करते हैं, लोग आपको स्कैम करते हैं. हर रोज नए और यूनिक स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको इत्तला करता हूं. तो आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपके ऑफिस में ही स्कैम होता है, आपके ऑफिस के लोगों के थ्रू या आपके ऑफिस के लोग यू नो उनको इस्तेमाल किया जाता है. वेल, ये क्या स्कैम है इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है. दोस्तों, ये स्कैम है डिसग्रंटल कलीग एक्सटॉर्शन. वर्क प्लेस के अंदर होने वाला ये एक ऐसा इंटरनल थ्रेट है जो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है. इस स्कैम में कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई नाराज, जेलस या मलिशियस कलीग शामिल होता है, जो आपसे बदला लेना चाहता है या रातों रात पैसा कमाना चाहता है. क्योंकि हर शख्स के दिमाग में जल्दी और तेज पैसा कमाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है, और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी उसको फ्रॉड में शामिल कर देती है. ये काम कैसे करता है? ये कली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाता है. वो बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से आपके वर्कप्लेस सीक्रेट या आपकी किसी छोटी सी गलती को टारगेट करता है. होता यह है कि वो मलिशियस कलीग सीक्रेटली आपकी किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लेता है. ऑफिस लैपटॉप या शेयर्ड नेटवर्क पर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स या फोटोज ढूंढ निकालता है, या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी बड़ी मिस्टेक का टेक्निकल प्रूफ वो कलेक्ट कर लेता है. इन बातों को नॉर्मल चैनल के जरिए मैनेजमेंट के पास ले जाने के बजाय वो इंसान आपको ब्लैकमेलिंग करता है. वो आपको अकेले में थ्रेट करेगा कि अगर आपने उसे एक बड़ी अमाउंट कैश में नहीं दी, या फिर उसके हिस्से का सारा ऑफिस वर्क और प्रोजेक्ट खुद नहीं संभाला, तो वो ये सेंसिटिव फाइल्स पूरी कंपनी के बोर्ड, आपके HR और आपके परिवार के बीच लीक कर देगा. कई बार 99% ऑफ द टाइम ये शख्स एनोनिमसली आपके प्रोफाइल पे आपसे यू नो फेक नंबर से चैट करता है और ये सारी बातें आपसे कह रहा होता है. एम्प्लॉई ऐसे में डर जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी ऐसा सोचता है, सोसाइटी में बेइज्जती होगी, इसलिए वो उस डिसग्रंटल कलीग के दबाव में आकर उनकी डिमांड्स पूरी करने लगता है, जो आगे चलकर एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है. लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जाए. सबसे पहले जीरो कंप्लायंस पॉलिसी, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका. हमेशा याद रखें कि किसी ब्लैकमेलर की डिमांड को पूरा करना सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उनका हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है. अगर कोई कलीग आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कोई शख्स अपने सारे आपके सारे डिटेल्स लेकर

0: अपने मोबाइल से या यू नो फोन नंबर से आपसे चैट कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स एचआर को दे देगा या फिर बोर्ड के सामने खोल देगा, तो उन्हें एक भी रुपया ना दे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया वहां आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, उस कलीग के साथ हुई हर एक डिजिटल इंटरेक्शन का प्रूफ कलेक्ट करें, उनके ब्लैकमेलिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट या फिजिकल नोट्स के क्लियर स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स लेकर मल्टीपल सेफ प्लेसेस जैसे कि पर्सनल ड्राइव या हार्ड डिस्क पर बैकअप बनाएं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट एचआर और लीगल एस्केलेशन। इस सारे कलेक्टेड एविडेंस को लेकर बिना किसी डर के सीधे अपनी कंपनी के एचआर हेड और लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। कॉर्पोरेट लॉज के तहत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। एचआर तुरंत इन्वेस्टिगेशन सेटअप करेगा और उस एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन इस तरीके के होने वाले फ्रॉड से बचने के ये तीन तरीके आपको फ्रॉड से बचा लेंगे, आपके जेब से जो पैसा है उसे खर्च होने से बचा लेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी बारे में बात करते हुए, फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. Aur aaj ke segment mein hum baat karne wale hain micro investing ki. बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मॉडर्न फिनेंशियल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये है माइक्रो इन्वेस्टिंग। अब माइक्रो इन्वेस्टिंग है क्या? देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ वेल्थ बिल्ड की जा सके। कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टिंग को आम लोगों, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है। माइक्रो इन्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है बड़ा ही सिंपल है। आपको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप रोजाना, हफ्तावार या महीने बेसिस पर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट $5, $10 या इससे भी कम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को देखता है। बहुत से बिगनर्स इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तब करेंगे। यहाँ माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है। जब लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं और ये हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कंपाउंड ग्रोथ या फिर कंपाउंड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है। कंपाउंड ग्रोथ का क्या मतलब है? कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न अर्न करती है वो फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे। यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। चलिए एक मिसाल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई शख्स हर महीने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट को कई सालों तक कंटिन्यू रखे तो कंपाउंड ग्रोथ की वजह से उसकी टोटल वेल्थ एक्सपेक्टेड से भी काफी ज्यादा हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट उसे अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल डिसिप्लिन। जब मार्केट टेम्परेली डाउन हो तो पैनिक करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करना चाहिए। माइक्रो इन्वेस्टिंग एक एजुकेशनल बेनिफिट है। जब लोग छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पर सीखते भी हैं और ये लर्निंग फ्यूचर में उन्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। देखिए, आज के जमाने में इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो वक्त के साथ

पावर कम हो जाती है. इन्वेस्टिंग का मकसद ये होता है कि पैसा ग्रो करे और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करे. इसीलिए बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स सेविंग्स के साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं. बस अब जाते जाते मैं यही कहूँगी कि माइक्रो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाएं, तो वक्त के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है. कंपाउंड ग्रोथ, पेशेंस और डिसिप्लिन, माइक्रो इन्वेस्टिंग के ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे पेशेंट एंड लेट टाइम वर्क फॉर यू. तो फिलहाल अब मैं आपसे यहाँ पर इस टॉपिक पर इजाजत लूंगी. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. देखते और सुनते रहिए FM 107. दिल से दिल.

हमारे इस जुमे में एक बात तो ये है कि जहाँ पर ख़तीब जुमे के बयान करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जुमे के बयान से पहले ही हमारा ये एक सेशन यहाँ जुमे रिफ्लेक्शन के नाम पर हम ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं। तो इसका मकसद ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत जुमे के हवाले से कुछ जो है ना यानी अहम बातें इज्तमाही जो उमूर हैं इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लें, ठीक है, ताकि जुमे के मकसद को इसकी अहमियत को उजागर किया जाए और आपस में हम जब डिस्कशन होती है तो फिर इस तरह काम अमल करने में भी हमें क्या होता है यानी एक दिली तौर पर एक रग़बत मिलती है, ठीक है। वैसे अगर आप सिर्फ़ बात सुनेंगे तो सिर्फ़ बात सुनने से बंदा उतना इंस्पायर नहीं होता, लेकिन जब वो ख़ुद डिस्कशन में शामिल होता है, ख़ुद ऐसे हक जैसा कि तवासी बिल हक कहा गया है ना सूरतुल असर में, जो हक के दरमियान हक के हवाले से एक दूसरे को क्या करना, हक की वसीयत करना एक दूसरे को, यानी बंदा बैक वक्त वो कहने वाला भी है फिर सुनने वाला भी, यानी एज ए डिस्कशन। तो डिस्कशन की अहमियत आई है यानी क़ुरान में, सूरतुल असर की बात कर लें, यहाँ आया है तवासव बिलहक व तवासव बिस्सब्र, आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करना, आपस में एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना। तो देखें सब्र की वसीयत कह लें नसीहत कह लें, यहाँ आजकल ओवरऑल जो लंबी लंबी तकरीरें होती हैं लोग बड़े बड़े बयानात कर रहे होते हैं तो इसमें वो असर नहीं मिलता, इसके वो असरात नहीं होते जो उमूमी तौर पर डिस्कशन टेबल में जब हम बैठते हैं एक दूसरे की बात सुनते हैं सवालात सुनते हैं फिर जवाबात के हवाले से भी एक दूसरे आपस में शरीक होते हैं, तो इससे जो है ना यानी हमें वो नबवी जो तरीक़ा था उसको हम उजागर कर सकते हैं, वो वाली कैफियत हम देखते हैं इस डिस्कशन में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में भी लोग इस तरह जो है सवालात करते थे बेधड़क, जब दिल चाहा तो सवाल करते थे, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी कि मस्जिद मजलिस के आखिर में ही सवाल करना है, नहीं नहीं, सहाबा को दिल में कभी भी कुछ किसी भी यानी वो सवाल करना चाहता तो कोई भी सवाल हो वो साथ साथ सवाल करता, फिर उसके जवाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तरीके से यानी पेश करते। तो ये है नबवी तरीक़ा। सामिन इकराम हम आपको जब यानी जुमा रिफ्लेक्शन में बात करते हैं इज्तिमाई उमूर पर तो इज्तिमाई बात जब इनफरादी तौर पर तो हमारी अपनी ज़िंदगी है जहाँ से हमारी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि इस्लाह का आगाज़ होगा इनफरादी सतह से और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना सतह इज्तिमाई उमूर की तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन बात यह कि इज्तिमाई उमूर में इज्तिमाई उमूर की अहमियत भी काफ़ी है इनके असलाहत के हवाले से अगर बात कर लें, चूँकि इज्तिमाई तौर पर जब कोई गुनाह होने लगे तो वो ज़्यादा यानी क्या कहते हैं इसको भयानक रूप लेता है या उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है जब इज्तिमाई रूप ले लेता है कोई गुनाह। वैसे इनफरादी तौर पर अगर कोई ख़ास कोई गुनाह करे अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देंगे और ये एक हद तक यानी बंदे का अपना ख़ास अमल है और अल्लाह सुबहानहु ताला हम हमारे साथ कितने सतर का पर्दापोशी का मामला करते हैं हमें तो पता ही नहीं है ना, या फिर हम जानते भी हम सब जानते हैं कि हमारे कितने गुनाह हैं लेकिन अल्लाह पर्दापोशी का मामला करते हैं, इन गुनाहों के हवाले से ना हमारे दोस्त को पता होता है ना हमारे घर वालों को पता होता है ना कोई साथी। आजकल तो ये छोटे छोटे स्क्रीन पर मोबाइल पर कितने तरह के लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, ख़राब वीडियोस की बात कर लें बुरे बुरे आदत ये वो। तो देखें अल्लाह सुबहान व तआला ने हमारे लिए पर्दापोशी और सतर का मामला किया है तो ये है इनफरादी सतह पर, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर हम गुनाहों को इस तरह अलानिया करने लगे और आपस में एक दूसरे को यानी पर फख्र करने लगे इस गुनाह को लेकर तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा जी, तो ये जो इज्तिमाई उमूर इज्तिमाई तौर पर

आपकी राय जो भी है, आप हमारे साथ रब्ता करने के लिए आपका नंबर है 4434377। आपकी राय हम सुनेंगे और तबादला ख्याल करेंगे इस मौजू पर। बस एक छोटे से ब्रेक से लौटते हैं, दुरूद शरीफ का अमल सुनेंगे सामी यूसुफ की ज़बानी। और हर हफ्ते में मैं यही इसी दुरूद को बार बार दोबारा रिपीट करता हूँ, चूँकि भाई दुरूद का अमल ख़ास तौर पर जुमे के दिन इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अहमियत दिलाई गई है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। चूँकि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुबहान व तआला के चुनिंदा ये आखिरी खातमुल अंबिया हैं, तो अल्लाह सुबहान व तआला की रिसालत को की हिदायत को उन्होंने हम तक पहुंचाया, ठीक है। तो रिसालत की जिम्मेदारी उन पर थी इस मैसेज को हम तक पहुंचाने, इस वजह से हम अरब उर्दू में क्या कहते हैं, पैगंबर ना, तो पैगंबर। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का ये अमल साबित है कि आप ये शुक्रिया है, ऐसे शुक्रिया भी आप कहें कि इस दीन को हम तक पहुंचाया गया, इंसानियत की बात हम तक आई। और तो फिर 1400 साल पहले जब लोग जाहिलियत में, जब लोगों के पास कम अकली थी, यानी कम अकली इस पैमाने पर चूँकि हिदायत नहीं थी ना, हिदायत ना हो तो बंदा इस अकल को भेजा जगह में गलत नाम पर इस अकल का इस्तेमाल करके नाहक को हक बना लेता है। इस वजह से बहुत ही अहम है हिदायत। और अच्छा इंशाल्लाह बात को इधर उधर शाखें फैलाएंगे तो काफ़ी सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन ज़रा हम दुरूद का अमल सुन लेते हैं और इसकी अहमियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ये कुरान से साबित है। ऐसा नहीं कि हम ये दुरूद का अमल जो कह रहे हैं सिर्फ हदीस से साबित है, नहीं, कुरान से भी साबित है। इरशाद खुदावंदी है सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा।

0: कोई एक दूसरे को सबर नहीं कर पाता। चंद दिनों पहले की बात है या कल परसों की बात है, ऐसी यानी कुछ ऐसे सीन्स आए हमारे मेरे नज़र में कि बस हमारी आपस में एक दूसरे, एक भाई दूसरे भाई से इस तरह झगड़ रहे हैं। मैं किसी होटल वगैरह में था, तो यानी अफसोस होता है कि लोग आपस में दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते। एक महज एक छोटी सी, एक बहुत ही यानी इसे नाचीज़ कहेंगे, यानी कोई इसे चीज़ कहना भी सही नहीं है यानी सबब इतना हकीर एक सबब है। अल्लाह सुभान व तआला हमें साबरीन में शामिल कर लें। इस वजह से ईमान वालों को यानी सबसे पहले सब्र की वसीयत की गई है, सब्र की नसीहत की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज। सब्र नमाज के साथ भी सब्र का एक ताल्लुक है, इस वजह से सब्र को नमाज में साथ जिक्र किया है इसके साथ। तो नमाज की पाबंदी के लिए भी काफ़ी सब्र चाहिए होता है ना, वरना तो फिर जो साबरी नहीं होते हैं वो तो भाई नमाज को परमानेंटली और इस तरह हमेशा के साथ नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं। तो सामने क्राम सवाल है कि किस तरह जो है ना आप समझते हैं, आपकी राय में कि आप अपने मातहत के लोगों के साथ कौन सा ऐसा मामला करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये इनका दिल जीतने का बड़ा राज है। आपके मातहत वो औलाद हो सकती हैं, आपके मातहत वो काम करने वाले काम की जगह में वो अफराद भी हो सकते हैं, मुलाजमीन भी हो सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई समाजी जिम्मेदारी दी गई है, समाजी आपकी कोई शनाख्त है, आप कोई लीडर हैं, तो आपके मातहत जो आज़ा हैं, जो पार्टी के दीगर अफराद हैं, कोई फाउंडेशन है, फाउंडेशन के दीगर जो कारकुन हैं, उनके साथ उनके दिल जीतने का आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा राज क्या है? ये हमारा सवाल। वैसे तो अमूमन लोगों की ज़हनियात और नफ्सियात मुख्तलिफ होती हैं, इस सिलसिले में कोई ये समझता है कि नहीं, ये जो एक मामला है ना, ये लोगों के साथ बखूबी बात करना ये एक तरीक़ा होता है कि ये सही है, ये लोगों के दिल को जी लोग दिल जीतने का सबसे बड़ा राज है। सही से बात करना, गुफ्तगु यानी उस लबो लहजा जिसे कहते हैं लबो लहजा, उसकी रियायत करना। इस सिलसिले में लबो लहजे की रियायत के हवाले से अगर बात करें तो देखें, मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे में मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि लबो लहजा उनकी काफ़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग जब वो निकल जाते हैं ना, लोग उसे पसंद नहीं करते। यानी हाँ, हैं ऐसे लोग, लोग उसे पसंद नहीं करते। लबो लहजा बहुत ही खूब है, लेकिन लोग इस तरह उसको लेते हैं कि भाई ये तो ज़बान में बहुत कुछ कहता है लेकिन अंदर से पूरा बर्बाद है। यानी ये कहता कुछ और है और इसके दिल में कुछ और है, तो लोग इस तरह के तासुरात लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और इसके बरक्स ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो जिनको इतनी गोयाई की, गुफ्तार की जो महारत है ना, वो उनमें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हाँ लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो लोगों के पसंद नापसंद पर हम अपनी ज़िंदगी के मेयार को तो नहीं यानी तोलेंगे, लेकिन देखें लोगों के दिल जीतना ये अलग है। एक है पसंद और नापसंद, और एक है लोगों के साथ जो है ना उस तरह की रहमत और मोहब्बत के ताल्लुकात होना, शफ़क़त का मामला होना, तो ये अलग है। तो आप तमाम पूरी दुनिया की पसंद पर तो आप नहीं उतर सकेंगे, और जितना भी आप कोशिश करें, जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आज के दौर में हर किसी कोशिश ये रहती है कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हो, ये हो, तो किस तरह जो है ना हम लोगों की तवज्जो हासिल कर सकेंगे, किस तरह सबको राज़ी कर सकेंगे। हालांकि बात यह है कि अगर आप सबको राज़ी करने बैठें तो ना आप लोगों को राज़ी कर सकेंगे ना खुदा को, और अगर खुदा को राज़ी करें तो खुदा की रहनुमाई में है ये भी है कि आप लोगों को राज़ी करें, और एक ख़ास सतह पर आपके पास एक मेयार, ख़ास मेयार रहेगा। तो उस मेयार पर आप जब लोगों को खुश करेंगे तो ये खुशी जो है ना इसमें सस्टेनेबिलिटी है, वरना तो फिर लोगों की मर्ज़ी पर, लोगों की मर्ज़ी चेंज होती जाएगी और एक पार्टी की मर्जी दूसरी पार्टी से डिफर करती है और इस तरह जो है ना आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकेंगे, यानी तमाम लोगों को खुश करने का जो एक ये तसव्वुर है हमारे दिलों में कि हाँ इसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके तो इतने फॉलोअर्स, इसके ये हैं वो हैं, तो दरअसल ये एक वहमी प्लेटफॉर्म है। तो यानी हकीकी मोहब्बत करने वाले हकीकी तौर पर लोग से रिलेट यानी उसके साथ रहम करम का मामला दिल से मोहब्बत करने वाले ये बहुत ही ये अलग अलग ये एक पाया है, अलग एक सतह है। ठीक है, तो बातें हमारी जारी हैं, अभी तक बात काफ़ी सारी मैं यानी अहम डीपली मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा चूँकि मैं मुंतज़र हूँ कि कोई हमारे साथ रابطہ करें और सिलसिले में उनके साथ एज ए डिस्कशन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम का ये अब वक्त हो गया, आधा घंटा चला गया है, 10:30 है इस वक्त, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह इस मौजू के लुब लुबाब को यानी इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। मौजू है लोगों के साथ मामलात का, लोगों के दिल जीतने का राज। तो इसमें आज के जो आज के जो अलमिया हैं, आज के जो हमारे ताल्लुकात में जो बरतरी तो नहीं कहेंगे, बरतरी कहते हैं ना खूबी को, जो यानी ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उसको तो बरतरी कहते हैं, लेकिन ये हम क्या उसे बदतरी कहेंगे या अबतर, अबतर क्या ताल्लुकात अबतर हो गए हैं यानी बुरे हो गए हैं, जैसे आपने सूरतुल कौसर में भी आपने ये आयत सुनी होगी इन नशानिया का हुवल अबतर। तो उर्दू में जो अबतर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये दरअसल सूरह कौसर में और ये अरबी का लफ्ज़ ही है कि अबतर यानी ताल्लुकात यानी आपस के ताल्लुकात बुरा होना यानी मुतासर हो जाना और इस तरह सही बरतरी ना होना ताल्लुकात में। ठीक है, तो ये है अबतर यानी जिसको काट दिया गया हो, अबतर अरबी में इसका मतलब ये बनता है जिसकी नेकी भलाई को काट दिया गया हो, बस ख़त्म, यानी उसमें और भलाई नहीं है, ताल्लुकात बंद हो गए, ख़त्म हो गए और ये अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें,
2: आज ही रابطہ करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: दिल से देसी।
5: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल

हैच यानी क्या, हकीर, आपकी कोई हैसियत ही नहीं, तो आप तो कुछ समझने समझते ही नहीं हैं। अरे हाय, हालांकि हमारे नबवी जो तरीक़ा है, नबवी जो हमारी रहनुमाई है, इसमें तो क़ुरान में भी जो रहनुमाई दी गई है सिलसिले में, तो इन तमाम रहनुमाइयों में हमें यही मिलता है कि भाई आपने स्पेस देना है दूसरों को, आपकी बात आपको लबो लहजा हावी ना हो, बल्कि इस तरह हो कि आप दूसरे भी दूसरों को मौका मिले बात करने का। मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर कह लें कि उनकी मिसाल बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया, तो ये कोई मामूली ज़िम्मेदारी नहीं थी। एक तरफ फ़िरौन जैसा सरकश हुक्मरान था, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के हालात भी उस वक्त, यानी वो तो कहीं, यानी उन्होंने वो मिस्र से चले गए थे, यानी वो जहाँ जहाँ पले बढ़े वहाँ से वो चले गए थे, और मुख्तलिफ मसाइल पेश आए थे, इस वजह से वो चले गए, निकल गए वहाँ से, और फ़िरौन उनका पीछा ताकुब कर रहा था। तो अब उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला के सामने ये भी अर्ज़ किया कि अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दीजिए, वो मुझसे ज़्यादा फसी ज़बान है, तो उन्हें भी मेरे साथ मददगार बना दीजिए। तो देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कमज़ोरी को पहचान लिया, ये भी कमज़ोरी नहीं कि उसे पूरा करने के लिए दुरुस्त मंद तलाश करना, और इस कमज़ोरी को पूरा करने के लिए दुरुस्त मदद तलाश करना, ये ज़हानत है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अगर मैं हर सलाहियत में कामिल नहीं तो मैं ये काम ही नहीं करूँगा, नहीं, पैगाम उनके पास था, ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई, अब जहाँ मुआवनत दरकार थी वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को साथ मांग लिया। ठीक है, तो ये उसूल हमारी ज़िंदगी में भी बहुत काम आ सकता है कि आपके पास कोई अच्छा ख्याल है, नेक मकसद हो सकता है, कोई अहम पैगाम है। अच्छा, अब इस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो ज़रूरी सलाहियतें और वसाइल होने चाहिए थे आपके साथ, वो आपके साथ हैं। मुमकिन अक्सर बेशतर हमारे ऐसे हालात होते हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं, वो सलाहियतें नहीं हैं, नेक ख्याल के मालिक हैं। अब क्या हम खुद ही मैदान में उतर जाएँ और बात करते रहें इस मौजू पर, तो हम सही से उस पैगाम को नहीं पहुँचा सकेंगे। ख्याल का हामिल होना बात को अमली तौर पर मैदान में नाफिज करने से अलग है। ज़ाहिरी बात है, आपने एक ख्याल रख सकते हैं तो आप आगे बढ़ा, आप उन लोगों को जो बासलाहियत हैं उनके पास, शायद आपको आपके पास जो ख्याल है वो ख्याल उनके पास ना हो, लेकिन हाँ जब आप उनको देंगे वो बात कहेंगे कि आप इस मौजू पर काम करें, मुझे लगता है कि ये ऐसा ऐसा है, तो वो उस जो उस मामले से उस मौजू से रिलेटेड उस लोगों को आप साथ लाकर उन वसाइल को बरोएकार लाते हुए आप खिदमत कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक हद तक एक बड़े सतह पर आप खिदमत कर पा रहे हैं, उम्मत की खिदमत, माशरे की खिदमत। ठीक है, तो सामिन कराम एक मतलब फिर यानी बता दूँ, स्टूडियो का नंबर है 4434377 और व्हाट्सएप नंबर है 666-22107। आप बता सकते हैं आपकी राय और गुफ्तगू, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही एक अहम मौजू पर है, वो ये कि भाई हम आपस में एक दूसरे की दिल कैसे जीते हैं, और इस सिलसिले में सबसे बड़ा राज क्या है आपकी राय में, और अब यानी आजकल का जो एक या नफसी का दौर है, लोग अपने आप में खोए हुए रहते हैं कि भाई मैं अपनी तरह जीतूं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हम देखते हैं आपस में कि भाई वो सिर्फ़ अपने आप को लेकर उसकी फ़िक्र रहती है, वो सही है तो बस सही है, और दूसरे उनसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं, उनको उस तरह दिल से कबूल करते हैं कि नहीं, उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो इस्लाम तो दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आप किनारा कश हो जाएं, इस्लाम तो इस तस्वीर को कभी भी कबूल नहीं कर, क्योंकि इस पर आप माशरे में वो मैसेज नहीं पहुंचा सकेंगे और माशरे को उस राह तक आप नहीं ले जा सकेंगे। हाँ, माशरे के साथ एक जो क्या कहते हैं इसको, फ़ाल शिरकत, अगर आप इसका इरादा रखते हैं फ़ाल शिरकत का, तो इस सिलसिले में आपने ज़रूर मुआशरे के साथ देना है, मुआशरे के साथ रहना है, मुआशरे का दिल जीतना है, और उनके होकर उनके लिए काम करना है। तो जैसा कि हमने कहा, इस्लाह का आगाज़ अपनी इनफरादी सतह से शुरू होता है, लेकिन मुआशरे की सतह पर भी इस्लाह की जो फ़िक्र ये ज़रूरी है, और इसका आगाज़ अगरचे इनफरादी सतह पर हो,
لیکن معاشرتی طور پر

का नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। अर्ज किया, परवरदिगार भला मेरे हां कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है, आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज न था। जकरिया ने कहा, परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी ये है कि तू पै हम 3 दिन लोगों से बात न कर सके। चुनांचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो।

मगर बरकत ना हो तो कुछ हासिल नहीं होता। सेहत हो मगर बरकत ना हो तो सुकून नहीं मिलता। तो दरअसल दौलत तो अल्लाह की बरकत है। हमें अल्लाह तेरी बरकत के बगैर कोई गिरा नहीं, यानी हम तेरी बरकत के मोहताज हैं, हम इससे बेनियाज नहीं हो सकते। कुल लना ला अलैना, ये अल्लाह हमारे हक में हो हमारे खिलाफ ना हो, यानी अल्लाह हर चीज हमारे लिए खैर बना दे हमारे खिलाफ ना हो। खुद ना इलै कमिन्ना, ये अल्लाह हमें हमसे निकाल कर अपनी तरफ ले जा, यानी नफ्स से बचा कर अपनी तरफ ले जा, तेरी चाहत की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमें अपने जात के गुरूर से बचा ले, ख्वाहिशात से, खुद पसंदी से बचा ले। वला तजालना मफ्तूनीना बिअनफुसिना, हमें अपने नफ्स के फितना में मुबतला न कर। समझ कर हम बाज लोग ये दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने आप तबाह हो जाते हैं, चूंकि उनमें तकब्बुर, खुद पसंदी, अपनी नेकी पर फख्र, अपनी राय पर गुरूर, उन्हें पता ही नहीं चलता। हालांकि सब खतरनाक फितने उसी के अंदर है। अब अगला जुमला है, या अल्लाह हमें आमाले सालिहा पर दायम व कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इस जुमले की हकीकत यह है कि कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। कभी नमाज, कभी तिलावत, कभी नेकी थोड़ी बहुत कर ली फिर रुक जाते हैं। अल्लाह से इस्तिकामत मांगना बेहद जरूरी है। आमाले सालिहा जो हमेशा दायम व कायम रहे इसकी तलब है, साथ साथ आमाले सालिहा बिदअत से भी पाक हो, क्योंकि नेकी तो वही है जो सुन्नत के मुताबिक हो। सिर्फ जज्बा तो काफी नहीं, तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए। साथ साथ दुनिया की तरफ हद से ज्यादा झुकाव से भी हम तेरे पनाह मांगते हैं। अब दुनिया कमाना ये तो कोई बुराई नहीं, लेकिन दुनिया दिल में बैठ जाए तो अलग मसला है। सुनने से कहते हैं ना कि हाथ में दुनिया हो तो ठीक, दिल में दुनिया ना हो। इसी तरह ऐसे लालच से भी हम तेरी पनाह मांगते हैं जो इंसान की तबीयत खराब कर दे, यानी लालच जो तबीयत बन जाए, क्योंकि लालच इंसान को बेसब्र बना देता है, नाशुक्र बनाता है, बेउसूल बना देता है, यानी उसके कोई उसूल नहीं रहता। और ऐसे इल्म से भी तेरा पनाह है जो गुनाह की तरफ ले जाए, क्योंकि हर जान पहचान मालूमात फायदा मंद नहीं, कुछ चीज़ें इंसान को गुनाह की तरफ खींचती हैं। इसी वजह से और एक दुआ में ये भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह हमें इल्म नाफे नसीब फरमा। फिर दुआ का अगला जुमला है, ऐसे मशगले से भी तेरे पनाह है जिसका अंजाम पछतावा हो, क्योंकि वक्त कीमती है, हर मसरूफियत मुफीद नहीं होती। तो इन मशगलों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं जो वक्त को ज़ाया करे, ईमान कमज़ोर कर दे, बाद में अफसोस का बायस बने। तो अब तक जितनी दुआएं की हैं समीन कराम हमने, इनमें बात आ गई कि बरकत सबसे बड़ी नेमत है, नफ्स से बचना जरूरी है, नेकी के लिए इस्तकामत मांगनी है, साथ साथ दुनिया को दिल पर सवार न होने दें, हर मसरूफियत फायदा मंद नहीं होती, ये बात भी आ गई। अब एक और दुआ सुन लीजिए, जुल्म से बचने और अंधेरों से निकलने की दुआ है ये, क्योंकि इंसान सिर्फ रात के अंधेरे से नहीं डरता, बाज़ अंधेरे दिल में होते हैं, बाज़ फिक्र में, बाज़ किरदार में और बाज़ मुआशरे में। मतने दुआ यूं हैं, ए हमारे रब, हम जुल्म और हर अंधेरे से तेरी पनाह मांगते हैं। नऊज़ु बिका मिन अज़्ज़ुल्म वज़्ज़ुलुमात, नऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मतिल क़ल्ब, तेरी पनाह मांगते हैं दिल के अंधेरे से, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है नसीहत असर नहीं करती, जिक्र अच्छा नहीं लगता, गुनाह आसान लगता है, ये दिल की तारीकी है। आगे दुआ यूं है, वज़ुल्मत नफ्स, यानी नफ्स के अंधेरे से पनाह, क्योंकि नफ्स इंसान को कहता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मुझे सब कुछ मिले, मैं ही बड़ा हूँ। दरअसल बात यह, अगर नफ्स काबू में ना हो तो इंसान भटक जाता है। इसी तरह पनाह मांगी गई कब्र के अंधेरे से, क्योंकि असल कामयाब वो है जिसकी कब्र रोशन हो, और कब्र की रोशनी ईमान, नमाज, कुरान और नेक अमल से आती है। इसी तरह पनाह मांगी गई फिक्र और सोच के अंधेरे से, व ज़ुल्मतिल फिक्र, क्योंकि गलत सोच, मायूसी, बदगुमानी, बेमकसद ख्यालात, ये भी अंधेरे हैं। अल्लाह सही सोच अता करे तो जिंदगी संवर जाती।

0: आप सोने से एक घंटा पहले अगर आप बंद कर दें अपनी स्क्रीन्स, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और इसी तरह से आप जो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है तो उसमें मेडिटेशन है, या जो डीप ब्रीदिंग है वो आप कीजिए। इसी तरह से आप वॉक कीजिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी वॉक हो, शॉर्ट हो सकती है। और इसी तरह से आप टाइम मैनेजमेंट जो है उस तरफ ज़रूर जाइए, और कोई भी काम कर रहे हैं तो टाइम को मैनेज कीजिए, उससे हमारी जो माइंड है उसमें क्लैरिटी आती है। तो हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन की सेहत के लिए बहुत छोटे छोटे जो रोज़ाना की जो हैबिट्स हैं वो हमें अपनानी है, और फिर अपने ज़हनी फोकस और याददाश्त को मजबूत बनाना है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर, दिल से देसी। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं, और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: आप सुन रहे हैं एफ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हमारी ट्रैफिक सेफ्टी तभी बेहतर हो सकती है जब हम सब कानून का एहतराम करें। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है। जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: FM 107 presents Tech Update.
4: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं दूं हवाला कबीर एफएम 107 पे। और भाई बहुत जरूरी वेबसाइट्स हैं, आज भी बहुत काम की वेबसाइट्स हैं, ये ढूंढ ढूंढ कर मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बता भी रहा हूं तो फायदा आपको हो रहा है, इसमें मुझे खुशी हो रही है। ये अलग ही किस्म का खुशी का आदान प्रदान है, विच आई एम रियली रियली ग्लैड इट्स हैपनिंग। सो बढ़िया है। तो मैं आपको बहुत जरूरी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूं। नंबर वन ऑन द लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए है जिनका पीडीएफ का बड़ा काम रहता है यार। बहुत मतलब मैं परेशान हूँ, बहुत सारे पीडीएफ टूल्स काम नहीं करते एंड नाउ फाइनली देयर आर वेबसाइट जो कि बहुत हेल्पफुल है और एकदम फ्री है। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है

0: pdffly.com pdffly.com ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो पीडीएफ के सारे टूल्स एकदम फ्री 100% आपको मिलेंगे। बता दो एग्जांपल, पीडीएफ से कोई और फाइल की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टू वर्ड करना है या वर्ड टू पीडीएफ करना है, किसी भी फाइल से पीडीएफ तक जाना है, पीडीएफ से किसी भी फाइल तक जाना है, किसी भी फॉर्मेट तक जाना है, बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ को, पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के ऊपर का जो वाटरमार्क होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये वेबसाइट आप फैला दो कॉर्पोरेट जगत में, भाई जबान दिया जाएगी। जिन्हें नहीं पता ना, उनका काम बहुत आसान होने वाला है एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है वो जब एडिट करना होता है ना पीडीएफ फाइल को, भाई साहब। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप वो भी कर सकते हैं एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी। मैं दोबारा से बता देता हूं नाम इसका, pdffly.com ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब अगली वेबसाइट जो है ये भी बड़ी कमाल की है। ये भी उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जो फोटो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई थोड़ा सा मुफ्त में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है opencut.app ठीक है, opencut.app opencut.app। इस वेबसाइट पर चले जाइएगा आप, आपको कैप कट का क्लोज कजन मिल जाएगा और ये एकदम फ्री है। आप इस पर स्टिकर्स, एडिटिंग टूल्स सब कुछ देख सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। आपका बेसिक से जो ऊपर का काम है जो कि काफी है, हालांकि प्रोफेशनल है आज के जमाने में, वो सारा का सारा काम हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको जरूर जरूर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो अगली वेबसाइट का नाम है reccloud.com reccloud.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे AI जनरेटर्स नजर आएंगे, AI वीडियो जनरेटर्स नजर आएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं हर एक का नाम लेने बैठूंगा तो फिर अगली अपडेट तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करने वाला हूं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करें एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट एंड आई थिंक आपको बहुत बहुत बढ़िया लगने वाला है ठीक है। अब जरा बढ़ते खबरों की तरफ, क्योंकि हम अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास एप्पल की अपडेट आ चुकी है, तो वो अपडेट मैं दे देता हूं। जो उसके प्रोडक्ट डिजाइन से तो वाकिफ है, लेकिन अंदरूनी चीजों के बारे में उन्हें शायद कम पता हो। शुरू करते हैं। तो देखो, रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल फोन आईफोन डीओ, जो 23 अक्टूबर को मार्केट को हिट भी कर जाएगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ऑब्वियसली इसका प्राइस अप किया गया है और बाकी आईफोन्स के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाएगा। अब लोगों का सवाल ये रहता कि है कैसा, मतलब फोल्डेबल है क्या ये सैमसंग कॉम्पिटिशन में? देखो, सैमसंग ने अभी आगे निकल गया, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगा। हालांकि एप्पल ने कुछ चीजें करी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनमें इन्होंने जो अपने डुओ पे काम किया है, ये लोग अभी फेस आईडी तो लगा नहीं पाए, ऑब्वियसली मुश्किल था लगाना। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको जो है इनविजिबल एक बार वो दे देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपना वेबसाइट। साइड बटन दिया है फॉर अनलॉकिंग बेसिकली, और जो केस है वो इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो कैमराज बड़े हुए हैं, हालांकि कैमराज का काफी बेसिक है। और एक चीज जो अच्छी है फोल्डेबल दुनिया में फोन के साथ, वो ये है कि इन्होंने हिंजिस पे बहुत बढ़िया काम किया है। एंड आई थिंक प्राइस इसका कम तो नहीं होगा, पर जो भी लेगा उसको प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आएगा। इसी के बेसिस पे एप्पल अपना फोन बेचता है एंड अगेन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये थी अपडेट, मैं दोहा वाला कभी FM 107 पे। स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का एक नया दिन और एक नया एपिसोड। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं आपको बचाता हूं और किन तरीकों से लोग आपको फ्रॉड करते हैं, लोग आपको स्कैम करते हैं। हर रोज नए और यूनिक स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको इत्तला करता हूं। तो आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपके ऑफिस में ही स्कैम होता है, आपके ऑफिस के लोगों के थ्रू या आपके ऑफिस के लोग यू नो उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या स्कैम है, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये स्कैम है डिसग्रंटल कलीग एक्सटॉर्शन। वर्क प्लेस के अंदर होने वाला ये एक ऐसा इंटरनल थ्रेट है जो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्कैम में कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई नाराज, जेलस या मलिशियस कलीग शामिल होता है जो आपसे बदला लेना चाहता है या रातों रात पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि हर शख्स के दिमाग में जल्दी और तेज पैसा कमाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी उसको फ्रॉड में शामिल कर देती है। ये काम कैसे करता है? ये कली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाता है। वो बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से आपके वर्कप्लेस सीक्रेट या आपकी किसी छोटी सी गलती को टारगेट करता है। होता यह है कि वो मलिशियस कलीग सीक्रेटली आपकी किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। ऑफिस लैपटॉप या शेयर्ड नेटवर्क पर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स या फोटोज ढूंढ निकालता है या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी बड़ी मिस्टेक का टेक्निकल प्रूफ वो कलेक्ट कर लेता है। इन बातों को नॉर्मल चैनल के जरिए मैनेजमेंट के पास ले जाने के बजाय वो इंसान आपको ब्लैकमेलिंग करता है। वो आपको अकेले में थ्रेट करेगा कि अगर आपने उसे एक बड़ी अमाउंट कैश में नहीं दी या फिर उसके हिस्से का सारा ऑफिस वर्क और प्रोजेक्ट खुद नहीं संभाला, तो वो ये सेंसिटिव फाइल्स पूरी कंपनी के बोर्ड, आपके HR और आपके परिवार के बीच लीक कर देगा। कई बार 99% ऑफ द टाइम ये शख्स एनोनिमसली आपके प्रोफाइल पे आपसे फेक नंबर से चैट करता है और ये सारी बातें आपसे कह रहा होता है। एम्प्लॉई ऐसे में डर जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी ऐसा सोचता है, सोसाइटी में बेइज्जती होगी, इसलिए वो उस डिसग्रंटल कलीग के दबाव में आकर उनकी डिमांड्स पूरी करने लगता है, जो आगे चलकर एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जाए। सबसे पहले जीरो कंप्लायंस पॉलिसी, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ब्लैकमेलर की डिमांड को पूरा करना सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उनका हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई कलीग आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई शख्स अपने सारे आपके सारे डिटेल्स लेकर अपने मोबाइल से या फोन नंबर से आपसे चैट कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स HR को दे देगा या फिर बोर्ड के सामने खोल देगा, तो उन्हें एक भी रुपया ना दे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया वहां आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, उस कलीग के साथ हुई हर एक डिजिटल इंटरेक्शन का प्रूफ कलेक्ट करें, उनके ब्लैकमेलिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट या फिजिकल नोट्स के क्लियर स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स लेकर मल्टीपल सेफ प्लेसेस जैसे कि पर्सनल ड्राइव या हार्ड डिस्क पर बैकअप बनाएं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट HR और लीगल एस्केलेशन। इस सारे कलेक्टेड एविडेंस को लेकर बिना किसी डर के सीधे अपनी कंपनी के HR हेड और लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। कॉर्पोरेट लॉज के तहत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। HR तुरंत इन्वेस्टिगेशन सेटअप करेगा और उस एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन इस तरीके के होने वाले फ्रॉड से बचने के ये तीन तरीके आपको फ्रॉड से बचा लेंगे, आपके जेब से जो पैसा है उसे खर्च होने से बचा लेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी बारे में बात करते हुए, फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 1986 का फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टेंशन हाई, क्राउड क्रेजी और डिएगो मैराडोना फुल मोड में। लेकिन फिर हुआ वो जो फुटबॉल हिस्ट्री में कॉमेडी और कॉन्ट्रोवर्सी का कॉकटेल बन गया। मैच चल रहा था, इंग्लैंड की डिफेंस टाइट थी, लेकिन मैराडोना ने सोचा फुट से गोल करने की क्या जरूरत है जब हाथ ही काफी है। एक क्रॉस आया, गोलकीपर जंप कर रहा था और उसी वक्त मैराडोना ने चीकी स्टाइल में हाथ उठाया, बॉल नेट में और इट वाज वन अप फॉर अर्जेंटीना, यानी गोल मिल गया। रेफरी ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, गोल दे दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चीख चीख कर बोला कि ये हाथ था और हाथ था लेकिन रेफरी नजरअंदाज कर दिया इस बात को। लेकिन इसके बाद भी रेफरी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लीगल लगा और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए एंड उनको भी लगा कि ये क्या हेडर था या हाथ से। और दूसरा कमेंटेटर को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि नहीं, वो तो लग रहा है कि वो थप्पड़ था, बॉल के ऊपर थप्पड़ मारा गया था। बाद में जब मैराडोना से पूछा गया कि ये क्या सीन था भाई, तो हुजूर ने स्माइल देके बोला, थोड़ा मैराडोना का सर और थोड़ा हैंड ऑफ गॉड। पूरे इंग्लैंड फैंस जो मौजूद थे वो थोड़ा सा क्रेजी हो गए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए, और वहीं अर्जेंटीना खुश। और मीम्स जो है अगर उस वक्त होते तो आज तक वायरल हो रहे होते। और एक फैन ने लिखा था, गॉड ने हैंड यूज किया, रेफरी ने आईज बंद कर दी। And that was such an interesting anecdote, अगर मैं कहूँ, एक brilliant caption of Maradona's hand of God goal जो 1986 World Cup में हुआ था, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। And how it turned out to be a goal आज भी एक mystery है। England के खिलाड़ी शायद अब तक उस referee को WhatsApp पे block किए बैठे हैं। और Maradona वो legend बन गया, और goal illegal था लेकिन confidence 100% legal था। इस मैच ने हमें दिखाया कि कभी कभी फुट नहीं बल्कि फेथ चाहिए होता है, और थोड़ी सी चालाकी जो मैराडोना के पास था। और आज भी इस बात पे हर कोई कहता है कि क्या डिएगो मैराडोना वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ, क्या डिएगो मैराडोना का वो गोल जिससे उन्होंने हाथ से किया था, पीटर शिल्टन को बीट किया था, क्या उस गोल को ऑफिशियली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जा सकता है। There are a lot of debates आज भी है 1986 और ये है 2026। तो 40 साल में आज भी लोग ये कहते हैं, फैंस भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा उस वक्त भी इट वॉज नॉट दैट पावरफुल, कैमरा टेक्नोलॉजी वॉज नॉट दैट, लेकिन जो क्लोज इन फोटोग्राफ्स है आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पता चलेगा एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली डिएगो मैराडोना का हाथ जो है उस गेंद पर हवा में, वो गेंद है, और पीटर शिल्टन इंग्लैंड के मशहूर गोलकीपर उस बॉल को लपकने के लिए वो भी डिड अ स्पॉट जंप, और मैराडोना भी डिड अ स्पॉट जंप, और मिड एयर में मैराडोना का हाथ दिख रहा था कि वो गेंद पर यानी बॉल पर चपट लगाते हुए। एंड यही चीज लाइन्समैन यानी उस टाइम में लाइन्समैन कहते थे, असिस्टेंट रेफरी भी नजरअंदाज किया, नजरअंदाज के साथ साथ रेफरी को भी उन्होंने बताया कि भाई नहीं नहीं ये गोल है, क्योंकि बॉल जो है ये नेट पर ऑलरेडी एट मेड इट्स एंट्री एंड दैट वाज अ गोल। एंड जिस वक्त ये गोल हुआ, अब मैराडोना के जो वो सेलिब्रेशन जिस टाइम में वो सेलिब्रेट करते थे, टच लाइन पर जाकर थोड़ा सा डांस करना एंड अर्जेंटीनियन फैंस के साथ पार्टिसिपेट करना, उससे ये एक कंप्लीट ड्रामा को सबके सामने एक रियल बना दिया था। एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी जो आज भी हम कहते हैं कि हैंड ऑफ गॉड, इट वाज नॉट हैंड ऑफ मैराडोना, एज मैराडोना सेड, ये हैंड ऑफ गॉड था और मैंने तो सिर्फ चापट मार। एंड आज भी इस बात को लेकर काफी डिस्कशंस होते हैं फुटबॉल के महफिल में, फुटबॉल के टॉपिक जब भी इस

गोल को लेकर हो, देखिए जो कंट्रोवर्शियल गोल्स हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, तो माराडोना का गोल जो है ये सबसे ऊपर, एंड ऊपर है मींस ये एक माराडोना से हुआ है. एंड माराडोना, आपको पता है कि माराडोना इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज एरा, मोस्ट स्किलफुल प्लेयर अगर कहें. तो इसमें कंट्रोवर्सी के साथ ये भी है कि माराडोना के साथ कंपेयर किया जाता है विद लियोनेल मेसी, विद पेले, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन माराडोना वाज माराडोना. आई मीन इस गोल को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें कि हाँ भाई इन्होंने अपने करियर में कुछ इस तरह के हरकतें किए, अदरवाइज माराडोना वाज अ ट्रूली लेजेंडरी प्लेयर. इनफैक्ट अगर इस गोल को अगर देखें तो वो गोल भी फेमस हो गया. आई मीन वो गोल भी इनफेमस नहीं बल्कि फेमस है. माराडोना को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो फैंस हैं आज के दौर में, जो नौजवान फॉलोअर्स हैं वो भी माराडोना के जानते हैं, अच्छा वो ही खिलाड़ी था जिन्होंने हाथ से गोल किया था. एनीवे, माराडोना इज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. और आज भी हम इस गोल को याद करते हैं. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें. फी अमानिल्लाह.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें।

0: जाए, जो खाना मिलकर खाया जाए वो अक्सर खूबसूरत याद बन जाता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: हमेशा जिल्लत की निशानी नहीं, कभी आजमाइश उस रास्ते का हिस्सा होती है जो अल्लाह इंसान को एक बड़े मकाम तक पहुंचाने के लिए बनाता है।
1: बहुत अच्छे। और यहाँ एक डेंजरस एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करना जरूरी है तलब भाई। भाई मैं अच्छा इंसान हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ?
0: ये तो बहुत
1: हम सबके साथ है, हम सबके साथ है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा होना और टेस्ट फ्री लाइफ मिलना एक ही चीज नहीं है भाई। कभी हम दीन पर रहकर भी लॉस फेस करेंगे, कभी सिंसियर होते हुए भी बिट्रेल मिलेगा, और कभी दुआ करते हुए भी वेटिंग जो है, लाइन जो है हमारी, वो लंबी होती चली जाएगी। भाई फेथ का मतलब ये नहीं कि जो तूफान है, जो स्टॉर्म है वो नहीं आएगा। फेथ का मतलब ये है कि जो तूफान है स्टॉर्म में भी डायरेक्शन नहीं खोएंगे। दिस इज आवर फेथ।
0: जी बिल्कुल। और इसीलिए सूरत के अंदर, सूरह यूसुफ के अंदर बार बार एक जुमला बार बार आता है दिल को सहारा देने के लिए, फसबरुन जमील, यानी खूबसूरत सबर। याकूब अलैहिस्सलाम के हालात को देखिए, एक बेटा जुदा हुआ, फिर दूसरे बेटे की जुदाई का मामला पेश आया, गम इतना शदीद कि कुरान कहता है वबियद्दत आयनाहुम मिन अल-हुज्न, गम की शिद्दत से उनकी आंखें सफेद हो गईं, यानी जिस्म ने भी गम का असर कबूल कर लिया, लेकिन जबान पर क्या था, फसबरुन जमील। और फिर इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, मैं अपने दिल की बेकरारी और अपना गम अल्लाह ही से कहता हूँ। तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझ आती है कि सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द महसूस ना हो। याकूब अलैहिस्सलाम रोए, जिससे मुतासर हुआ, दिल गमगीन हुआ, मगर गम ने उनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं तोड़ा, बल्कि गम खुद उन्हें अल्लाह के सामने ले गया।
1: भाई ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। देखिए, कभी लोग समझते हैं कि अगर मैं मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, स्ट्रांग हूँ, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे हर्ट फील नहीं करना चाहिए। ये सही नहीं है। सब्र का मतलब सुन हो जाना नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद आप अल्लाह सुभानहु तआला से बदगुमान नहीं हो, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ें, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो है वो नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। आप कह सकते हैं मैं हर्ट हूँ, आप कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप रो भी सकते हैं भाई, अपनों के सामने कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अल्लाह सुबहानो ताला मेरा मामला तेरे हवाले है।
0: जी, और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश को अगर हम देखें, इनका जायजा लें, तो ये सिर्फ कुएं और गुलामी तक महदूद नहीं थी। एक वक्त वो भी आया जब शहर के अंदर उनके बारे में गुफ्तगु होने लगी, एक फितना, एक तोहमत, एक ऐसा माहौल जिसमें उनकी पाक दामनी को आजमाइश दरपेश थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, वइल्ला तसरफअनी कैदहुन्ना असबु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, ए मेरे रब, अगर तू इन औरतों की चाल मुझसे न फेरे तो मुमकिन है मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊँ और नादानों में शामिल हो जाऊँ। और इससे पहले उनका वो मशहूर जुमला है رب السجن احب الي مما يدعونني اليه, ए मेरे रब, जिस चीज की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है। ये दरअसल बहुत बड़ा अखलाकी फैसला था। एक तरफ आजादी थी मगर गुनाह के साथ, दूसरी तरफ कैद मगर आपकी जो इज्जत महफूज, जमीर महफूज, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने कैद ही को चुन ली।
1: और ये हमारी लाइफ में इंटीग्रिटी का रियल टेस्ट है भाई। प्रिंसिपल्स तब इजी लगते हैं जब उनकी कोई कॉस्ट ही ना हो, लेकिन असल सवाल तब आता है जब सच बोलने से जॉब रिस्क में हो,
0: है ना, चुकानी पड़े,
1: हराम से बचने से फाइनेंशियल लॉस हो, या फिर करेक्टर प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़े, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। कभी फ्रीडम का मतलब बाहर रहना नहीं होता, कभी आदमी बाहर होता है लेकिन डिजायर का प्रिजनर होता है, और कभी कोई जेल में होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल फ्री महसूस करता है।
0: बिल्कुल सरो भाई, यहाँ से हम सूरह यूसुफ में फ्रीडम की तारीफ भी, उसकी एक तारुफ भी हम हासिल कर सकते हैं। दरअसल फ्रीडम की तारीफ क्या है? आज तो लोग वैसे बोले फिरते हैं कि फ्रीडम ये है, आजादी कमाना ये है, लेकिन हकीकी आजादी हमें सूरह यूसुफ में वो झलकता है इसकी तारीफ। तो वक्त बदलता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बुलाया जाता है। अब जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वक़ार देखिए, सालों से कैद में है, हुक्म आया है बाहर आ जाओ। अब आम इंसान शायद दरवाजा खुलते ही दौड़ पड़े, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं इर्जा इला रब्बिक फसअलहु मा बालु निस्वति अल्लाती क़त्तअना अयदीहुन, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। वो या यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी सिर्फ वक्त

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है रोजाना मुहासबे की अहमियत के बारे में। रोजाना मुहासबा करना इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। जब हम अपने दिन का जायजा लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों और अच्छाइयाँ दोनों का एहसास होता है। ये अमल हमें बेटर डिसीजन लेने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर हम हर रोज थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोचें कि हमने क्या अच्छा किया और कहाँ बेहतरी की जरूरत है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। मुहासबे का मतलब है सिर्फ गलतियाँ देखना नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट भी करना। ये बैलेंस इंसान को मोटिवेटेड रखता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले 2 मिनट के लिए अपने दिन का जायजा लें और कल के लिए बेहतर इरादा करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, घर हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे हमारी फेवरेट जगह होती है कि नहीं। यहाँ हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करते हैं और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। हमारा एक कम्फर्ट जोन होता है ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे घर की छोटी छोटी आदतें एनवायरमेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? लाइट्स बंद करना, पानी बचाना, वेस्ट कम करना, चीजों को रीयूज करना, ये सब सिंपल से काम है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी बदल कर रख दें, मतलब ये कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर चले जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी ना अपनी डेली लाइफ की रूटीन में एक छोटी सी एडजस्टमेंट करना ही काफी होता है। तो भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं इको फ्रेंडली होम रूटीन्स की, यानी घर की ऐसी आदतें जो एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करें और जिंदगी को भी बेहतर बनाएं। तो भाई चलो, पहले तो ना हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, घर में रोजाना बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो रिसोर्सेज यूज करती ही हैं, जैसे की

जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, पानी का वेस्ट, खाने का वेस्ट, प्लास्टिक और अननेसेसरी पैकेजिंग का ज्यादा यूज, अच्छा ऐसी चीजें फेंक देना जो दोबारा काम में आ सकती है, रीयूज की जा सकती है। कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि हम बिजी हैं। लेकिन अगर हर घर में छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाना शुरू कर दी जाए तो इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों देखिए, घर को ग्रीन बनाना मुश्किल नहीं होता, नो मैं नहीं मानती, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन, अगर घर में इको फ्रेंडली रूटीन्स फॉलो की जाए तो उसके आइडियाज मैं आपको देती हूँ कि क्या हो सकते हैं। पहली चीज ये कि एनर्जी सेविंग रूटीन बनाएं। घर से निकलते वक्त या सोने से पहले एक क्विक चेक करें, क्या लाइट्स बंद हैं अननेसेसरी, क्या अननेसेसरी अप्लायंसेस चल रहे हैं। ये छोटी सी आदत एनर्जी बचाने में मदद कर सकती है, आपका बिल भी बचेगा भाई। अच्छा दूसरी चीज ये कि पानी की कदर करें। देखें ब्रश करते वक्त या डिशेस वॉश करते वक्त या क्लीनिंग के दौरान पानी को बेवजह ना चले रहने देना। पानी एक कीमती रिसोर्स है और हर बूंद की अहमियत है भाई। तीसरी चीज खाने का वेस्ट कम करें, मील प्लानिंग करें और जितनी जरूरत हो उतना ही खाना बनाएं। बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें ताकि वो वेस्ट ना हो, उसे वापस से अच्छे तरीके से रीयूज किया जा सकता है। और फिर रीयूज और रिपेयर को तरजीह दें। किसी चीज के खराब होने पर फौरन ये काम ना करें कि उसको फेंक दें और उसकी बजाय कोई नई चीज ले आए, ये करें कि उसको रिपेयर करवाएं और रिपेयर हो सकती है तो उसे रीयूज करें। भाई पुराने जार्स, बॉक्सेस और कंटेनर्स को नए काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में रिसाइकलिंग हैबिट बनाएं। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब आइटम्स अलग अलग आप चाहें तो आदत डाल सकते हैं कि इनको अलग अलग रखा जाए। बच्चों को भी रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाएं। साथियों अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए तो एक फैमिली अगर अपनी डेली रूटीन में सिर्फ कुछ चेंजेस ले आए ना, मतलब ये कि सुबह नेचुरल लाइट का यूज करे, शॉपिंग के लिए रियूजेबल बैग्स रखे, फूड वेस्ट कम करे और रात को अननेसेसरी डिवाइसेस स्विच ऑफ करे, तो भाई ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल होम रूटीन बना सकते हैं। कुछ फैमिलीज ने घर में सिंपल रूल्स बनाए हुए होते हैं, मैंने देखा है, जैसे कि रूम से निकलते वक्त लास्ट पर्सन लाइट चेक करेगा या शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स जरूर साथ रखे जाएंगे। देखिए ऐसी छोटी छोटी आदतें आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने घर की रूटीन में एक ऐसी आदत चूज करें जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो पानी बचाना हो, एनर्जी सेव करना हो या वेस्ट कम करना हो। और हमें बताएं आपके घर में कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट पहले से फॉलो हो रही है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, ग्रीन होम बनाने के लिए बड़े चेंजेस नहीं, छोटी छोटी अच्छी आदतें जरूरी होती हैं। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर। शो का नाम है सस्टेन द फ्यूचर,
0: टॉपिक ऑफ द डे।
1: साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट्स, द एनर्जी बिहाइंड द क्लाउड। अच्छा, जब हम क्लाउड का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक सॉफ्ट सा वाइट सा क्लाउड आ जाता है, जैसे कि बादल होता है, जैसे हमारी फोटोज, ईमेल्स, वीडियोस और फाइल्स किसी आसमान में तैर रही हो। लेकिन असल में क्लाउड कोई हवा में लटका हुआ मैजिकल स्टोरेज बॉक्स नहीं है। क्लाउड के पीछे दुनिया भर में फैले हुए फिजिकल डाटा सेंटर्स, सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम्स, कूलिंग इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, केबल और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, आपकी एक फोटो जो कि फोन से अपलोड होती है, आपकी एक ईमेल जो सेंड होती है, एक वीडियो जो स्ट्रीम होती है, या एक फाइल जो ऑनलाइन सेव होती है, इन सब के पीछे मशीन्स का एक इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा होता है। भाई, इसलिए तो डिजिटल दुनिया वेटलेस जरूर फील होती है, लेकिन एनवायरमेंटल वे में अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी वेटलेस नहीं होती। साथियों, UNEP ने डिजिटलाइजेशन को एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल फुटप्रिंट के तौर पर डिस्क्राइब किया है, क्योंकि डिजिटल सर्विस के पीछे डिवाइसेस, नेटवर्क्स, सर्वर्स, इलेक्ट्रिकल और नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अच्छा, जरा सोचिए, आप अपनी मॉर्निंग रूटीन इमेजिन कीजिए ना। आप उठते हैं, फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, अपने मैसेजेस वगैरह देखते हैं, अपने सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स चेक करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, और शायद अपने ब्रेकफास्ट के वक्त एक छोटी मोटी आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो भी देख लेते हैं। हमें ये सब सिर्फ स्क्रीन पर टैप्स और स्वाइप्स लगते हैं साथियों, लेकिन हर टैप के पीछे डाटा मूव हो रहा होता है। कभी डाटा आपके फोन से किसी सर्वर तक जा रहा होता है, कभी सर्वर से आपके फोन तक आ रहा होता है, और कभी क्लाउड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू एक्सेसिबल बनाई जा रही होती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी इनविजिबल हाईवे पर कंटिन्यूसली ट्रैफिक भेज रहे हों। आपको रोड नहीं नजर आ रहा होता, यहाँ पर ट्रक्स नहीं नजर आ रहे होते, पेट्रोल स्टेशन नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो हाईवे एग्जिस्ट करता है और ट्रैफिक उसमें मूव कर रहा होता है। अच्छा, इस इनविजिबल हाईवे को समझने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, डिजिटल फुटप्रिंट आम तौर पर हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी और उसके रिकॉर्ड्स को रिफर करता है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंस में हम एक और फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, एनर्जी और रिसोर्स का फुटप्रिंट, जो कि डिजिटल सर्विसेज के यूज के पीछे होता है। जब आप एक वीडियो स्ट्रीम करते हैं, एक फोटो बैकअप करते हैं, या एक ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली एक लार्जर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। साथियों, डाटा सेंटर्स में सर्वर्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, कूलिंग सिस्टम्स को एनर्जी चाहिए होती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को पावर चाहिए होती है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ऑपरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। IEA के मुताबिक डाटा सेंटर्स ने 2024 में दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का अराउंड 1.5% यूज किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 415 टेरावाट आवर्स। और भाई, IEA के गेस के मुताबिक 2030 तक डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अराउंड 945 टेरावाट पर आवर तक मोर देन डबल हो सकती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक ईमेल या एक फोटो इंडिविजुअली कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। देखिए भाई, अगर डिजिटल फुटप्रिंट को इंडिविजुअल एक्शन के लेवल पर समझते हैं ना हम, तो उस वक्त हमें स्केल और सिस्टम दोनों को देखना चाहिए। एक सिंगल एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन बिलियंस ऑफ यूजर्स की बिलियंस ऑफ एक्शंस कलेक्टिवली एनॉर्मस डिजिटल ट्रैफिक क्रिएट करते हैं। यूएन

ईपी ने हाईलाइट किया है कि इंटरनेट यूजर्स और ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक में ड्रामेटिक ग्रोथ हुई है और डिजिटल सर्विसेज की एनवायरमेंटल इंपैक्ट को समझना इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसीलिए मैसेज ये नहीं है कि इंटरनेट यूज करना बंद कर दें, मैसेज ये है कि हम डिजिटल कन्वीनियंस को सस्टेनेबल डिजिटल हैबिट के साथ बैलेंस कर चलें। अच्छा, अगर मैं आपको क्लाउड के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूँ ना, तो भाई ये जो क्लाउड है ना, इसको थोड़ा और डीप से समझते हैं, ठीक है। सोचिए एक सिटी है जो कभी सोती नहीं। इस सिटी में बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, पावर स्टेशंस हैं और वाटर सिस्टम्स भी मौजूद हैं। दिन हो या रात, कहीं ना कहीं मशीन्स चल ही रही होती हैं। डिजिटल वर्क के डाटा सेंटर्स भी कुछ इसी तरह होते हैं साथियों। ये मॉडर्न डिजिटल सिटीज की तरह हैं, जहां सर्वर्स कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर कर रहे होते हैं। कुछ डाटा सेंटर्स रिलेटिवली आप कह लें कि छोटे होते हैं, जबकि हाइपर स्केल फैसिलिटीज बहुत लार्ज इलेक्ट्रिसिटी लोड हैंडल कर सकती हैं। IEA के मुताबिक कन्वेंशनल डाटा सेंटर्स रफली 10 to 25 मेगावाट्स के स्केल पर हो सकते हैं, जबकि हाइपर स्केल AI फोकस्ड डाटा सेंटर्स 100 मेगावाट्स या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं। साथियों, डाटा सेंटर्स के अंदर सिर्फ सर्वर्स नहीं होते, सर्वर्स कैलकुलेशंस और डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज सिस्टम्स इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स डाटा मूव करते हैं और कूलिंग सिस्टम्स हीट रिमूव करते हैं। अच्छा, जब थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पावर कंप्यूटर कंपोनेंट्स एक फैसिलिटी में कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है ऑब्वियसली। अच्छा, इस हीट को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना क्या होगा? वरना यही होगा कि इक्विपमेंट एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए डाटा सेंटर्स की एक हिडन कूलिंग स्टोरी भी है, डिजिटल वर्ल्ड की कोल्ड क्लाउड। देखिए भाई, डिजिटल वर्ल्ड की कोल्ड क्लाउड के पीछे बहुत रियल हीट होती है। यहाँ अगर पानी के एंगल से बात को समझने की कोशिश की जाए ना, तो कुछ डाटा सेंटर्स कूलिंग के लिए वाटर बेस्ड सिस्टम्स यूज करते हैं और पानी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी फैसिलिटी को डिजाइन करते हैं। क्लाइमेट, कूलिंग टेक्नोलॉजी और लोकल कंडीशंस पर ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है। UNEP के सस्टेनेबल डाटा सेंटर गाइडेंस के मुताबिक डाटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ वाटर डिमांड भी क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कूलिंग के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डिजिटल सस्टेनेबिलिटी सिर्फ कार्बन इमिशंस की डिस्कशन नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मटेरियल्स, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी इंक्लूड होता है। अच्छा, अब एक अगर सिंपल सी मिसाल लेना, तो आप अपनी फैमिली के हंड्रेड्स ऑफ फोटोज क्लाउड में सेव कर लेते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी सेव की हुई फोटोज जो हैं वो बस एक क्लिक से सेव हो गई हैं, लेकिन उस क्लिक के पीछे स्मार्टफोन, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फिर आप वो फोटो किसी फैमिली मेंबर को सेंड करते हैं। भाई देखिए, आपका डाटा नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, फिर वो जिसको आपने पिक्चर्स भेजी होती हैं उस फोटो को डाउनलोड करता है। अगर वो सेम फोटो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती है तो भाई मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ लेसन ये नहीं है कि फैमिली फोटोज सेव ना करें, मेमोरीज वैल्यूबल होती हैं, लेकिन यहाँ लेसन ये है कि डिजिटल क्लटर भी एक फॉर्म का कंजम्पशन है। साथियों, हमारे पास फिजिकल होम्स में हम अक्सर अननेसेसरी चीजें क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, लेकिन डिजिटल दुनिया में हम फाइल्स को डिलीट करना भूल जाते हैं। हजारों स्क्रीनशॉट्स, डुप्लीकेट फोटोज, ओल्ड वीडियोस, अननेसेसरी डाउनलोड्स, फॉरगॉटन ईमेल्स, अटैचमेंट्स, डुप्लीकेट्स, क्लाउड बैकअप्स, क्वाइटली ये सारी चीजें खामोशी से स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करते रहते हैं। UNEP ने डिजिटलाइजेशन के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट पर डिस्कशन में नोट किया है कि क्लाउड में बहुत सारा डाटा अनयूज रह जाता है। ये एक फैसिनेटिंग सी बात है साथियों। देखिए, इसे कुछ ऐसे समझें कि हम अपने डिजिटल हाउसेस को भी कभी कभी डीक्लटर करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, हमारी जो ईमेल्स होती है ना, वो भी इसी स्टोरी का हिस्सा है। एक सिंपल टेक्स्ट ईमेल रिलेटिवली लाइट वेट हो सकती है, लेकिन लार्ज अटैचमेंट्स, रिपीटेड फॉरवर्डिंग, अननेसेसरी न्यूज़लेटर्स और लॉन्ग टर्म डिजिटल स्टोरेज सिस्टम्स को डाटा हैंडल करने पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर ईमेल को एनवायरमेंटल इमरजेंसी समझ लिया जाए, नहीं नहीं नहीं, इसके बरक्स डिजिटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कम्युलेटिव बिहेवियर को दिखाता है।

वीडियो स्ट्रीमिंग की, ठीक है साथियों। वीडियो ऑनलाइन देखना मॉडर्न लाइफ का एक बहुत नॉर्मल सा पार्ट हो गया है। हम एंटरटेनमेंट स्ट्रीम करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, न्यूज क्लिप्स हम लोग वॉच करते हैं और सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स और वीडियोस कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन भाई वीडियो पर्टिकुलरली डाटा इंटेंसिव डिजिटल एक्टिविटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कॉन्टेंट रिक्वायर मोर डाटा टू बी ट्रांसफर्ड। ADEME के एनालिसिस के मुताबिक स्ट्रीमिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट में डिवाइसेस का कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है और वीडियो क्वालिटी, इक्विपमेंट और नेटवर्क टाइप जैसे फैक्टर्स ओवरऑल इंपैक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप फोन पर एक कह लें कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के तौर पर देख रहे हैं, क्या आपको 4K क्वालिटी की जरूरत है? मेरे ख्याल से शायद नहीं। अगर स्क्रीन छोटी है और कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, लोअर रेजोल्यूशन परफेक्टली सफिशिएंट हो सकता है। देखिए भाई, ADEME रेकमेंड्स अडैप्टिंग वीडियो रेजोल्यूशन टू द डिवाइस एंड कंटेंट, पर्टिकुलरली बिकॉज अननेसेसरी हाई क्वालिटी वीडियो कैन मीन मोर डाटा कंजम्पशन। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां सस्टेनेबल डिजिटल बिहेवियर प्रैक्टिकल बन जाता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करना नहीं होता साथियों, टेक्नोलॉजी को इंटेलिजेंटली यूज करना होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो जरूरी तो नहीं कि स्क्रीन पर कंटिन्यूसली हाई रेजोल्यूशन म्यूजिक वीडियो स्ट्रीम चलती रहे। ऑडियो ऑनली सर्विस का डाटा डिमांड वीडियो से सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। अच्छा, यहाँ पर ADEME notes that audio streaming uses much lower data rates than video streaming, making audio a more resource efficient choice when visuals are not needed. So next time, आप जब सिर्फ song सुन रहे हो, screen को unnecessarily active रखने के बजाय audio focused options use करें ना, एक small digital sustainable habit हो सकती है ये। साथियों, अब नेटवर्क के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके फोन और डाटा सेंटर्स के बीच डायरेक्ट मैजिकल कनेक्शन नहीं होता। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, राउटर्स, स्विचेस, मोबाइल नेटवर्क्स, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो दूसरे तीसरे सिस्टम्स होते हैं, इसके अंदर ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। आइए ये डाटा सेंटर्स के साथ डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को डिजिटलाइजेशन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। यानी डिजिटल इकोसिस्टम को एक चेन समझें, डिवाइस, नेटवर्क, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। अगर हम सिर्फ डाटा सेंटर्स को ब्लेम करें और डिवाइसेस और नेटवर्क्स को इग्नोर करें तो पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाएगी ना। अच्छा, अब अगर डिवाइसेस की तरफ आते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई डिजिटल सर्विस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होता है, लेकिन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, टेलीविजन, राउटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मिनरल्स, मेटल्स, प्लास्टिक, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत होती है साथियों। UNEP ने डिजिटलाइजेशन के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट में हार्डवेयर प्रोडक्शन और ई वेस्ट को इम्पोर्टेंट इशू के तौर पर हाईलाइट किया है। इसीलिए एक सस्टेनेबल डिजिटल लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ सर्विस को एफिशिएंटली चार्ज करना नहीं, डिवाइस को अननेसेसरीली रिप्लेस करना भी होता है। इसको कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए ना कि आपके पास एक परफेक्टली वर्किंग स्मार्टफोन है, लेकिन हर साल नया मॉडल लॉन्च होता है और आप सिर्फ ट्रेंड की वजह से फोन रिप्लेस कर देते हैं। न्यू फोन्स बनाने के पीछे रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग इन्वॉल्व होती है। पुराने फोन अगर प्रॉपर्ली रीयूज्ड, रिफर्बिश्ड, रीसोल्ड या रीसाइकल नहीं होते तो ई वेस्ट का इशू क्रिएट होता है साथियों। इसीलिए डिवाइस की यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड करना डिजिटल सस्टेनेबिलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ADEME के मुताबिक डिजिटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को डिजिटल सर्विस के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात आती है। देखिए, हमारा फोन एक विंडो है, लेकिन विंडो बनाने में भी रिसोर्सेज लगती हैं। भाई, हम स्क्रीन पर क्लाउड को देखते हैं, लेकिन क्लाउड तक पहुंचने के लिए फिजिकल वर्ल्ड का एक ब्रिज चाहिए। हर डिजिटल कन्वीनियंस के पीछे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी होती है साथियों। यहाँ कहानी इनविजिबल है, लेकिन इमेजिनरी नहीं। सर्वर रियल हैं, केबल्स रियल हैं, इलेक्ट्रिसिटी रियल है, कूलिंग सिस्टम्स रियल हैं, चिप्स रियल हैं और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज भी रियल हैं। अच्छा, अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर भी डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्टोरी में अगर लेकर आए ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है। देखिए, AI एप्लीकेशंस पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करती हैं, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग और लार्ज स्केल इन्फ्रेंस के लिए।

IEEE के मुताबिक AI फोकस्ड एक्सेलरेटेड सर्वर डाटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की ग्रोथ का मेजर ड्रिवन बन जाते हैं। अच्छा, IEEE बेस केस में एक्सेलरेटेड सर्वर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप कह लें कि अराउंड 30% पर ईयर ग्रो करने की प्रोजेक्शन है। और भाई AI रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सेंटर डिमांड को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि AI इनहेरिटेडली बहुत बुरा है। AI हेल्थ केयर, रिसर्च, एनर्जी मैनेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी में वैल्यूबल एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इनोवेशन के साथ एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों। AI को एक पावरफुल इंजन समझें। अगर इंजन अननेसेसरीली लार्ज हो और हर छोटे टास्क के लिए फुल पावर यूज कर रहा हो तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी। फ्यूचर का चैलेंज ये है कि यूजफुल डिजिटल सर्विस को मिनिमम नेसेसरी सोर्सेज के साथ डिलीवर किया जाए। मोर एफिशिएंट चिप्स, बेटर कूलिंग, स्मार्टर सॉफ्टवेयर, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिमाइज्ड

ये भी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए. डिजिटल मीटिंग्स ट्रैवल को रिप्लेस कर सकती हैं. स्मार्ट एनर्जी सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं. डिजिटल मैप्स रूट्स ऑप्टिमाइज कर सकती हैं. रिमोट मॉनिटरिंग अननेसेसरी ट्रैवल रिड्यूस कर सकती है. देखिए भाई, ऑनलाइन सर्विसेज पेपर यूज और फिजिकल लॉजिस्टिक्स को कुछ सिचुएशंस में रिड्यूस कर सकती हैं. UNEP ने भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल बेनिफिट को

0: टूल है, वाइजली डिजाइंड एंड यूज्ड, इट कैन रिड्यूस सर्टेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पुअरली मैनेज्ड, इट कैन क्रिएट न्यू वंस। तो साथियों, अब वक्त है हमारे ग्रीन फ्लैश का, जहां हम दुनिया भर के सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल एनर्जी डेवलपमेंट का एक क्विक राउंड अप करते हैं।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: सबसे पहली इम्पोर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की रैपिड ग्रोथ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक डाटा सेंटर्स ने 2024 में अराउंड 415 टेरावाट पर आर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का अप्रोक्सीमेटली 1.5% था। अच्छा, IEA का बेस केस एस्टिमेट करता है कि ये फिगर 2030 तक अराउंड 945 टेरावाट पर आर तक पहुंच सकता है, यानी मोर देन डबल। AI और अदर डिजिटल सर्विसेज इस ग्रोथ के मेजर ड्राइवर्स में शामिल हैं। अच्छा, ग्रीन फ्लैश का दूसरा अपडेट AI और एनर्जी के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखिए, AI फोकस्ड डाटा सेंटर्स कन्वेंशनल डाटा सेंटर्स से सिग्निफिकेंटली हायर पावर डेंसिटीज हैंडल कर सकते हैं। IEA के मुताबिक एक हाइपर स्केल AI फोकस डाटा सेंटर की कैपेसिटी 100 मेगावाट्स या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो कि रफली 100,000 हाउसहोल्ड की एनर्जी एनुअली कंजम्पशन स्केल के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से वो बरकरार रह सकती है। देखिए, ये कंपैरिजन हमें स्केल समझाता है, हमारी हेल्प करता है समझने में। ऑल्दो एक्चुअल हाउसहोल्ड इक्विवेलेंसी लोकेशन और इलेक्ट्रिसिटी यूज पैटर्न्स के मुताबिक वेरी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें एक आइडिया जरूर दे देती है। देखिए, मैं ग्रीन फ्लैश का तीसरा पॉइंट सस्टेनेबिलिटी के सॉल्यूशन साइट पर है। IEA के प्रोजेक्शंस के मुताबिक रिन्यूएबल डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की एडिशनल ग्रोथ को मीट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। IEA के बेस केस में 2030 तक डाटा सेंटर डिमांड के लिए एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सिग्निफिकेंट शेयर रिन्यूएबल्स से आने की एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का चैलेंज सिर्फ कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होगी भी हो सकता है। अगर डिजिटल ग्रोथ इंक्रीजिंगली क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ पावर्ड होती है, तो भाई डिजिटलाइजेशन का कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करने का पोटेंशियल इम्प्रूव हो सकता है। और भाई, अब हम ग्रीन फ्लैश के एक और इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एंगल पर आ पहुंचे हैं, जो कि है पानी। देखिए, डाटा सेंटर्स को कूलिंग के लिए पानी की जरूरत हो सकती है, और भाई वाटर इंटेंसिटी फैसिलिटी डिजाइन क्लाइमेट और कूलिंग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। UNEP के सस्टेनेबल डाटा सेंटर गाइडेंस के मुताबिक डाटा सेंटर एक्सपेंशन एनर्जी के साथ वाटर डिमांड और लोकल एनवायरमेंटल प्रेशर्स को भी इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए फ्यूचर में सस्टेनेबल डाटा सेंटर्स के लिए एनर्जी एफिशिएंसी के साथ वाटर एफिशिएंट कूलिंग भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होगा।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: अब हम आ पहुंचे हैं भाई अपनी ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट पर। देखिए भाई, आज के ग्रीन इनोवेशंस स्पॉटलाइट में हम ये जानेंगे कि ग्रीनर डाटा सेंटर्स फ्यूचर का सस्टेनेबल डाटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग फुल ऑफ कंप्यूटर्स नहीं होगा। इट कैन बिकम एन ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम वेयर इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग कंप्यूटिंग पावर एंड वाटर आर मैनेज्ड टुगेदर। देखिए, इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन मोर एनर्जी एफिशिएंट सर्वर्स, इंप्रूव्ड कूलिंग डिजाइंस, स्मार्टर वर्कलोड मैनेजमेंट एंड बेटर इंटीग्रेशन विद रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, डिलीवर द सेम और बेटर डिजिटल सर्विस व्हाइल यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। अच्छा, एक पर्टिकुलरली अगर हम इम्पोर्टेंट एरिया देखें ना कूलिंग इनोवेशन का, तो भाई ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम्स को लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो सकती है, स्पेशली हाई डेंसिटी कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स में। AI सर्वर्स की पावर डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ हीट मैनेजमेंट और भी इम्पोर्टेंट हो रहा है साथियों, इसीलिए लिक्विड कूलिंग जैसे अप्रोचेस, एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट और मोर एफिशिएंट कूलिंग आर्किटेक्चर्स इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इनोवेशन है।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: अब सवाल ये है कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले डिजिटल क्लटर कम करें, अपनी फोटोज गैलरीज और क्लाउड स्टोरेज को रेगुलरली क्लीन करें, डुप्लीकेट फाइल्स डिलीट करें, अननेसेसरी डाउनलोड्स रिमूव करें, ओल्ड बैकअप्स रिव्यू करें, जो चीज इम्पोर्टेंट है उसे प्रिजर्व करें और जो चीज नहीं है उसे डायरेक्ट रिसाइकलिंग में डालें भाई। दूसरी चीज ये कि डिवाइसेस को आप देर तक यूज करें, अगर फोन या लैपटॉप काम कर रहा है तो सिर्फ फैशन या ट्रेंड की वजह से उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, रिपेयर पॉसिबल।

पॉसिबल हो सकता है रिपेयर कंसिडर करें, बैटरी या एक्सेसरीज रिप्लेस करके डिवाइस की यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब डिवाइस जेन्युइनली अनयूजेबल हो जाए तो उसे रिस्पॉन्सिबली ई वेस्ट रिसाइकिल का ऑप्शन चूज करें। साथियों एक और चीज है कि भाई स्ट्रीमिंग इंटेलिजेंटली करें। देखिए हर वीडियो को ना हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे देखना जरूरी नहीं है, छोटी स्क्रीन्स पर लोअर रेजोल्यूशंस सफिशिएंट हो सकती हैं। सिर्फ म्यूजिक सुनना है तो सिर्फ ऑडियो ओनली ऑप्शन यूज किया जा सकता है। ऑटो प्ले को कंट्रोल करें, जो कंटेंट देखना नहीं है उसे ऑटोमेटिकली स्ट्रीम होने से रोक दें। अच्छा चौथी चीज ये कर सकते हैं हम कि डिजिटल मिनिमलाइजेशन को ट्राई करें। हर ऐप का नोटिफिकेशन होना जरूरी नहीं होता, हर न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं होता, हर फोटो को 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना जरूरी नहीं होता, हर फाइल को फॉर एवर स्टोर करना जरूरी नहीं होता। देखिए टेक्नोलॉजी का पर्पस लाइफ को इजियर बनाना है, डिजिटल क्लटर को एक्सटेंसिव बिगर बनाना नहीं है। तो अगर इस डिजिटल क्लटर को आप फिजिकल वे में देखें तो भाई आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका घर कबाड़ खाना बन गया है। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी डिजिटल क्लटर को भी कम करें जैसे आप अपने घर से फिजिकल चीजें कम करते हैं। पांचवा, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव साइड को भी यूज करें। डिजिटल मीटिंग्स अगर ट्रैवल रिप्लेस कर सकती हैं तो भाई उसे यूज करें। स्मार्ट एनर्जी एप्स से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मॉनिटर करें। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स यूज करके अननेसेसरी प्रिंटिंग रिड्यूस करें। डिजिटल टूल्स को सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज करना भी एक डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। UNEP के मुताबिक डिजिटलाइजेशन रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और पावर सिस्टम मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये गिल्ट नहीं अवेयरनेस। आपको हर ईमेल भेजने से पहले क्लाइमेट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नो, आपको अपना फेवरेट शो स्ट्रीमिंग करना बंद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझाना है कि भाई डिजिटल दुनिया भी फिजिकल दुनिया से कनेक्टेड है। जब हम क्लाउड कहते हैं तो याद रखें कि क्लाउड के पीछे जमीन पर बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के अंदर सर्वर्स हैं, सर्वर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कूलिंग के लिए सिस्टम्स और कुछ केसेस में पानी है, डिवाइसेस बनाने के लिए मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स हैं। और जब डिवाइसेस ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं तो ई वेस्ट का क्वेश्चन सामने आ ही जाता है। यानी हमारी डिजिटल दुनिया हवा में नहीं है, डिजिटल दुनिया भी अर्थ पर ही बन रही है साथियों। इसीलिए सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं होता, सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब है टेक्नोलॉजी को स्मार्टर बनाना। देखिए भाई UNEP भी सस्टेनेबल डिजिटलाइजेशन को ऐसे फ्यूचर के तौर पर डिस्क्राइब करता है जहाँ डिजिटल एडवांसमेंट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करते हुए सोसाइटी को बेनिफिट करे। तो भाई अगली बार जब आप फोन पर सेव टू क्लाउड प्रेस करें ना तो एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि आपकी फाइल किसी फ्लफी क्लाउड में डिसअपीयर नहीं हो रही, वो किसी फिजिकल डाटा सेंटर में स्टोर्ड है, किसी सर्वर ने उसे रिसीव किया है, किसी नेटवर्क ने उसे ट्रांसफर किया, किसी कूलिंग सिस्टम ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल रखा, किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम ने मशीन्स को पावर दी। और फिर एक और थॉट, अगर हम अपने फिजिकल घर को रेगुलरली क्लीन करते हैं तो अपने डिजिटल घर को क्यों नहीं भाई। आज से अपनी डिजिटल लाइफ में एक सिंपल रूल क्रिएट करें, जो जरूरी है उसे सेव करें, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर दें, जो डिवाइस काम कर रहा है उसे ज्यादा देर तक यूज करें, और भाई टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से यूज करें। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ प्लास्टिक बॉटल रिसाइकिल करने या लाइट ऑफ करने का नाम नहीं है। आज की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी हमारी स्क्रीन के पीछे भी छुपी हुई है। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट इनविजिबल हो सकता है साथियों, लेकिन उसके पीछे एनर्जी, वाटर, मिनरल्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल हैं। और याद रखिए, एक इंडिविजुअल क्लिक दुनिया नहीं बदलता, लेकिन बिलियंस ऑफ क्लिक्स एक सिस्टम को जरूर शेप करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर सस्टेन द फ्यूचर। अगर आपके पास डिजिटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में कोई थॉट, टिप या एक्सपीरियंस है तो हमसे जरूर शेयर करें। हमारा नंबर है 666-222-107। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें फॉलो किया जा सकता है, जो कि है @FM107Qatar। आज जब हम फोन यूज करें तो भाई एक छोटी सी चीज जरूर याद रखिएगा, स्क्रीन के पीछे भी एक दुनिया है और उस दुनिया को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। क्लाउड हल्का नजर आता है लेकिन उसका फुटप्रिंट रियल है। डिजिटल रहिए, कनेक्टेड रहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी रहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम टेक्नोलॉजी को कितना यूज करते हैं, बल्कि

0: बात पर भी डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को कितनी समझदारी के साथ यूज करते हैं। सस्टेन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर की डिजिटल दुनिया भी इसी प्लेनेट पर चलेगी।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, जिंदगी में कामयाब और मजबूत इंसान कौन है? क्या वो शख्स ज्यादा कामयाब है जिसके पास ज्यादा माल हो, या जिसके जिस्म ज्यादा ताकतवर हो, या जिसके पास ज्यादा इख्तियार हो, या वो इंसान जो मुश्किल हालात में भी अपना मकसद न भूले, अल्लाह से मदद मांगते रहे और जो हो चुका है उस पर सारी जिंदगी काश ऐसा कर लेता कहता न रहे। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी चंद सुन्नतों पर गुफ्तगू करेंगे जिनमें एक मोमिन की पूरी अमली जिंदगी का नक्शा मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत और ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज्यादा महबूब है। अलबत्ता दोनों में खैर है। जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए उसके हुसूल की पूरी कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज बनकर न बैठो। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत या नुकसान पहुंच जाए तो ये न कहो, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा और ऐसा हो जाता, बल्कि कहो ये अल्लाह की तकदीर थी और उसने जो चाहा किया, क्योंकि अगर शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है। अब हदीस के पहले अल्फाज हैं अल-मुमिनुल क़वी। इसका तर्जुमा अगर हम ताकतवर मोमिन कहें तो शायद ये बात जिस्मानी ताकत तक महदूद रहे, लेकिन माना यहाँ कहीं ज़्यादा वसी है। इमाम नवोवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ बुनियादी तौर पर वो अज़्म, हिम्मत और कुव्वत इरादा मुराद है जो आखिरत के मामलात में इंसान को ज़्यादा सरगर्म बनाती है। यानी मजबूत मोमिन वो है जिसके अंदर नेकी के लिए हिम्मत हो, इबादत का वक्त आए तो सुस्ती पर काबू पाए, हक की हिमायत का मौका आए तो पीछे न हटे, भलाई और मारूफ की दावत देनी हो तो हिकमत के साथ आगे बढ़े, मुश्किल आए तो सब्र करे, दीनी जिम्मेदारी सामने आए तो बहाने तलाश करने के बजाय अमल करे। यानी आपने फ़ायदे की चीज़ मुंतखब की, कोशिश की, अल्लाह से मदद मांगी, हिम्मत नहीं हारी, फिर भी नतीजा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, अब क्या? यहाँ हदीस का दूसरा मरहला शुरू होता है। इरशाद नबवी है, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا। अगर कोई नागवार चीज पेश आ जाए तो ये ना कहते रहो, काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, काश मैं वहां ना जाता, काश वो फैसला ना करता, काश काश काश। इस तरह इंसान एक हाल में रहने के बजाय एक ऐसी माजी की दुनिया में रहने लगता है जिसे अब बदला ही नहीं जाता। अब माजी से सबक सीखना यह भी जरूरी है, गलती का जायजा लेना दुरुस्त है, तजुर्बे से सीखना या अकलमंदी का काम है। मसलन इस मरतबा तैयारी कम थी, आइंदा पहले से तैयारी करूंगा, ये मुफीद सबक है। अब मसला वो काश बनता है जो इंसान को तकदीर पर एतराज, मुसलसल हसरत, खुद को अंदर से खाने और शैतानी वसवसों में डाल दे। तो सबक लेना अच्छी बात है, लेकिन माजी में कैद मत हो जाइए। फिर आगे इरशाद नबवी है, ये अल्लाह की तकदीर थी और अल्लाह ने जो चाहा किया, क्योंकि अगर जैसे अल्फाज शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है। और वो कैसे कि इंसान सोचता रहे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अगर मैंने वो किया होता तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता, मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर हसरत बढ़ती है, मायूसी बढ़ती है, अल्लाह की तकदीर पर दिल में एतराज़ पैदा हो सकता है। तो सामने कराम, ये है सुन्नत नबवी कि जो कुछ हो चुका है उससे सीखो, जो बाकी है उस पर काम करो, और जो तुम्हारे इख्तियार से बाहर था اسے اللہ کے

Assalamualaikum दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 1986 का फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टेंशन हाई, क्राउड क्रेजी और डिएगो मैराडोना फुल मोड में। लेकिन फिर हुआ वो जो फुटबॉल हिस्ट्री में कॉमेडी और कॉन्ट्रोवर्सी का कॉकटेल बन गया। मैच चल रहा था, इंग्लैंड की डिफेंस टाइट थी, लेकिन मैराडोना ने सोचा फुट से गोल करने की क्या जरूरत है जब हाथ ही काफी है। एक क्रॉस आया, गोलकीपर जंप कर रहा था और उसी वक्त मैराडोना ने चीकी स्टाइल में हाथ उठाया, बॉल नेट में और इट वाज वन अप फॉर अर्जेंटीना, यानी गोल मिल गया। रेफरी ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, गोल दे दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चीख चीख कर बोला कि ये हाथ था और हाथ था लेकिन रेफरी नजरअंदाज कर दिया इस बात को। लेकिन इसके बाद भी रेफरी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लीगल लगा और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए एंड उनको भी लगा कि ये क्या हेडर था या हाथ से। और दूसरा कमेंटेटर को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि नहीं, वो तो लग रहा है कि वो थप्पड़ था, मैंने बॉल के ऊपर थप्पड़ मारा गया था। बाद में जब मैराडोना से पूछा गया कि ये क्या सीन था भाई, तो हुजूर ने स्माइल देके बोला, थोड़ा मैराडोना का सर और थोड़ा हैंड ऑफ गॉड। पूरे इंग्लैंड फैंस जो मौजूद थे वो थोड़ा सा क्रेजी हो गए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए, और वहीं अर्जेंटीना खुश। और मीम्स जो है अगर उस वक्त होते तो आज तक वायरल हो रहे होते। और एक फैन ने लिखा था, गॉड ने हैंड यूज किया, रेफरी ने आईज बंद कर दी। And that was such an interesting anecdote, agar main kahun, a brilliant caption of Maradona's hand of God goal, jo 1986 World Cup mein hua tha. Usi ke baare mein aaj hum baat kar rahe hain, and how it turned out to be a goal, aaj bhi ek mystery hai. England ke khiladi shayad ab tak us referee ko WhatsApp pe block kiye baithe hain. Aur Maradona, wo legend ban gaya. Aur goal illegal tha, lekin confidence 100% legal tha. इस मैच ने हमें दिखाया कि कभी कभी फुट नहीं बल्कि फेथ चाहिए होता है और थोड़ी सी चलाकी जो मैराडोना के पास था। और आज भी इस बात पे हर कोई कहता है कि क्या डिएगो मैराडोना वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ, क्या डिएगो मैराडोना का वो गोल जिससे उन्होंने हाथ से किया था, पीटर शिल्टन को बीट किया था, क्या उस गोल को ऑफिशियली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जा सकता है। There are a lot of debates. आज भी है 1986 और ये है 2026. तो 40 साल में आज भी लोग ये कहते हैं, फैंस भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा उस वक्त भी it was not that powerful, कैमरा टेक्नोलॉजी was not that, लेकिन जो क्लोज इन फोटोग्राफ्स है आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पता चलेगा एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली डिएगो मैराडोना का हाथ जो है उस गेंद पर हवा में, वो गेंद है, और पीटर शिल्टन इंग्लैंड के मशहूर गोलकीपर उस बॉल को लपकने के लिए वो भी डिड अ स्पॉट जंप, और मैराडोना भी डिड अ स्पॉट जंप, और मिड एयर में मैराडोना का हाथ दिख रहा था कि वो गेंद पर यानी बॉल पर चपट लगाते हुए। एंड यही चीज लाइन्समैन यानी उस टाइम में लाइन्समैन कहते थे असिस्टेंट रेफरी भी नजरअंदाज किया, नजरअंदाज के साथ साथ रेफरी को भी उन्होंने बताया कि भाई नहीं नहीं ये गोल है, क्योंकि बॉल जो है ये नेट पर ऑलरेडी एट मेड इट्स एंट्री एंड दैट वाज अ गोल। एंड जिस वक्त ये गोल हुआ, अब मैराडोना के जो वो सेलिब्रेशन जिस स्टाइल में वो सेलिब्रेट करते थे,

टच लाइन पर जाकर थोड़ा सा डांस करना एंड अर्जेंटीनियन फैंस के साथ यू नो पार्टिसिपेट करना, उससे ये एक कंप्लीट ड्रामा को यू नो सबके सामने एक रियल बना दिया था. एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी जो आज भी हम कहते हैं कि हैंड ऑफ गॉड. इट वाज नॉट हैंड ऑफ मैराडोना एज मैराडोना सेड, ये हैंड ऑफ गॉड था और मैंने तो सिर्फ चापट मार. एंड आज भी इस बात को लेकर काफी काफी डिस्कशंस होते हैं फुटबॉल के महफिल में. फुटबॉल के टॉपिक जब भी इस गोल को लेकर होते कि जो कंट्रोवर्शियल गोल्स हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, तो मैराडोना का गोल जो है ये सबसे ऊपर. एंड ऊपर है मींस ये एक मैराडोना से हुआ है. एंड मैराडोना आपको पता है कि मैराडोना इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम ड्यूरिंग हिज एरा, मोस्ट स्किलफुल प्लेयर अगर कहें तो. इसमें कंट्रोवर्सी के साथ ये भी है कि मैराडोना के साथ कंपेयर किया जाता है विद लियोनेल मेसी, विद पेले, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लेकिन मैराडोना वाज मैराडोना. आई मीन इस गोल को अगर हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें कि हाँ भाई इन्होंने अपने करियर में कुछ इस तरह के हरकतें किए, अदरवाइज मैराडोना वॉज अ ट्रूली लेजेंडरी प्लेयर. इनफैक्ट अगर इस गोल को अगर देखें तो वो गोल भी फेमस हो गया. आई मीन वो गोल भी इन फेमस नहीं बल्कि फेमस है. मैराडोना को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो फैंस हैं आज के दौर में जो नौजवान फॉलोअर्स हैं वो भी मैराडोना के ज़्यादा अच्छा वो ही खिलाड़ी था जिन्होंने हाथ से गोल किया था. एनीवे मैराडोना इज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. और आज भी हम इस गोल को याद करते हैं. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें. फी अमानिल्लाह.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। में दूहा वाला कबीर FM 107 पे। और भाई बहुत जरूरी वेबसाइट्स हैं आज भी, बहुत काम की वेबसाइट्स हैं। ये ढूंढ ढूंढ कर मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बता भी रहा हूँ तो फायदा आपको हो रहा है, इसमें मुझे खुशी हो रही है। ये अलग ही किस्म का खुशी का आदान प्रदान है, विच आई एम रियली रियली ग्लैड इट्स हैपनिंग। सो बढ़िया है। तो मैं आपको बहुत जरूरी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ। नंबर वन ऑन द लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए है जिनका PDF का बड़ा काम रहता है। बहुत मतलब मैं परेशान हूँ, बहुत सारे PDF टूल्स काम नहीं करते, एंड नाउ फाइनली देयर आर वेबसाइट जो कि बहुत हेल्पफुल है और एकदम फ्री है। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है pdffly.com, pdffly.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो PDF के सारे टूल्स एकदम फ्री 100% आपको मिलेंगे। बता दूं एग्जांपल, PDF से कोई और फाइल की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, PDF टू वर्ड करना है, या वर्ड टू PDF करना है, किसी भी फाइल से PDF तक जाना है, PDF से किसी भी फाइल तक जाना है, किसी भी फॉर्मेट तक जाना है, बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा PDF फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा PDF के ऊपर का जो वाटरमार्क होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये वेबसाइट आप फैला दो कॉर्पोरेट जगत में भाई साहब आंधी आ जाएगी। जिन्हें नहीं पता ना उनका काम बहुत आसान होने वाला है, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है वो जब एडिट करना होता है ना PDF फाइल को, भाई साहब। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप वो भी कर सकते हैं, एंड एक्सट्रीमली इजी। मैं दोबारा से बता देता हूं नाम इसका, pdffly.com। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब अगली वेबसाइट जो है ये भी बड़ी कमाल की है। ये भी उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जो फोटो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई थोड़ा सा मुफ्त में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है opencut.app। ठीक है, opencut.app, opencut.app। इस वेबसाइट पर चले जाइएगा आप, आपको कैप कट का क्लोज कजन मिल जाएगा, और ये एकदम फ्री है। आप इस पे स्टिकर्स, एडिटिंग टूल्स, सब कुछ देख सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। आपका बेसिक से जो ऊपर का काम है जो कि काफी है, हालांकि प्रोफेशनल है आज के जमाने में, वो सारा का सारा काम हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन।

0: तो भाई अगली वेबसाइट का नाम है रीक या reccloud.com, reccloud.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे AI जनरेटर्स नजर आएंगे, AI वीडियो जनरेटर्स नजर आएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं हर एक का नाम लेने बैठूंगा तो फिर अगली अपडेट तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करने वाला हूं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करें एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड आई थिंक आपको बहुत बहुत बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, अब जरा बढ़ते खबरों की तरफ, क्योंकि हम अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास एप्पल की अपडेट आ चुकी है, तो वो अपडेट मैं दे देता हूँ। जो उसके प्रोडक्ट डिजाइन से तो वाकिफ हैं, लेकिन अंदरूनी चीजों के बारे में उन्हें शायद कम पता हो। शुरू करते हैं। तो देखो, रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल फोन आईफोन टीओ, जो 23 अक्टूबर को मार्केट को हिट भी कर जाएगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ऑब्वियसली इसका प्राइस अप किया गया है और बाकी आईफोन्स के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाएगा। अब लोगों का सवाल ये रहता कि ये है किसा, मतलब फोल्डेबल है क्या ये सैमसंग कॉम्पिटिशन में? देखो, सैमसंग ने अभी आगे निकल गया, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगा। हालांकि एप्पल ने कुछ चीजें करी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जिनमें इन्होंने जो अपने डुओ पे काम किया है, ये लोग अभी फेस आईडी तो लगा नहीं पाए, ऑब्वियसली मुश्किल था लगाना, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको जो इनविजिबल एक बार वो दे देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपना वेबसाइट। साइड बटन दिया है फॉर अनलॉकिंग बेसिकली, और जो केस है वो इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो कैमराज बड़े हुए हैं, हालांकि कैमराज का काफी बेसिक है। और एक चीज जो अच्छी है फोल्डेबल दुनिया में फोन के साथ, वो ये है कि इन्होंने हिंजिस पे बहुत बढ़िया काम किया है, एंड आई थिंक प्राइस इसका कम तो नहीं होगा, पर जो भी लेगा उसको प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आएगा। इसी के बेसिस पे एप्पल अपना फोन बेचता है, एंड अगेन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये थी अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर, FM 107 पे स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का एक नया दिन और एक नया एपिसोड। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं आपको बचाता हूं, और किन तरीकों से लोग आपको फ्रॉड करते हैं, लोग आपको स्कैम करते हैं। हर रोज नए और यूनिक स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको इत्तला करता हूं। तो आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपके ऑफिस में ही स्कैम होता है, आपके ऑफिस के लोगों के थ्रू या आपके ऑफिस के लोग उनको इस्तेमाल किया जाता है। वेल, ये क्या स्कैम है इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये स्कैम है डिसग्रंटल कलीग एक्सटॉर्शन। वर्क प्लेस के अंदर होने वाला ये एक ऐसा इंटरनल थ्रेट है जो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्कैम में कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई नाराज, जेलस या मलिशियस कलीग शामिल होता है जो आपसे बदला लेना चाहता है या रातों रात पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि हर शख्स के दिमाग में जल्दी और तेज पैसा कमाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है, और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी उसको फ्रॉड में शामिल कर देती है। ये काम कैसे करता है? ये कली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाता है। वो बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से आपके वर्कप्लेस सीक्रेट या आपकी किसी छोटी सी गलती को टारगेट करता है। होता यह है कि वो मलिशियस कलीग सीक्रेटली आपकी किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लेता है, ऑफिस लैपटॉप या शेयर्ड नेटवर्क पर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स या फोटोज ढूंढ निकालता है, या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी बड़ी मिस्टेक का टेक्निकल प्रूफ वो कलेक्ट कर लेता है। इन बातों को नॉर्मल चैनल के जरिए मैनेजमेंट के पास ले जाने के बजाय वो इंसान आपको ब्लैकमेलिंग करता है। वो आपको अकेले में थ्रेट करेगा कि अगर आपने उसे एक बड़ी अमाउंट कैश में नहीं दी या फिर उसके हिस्से का सारा ऑफिस वर्क और प्रोजेक्ट खुद नहीं संभाला, तो वो ये सेंसिटिव फाइल्स पूरी कंपनी के बोर्ड, आपके HR और आपके परिवार के बीच लीक कर देगा। कई बार 99% ऑफ द टाइम ये शख्स एनोनिमसली आपके प्रोफाइल पे आपसे फेक नंबर से चैट करता है और ये सारी बातें आपसे कह रहा होता है। एम्प्लॉई ऐसे में डर जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी ऐसा सोचता है, सोसाइटी में बेइज्जती होगी, इसलिए वो उस डिसग्रंटल कलीग के

0: दबाव में आकर उनकी डिमांड्स पूरी करने लगता है, जो आगे चलकर एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जाए। सबसे पहले जीरो कंप्लायंस पॉलिसी, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ब्लैकमेलर की डिमांड को पूरा करना सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उनका हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई कलीग आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई शख्स अपने सारे आपके सारे डिटेल्स लेकर अपने मोबाइल से या यू नो फोन नंबर से आपसे चैट कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स एचआर को दे देगा या फिर बोर्ड के सामने खोल देगा, तो उन्हें एक भी रुपया ना दे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया वहां आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, उस कलीग के साथ हुई हर एक डिजिटल इंटरेक्शन का प्रूफ कलेक्ट करें, उनके ब्लैकमेलिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट या फिजिकल नोट्स के क्लियर स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स लेकर मल्टीपल सेफ प्लेसेस जैसे कि पर्सनल ड्राइव या हार्ड डिस्क पर बैकअप बनाएं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट एचआर और लीगल एस्केलेशन। इस सारे कलेक्टेड एविडेंस को लेकर बिना किसी डर के सीधे अपनी कंपनी के एचआर हेड और लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। कॉर्पोरेट लॉज के तहत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। एचआर तुरंत इन्वेस्टिगेशन सेटअप करेगा और उस एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन इस तरीके के होने वाले फ्रॉड से बचने के ये तीन तरीके आपको फ्रॉड से बचा लेंगे, आपके जेब से जो पैसा है उसे खर्च होने से बचा लेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी बारे में बात करते हुए, फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इन्वेस्टिंग की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मॉडर्न फिनेंशियल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये है माइक्रो इन्वेस्टिंग। अब माइक्रो इन्वेस्टिंग है क्या? देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ वेल्थ बिल्ड की जा सके। इस कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टिंग को आम लोगों, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है। माइक्रो इन्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है बड़ा ही सिंपल है। आपको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप रोजाना, हफ्तावार या महीने बेसिस पर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट $5, $10 या इससे भी कम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को देखता है। बहुत से बिगनर्स इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तब करेंगे। यहाँ माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है। जब लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं और ये हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कंपाउंड ग्रोथ या फिर कंपाउंड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है। कंपाउंड ग्रोथ का क्या मतलब है? कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न अर्न करती है वो फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे। यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। चलिए एक मिसाल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई शख्स हर महीने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट को कई सालों तक कंटिन्यू रखे तो कंपाउंड ग्रोथ की वजह से उसकी टोटल वेल्थ एक्सपेक्टेड से भी काफी ज्यादा हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स उसे अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल डिसिप्लिन। जब मार्केट टेम्परेली डाउन हो तो पैनिक करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए। माइक्रो इन्वेस्टिंग

माइक्रो इन्वेस्टिंग एक एजुकेशनल बेनिफिट है। जब लोग छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पे सीखते भी हैं, और ये लर्निंग फ्यूचर में उन्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। देखिए, आज के जमाने में इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो वक्त के साथ उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्वेस्टिंग का मकसद ये होता है कि पैसा ग्रो करे और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करे। इसीलिए बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स सेविंग्स के साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। बस अब जाते जाते मैं यही कहूँगी कि माइक्रो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाएं, तो वक्त के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। कंपाउंड ग्रोथ, पेशेंस और डिसिप्लिन माइक्रो इन्वेस्टिंग के ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे पेशेंट एंड लेट टाइम वर्क फॉर यू। तो फिलहाल अब मैं आपसे यहाँ पर इस टॉपिक पर इजाजत लूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। देखते और सुनते रहिए FM 107। दिल से दिल।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: FM 107 दिल से देसी
3: सुनिए कदर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
4: हाँ जी हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026 जहां पर आपको मेजर अनाउंसमेंट से लेकर न्यू ओपनिंग्स तक आने वाले कॉन्सर्ट से लेकर कि वीकेंड में क्या कुछ हो रहा है फूड मॉल्स हर एक चीज यू नो चाहे फैमिली इवेंट्स हो एग्जीबिशन हो सारी जानकारी आपको यहां मिलती है और फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के मैचेस ही क्यों ना हो एंड देन हम कतर 2026 में सस्टेनेबिलिटी पर भी बात करते हैं और कतर के नेशनल विजन 2030 पर भी फोकस पूरा रहता है तो ये एक मुकम्मल शो है जहां पर आपको एक एक डिटेल के बारे में पता चलता है कि कतर में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट्स और न्यू ओपनिंग्स के बारे में कि कतर में क्या कुछ हो रहा है Well, सबसे पहले तो बात होगी कतर म्यूजियम के बारे में कतर म्यूजियम्स ने इंटरनेशनल आर्टिस्टिक एक्सचेंज और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक नया 5 साल का फ्रेमवर्क ऑफिशियली साइन कर लिया है इकोनॉमिक फ्रंट पर कतर का नाम ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में काफी उम्मीद से ऊपर चल रहा है इसके साथ ही स्टेट रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक्टिव डिप्लोमेटिक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है लाइफस्टाइल एक्सपेंशन की बात करें तो ओल्ड दोहा पोर्ट का मीना डिस्ट्रिक्ट नए मैरिटाइम थीम रिटेल बुटीक्स सी साइड ईटरीज और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस के साथ ओपन हो चुका है तो कई लोग यू नो पहले जब जाते थे दोहा पोर्ट में तो वहां पर सिर्फ बैठने के लिए पार्किंग के बाद खूबसूरत से वेस्ट बे को एंजॉय करते हुए जो समंदर पे उनकी जो लाइट थी ना वो गिरा करती थी और उस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने के लिए जाया करते थे लेकिन एक शिकायत थी कि यार यहाँ पर अगर खाने पीने की चीज होती तो मजा आ जाता वेल सी साइड ईटरीज है हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस वहां पर ऐड कर दिए गए हैं और अब दोहा पोर्ट और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है पार्किंग के साथ थोड़ी भीड़ को भी कंट्रोल किया गया है साथ ही इसके अलावा कटारा का कलर वर्स एक्सपीरियंस और लुसेल के प्लेस वेंडोम मॉल के नए डाइनिंग वेन्यूज लोगों के लिए

बहुत ही बड़े अट्रैक्शंस हैं इस बार, तो मेजर अनाउंसमेंट्स में तो देखो यही है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सर्ट हैं और वीकेंड के अट्रैक्शंस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा लुभाने वाले हैं। ये भी बड़ी गजब की और लाजवाब है। क्या है ये अपकमिंग कॉन्सर्ट या वीकेंड का अट्रैक्शन, इसके बारे में नजर अगर डाले तो सितंबर के तीसरे हफ्ते में, यानी कि जो आने वाला हफ्ता है या ये जो हफ्ता चल रहा है, इस पर अगर नजर डाले तो कतर का म्यूजिकल सीन काफी एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि अब कतर के माहौल में यार एक गायकी है, एक सुंदरता है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ढलने लगा, हल्की हल्की हवा चलने लगी है जो कि गर्मी को थोड़ा दूर भगा रही है, उमस को थोड़ा दूर भगा रही है। और जब ये गर्मी हल्की छकती है ना, तो ये म्यूजिक है ना आपको ऑटोमेटिक सुनाई देने लगता है, चाहे वो बर्ड्स की हो, चाहे वो शहर की एक अलग रफ्तार को लेकर हो, तो कतर में भी म्यूजिक होना चाहिए। वेल, सितंबर 14 को आपने कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा का एंजॉयमेंट तो लिया ही होगा, है ना, जो नंबर वन कॉन्सर्ट प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसके बाद आने वाले 18 तारीख को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में साउंड्स ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको भी सुन सकते हैं आप, मेक्सिको भी सुन सकते हैं, वेल साउंड्स ऑफ मेक्सिको कॉन्सर्ट जो है वो होगा, जो दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने वाला है। और ये हफ्ता आने वाला जो यू नो वीकेंड है, ये भी बड़ा लाजवाब होगा। और वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए अगर बात करें तो QNCC यानी कि कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 17th को स्टैंड अप कॉमेडियन तहा दिसोकी अपना यूनिक ह्यूमर भी लेकर आ रहे हैं, जो ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करेंगे। वेल, ऐसे कई लोग हैं जिनको म्यूजिक से ज्यादा हंसना पसंद है, जिनको म्यूजिक का पता है सब कुछ, या हो सकता है म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना हो लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत ज्यादा शौक रखते हो, चार जगह जाके ह्यूमर का इस्तेमाल करना और फिर दोस्तों के साथ कहीं पर बैठ के सुकून से स्टैंड अप कॉमेडी का एंजॉयमेंट लेना और खाते पीते, तो ये लोग भी ना इस तरह से मजे कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे शख्स हैं तो 17 सितंबर आपको QNCC में तहा दिसोकी को जरूर सुनना चाहिए। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कुछ एग्जीबिशन, फैमिली के इवेंट्स क्या हैं, फूड और मॉल्स को लेकर भी यार यू नो हमारे कतर में सब जो घूम फिर रहे हैं नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो फैमिली इवेंट को लेकर हो, या फिर नए एग्जीबिशन को लेकर हो। वेल, खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए मीना डिस्ट्रिक्ट में वाटर फ्रंट पॉपअप्स, आर्टिसनल सी साइड फूड बूथ जो है वो लग गए हैं, फ्रेश सी फूड कॉन्सेप्ट वहां पर लेकर आया जा रहा है और लोकल कॉफी शॉप्स भी ओपन है। वेदर चेंज होते ही अल हज्म और सिटी सेंटर दोहा जैसे बड़े इंडोर मॉल्स में इंटरैक्टिव रिटेल स्पेसेस, फैमिली फोटो स्पॉट्स और एक्सक्लूसिव डाइनिंग डील्स भी शुरू हो गई हैं। फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए मशहरे में क्लाइमेट कंट्रोल्ड दोहा क्वेस्ट चल रहा है, जहां 30 से ज्यादा थ्रिल राइड्स और एडवांस्ड VR सिमुलेटर्स हैं। कल्चरल लवर्स के लिए भी हमारे कतर में बहुत कुछ अवेलेबल है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में उज्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन और इक्तशफ उज्बेकिस्तान एग्जीबिशन भी चल रहा है, जबकि अलहोश में तस्वीर फोटोग्राफी फेस्टिवल चल रहा है। तो आपके लिए कतर में देखने को, एहसास करने को, है ना, मजे करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप एंजॉय करते चले जाएं, आपका वक्त जो है वो मुझे लगता है कम पड़ जाएगा, कतर में इतने सारे इवेंट्स हैं। तो अगर खाना पीना है तो मीना डिस्ट्रिक्ट आपके लिए लोकेशन है, लेकिन अगर आपको म्यूजियम का या इस्लामिक आर्ट का शौक है तो आप जाइए उज़्बेकिस्तान के हेरिटेज इन मोशन के इस खास एग्जीबिशन में। और उसके अलावा अगर आप यू नो मुशरिब में क्लाइमेट कंट्रोल दोहा क्वेस्ट चल रहा है जो उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो भी आपके लिए चीजें अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल हर एक जगह पे हर शख्स या हर तरह के इवेंट को चाहने वाले लोगों के लिए सब कुछ चल रहा है। एंड देन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मैचेस के बारे में या सीजनल एक्सपीरियंस के बारे में, जिनको ना कॉमेडी पसंद है, ना यू नो म्यूजिक पसंद है, ना ही मॉल में जाने का मन कर रहा है, लेकिन एक थ्रिलिंग मैच देखने का मन कर रहा है, तो उनके लिए है स्पोर्ट्स के अलग अलग मैचेस जो हमारे कतर में हो रहे हैं, कतर के माहौल को और भी ज्यादा लाजवाब और रंगीन बना रहे दोस्त। वेल, स्पोर्ट्स लवर के लिए है इस महीने बहुत कुछ। खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में क्यू टर्मिनल्स कतर क्लासिक स्क्वाश टूर्नामेंट हो रहा है, और जिनको स्क्वाश का पता है उनको पता है भाई, वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े फैन है स्क्वाश के। मैं तो ये भी देख रहा हूँ अगर पैडल टूर्नामेंट भी होगा ना तो मैं भी ऐसे टूर्नामेंट में जरूर जाऊंगा, क्योंकि पैडल तो यहाँ पर बहुत जगह होते हैं, लेकिन पैडल इकलौता ऐसा मुझे

टूर्नामेंट या कहें एक लौता ऐसा खेल लगता है जिस खेल को खेलते हुए ना आपका वजन भी कम होता है, आपको मजा भी आ रहा होता है, आप बहुत ज्यादा थक भी नहीं रहे होते क्योंकि ये सब इंडोर वाला है, आपको दूर दौड़ना भी नहीं पड़ता है ना। तो आपने वही छोटे से स्पेस में खेला, आपको मजा भी आया, खूब दो लोग तीन लोग का गेम है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पैसे भी ज्यादा लग नहीं रहे, भाई मस्त गेम है। लेकिन अभी फिलहाल हम क्यू टर्मिनल्स कतर क्लासिक टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वॉश टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां वर्ल्ड क्लास स्क्वॉश देखने को आपको मिलेगा। डोमेस्टिक फुटबॉल की अगर बात करें तो सितंबर 10 को अल अहलिया स्पोर्ट्स क्लब और अलसद ने ये जो मैच खेला बड़ा ही लाजवाब रहा, कितनी भीड़ थी भाई साहब। आप स्टेडियम से अगर आ रहे हो, मतलब स्टेडियम की तरफ से आ रहे हो, तो आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा यार निकलने का। वेल, अब बात कर लेते हैं कुछ अलग एक्सपीरियंस की, सीजनल एक्सपीरियंस की। तो ये है आउटडोर एडवेंचर्स, और ये परफेक्ट टाइम है आउटडोर के एडवेंचर्स जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जहां लोग दोहा कॉर्निश पर ट्रेडिशनल अरेबिक धाव क्रूज के जरिए स्काईलाइन का मजा ले सकते हैं। अगर आप कतर में नए हैं तो एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है वो है दोहा कॉर्निश पर ट्रेडिशनल अरेबिक धाव पे बैठ के उसका मजा लेना। आप स्काईलाइन देखेंगे, एक तो वो दूर से वैसे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप समंदर पे धाव पे बैठते हैं और वो थोड़ा दूर जाती है, हल्का म्यूजिक हो रहा होता, भाई साहब वो जो मजा है ना, वो जो फील है, वो आप लेकर जाएंगे अपने शहर और आपको दोबारा यहाँ कतर आने का दिल करेगा। आपको ना एकदम फील आ गया ना कि आप बहुत ही बड़ी जगह पे हैं, तो बताइए, वैसे तो आप हैं बड़ी जगह पे ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो अरेबिक फील लेने के लिए ये सबसे स्पेशल जगह दोहा कॉर्निश का अरेबिक धाव का मजा लेना। वेल, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर डेजर्ट हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ऑथेंटिक बिदाओ फैल्कन ट्रेनिंग और कैमल ट्रैक एक्सपीरियंस भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग ऑपरेटर्स इस तरह की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एक आसान तरीका यह है कि फैल्कन की ट्रेनिंग और हंटिंग के बारे में सुपाकिक के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ भी बहुत तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अगर आप उस तरफ रुख कर रहे हैं, सुक वाकिफ की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल में ज़रूर जाइएगा, उस सुक वाकिफ के जो लोकेशन है, स्टोर है फैल्कन की, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा सुक वाकिफ में भी आपको सबसे जो लाजवाब जो जगह है मुझे लगती है वो है बर्ड मार्केट, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारे बर्ड के खाने पीने तो मिल ही जाते हैं और बड़े प्यारे प्यारे बर्ड भी मिल जाते हैं, मकाऊ भी आपको देखने को मिलेगा। वेल, अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के कुछ अपडेट्स के बारे में जो कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन भी करते हैं। कतर अपनी सर्कुलर इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक पर धीरे धीरे दोस्तों ला रही है, जिसका टारगेट 2030 तक 35% इंडस्ट्रियल फैक्ट्री

0: के पब्लिक हेल्थ और एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं। और इसी के साथ एडुकेशन में कतर क्या कुछ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और स्टार्टअप इकोसिस्टम, उस पर भी अगर नजर डालें तो एकेडमिक ईयर 2026-27 के स्टार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ने नया करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है जो AI, डेटा साइंस और लाइफ स्किल्स पर फोकस करता है। कैंपसेस और ट्रांजिट के लिए होदोरी पाम रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए नए स्टेम स्कूल्स खोले गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 3000 इको फ्रेंडली पब्लिक स्कूल बसेस चलाई गई हैं, जिसमें 122 बसेस डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कस्टम इंजीनियर्ड हैं। इसके अलावा QNCC में होने वाला ऑटोनोमस ई मोबिलिटी फोरम नए ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क को रिवील करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम में QSTP और कतर फ्री जोन अथॉरिटी के सपोर्ट से साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिक एनालिटिक्स और स्मार्ट वाटर मीटरिंग पर काम करने वाले स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि SMEs को काफी बूस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का कतर 2026। फिलहाल आपसे इजाजत लूं उससे पहले आपको बता दे कि आज हमने क्या कुछ बात करी अगर आपने लेट ट्यून इन किया है। सबसे पहले हमने बात करी कतर के मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में, न्यू ओपनिंग्स के बारे में, जैसे कि कतर म्यूजियम ने इंटरनेशनल आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए नए 5 साल फ्रेमवर्क ऑफिशियली साइन कर दिया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर कतर का नाम ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में काफी उम्मीद से ऊपर आ रहा है। साथ ही ओल्ड दोहा पोर्ट की तरफ अगर आप अभी तक जाते थे तो अब यहां पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मीना डिस्ट्रिक्ट नए मैरिटाइम थीम्ड रिटेल बुटीक्स, सी साइड ईटरीज और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस के साथ ओपन हो चुका है। एंड देन कटारा का कलर वर्स एक्सपीरियंस और लुसेल के प्लेस वेंडोम मॉल में भी नए डाइनिंग वेन्यूज आ गए। उसके अलावा अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे में अगर हम देखें तो 18 तारीख को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में साउंड्स ऑफ मेहको कॉन्सर्ट होगा, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और उससे पहले 17 सितंबर को स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं ताहा दिसोकी, उसका भी आप एंजॉयमेंट लुत्फ उठा सकते हैं। उसके अलावा जिनको बहुत ही ज्यादा खेल का शौक है तो स्क्वॉश कंपटीशन चल रहा है क्यू टर्मिनल कतर क्लासिक 2026 जो 12 सितंबर से शुरू हो चुका है और 18 सितंबर तक खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में जारी रहेगा। बाकी अगर आपको इसके टिकट्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, या तो आप वहां पर लोकेटेड बूथ यानी कि खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स के बूथ से ले सकते हैं या फिर Tiki2 की वेबसाइट से भी, प्लेटफॉर्म से भी आप टिकट ले सकते हैं। वेल ये जो खास या कहें बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है, इसमें जो प्राइज मनी है भाई साहब वो $2,42,000 है मेंस के लिए और विमेंस के लिए भी सेम अमाउंट है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। इसी के साथ जो हमने बात करी सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के बारे में, उम्मीद है वो तो आप सबने जान ही और सुन ही लिया होगा। वेल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कतर 2026 के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: समझ निकला एक आम फहम मगर गहरी अरबी कहावत है, बार नफ्स मा यसीह, जो खुद को मारता है वो चीखता नहीं। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई शख्स अपनी ही गलती या कोताही की वजह से नुकसान उठा ले और फिर शिकायत या फरियाद करे, गोया वो अपनी तकलीफ का खुद जिम्मेदार है। अरब इस कहावत को तंजिया अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि जो नुकसान खुद अपने हाथों से करे वो दूसरों को इल्ज़ाम देने का हक नहीं रखता। ये एक अमली और नफसियाती सबक देती है कि इंसान अपनी गलतियों के नतायज से नहीं बच सकता, और अकलमंदी यही है कि आदमी अपनी कमजोरी या कोताही पर शोर मचाने के बजाय उससे सबक सीखे। हमारे माशरे में भी इस मफहूम पर कई मुख्तलिफ कहावतें मौजूद हैं, जैसा कि कही जाती है, बनी बनाई मुसीबत पर शोर क्यों, मजीद कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज की कहावत हमें ये सिखाती है दोस्तों कि जिंदगी में अगर नुकसान या तकलीफ खुद अपनी गलती से हो तो चीखने के बजाय सोचना और सबक लेना बेहतर है, क्योंकि सादा सा उसूल यही है, बार नफ्स मा यसीह, जो खुद को मारता है वो चीखता नहीं।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
0: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: से कुछ ना कुछ झूठ मिलाकर वो आपसे बात करेगा, और दूसरी उसकी निशानी ये है कि जब वो वादा करे कोई, यानी जब वो कोई वादा करे आपसे किसी का, किसी काम के करने का या किसी काम के ना करने का, तो वादा खिलाफी करता हो। और तीसरी निशानी है कि वही अचुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें वो खयानत करे। तो ये मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। सही बुखारी में ये हदीस मनकूल है, और एक दूसरी हदीस है, दूसरी सही रिवायत है, उसमें चार खसलतें बयान की गई हैं कि जिनमें अमानत में खयानत, बात में झूठ, अहद में गद्दारी और झगड़े के वक्त बदजुबानी, ये तमाम चीज़ें शामिल है। यानी चार निशानियां उस हदीस में बयान की गई हैं, वो भी बुखारी की रिवायत है। यहाँ पर हमें इस हदीस में एक बात बहुत अहम समझने की है, वो कि इन हदीस में निफाक की अलामत से मुराद ये है कि ये खसलतें मुनाफिकाना किरदार की निशानियाँ हैं। यानी किसी मुसलमान में कोई एक बुरी खसलत अगर पाई जाए तो ये नहीं कि उसे हम फौरन मुनाफिक कहने लग जाए, नहीं, ये चीज़ नहीं है। मुनाफिकाना किरदार की निशानियाँ बताई गई हैं, मुनाफिक की निशानियाँ नहीं बताई गई हैं। जिस शख्स के अंदर ये खसलत और सिफत है, उसे चाहिए कि वो अपने अंदर मौजूद इस बुरी आदत को ख़त्म करे और बहुत सारी अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करे। अब इसके बाद सामीन, झूठ पर अगर हम बात करना चाहें, झूठ है, फिर कारोबार में सिद्क व अमानत का क्या किरदार होता है, और आज के दौर से अगर हम मुंसलिक करें इस चीज़ को, तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर सब लोग एक्टिव हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, इसलिए कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया और झूठ, इन दोनों में क्या वो चीज़ें हैं, क्या मुनासबत है, और इससे हम किस तरह बचें, क्या चीज़ें हैं जो झूठ में शुमार होती हैं, और आज के वक्त का तकाजा, आज के हालात का तकाजा भी यही है, इसलिए उस पर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बहरहाल झूठ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो झूठ के मुतालिक एक ये बात आती है कि बहुत सारे तरीके होते हैं झूठ बोलने के। कुछ झूठ हम मामूली हैं, कुछ झूठ बड़े होते हैं। बहुत सारे झूठ को हम मामूली समझते हैं, बहुत सारे झूठ को हम बड़ा समझते हैं। सामीन, अगर झूठ की बात हमने की है आपके सामने, हमने झूठ के बारे में और खयानत के बारे में ये चीज़ समझाने के लिए एक हदीस हमने आपसे, आपके सामने पेश की है। झूठ की बहुत सी सूरतें हैं, कुछ ऐसी सूरत भी है जिसे उमूमन आजकल की ज़िंदगी में लोग मामूली समझते हों, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह हो। इस ताल्लुक़ से हम शेख साहब से सवाल करना चाहेंगे कि शेख साहब, गुज़श्ता हफ़्ते, जैसा कि बहुत देर से तफसीलात बयान की जा रही हैं, गुज़श्ता हफ़्ते सिद्क़ व अमानत पर बात की थी, और इस हफ़्ते किस्ब व खयानत पर बात चल रही है फ़िलहाल, और उस ताल्लुक़ से झूठ और खयानत पर आई है। तो झूठ के ताल्लुक से ये एक सवाल बनता है कि क्या इस्लाम में झूठ की भी कोई ऐसी सूरत है जिसे लोग बहुत मामूली समझते हों लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह हो। यानी लोग तो बड़ा हल्का समझते हों लेकिन वो हकीकत में बहुत बड़ा गुनाह हो।
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد جی جیسا کہ ہمارے شیخ صاحب نے سوال کیا جھوٹ کے تعلق سے کہ کیا جھوٹ لوگ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے کیا تو بالکل اسلام میں جھوٹ کی ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں مذاق یا مصلحت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ وہ شرعاً جھوٹ میں داخل ہوتا ہے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں کیونکہ جھوٹ بالکلیہ حرام ہے جھوٹ بالکلیہ حرام ہے کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے البتہ بعض حالات میں توریہ کرنے کی گنجائش ہے توریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا جملہ بولا جائے بالکل صراحت کے ساتھ نہ بولا جائے بلکہ ایسا جملہ بولا جائے

0: पाबंदी नहीं है उस चीज पे।
1: यानी एक जगह पाबंदी, एक जगह पाबंदी नहीं, लेकिन आप उससे कमा कर आप पैसा भेज रहे हैं घर अपने, मिसाल के तौर पर, तो क्या घर वालों के लिए भी वो चीज़ हराम होगी, ये आप मालूम करना चाह रहे हैं?
0: जी जी बिल्कुल,
1: इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अगर वक्त बहुत कम है, हम अगर इजाज़त दें तो हम अगले हफ्ते इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बारकअल्लाह फ़ीकुम, बारकअल्लाह। सामीन, सवालात का सिलसिला तो हम ले सकते हैं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, एक और कॉल आ रही है भाई, आप अगले हफ्ते कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। वक्त बहुत, यानी बहुत कुछ सेकंड बाकी हैं और हम कॉल नहीं ले सकते, माजरत करते हैं। तो लिहाजा हमें सच्ची ज़ुबान पाकिज़ादी अल्लाह ताला अता करें, और हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी उसवे मुबारक है, सच्ची मोहब्बत उनसे दे और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों और माशरे में सिद्क व अमानत को आम फरमाए, हमारे अखलाक व किरदार को कुरान व सुन्नत के मुताबिक सवार दे। तो सामीन, आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा भी आपके सामने आ गया है, और इंशाल्लाह अगर हम चाहें तो अगले हफ्ते भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सिद्क़ व अमानत का क्या किरदार है, इस पर हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: जॉन के बड़े भाई को भारत में छोड़ी गई जायदाद के बदले गार्डन ईस्ट कराची में 2700 गज की एक कोठी क्लेम में मिल गई। सारा खानदान अब यहीं रहने लगा। जॉन भी यहीं रहते थे और अपने कमरे को हुजरा करते थे। जॉन लिखते हैं, मेरे कमरे का क्या बयान कि यहां खून थूका गया शरारत। इसी दौर में जॉन की मुलाकात जायदा हिना से हुई। वो इन दिनों पढ़ाई कर रही थी। जॉन उनसे बेहद मुतासिर थे और दोनों की मुलाकात बढ़ती गई और अंजाम शादी 1970 में। जायदा जॉन से 15 साल छोटी थी। खानदान पूरा खिलाफ था पर जॉन ने कब किसी की परवाह की थी। तीन बच्चे हुए और शुरुआती साल बेहद खूबसूरत गए पर फिर रिश्ते में दरार पड़ती गई और गहरी होती गई। फर्क जो उम्र का था अब वो मिजाज में दिखने लगा था। जॉन जायदा को घरेलू खातून देखना चाहते थे और जायदा उन्हें एक जिम्मेदार शौहर और बाप।
1: लेकिन कसूरवार लोग जॉन को ही ठहराते थे। वो उम्दा शायर तो थे पर घर की जिम्मेदारी उनके बस का रोग ना था। उनके बच्चे भी उन्हें कसूरवार ठहराते आए हैं। इस तन्हाई ने कयामत बरपाई और जॉन ने दुनिया से ताल्लुक खत्म कर लिए और मुशायरे उनके बिना भी तन्हा हो गए। फिर उनके एक दोस्त सलीम जाफरी के कहने पे मुशायरे में जाना जॉन ने फिर शुरू किया। जॉन एक अलग अंदाज में मुशायरों में आते थे और बाल झटकाकर, गर्दन घुमाकर, बाल अलग तरह से पीछे करते और हाथों से अदायगी दिखाकर शेर पढ़ा करते थे और उनके शेर भी तीखे होते गए जो दिल में उतर जाते थे। सजाने की तमन्ना है तुम्हें? मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। हैरत ये थी, जॉन पर अभी तक कुछ भी लिखा नहीं गया था। पर अब जॉन ने अपने वालिद शफीक हसन एलिया से वादा किया था कि वो अपने बाबा की तमाम किताबें छपवाएंगे और ऐसा ना करने की वजह से वो शर्मिंदा थे और अपनी किताबें लिखवाने से इसलिए भी कुरेज करते थे। पर एक किताब उनके दोस्तों के कहने पे छपी, नाम शायद, जो हाथों हाथ बिकी। इसके बाद यानी गुमान गोया लेकिन उनके इंतकाल के बाद छपी। जॉन एलिया ने जो लिखा वो सब चीख चीख के बताते हैं कि किसके कलम से लिखा गया है। यारों कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे।
2: मजे की बात है, जॉन मीर तकी मीर के अलावा किसी को उर्दू शायर मानते ही नहीं थे। कहते हैं शायर बस दो हैं, मीर तकी और मीर जॉन, बाकी जो हैं वो शामो सहर खैरियत से हैं। जॉन को भारत जाने का मौका मिला तो अमरोहा जाकर मिट्टी को चूमा करते थे। फिर बाद में जॉन को अमेरिका और कनाडा जाने का मौका मिला 2 महीने के लिए। वहां लंबे ओवरकोट और बालों की वजह से खातून समझा गया पर बाद में पता चला वो कोट खवातीन ही का था। अपनी जात और लिबास से बेपरवाह जॉन को सिर्फ अपने बच्चों से दूरी सताती थी और इसी गम को वो पीते रहे। जॉन अपने बेटे जरियून से बेहद मोहब्बत करते थे। लंबी दूरी के बाद जब बेटे से मिले तो उसने पहचान कर भी बेरुखी दिखाई। जॉन पूरी रात रोए और फिर लिखा,
0: नहीं मालूम जरियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी, वो किन ख्वाबों से जाने आशना ना आशना होगी। तुम्हारे दिल की इस दुनिया से कैसे सिलसिले होंगे, तुम्हें कैसे गुमान होंगे, तुम्हें कैसे गिले होंगे। तुम्हारी सुबह जाने किन ख्वाबों से नहाती हो, तुम्हारी शाम जाने किन मलालों से निपटती हो। सेहत कमजोर होती रही और आखिर में जॉन एलिया अपने भतीजे अल्लामा करार हुसैन नकवी के घर मुकीम हो गए। 8 नवंबर 2002 को उर्दू का ये रोशन सितारा गुरूब हो गया। उबैदुल्ला अलीम ने क्या खूब लिखा है,
1: यार हमारा एलिया हमसे उठा लिया गया, बैठे अब अपनी जात एलिया एलिया कर।
3: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर। 107 पर
2: महफिले शायरी में एक दफा फिर आप लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। जॉन एलिया के बारे में बहुत कुछ सुना और अब हम बढ़ते हैं हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपस में कुछ शेर व शायरी का मुकाबला करते हैं, एक दूसरे के जौक को थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कबीर से।
0: आज नंबर मेरा है सबसे पहले, तो शुरुआत करते हैं।

0: पिछली बार मेरा था।
1: हाँ देखो ऐसे ही हम बांटते रहेंगे और अगला फिर मैं विश आपके ऊपर आने वाला, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। खैर चलिए शुरू करते हैं। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। तो या आ गया है भाई, या किसकी तरफ आया?
0: या महविश की तरफ आया।
1: अच्छा या आपकी तरफ आया, महविश देख ले।
2: सही तो या से, यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का, यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे।
0: हाय
1: ये बहुतों का फेवरेट शेर है तो इसलिए
0: तो आखिर में क्या बना, ये बना
2: ये।
0: तो ये से जॉन एलिया का मशहूर शेरों में से एक शेर ये भी है।
2: सही।
0: ये वार कर गया है पहलू से कौन मुझ पर,
2: आहा
0: ये वार कर गया है पहलू से कौन मुझ पर,
2: आहा
0: था मैं ही दाएं बाएं और मैं ही दरमियां था।
2: क्या बात,
1: क्या बात है,
2: क्या बात है जॉन एलिया की।
0: तो अब अलिफ से कबीर शुरू करेंगे।
1: ओके तो फिर मेरा नंबर आया अलिफ से। सो ये जो है ना, ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसका असर बहुत लोगों पे आने वाला है, मतलब अच्छा। इसका असर छोड़ा जाएगा। जिनको ये शेर पहले से पता है उनको बहुत सारी चीजें याद आने वाली है, जिनको नहीं पता है वो इसके बाद बदल जाएंगे।
2: सही सही। तो
0: थोड़ा दिल टूटे आशिकों के लिए है क्या?
1: नहीं मतलब वैसा है भी और नहीं भी, समझ नहीं आया। तो दोनों ही कॉन्नोटेशंस भी सिचुएशन पे रखा जा सकता है।
2: अब तजस्सुस बढ़ चुका है, अब आप सुना दीजिए,
0: इरशाद फरमाइए।
1: ठीक है फिर। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, जो ही दरवाजा खोला उसकी खुशबू
2: आई।
1: कहा था आपसे तो ये आया है आप पे महविश,
2: ये आया
1: है। हाँ ये आया है आप पे। और इस पे ना कुछ ऐसा होना चाहिए महविश, मतलब जैसे कंपटीशन है ना, आपको ऑलरेडी पता है, तो उसे कंपटीशन ना हो, ऐसा पढ़ दें कि दुनिया हिल जाए पूरी।
0: मेरे दिमाग में वो शेर आ गया, अगर आपने वो पढ़ लिया तो मैं आपको गले लगाऊंगी।
1: चलिए फिर देखते हैं क्या होता है, महविश पढ़िए।
2: चलिए जी, तो फिर ये से एक शेर आप लोगों की नजर। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या।
0: अब आपको गले लगाना फर्ज हो गया है।
1: ये जो है ना, ये जो हमने कहा भी था जॉन एलिया के बारे में बात करते हुए, बाल झटक के और वो हाथों से, वो
2: बिल्कुल जॉन एलिया का एक अंदाज जो मुनफरिद है ना, मतलब हाँ। उनकी सादगी में कहे, बहुत ही रवानी में जुमले जो वो कह देते हैं, वो फिर जो असर छोड़ते हैं ना,
1: क्या ही तस्वीर बन गई नजरों के सामने।
2: बिल्कुल।
1: तो अभी क्या बना भाई, अलिफ से ये फिर से मुझ पर नहीं, आपकी बारी है ना, मैं आपकी बारी बीच में स्किप करने वाला था।
2: शेर उबल उबल के आ रहे हैं कभी क्या
0: तो अलिफ से मेरे ऊपर आया है। तो कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे या नॉर्मल सुनना चाहेंगे?
1: नॉर्मल तो है ही नहीं, कुछ
2: बेहतरीन सुनना चाहेंगे।
0: बेहतरीन सुनना चाहेंगे, ठीक है। ये मेरे पसंदीदा अशार में से एक अशार है कि इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने।
2: आए हाए।
1: ये कितनी मर्तबा लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाया है ये उतना मशहूर शेर है
0: तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है कि अगर जैसे कि हमें कोई कुरेदना चाहे और हम चुप बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी कोई पुश करे चला जा रहा है तो उसके ऊपर ये लागू होता है। तो पर्सनल लाइफ में ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो बताइएगा जरूर कि ये किसने किसने इसको कनेक्ट किया इस शेर से।
1: हाँ ये ईगो नहीं है लेकिन ईगो के बिल्कुल बॉर्डर पर है।
0: तो ये से अब कबीर सुनाएंगे कुछ।
1: सब ये से आया है, देखिए तो आप जितना इतना टफ कंपटीशन दे रहे हैं तो मैं भी एक ऐसा सुनाने वाला हूँ जो लोगों ने इसको भी बहुत पोस्ट पे और कहाँ कहाँ स्टोरीज में हर किसी के लिए डेडिकेशन दिया है, तो जरा गौर फरमाइए। यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमान में क्या।
2: हाय हाय हाय,
0: ये गजब पसंदीदा शेरों में से।
2: क्या बात है, मतलब एक से बढ़कर एक शेर, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, तो फिर मतलब अब आपने
1: अलिफ आ गया,
2: अलिफ आ गया है, फिर से अलिफ आ गया है। अलिफ और ये जब भी बैतबाजी करते हैं तो ये पलट पलट कर आते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन चले खैर। और तो क्या था बेचने के लिए, और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं।
1: आई डोनेशन, आई डोनेशन। तो अब बारी है सीम की, आपके हिस्से जो है कुछ अलग आया इस बार, ये अलिफ छोड़ के।

0: ओह नून आया है
1: हाँ जी नून
0: नून से तो मेरे ख्याल में कुछ आ नहीं रहा है लेट मी थिंक वंस अगेन थोड़ी सी मदद करेंगे क्या आप लोग
2: नहीं कोई मदद नहीं की जाएगी देखिए इसमें हमारे रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं
0: अच्छा तो एक आया है ख्याल में सुनाती हूँ आपको नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम
3: या अल्लाह
2: सीधी बात
3: ये ना मेरे दिल को आवाज दी है मतलब नहीं दिल की आवाज को आपने जो है ना दोहराया है
0: हाँ, अशार में उसको मैंने तब्दील कर दिया
3: exactly,
0: जॉन एलिया के अशार को
3: फिर दुनिया की परवाह क्यों करें
2: हाँ यही ये जॉन के एटीट्यूड को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है तो हमें काम करते देखो बैतबाजी तो हम हमेशा करते ही आए और करेंगे भी आने वाले
3: तीन राउंड्स हो गए और तीन में ही सब लोगों ने बहुत काम अच्छे मयारी और जबरदस्त शेर सुनाए
0: कंप्लीट होमवर्क करके आते हैं
2: कंप्लीट होमवर्क है तो अभी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पसंदीदा जो अशआर हैं वो जरा आगे रखते हैं उसमें क्या है लोग भी शामिल हो जाएंगे जो लोगों को पसंद हो सकता है कि उनको लगे हाँ ये मेरे दिल की आवाज है तो ठीक है शुरू करें फिर
0: ठीक है
2: आप इसे शुरू करते हैं फिर
0: ठीक है मुझसे ही शुरू कर दीजिए तो मुझसे ही शुरू करते हैं मेरा पसंदीदा जो शेर है जॉन एलिया का वो है कितनी दिलकश हो तुम कितना दिलजू हूँ मैं कितनी दिलकश हो तुम कितना दिलजू हूँ मैं क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे
3: आए, आए।
2: भाई यही तो बात है
3: क्या बात है
2: क्या
3: कैसे
2: बात है?
3: कैसे चेहरे खाक में मिल गए
0: अब मैं जानना चाहूंगी कबीर से कि हाँ। उनका पसंदीदा शेर कौन सा है जॉन एलिया का
2: देखिए लंबे बाल तो रख लिए मैंने और झटक के बस बोलना बाकी है
3: थोड़ी सी डाइटिंग की और जरूरत है
2: ये नहीं हो पाएगी देखिए मैं आज के दौर का जॉन बनना चाहूंगा
3: आज के दौर का सेहतमंद जॉन
2: तो देखिए अपना एक पसंदीदा जो मैं सुनाना चाहूंगा ये इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हमारे पर्सपेक्टिव से मतलब जैसे होता है ना कि बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं शेर के तो ये बड़ा ही वैसा है जो मेल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है
3: अच्छा
2: तो इसलिए इसमें ज्यादा मजा आएगा लोगों सुनने में क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं
3: ज्यादातर हमारे यहाँ भी मेल ऑडियंस है
2: हाँ तो इसलिए मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ
0: इतना क्यूरियस कर दिया आप जल्दी से सुना दीजिए
2: ठीक है कितने ऐश से रहते होंगे कितना इतराते होंगे कितने ऐश से रहते होंगे कितना इतराते होंगे जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे
3: कबीर कब से कौन सी क्लास से पढ़ रहे थे
2: बस ये मत पूछिए ये राज भी मेरे साथ ही जाएगा
3: सही
0: तो अब महविज से जानते हैं कि उनका फेवरेट शेर कौन सा है
3: अच्छा ये जो है ना जो अब शेर मैं सुनाने जा रही हूँ अभी जैसे कबीर ने कहा कि मैं मेल पर्सपेक्टिव से सुना रहा हूँ अभी जो ये वाला शेर है ना ये एक तरह से ख्वातीन की नेचर को जाहिर करता है
0: तो बराबरी हो गई
3: हाँ बराबरी हो गई क्योंकि ख्वातीन का एक जो है ना मामला वो क्या होता है पहले चलें शेर सुन लेते हैं फिर बताती हूँ उसके बारे में मुझको आदत है रूठ जाने की मुझको आदत है रूठ जाने की आप मुझको मना लिया कीजिए
0: सही बात है बिल्कुल सही
3: मतलब ये खास तौर पे अगर देखा जाए ना ख्वातीन और वो भी अगर बीवियां हो तो वो कभी नहीं मनाती
2: बैतबाजी हो गई बताए
0: कभी
3: रूठती है लेकिन मनाती नहीं है
2: बिल्कुल अग्री करता हूँ दिस इज परफेक्शन और ये बहुत ही बढ़िया क्लाइमेक्स रहा है इस एपिसोड का बाकी आपके पसंदीदा जो आशार होंगे कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो व्हाट्सएप हमारा 666-2107 है
3: फीडबैक भी आप हमें जरूर दीजिएगा @FM107 कतर और हम जरूर जानना चाहेंगे आपके पसंदीदा शायर आपके पसंदीदा शेर वो हमसे शेयर कीजिए हमें बताइए आगे हम कौन से शायर लेकर आए और अगर आप अपने कोई पसंदीदा शेर लिखवाना चाहें हमारे बैतबाजी के लिए तो वो भी हमें भेज सकते हैं
0: और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं
3: बिल्कुल वो जरूर हम शामिल
0: हम सुनना चाहेंगे तो आज का एपिसोड तो हमने जॉन एलिया पे कर लिया है ठीक है तो अगले वाले के लिए आप लोग गेस करते रहिए कि हम अगले शायर किन को लेने वाले हैं सीम कबीर और महविश के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए शायर के साथ में अल्लाह हाफिज टेक केयर
3: अल्लाह हाफिज
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
5: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूं इस हफ्ते का टॉप 10 काउंटडाउन। तो क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप? पूरे हफ्ते भर क्या क्या किया? आई वॉन्ट ऑल द खबर। हाँ, सो 666-22-107 666-22-107 पर आप बेशक अपने नाम के साथ अपनी ए फॉर अमिता को मैसेज कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे एक एक करके वो कौन से हिट सॉन्ग्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं और आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनने के लिए तड़प रहे हैं। आय हाय हाय, चलिए तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो टॉप 10। और अभी हम सुनेंगे कि इस हफ्ते की न्यू एंट्रीज कौन कौन सी है।

0: नई एंट्रीज ना एकदम दिल को छू रही है, लेकिन ये पूरी पूरी आप सुनेंगे कुछ ही देर में, और ये भी जानेंगे कि इस हफ्ते ये गाने हमारे टॉप 10 की कौन से नंबर की पोजीशन पर है कि नहीं। तो अभी क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ ना, 666-22-107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, बता सकते हैं कि अमिता हमारे हिसाब से ना ये वाला जो ट्रेंडिंग गाना है ये भी आप अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर दें, हम इसको वोट करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसे कंसिडर करेंगे और हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा उसे जरूर बनाएंगे, है कि नहीं। और अभी आगे बढ़ते हैं हम गाना नंबर 10 की तरफ, विच इज अ ब्रांड न्यू एंट्री इस हफ्ते की। वाइब फिल्म का ये गाना है एंड द सॉन्ग इज ऐसी मेरी वाइब, जिसे गाया है खिलाड़ी इरफाना कंफ्यूजन ने, कंपोज किया है कनिष्का पाल ने, लिखा है शुभम सोपान खिलाड़ी इरफाना हमीद ने। एंड सच में इस गाने को मतलब जब आप सुनते हैं ना, इसका वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कुछ अलग ही है। मतलब आमतौर पर जो हमें परफॉर्मेंसेज वाले गाने सुनने में मिलते हैं या क्लब्स वगैरह में सुनने को मिलते हैं, ये गाना टोटली डिफरेंट है। इट ब्लेंड्स हैवी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, बिल्कुल जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस करता है फास्ट पेस्ड रैप वर्सेस को, और जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, मतलब ये एक नए अंदाज का ना फिल्मी दुनिया का पॉप प्रोडक्शन है, बट कमाल का है। वेल, इसमें कुणाल के मुंह बड़े अडोरेबल से लग रहे हैं, सो डेफिनेटली यू गोना एंजॉय गाना नंबर 10। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गाना नंबर 9 और 8 पे कौन से वो गाने हैं जो धूम मचाने के लिए तैयार है। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 10।

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप एंड टॉप 10 पर सच में वाइब बड़ी कमाल की हो रही है। चलिए आगे बढ़ते गाना नंबर 9 एंड 8 की तरफ और जिसमें से एक गाना बेसिकली अ न्यू एंट्री है, तो चलिए उस न्यू एंट्री के बारे में हम बात करेंगे। बट गाना नंबर 9 कौन सा गाना है जो अपने लास्ट वीक की पोजीशन नंबर 8 से खिसक कर नंबर 9 पर आ गया है।

की खास बात क्या है कि फूल और कांटे जो ओरिजिनल फिल्म थी 90s की, जहां पर अजय देवगन एज अ यंग कॉलेज स्टूडेंट अपनी ऑनेस्ट लाइफ को बड़े प्यार से बरकरार कर रहे होते हैं और इजहार कर रहे होते हैं इस गाने को गाकर. और इस गाने में ना एक लाइन है, रे बाबा रे बाबा रे बाबा. एक्चुअली ये दो वर्ड्स है जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और हर बार जो रे बाबा आता है ना उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है. एंड दिस इज हाउ इसका जो ये रिक्रिएटेड वर्जन है उसमें भी कुछ ऐसा ही फील होता है. तो गाना नंबर 9, तुमसे मिलने को दिल करता है, हम इंजॉय करेंगे कुछ ही देर में.

0: का नाम है द विवान उफ समझो ना बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जुबिन नौटियाल एंड स्वर्णा तिवारी का ग्रेट कॉम्बिनेशन इट्स अ वेरी सोलफुल कॉम्बिनेशन हाँ और इस गाने को कंपोज किया है प्रोड्यूस किया है तनिष्क बागची ने लिखा है मनोज मुंतशिर ने एंड फर्स्ट टाइम ये पेयरिंग है समझो ना में मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया एंड दे बोथ आर लुकिंग सो सो अडोरेबल वैसे जो विवान मूवी है दैट्स प्योरली फोकस्ड ऑन द डार्क मिस्टीरियस और वो कहते हैं ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली चीजें उसमें है पर जब ये गाना देखूं तो ऐसा लगता है कि किसी रोमांटिक फिल्म की बात हो रही है भाई देखो जो भी है गाना नंबर 8 की पोजीशन पर राज कर रहा है समझो ना तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम इंजॉय करेंगे 90s का रिक्रिएटेड वर्जन गाना नंबर 9 तुमसे मिलने को दिल करता है और उसके बाद एक ब्यूटिफुल सोलफुल मेलोडी समझो ना जो कि आपकी राहों में आएगा सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 Top 10 Number 9

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी A4 अमिता और आप सुन रहे हैं टॉप 10. वेल, इस हफ्ते के टॉप 10 में बड़े कमाल कमाल के गाने हैं और अभी तक हमने नंबर 10, 9, 8 को एंजॉय किया और अब बारी है 7 और 6 को एंजॉय करने की. तो गाना नंबर 7 पर कौन सा गाना है जो अभी इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है?

कक्कड़ का ये ब्रांड न्यू सॉन्ग जिसमें फीचर किया जा रहा है आकांक्षा चौधरी एंड योगेश रावत को. एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये गाना कई बार गाया जा चुका है लेकिन इसका एक नया वर्जन आया है और जब इसे हम देखते हैं ना तो ये पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ द पेयरिंग, यानी कि आकांक्षा एंड योगेश की पेयरिंग बहुत खूबसूरत है और सोशल मीडिया में इट वॉज लाइक अ फायर. तो बस ये गाना अब हर जगह प्ले हो रहा है वो भी फुल वॉल्यूम के साथ. तो मैं कहूंगी जनाब आप क्यों पीछे हट रहे हैं, ना पूछ दे. हम सुनने वाले हैं नेहा कक्कड़ की आवाज में जिसको लिखा है कंपोज किया है दीप क्लेयर एंड हर्ष नुसी ने, प्रोड्यूस किया है ब्राहम ने और गिटार पे है दीप नुसरत. तो यस गाना नंबर 7 थोड़ी देर में आएगा और उसके बाद आएगा गाना नंबर 6 जिसके बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि वैसे तो जब गाने बनते हैं धुनें बनती हैं तो थोड़ा अरसा लग जाता है, थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है, लेकिन ये गाना सिर्फ 20 मिनट में बन के

भी हुआ था. चलिए बताते हैं. दिस सॉन्ग इज दिल और ये न्यू एंट्री है इस हफ्ते की, जिसे गाया है अफ्यूजिक जोहा वसीम ने और इसे प्रोड्यूस किया है अली सुमरो ने, कंपोज किया है अफ्यूजिक एंड अली रजा ने और बड़ा

0: फैक्ट ये है कि इंसेप्शन ऑफ द सॉन्ग जो था वो कैसे हुआ कि प्रोड्यूसर अली सुमरो ने अपना जस्ट गिटार उठाया और एकदम से इन्होंने कुछ सोचा और बजा दिया, उसे रिकॉर्ड कर लिया एंड द सेम रिकॉर्डिंग उन्होंने रात में अफ्यूजिक को भेज दी और उन्होंने भी अपने रॉ आवाज में वोकल्स रिकॉर्ड करके इनको वापस कर दिया एंड एक्चुअली एंटायर टीम को इतना अच्छा लगा ये पर्टिकुलर म्यूजिक और फिर ये गाना कि उन्होंने एज इट इज उसको रखा, उसे ज्यादा साउंड के मामले में ट्रीट नहीं किया. एंड वो कहते हैं ना द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडिया फाइंडिंग यू बिफोर यू गो लुकिंग फॉर इट, मतलब एक आइडिया ने आपको खुद ब खुद ढूंढ लिया इससे पहले कि आप उसे तलाशते. वाह क्या बात है. सो गाना नंबर 7 and 6 आपकी राहों में आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, बस इंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 7.

0: हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं टॉप 10. मैं हूँ आपकी फॉर अमिता ऑन एफएम 107 पर, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप जरूर हमारे ये हिट गाने एंजॉय करते जा रहे हैं, है कि नहीं. वेल, आगे हम बढ़ते हैं गाना नंबर 5 और 4 की तरफ. वेल, गाना नंबर 5 आई शुड से इज अ सॉन्ग जो बारिश की भीनी भीनी खुशबू, उस बारिश की रिमझिम पर भीगना, उस सब कुछ याद दिला देता है कि नहीं. तो बरसात लगदी है, ये गाना है दर्शन रावल का, जो कि पिछले हफ्ते नंबर 5 की पोजीशन पे था. इस हफ्ते भी अपनी जगह उसने बरकरार रखी है. दर्शन रावल, सिमरन चौधरी ने इसे गाया है, कंपोज किया है दर्शन रावल ने खुद, और लिखा है यंग वीर ने.
1: चलती हवा अब तो कुछ खास लगदी है, दिल नु पल पल तेरी ही प्यास लगदी.
0: वैसे इस गाने का वीडियो भी बहुत खूबसूरत है, गाना भी बहुत खूबसूरत है, और जो भी दर्शन रावल के फैंस हैं ना, दे फील इट कि ये पर्टिकुलर गाना इस एन अपबीट कंटेम्प्रेरी पॉप और डिस्को वाइब्स के साथ है, कि इसको जब भी सुनो तो एक, वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा प्यार, वैसी वाली फीलिंग आती है. तो ज़रूर बरसात लग दी है, आप इंजॉय कर सकते हैं. देखिए, कदर में है तो अभी बरसात का स्वाद चखने तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो एहसास तो हमें मिल ही सकता है इस गाने के जरिए, है कि नहीं. चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद गाना नंबर 4 पर है गाना.
1: कहो तो अपना बनाऊं, कहो तो इश्क निभाऊं.
0: कहो तो प्रेम कीटाणु फिल्म का, जो कि लास्ट वीक नंबर 6 की पोजीशन पे था, और एक्चुअली लास्ट वीक नंबर 4 पर आवारापन 2 का वे जुनून था, बट समहाउ इस हफ्ते वो हमारी प्लेलिस्ट से बाहर हुआ और काउंटडाउन की लिस्ट में नंबर 4 पर कहो तो, जो कि नंबर 6 था लास्ट वीक, उठकर सामने आया. इस गाने को कंपोज किया है अंकुर आर पाठक ने, लिखा है सचिन उर्मतोष ने, गाया है अरमान मलिक, और कवाली थी उसे गाया है अल्तमाश फरीदी ने. आहा, वो कहते ना रिटर्न टू ओजी रूट्स, एंड अरमान मलिक को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने सोशल मीडिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर इस गाने की तारीफ नहीं उन्होंने की. उनका कहना बहुत सिंपल था कि काफी अरसे के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि, वो कहते ना, जो ओरिजिनल रोमांटिक गाना वो गाया है मैंने, एंड ये फर्स्ट उनका कोलैबोरेशन है म्यूजिक कंपोजर अंकुर आर पाठक के साथ, विच ही इज एंजॉयिंग टू हिज बेस्ट. तो चलिए हम भी एंजॉय करते हैं ये गाने. गाना नंबर 5 और 4 आपकी राहों में आ रहे हैं, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,

0: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: Qatar's most heard radio station FM 107
3: FM 107
2: Dil Se Desi
4: FM 107

हाँ जी, आप सुन रहे हैं टॉप 10 काउंटडाउन। मैं हूँ आपकी A4 अमिता FM 107 पर। और सच में ये हिटेड गाने जब सुनते हैं ना तो मूड एक अलग ही जोन में चला जाता है। और हर एक गाना जो हमारी प्लेलिस्ट में हम प्ले कर रहे हैं, आई थिंक वो हर एक फीलिंग को, हर एक मूड को कैप्चर कर रहा है। अब हम अपने काउंटडाउन शो के, टॉप 10 काउंटडाउन शो के बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं। और अब बारी है गाना नंबर 3 और 2 की। ये दोनों ही बड़े सॉलिड सॉन्ग्स हैं जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा काफी दिन से अपनी पोजीशंस के जरिए बना कर रखा और बन के रहे। तो अभी नंबर 3 पर इस तबाही टॉक्सिक फिल्म का, जो कि पिछले हफ्ते नंबर 2 की पोजीशन पे था, इस हफ्ते एक सीढ़ी नीचे आया है। इस गाने को गाया है, कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने, लिखा है राजशेखर ने। और इसकी खास बात है कि इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग, आपको पता है कितना बजट इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में लगा था? 600-700 करोड़ रुपए, मतलब इंडियन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ। एंड द म्यूजिकल अरेंजमेंट जो इसका किया गया वो ग्लोबल अफेयर था। मतलब सोचिए कि सिर्फ इंडिया के म्यूजिशियंस ही नहीं, लेकिन ग्लोबली अलग अलग म्यूजिशियंस को लाकर इस पर्टिकुलर गाने में परफॉर्म करवाया गया, ताकि ये गाना इतना सॉलिड, इतना पैशनेट और इतना वाइब वाला निकल कर आए। तो डेफिनेटली टॉक्सिक फिल्म का तबाही इज द सॉन्ग जो गाना नंबर 3 की पोजीशन पर है। एंड गाना नंबर 2 पर है वो गाना जो हर हफ्ते गाना नंबर 1 की पोजीशन पर

0: है महमूद, राघव चैतन्या, रुआ ने, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। वैसे जब ये गाना रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पे हर कोई कह रहा था कि भाई देखो प्रीतम ने ना कहीं एक इटालियन सॉन्ग से इस गाने को कॉपी किया है। अब प्रीतम ने इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन एक चीज है हमारे लिसनर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे ये गाना कॉपी हुआ या नहीं हुआ, बट ये जो गाना हमारे सामने आया माशू का, इट इज अ वाइब। मतलब इस गाने को सुनकर ना वो सिर्फ स्टाइलिश वाली वाइब और वो बैले डांस उस तरह की ही फीलिंग आती है। सो इट्स अ लवली सॉन्ग जो कि गाना नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुका है और हम इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंजॉय करेंगे गाना नंबर 3, दैट इज टॉक्सिक फिल्म का तबाही, देन माशू का एज गाना नंबर 2। और हाँ, इस हफ्ते गाना नंबर 1 कौन सा हो सकता है? एनी गेसेस गाइस? सोचिए 666-22107, 666-22107 पर सोच कर हमें मैसेज कीजिए एंड हम देखते हैं कि इस बार गाना नंबर 1 कौन सा है जो हमारे दिलों पर राज करने वाला है। स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 3।

0: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी फरमीता एंड द शो नेम इज टॉप 10. फिलहाल आज टॉप 10 काउंटडाउन का वो कौन सा गाना है जो सारे गानों का किंग बन गया है? चलो सुना देती हूँ धुन. अमाल मलिक का म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज एंड लिरिक्स रश्मि विराग के. उफ, ये आवारापन. किसी ने सोचा था कि ये हमारे टॉप 10 के चार्ट्स पर रूल करने वाला है? ओ, हर कोई इस गाने को फुल वॉल्यूम पे सुनता है और हर किसी की कहानी अलग होती है. इनफैक्ट हमारे लिसनर्स ने भी सोचा. पहले तो मुझे मैसेजेस आए माशुका के, बट समहाउ माशुका वॉज एट गाना नंबर 2. तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है आवारापन, मे बी इट्स लीडिंग. सो आवारापन 2 फिल्म का ये आवारापन इज हियर. और जितने भी लोगों ने ये गाना चूज किया और इसे वोट किया ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिल्कुल सही गेस किया है. ये गाना जब रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पे एक सैलाब आया. क्या मैसेजेस का, कि अरिजीत सिंह के लिए कहा गया कि भाई आप तो सिंगिंग छोड़ने वाले थे, आप सिंगिंग से संन्यास लेने वाले थे, देन व्हाट हैपेंड. बट आर्टिस्ट आर्टिस्ट है भाई, और आर्टिस्ट को उसके काम करने से कौन रोक सकता है. बस ये जैसे ही गाना अरिजीत सिंह को ऑफर हुआ, उन्होंने गा दिया एंड उसके बाद पूरे ग्लोबल चार्ट्स पर ये गाना हिट हो गया. एंड आई शुड से कि हर बार अरिजीत के लिए कुछ ना कुछ लकी साबित होता है. मतलब जिन्होंने अपना डेब्यू जब किया, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में पहले उनका गाना आया, फिर मोहब्बत, फिर आया तुम ही हो, और इस गाने से काफी हाइप क्रिएट हो गई कि यस, अरिजीत सिंह इज द बेस्ट. एंड नाउ ये आवारापन, मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह चाहे कुछ हो जाए, अभी इतने जल्दी सिंगिंग की दुनिया को अलविदा नहीं कह सकते एंड संन्यास नहीं ले सकते. सो यस, ये आवारापन इज द ब्यूटीफुल ट्रैक जो गाना नंबर 1 बनकर आपकी राहों में आने वाला है. तो इसे जरूर इंजॉय कीजिए. और अभी के लिए अपनी ए फॉर अमिता को दीजिए इजाजत. अंटिल नेक्स्ट वीक, टॉप 10 की प्लेलिस्ट में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां होंगी, कुछ कमाल की हिट एंट्रीज होंगी, जिसे मैं लेकर अगले हफ्ते जरूर आऊंगी. तब तक आपको क्या करना है, आपको हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है. अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ लो. और हाँ, कोई भी गाने की रिक्वेस्ट करनी है ना कि हाँ अमिता, ये गाना हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, यानी टॉप 10 का हिस्सा होना चाहिए, देन डू सजेस्ट. और अभी के लिए मैं कहूंगी कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 1.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोहा कतर में शाम के 7 बजे हैं। समाअत कीजिए फरकान शाहिद से ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर दाखला और उनके सऊदी हम मनसब की ज़ेर सदारत कतर सऊदी राबता कौंसिल के तहत कायम सिक्योरिटी व अस्करी कमेटी का चौथा इजलास दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िद हुआ। कतर ने सऊदी अरब के शहर ताइफ को हौसी ग्रुप की जानिब से निशाना बनाने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। और कतर ने गजा में इंसानी ज़रूरियात और शोबे सेहत की मुआवनत के लिए 13 लाख लीटर ईंधन की इमदाद फराहम की है। ये थी अब तक के अहम खबरों की सुर्खियाँ। समाअत कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

0: कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: दोहा वाले कबीर के साथ।
2: मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड कैफे 107 में आज जो मेहमान है भाई, ये बहुत बढ़िया आदमी है भाई। मेरे से इनकी दोस्ती कुछ साल पहले हो गई थी और हमने काफी डिस्कशन किया, हमने बहुत सारी गॉसिपिंग भी की, बहुत मजा आया। और आज की तारीख में भाई बहुत अच्छे दोस्त भी है, भाई एकदम भाई की तरह है। भाई अपना पूरा नाम पब्लिक को बता दो एक बार भाई।
3: अस्सलाम वालेकुम कबीर, मेरा नाम शेख हिदायत हुसैन है।
2: ओके, तो मेरे भाई कैसे चल रहे हो, क्या चल रहा है मामला, हाउ इज लाइफ?
3: Life is good, alhamdulillah. No complaints. Well, actually, shouldn't complain. Complain करना नहीं चाहिए. Alhamdulillah, जो भी दिया, बेहतरीन है.
2: Alhamdulillah. तो मेरे भाई, मैंने अभी recently देखा कि आपने जो है वजन कम करने की एक लड़ाई शुरू करी है, उसके बारे में जरा बताओ।
3: तो ये लड़ाई के बारे में आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। As a matter of fact, अभी मैंने recently, as recent as yesterday, मैंने अपना एक छोटा milestone celebrate किया है। Alhamdulillah, I've lost 17 kgs. I started off at 154.
2: Okay.
3: And 137 तक पहुंचा। मैं ऐसे छोटे-छोटे targets रख के, मेरा goal वैसे तो है कि to reach below 100, inshallah.
2: Inshallah.
3: तो छोटे-छोटे targets करके मैं सोचा कि हर 15 kg पे एक या दो cheat meal खाते-खाते continue करते रहूं, because जिंदगी के मजे भी तो लेने चाहिए ना भाई।
2: बिल्कुल भाई, वो नहीं छोड़ सकते ना भाई। तो ये कैसे कर रहे हो भाई, क्या छोड़ दिया, खाना ही छोड़ दिया, क्या क्या सीन है, कैसे कर रहे हो?
3: नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं छोड़ा भाई मैंने। देखो अभी मैं जिम जा रहा हूँ, रेगुलरली स्टार्ट किया है। और फिर डाइट कंट्रोल, आई एम ईटिंग अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज दैट आई नीड, प्रोटीन और अपना कार्ब्स और फैट, ये जो मैक्रोज हैं, इन सारों को वे करके एंड कितने ग्राम मुझे क्या चाहिए सस्टेनेबल मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से, बिकॉज मेरा डेस्क जॉब है। तो और उस हिसाब से हाउ मच डू आई नीड, आई ईट अराउंड लाइक 2000-2100 कैलोरीज पर डे, एंड देन एज इन व्हेन जैसे प्रोग्रेस होते रहेगा इंशाल्लाह दैट विल गेट रिड्यूस्ड और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन यू नो बल्क करना है या फिर कट करना है। तो दैट्स गोइंग ऑन।
2: यानी सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है भाई, मतलब ऐसा लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, कौन ये सब नाप नाप के खाएगा, ये दिमाग में नहीं आया कभी यार ये कैसे करूं शुरुआत में, क्योंकि लोग कहते हैं भाई चीनी भी नहीं छोड़ दो सब सेट हो जाएगा। आपने कैसे वो पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं उसको, रियलाइजेशन कैसे हुआ ये?
3: Well, actually, मेरी एक और हिस्ट्री भी है। मैं पहले 169 था, सॉरी 167 था, 167 था, दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो बिफोर आई इवन मूव टू खतर। तो 169 था एंड देन आई केम डाउन टू 67, तो आई वाज लाइक आई लॉस्ट 102-103 किलोस एट दैट टाइम। तो इट्स नॉट न्यू फॉर मी, बट इट जस्ट दैट के भाई अभी मुझे रिस्टार्ट करना है, क्योंकि भाई जब दुबला हुआ था वो तो ऑब्वियसली उस टाइम पर करना जरूरी था, क्योंकि शादी भी तो होनी थी, मोटी तो कोई लड़की देता तो एनीवेज, तो वो मैं तो उस टाइम पर वो जज्बा था। तो अभी इस बार जब बाद में जब फिर मैंने वापस आई केम बैक टू खतर, और मुझे खाने का बहुत शौक है, एंड बीइंग बोर्न एंड रेज्ड इन मिडिल ईस्ट, सऊदी में पैदा हुआ पला बड़ा, तो मुझे यहाँ के खाने बहुत पसंद, मंदी बुखारी कब्सा एंड ऑल दैट स्टफ। तो वापस आने के बाद I started eating without, you know, looking at my weight, and then फिर वैसे धीरे धीरे धीरे करके बढ़ते गया, and बहुत बढ़ गया। अब इस बार ऐसे हो गया कि भाई अब नहीं, जरूरी है, जिंदगी जीना है, सेहतमंद रहना है, और उम्र भी तो हो रही है, तो इसीलिए वापस मैंने रीस्टार्ट किया। तो अभी I started off at 154, this journey started off at 154,
2: okay,
3: and अभी 137 था मैं कल, तो कल एक चीट मील खाया, I didn't weigh myself, क्योंकि अभी शर्म आ गई क्या होगा आज, तो इसीलिए आज वे नहीं किया, बट इंशाल्लाह आई नो आई विल गेट देयर
2: इंशाल्लाह।
3: दुआ है अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह
2: इंशाल्लाह। मेरे भाई, तो ये जब शादी का जो पॉइंट आएगा उस टाइम पे कितना वजन कम करना पड़ा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा ना उस टाइम पे, नर्वसनेस होगी, कि क्या वजन था उस टाइम पे?
3: उस टाइम पर 169 था
2: भाई साहब। फिर कैसे, मतलब शादी के लिए तैयारियों में तो कुछ आया होगा ना, क्या वजन कम करना पड़ेगा भाई?
3: हाँ, तो इसीलिए तो मैं जब उस टाइम पर जब मैं इंडिया में था, तो आई यूज टू साइकिल टू द ऑफिस अबाउट लाइक 13 किलोमीटर्स वन साइड, मुझे अराउंड 50-55 मिनट लगते थे ऑफिस पहुंचने में घर पे। वहां जाने के बाद आई यूज टू चेंज माय क्लोथ्स, गेट इनटू द जिम एंड देन वर्कआउट फॉर अनदर वन आवर, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करता था। तो हम वो एक चीज अच्छी थी कि भाई ऑफिस की बिल्डिंग में ही जिम था मेरा, तो 50-55 मिनट साइकिल करके जाओ, फिर एक घंटा वही 50-55 मिनट ऑलमोस्ट वर्कआउट करो, लिफ्टिंग करो, और फिर उसके बाद तैयार होके ऑफिस में बैठो, फिर पूरा दिन भर काम खत्म करें, और फिर वापस में, यू नो, आई यूज़ टू टेक 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स टू द ऑफिस एट दैट टाइम। तो फिर रात में फिर चेंज करके

0: साइकिल पे वापस घर आओ, तो वो टाइम पे जरूरी था
1: भाई। ये तो स्ट्रगल मतलब पुराना नहीं है, मतलब आदत है स्ट्रगल की।
0: हाँ बट एक चीज मैं बोलूंगा भाई, जो लोग बड़े लोग बोलते हैं ना कि भाई उम्र नहीं रही, वो बात बिल्कुल सही है, मुझे अभी समझ में आ रही बात। बिकॉज दैट्स व्हेन आई डिड इट, एट दैट टाइम आई वाज लाइक 26-27। नाउ दैट आई एम ओल्डर देन दैट, वो साथ देना, बॉडी साथ देना, और फिर जिंदगी में जिम्मेदारियां भी आ जाती है, एंड यू नो टाइम निकालना, मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट इज रियली हार्ड
1: भाई। मेन चीज क्या है ना, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता यार, ये टाइम कैसे, मतलब इस चिड़िया को कैसे हम डीकोड करें, ये कैसे निकालते हो टाइम, बता दो पब्लिक को।
0: अच्छा तो भाई मेरा जो रूल है, जो मेरे को हेल्प किया, इज भाई डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठो जिम चले जाओ। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि शाम में जाएंगे, ऑफिस के बाद जाएंगे, कई बार ऐसे होता है कि ऑफिस में दिन भर की मेंटल स्ट्रेस, एग्जॉस्टन, और उसके बाद फिर आपका कभी ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, फिर वो सोच फिराक में आप चले गए, तो फिर शाम में वक्त निकालना मुश्किल होता। इसीलिए सुबह उठो, तैयार हो, जिम को जाओ, उसके बाद अपना सारे काम करो। दैट वे यू आर लाइक डन विथ इट, हो गया काम आपका, डन एंड डस्टेड, और आपको उस बारे में सोचना नहीं है दिन भर कि अरे वक्त निकालना है, या फिर अरे शाम में कोई मीटिंग आ गई, अरे या फिर शाम में किसी ने दोस्त ने बुला लिया, अरे कुछ हो गया। तो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए आई डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
1: अरे बहुत बढ़िया बात है आपने, ऐसे काम ना सुबह निपटा लो, शाम की टेंशन नहीं, आदमी थका आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा, तो अभी सुबह सुबह निपटा दो, बाकी मन नहीं भी करेगा तो चलेगा।
2: बिल्कुल,
1: वेरी गुड यार, तो मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई, कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है भाई पे। अच्छा भाई, यहाँ पे कतर में कितना टाइम हो गया आपको?
0: मेरे को अभी 27 आएगा, तो ऑलमोस्ट 10, सो ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए।
1: ऑलमोस्ट 9 इयर्स, ओके। छुट्टी पे जाना होता है, वापस नहीं होता है?
0: हां साल में एक बार या कभी डेढ़ साल में एक बार इंडिया जाता हूं।
1: अच्छा, तो क्या ऐसा कुछ इरादा है कि यू नो समवेयर डाउन द लाइन कुछ ऐसा कर लूं कि मैं मुल्क में जाके रह सकूं, या फिर क्या इरादा क्या है, दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है?
0: भाई ख्वाहिश तो यही रहने की है हमेशा, टू बी ऑनेस्ट, आई लव दिस कंट्री, ये बहुत दिया है इस मुल्क ने, बहुत दिया है इन टर्म्स ऑफ नो हेल्थ केयर जो है मेरे बच्चे के लिए, स्पेशली ही इज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, तो व्हेन ही वाज बोर्न एंड यू नो ही वाज ट्रांसफर्ड टू द स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ सो ब्यूटीफुली, सो वेल, माशाल्लाह। आई मीन मेरी को अगर कभी मौका मिले तो मैं कभी कतर छोड़ू ही ना, इतना पसंद है मेरे को यहां पे।
1: Which is true यार, या medical facilities तो बहुत ही कमाल की है भाई, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, आप कहीं भी घूम फिर के आ जाइए, ये चीज आपको पकड़ के रखेगी, जाने नहीं देगी, which is such a fact। इतने साल, 9 साल is a good number, मुझे भी almost मतलब 10 साल ही हो चुके हैं, and मैंने भी ये देखा है कि यहाँ पर एक चीज जो constantly आपको बांध के रखती है, which is लाइफ का सबसे बड़ा पिलर है, आपकी हेल्थ है, तो वो जब समझ जाती है तो आदमी लगता है भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना, तो ये बात तो मैं अग्री करता हूँ। आजा आजाद भाई, एक और चीज आ जाती है, वो है लाइफस्टाइल का बदल जाना, क्योंकि हम लोग कहते हैं जब आप मुल्क में होते हैं ना तो यू काइंड ऑफ ईट अ लिटिल मोर और लिटिल लेस, दोनों कंपेयर हो जाते हैं। कतर में आके आपकी सारी हैबिट, आपके थोड़े से शौकी आ जाती है, आपको लगता है मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, आपको कितना लाइफस्टाइल बदला है कतर में रहते रहते?
0: देखो यहाँ पे खतर में लाइफ स्टाइल काफी कुछ बदला, इन द सेंस दैट नो फूड स्टफ्स में, बिकॉज यहाँ पे कुजीन जितने हैं, मतलब ऑप्शन जितने हैं आपके पास, और सम यू कैन यू, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू ट्राई। मतलब जैसे मैं पहले सुशी नहीं खाता था, वंस अपॉन अ टाइम मुझे मालूम भी नहीं था, फिर बस मैंने यहाँ आके स्टार्ट किया, फिर मैंने थाई फूड क्या है, एंड देन यू नो कोरियन फूड क्या है, तो ऑप्शंस बहुत है, बट एट द सेम टाइम वो लिमिट में खाना बोल के अभी जरा दिमाग में आ रहा ये अनलिमिटेड नहीं जाना चाहिए, वरना फिर बाद में बहुत मेहनत लगती है।
1: ओके, कोई ऐसी कंट्री में खाना है जो रह गया है अभी ट्राई करना है, लेकिन अभी बस हिम्मत नहीं हो पा रही है?
0: ऐसे तो नहीं, वैसे बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन ऐसे कुछ खास ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ऑन माय बकेट लिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ खा लिया, जो जो ख्वाहिश थी वो सारे पूरे किए।
1: अरे बेहतरीन यार, खेले में खिलाड़ी हो यार, मजा ही आ गया। अच्छा तो आज से 10 साल पहले का कतर वो टोटली डिफरेंट, अभी बहुत ज्यादा अलग है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट चेंज्ड एंड व्हाट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड, क्या चीज रहती है और क्या चीज हो चुकी है?
0: चेंजेस तो बहुत आए, मैं जब आया था बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, दैट वाज प्री वर्ल्ड कप टाइम, तो यूथेल आई थिंक उस टाइम पर बन ही रहा था, जब मैं मीन इट वाज स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज, अभी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खूबसूरत डेवलप हो गया है, तो चीजें यू नो एक्सपेंशन हो रहा है शहर का, बढ़ते जा रहा है, तो दैट्स रियली नाइस, देयर इज ऑलवेज समथिंग, लाइक आई सेड अर्लियर, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, तो नो द बाउंड्रीज आर इंक्रीजिंग, बहुत सारा कुछ नया है देखने के लिए। तो चेंज करना अगर मैं चाहूँ, अगर मेरा मतलब व्हाट्स ऑन माय माइंड अगर आप ऐसे पूछे तो इट वुड बी लाइक कुछ नहीं.
1: जबरदस्त है इतना सोच के मैंने बोला कुछ नहीं सब बढ़िया है.
0: कुछ नहीं भाई कुछ नहीं बोला इसका अच्छा जबरदस्त सुकून है इधर माशाल्लाह. तो व्हाट वुड यू वांट टू चेंज आई मीन लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉल यू शुडंट कंप्लेन तो एंड यू शुडंट ऑलवेज आस्क फॉर मोर. जो दिया जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह.
1: एंड इतनी डाइवर्सिटी है इतने सारे कल्चर्स हैं कोई ऐसा कल्चर है जो माइंड में अटका. जैसे मैं आपको बताऊं मैं यहां पे आके मेरा ऐसा मैक्सिकंस की तरफ इतना वो था नहीं बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई डिसलाइक या हेटरेड कुछ भी नहीं था मतलब कुछ था ही नहीं. बट नाउ 10 साल होने के बाद मुझे लगता है यार मैक्सिकन कल्चर मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है. मुझे लगता है यार ये थोड़ा सा अपने टाइप का है मजेदार किस्म के लोग है. कोई ऐसा कल्चर लगता है आपको भी कि यार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यार ये कंट्री घूमने का है मेरे को.
0: कंट्री घूमने की ख्वाहिश तो भाई मेरी सऊदी ही रहती है हमेशा.
1: अच्छा
0: बिकॉज़ आई वाज बोर्न एंड ब्रेड देयर. वो कल्चर तो सिमिलर टू वो कतर है मतलब बिकॉज़ यू नो अरबिक नेशन है. देयर इज सो मच ओवर देयर दैट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड अपेरेंटली मेरे लिए. तो मुझे वहां जाके एंड खाने का भी वहां पे इतना जबरदस्त खाना है भाई.
1: और बाकी अपार्ट फ्रॉम द गल्फ कल्चर कुछ और बाहर का पसंद आया कोई इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने का मन हो?
0: मुझे जाना था वंस अपॉन अ टाइम हाइश थी बहुत कि समवेयर यू नो सेटल हो जाऊं वेस्ट में. बट ना अभी वो मन नहीं रहा. वो दैट वाज इफ यू आस्क द शेफ दैट 10 years अगो प्रॉब्ली ही वुड हैव सेड दैट कि भाई यूएस में बसना है या कनाडा में बसना है. बट लेकिन वो सारी चीज़ें इधर हैं जो उधर हैं. तो रियली डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लोर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट लिव हियर एंड यू नो live a very happy, pleasant and sukoon wali zindagi idhar jo already hai. jaise bolte hai na comfort zone mein aa gaya aadmi ab idhar se nikalna nahi hai to wahi wala hisab ho gaya mera.
1: ha okay to bilkul hi bhai ekdam settle ho chuke hain abhi. to mujhe aisa lagta hai ki agla sawal mera ekdam legit hai aapke liye. ambition kya hai abhi yaar shayad bhai koi aisa ambition hai jo bana hua hai back of the mind unconsciously sochte hain uske bare mein?
0: हाँ अभी मेरा करेंटली जो है कि भाई मैं थोड़ा काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ. तो मेरा गोल ये है कि भाई लोगों को इंस्पायर करूँ वेट लॉस में एट द सेम टाइम स्प्रेड हैप्पीनेस बाय यू नो आई मेक दिस फनी एंड कॉमेडी रील्स अलोंग विद माय स्पाउस. तो गोल ये है कि भाई लोगों को खुशियाँ बांटते बांटते बताऊँ कि भाई एक मोटा आदमी दुबला भी हो सकता है तो आप सब भी हो सकते हैं. आई मीन टू स्टे फिट हेल्दी एंड हैव अ गुड हैप्पी लाइफ. सो दैट्स द करंट गोल दैट आई एम वर्किंग ऑन.
1: तो ये जो गोल चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे आना और उसमें सस्टेनेंस एक दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं. सो हाउ वेल डू यू थिंक यू आर कॉन्स्टेंट ऑन इट के मैं भी कॉन्स्टेंट हूँ कभी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का ऐसा होता है कभी हार मानने का हो जाता है?
0: बहुत बार होता है.
1: ओके तो व्हाट डू यू डू लाइक हाउ डू यू कम बैक कि चलो यार नहीं कोई बात नहीं एक और बार ट्राई करते हैं.
0: तो इसके लिए वो है कि जो है ना मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके जन्नत जाएंगे ये बात बोलता हूँ मैं आपको. मतलब वो मेरे को देख के शुक्र करती है मैं उसको देख के सबर करता हूँ. तो एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करते हैं. समटाइम्स शी इज नॉट इन द मूड एंड देन आई विल बी लाइक वेल लेट्स डू दिस एंड देन समटाइम्स आई एम नॉट इन द मूड एंड शी विल बी लाइक अरे चलो ये करते हैं.
1: वेरी नाइस यार बहुत बहुत
0: सो वी पुश इट अदर. हां कभी-कभी ऐसे होता है एंड यू नो बीइंग वेरी ऑनेस्ट कभी ऐसा मूड जब रहता है ना तो वी मेक 2 or 3 वीडियोस एंड देन वी पोस्ट इट स्पेस इट आउट व्हाइल पोस्टिंग. क्योंकि एक दिन रोज जैसे मैं बोला है देखो ये शूटिंग का काम शाम में ही हो सकता तो दिन में तो यू नो सारे काम ऑफिस वगैरह जिम ये वो खत्म करके घर आते कभी कभी आपका मन नहीं रहता. यू आर स्ट्रेस्ड विद वर्क और यू आर स्ट्रेस्ड यू आर जस्ट टायर्ड यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड. तो जब बनाने का मन नहीं करता बट देन द वीडियोस दैट यू ऑलरेडी क्रिएटेड ओवर द वीकेंड और द प्रीवियस डे तो आई यूज दैट एंड आई पोस्ट इट यू नो. तो मैं ऐसे प्लान करके ऐसे चलता है हमारा.
1: क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का ताल्लुक भी किसी एज ग्रुप से ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप कॉन्स्टेंट हैं तो वो टाइम आ जाएगा जहां पे सिर्फ आपको हर रोज हिट होने की जरूरत नहीं है. आप एक मरतबा हिट हो गए ना तो आपका काम बन गया. तो वो मैं दुआ करता हूँ भाई वो दिन जल्दी आए आपके लिए बिकॉज आपके जो पॉजिटिव वाइब है वो डेफिनेटली विल वर्क इन योर फेवर एंड आई नो दिस फॉर श्योर. मैं मिला भी हूँ तो मुझे पता है कि हिदायत भाई कैसे हैं तो मुझे पूरी पूरी गारंटी है उस बात की. ये सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक.
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है चले तो कट ही जाएगा सफर तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए आइए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: दो हवाले कबीर के साथ।
1: अनुराध भाई के आजकल ये देखने में आता है कि एट अ सर्टेन एज है ना, स्पेशली हम मिलेनियल्स, हमें लगता है कि अब चेंज की ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो या कुछ भी हो। आपको भी ऐसा महसूस होता है कि यार हमने वो जो चेंज हो रहा था एक टाइम पे आके वो रुक गया कहीं पे जाके?
0: भाई वो रुक तो गया है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी देखो हम लोग वी ग्रो अप फ्रॉम दैट एज, जो रेडियो था, ट्रांजिस्टर था, रेडियो था, फिर बाद में यू नो थिंग्स हैव इवॉल्व, मोबाइल फोन नोकिया का वो जमाना था, एंड देन अभी स्मार्टफोन्स का आ गए, हम लोग वी हैव एम्ब्रेस्ड एवरीथिंग। तो आगे की चीजों को भी, अभी जैसे मेरे लिए करेंटली ये AI का ये जो चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट देन आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है, ये चल क्या रहा है, भाई ये हो क्या रहा है, ये मेरा काम कर देगा या मेरी नौकरी खा जाएगा टेस्ट। तो उस हिसाब से सीख के अपने आप को अपस्किल करते रहता है। तो यू हैव टू यू नो बी इन द गेम,
1: राइट? क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे भी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने चेंज छोड़ दिया, कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, उस टाइप का एक एटीट्यूड सा बन गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि पहले इफ यू टॉक अबाउट अर्ली 2000s या उस टाइम पे लोगों को लगता था नहीं अब ये ट्राई करते हैं, चलो कपड़ों में यू शुड ट्राई दिस फैशन ट्रेंड एज वेल। लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक इत्मीनान कहूँ कि वो क्या हुआ, पॉज है, कॉमा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसलिए सो डू यू कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स लाइक कुछ फिजिकल अपीयरेंस पे अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स लूजिंग वेट या फिर फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं इसी चीज को आजकल के?
0: फैशन ट्रेंड्स नहीं, मैं एकदम बोरिंग सा आदमी हूं। अच्छा। ये मेरी वाइफ की भी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि भाई एकदम बोरिंग सा हूं, कुछ नो आई डोंट ट्राई एनी न्यू कलर्स और आई डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ नो जो नया ट्रेंड चल रहा है। उस मामले में कुछ से दैट मैं कंफर्ट जोन में आ गया कि भाई हाँ यार सुकून में है, कपड़े कंफर्टेबल है, मुझे सुकून में है, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, कपड़ा अच्छा है, बस चलने दो। बट देन ये टेक्नोलॉजी का मेरे को है, और अभी करेंटली जो एक और नया अभी भूत सवार बोल सकते हैं आप कि अपने जो करंट जोश जज्बा जिस चीज को है वो परफ्यूम को लेके है मेरे को अभी।
1: अच्छा।
0: अभी मेरे को खुशबुओं का बहुत शौक, आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो एक करंट है जो अगेन करंटली दैट्स ट्रेंडिंग इन माय लाइफ।
1: चलो थैंकफुली एक चीज तो आपने थोड़ा धटके बताया, भाई को परफ्यूम का शौक लगा है, वो तो यहाँ पे गल्फ में रहते रहते लोगों को इवेंचुअली लग ही जाता है। तो अदर भाई कोई ऐसा एडवेंचर है जो यहाँ पे कतर में ट्राई करने का मौका आया लेकिन आपने किया नहीं, यू स्टिल वांट टू ट्राई? 9-10 साल हो चुके आपको भी?
0: सैंड ड्यूनिंग कभी नहीं की भाई।
1: अरे क्या बात कर रहे हो यार, 9 साल में?
0: वल्ला 9 साल में कभी नहीं की मैंने। एक बार मेरे दोस्त को उसने बताया था उसका एक्सपीरियंस, एंड देन ही सेड कि भाई बहुत क्रेजी था, एंड देन वो मेरे को थोड़ा डर सा बैठ गया।
1: क्यों?
0: आई हैवंट डन दैट, आई वांट टू डू दैट। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, बट वहां जाके सैंड ड्यूनिंग करना नहीं। एक बार एक दफा एक हिम्मत करके गया भी था वंस अबाउट 2 years अगो, और फिर ऊपर ड्यून पे चढ़ने के बाद गाड़ी फंस गई, मैं डर गया। उसके बाद से फिर हिम्मत नहीं हुई दोबारा ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे तो जैसे कि मैं मोटा भी था ना, तो आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड देन वो रेती में अंदर गड़ता गया, मेरे को लगा यार वजन से और खींचा जाऊंगा अंदर, ये रिस्क ले लेना भाई।
1: अरे तो खुद मत करो ना, वो जो पैकेज आता है उसमें से एक पैकेज ले लो, एक आध दिन का हो जाओ, एक बार ही क्या टेंशन है।
0: इंशाल्लाह ख्वाहिश है इस विंटर सीजन में वो करने की ख्वाहिश है इंशाल्लाह।
1: भाई ये करो भाई, मैं तो आपको मैं पीछे पड़ जाऊंगा आपको विंटर सीजन में, मैं कहीं ना कहीं पूछूंगा आपसे राज भाई गए कि नहीं गए, मुझे मतलब चाहिए आपका वीडियो। आप खुद मत चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट पैकेज लेके चले जाओ, इट्स क्वाइट रीजनेबल ऑल्सो एंड बहुत सही रहता है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने को तो मिल जाएगा आपको।
0: इंशाल्लाह मुझे अपना लास्ट ईयर का कॉन्वर्सेशन याद आ रहा, मार्शमेलो भी करना है अपने को, तो उसी दिन हो जाएगा इंशाल्लाह।
1: गुड आइडिया मेरा भाई, वेरी गुड आइडिया, ये तो होना बहुत जरूरी है। एंड मैं क्योंकि लास्ट कॉन्वर्सेशन पे आ ही रहा था, अच्छा वो आप भी उस पे चले गए। इनायत भाई क्या चेंज हुआ है लास्ट कॉन्वर्सेशन से अभी तक आपकी पर्सनालिटी में, अपार्ट फ्रॉम योर मोटिवेशन के वजन छोड़ना है मुझे, और क्या चेंज आया?
0: जिंदगी की तरफ नजरिया
1: क्या बदला
0: है?
1: अच्छा ओके,
0: मतलब वो एक शेर भी बोलूंगा इस पे कि जिंदगी मुख्तसर है, जब इतनी लोग क्यों तजुर्बात करते हैं, हम ही महरूम है समाज से, वरना ये पत्थर भी बात करते
1: हैं। क्या बात है मेरा भाई, क्या बात है। तो ये जो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, कुछ हुआ है या फिर ऐसी मतलब

0: हो गए बस।
1: नहीं नहीं हो रहा है ना भाई, वो तो अब आप इंशाल्लाह मिलोगे तो आपको दिखेगा, अरे भाई टांग गया, एक एक बालिश कम हो गया है।
0: आई होप सो, आई रियली रियली प्रे फॉर यू कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका तो फल आपको मिलना ही मिलना है डेफिनेटली, एंड वो तो देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे होता है ना कि पार्टनर्स जो होते हैं इवॉल्व होते हैं, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं अभी तक? फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे।
1: ये तो
0: बड़ी बात है यार। अच्छा, ये हम मजाकिया तौर पे बात कर रहे थे सुबह को भी, लोग कहते हैं देखो नई नई शादी में चल जाता है, लेकिन नहीं मतलब नहीं चलता है, 10 years के बाद आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है। डू यू स्टिल गेट परमिशन हमारी बहन से, हमारी भाभी से, कि परमिशन मिलती है आपको बाहर जाने की? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हटी हैं 10 सालों में?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वेल, शी इज वेरी सपोर्टिव।
0: अच्छा,
1: I think वो शायद ऑनलाइन सुन रही है तो इसीलिए वेरी वेरी सपोर्टिव। मैं एक्स्ट्रा वेरीज लगा दूंगा इधर एकदम, लाइक ऑन अ सीरियस नोट भाई, माशाल्लाह बहुत कूल है, तो शी इज ओके विद मी गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स एंड यू नो शी अंडरस्टैंड्स के भाई आदमी है, तुम काम करके आते, तुम्हें घर से भी थोड़ा बाहर निकल के दोस्तों में बैठ के हंसी मजाक करके आना चाहिए। तो व्हाट आई हैव काइंड ऑफ लाइक वर्क्ड एन अरेंजमेंट विद हर के भाई एवरी क्वार्टर आई गो टू सऊदी टू मीट माय फ्रेंड्स देयर फॉर अ डे और फॉर अ वीकेंड एंड देन आई शूट सम गुड कॉमेडी कंटेंट देयर एंड देन ऑब्वियसली माय चीट मील एंड देन आई कम बैक, सो शी इज ऑल कूल विद दैट। और यहां पे खतर में रहते हुए भी यू नो वीकेंड्स पे दोस्तों के पास जाना once a week is all that approved already, you know, pre-approved and set है मसला, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो कोई ऐसी चीज की परमिशन या फिर आप कहना चाहें अभी अपनी पार्टनर को जो अभी मौका मिला है जो आप उन्हें कहना चाहें, क्या कहना चाहें?
1: जो कहना है वो तो रोज ही कहते
0: हैं उसके अलावा मतलब ऐसा जो आप एक पब्लिक प्रोग्राम पे कह सके
1: तो बहुत जबरदस्त बेगम है वो, मतलब एज अ वाइफ शी इज माशाल्लाह वेरी नाइस एंड I am here, मैं जो यहाँ पे हूँ वो उनकी वजह से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह वो पता लगता है, वो पॉजिटिव नेचर इंसान पे आ जाता है और ये बड़ी कमाल की बात है। तो क्या कैसे आप उन्हें परेशान करते हैं? कोई आपकी ऐसी आदत है जो आपकी जा नहीं रही है और वो आपको बहुत टोकती है इस बात?
1: मेरी जो आदत है मेरे को थोड़ा कुछ चीजों में ओसीडी है, तो भाई ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, शी काइंड ऑफ लाइक यू नो अंडरस्टैंड्स दैट एंड अभी उनको आदत सी हो गई है, बट देन एट द सेम टाइम वो बोलते हैं अरे बस करो यार 10 साल हो गए अभी तक यही सुनाओगे क्या। मैं बोला देख कुछ आदतें नहीं छूटती, लेकिन अभी मेरे पर्सपेक्टिव से वो ओसीडी मेरे लिए वो लॉजिकल है, लेकिन सामने वाले के लिए कभी लॉजिकल लगता है, बट देन शादी में वही तो है, मतलब यू नो कोई भी रिलेशन में यू वॉक सम एंड द अदर पर्सन वॉक सम एंड देन यू गो टू द डेस्टिनेशन टुगेदर।
0: और कतर में आपके कितने दोस्त हैं जो आपसे जिनसे मिलना जुलना है उनको शॉर्ट आउट देना चाहें तो?
1: मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत सोशल आदमी हूँ, तो मेरे सबसे खास अजीज हमारे जो है हमारे दोस्त हैं मैडम और उनके हस्बैंड और हमारे साथ जो काम करते थे जो काम करते हैं और जो काम करते थे वो लोग, और मेरा एक और सर्कल है जिधर मैं यूजुअली वीकेंड पे हैंग आउट करता हूँ, तो उन सबको आई वुड लाइक टू शाउट आउट। नॉट टेकिंग एनी नेम्स बिकॉज एक नाम लूंगा तो फिर सारे नाम मिस हो जाएंगे, तो इसीलिए यू नो इन जनरल द होल गैंग।
0: हाँ नहीं मैं समझ गया, वो रिस्की हो जाता है, मेरा नाम तो नहीं लिया आपने तो फिर आपकी जिंदगी में लोग धनिया बोल सकते हैं, सो गुड चॉइस कि थोड़ा स्टेप बैक कर लिया तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा इधर भाई, अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वी वर डिस्कसिंग अवर अपन एज वेल, मैं खुद फिल्म मेकिंग का कोर्स करके बैठा हूँ, मुझे बहुत पसंद है फिल्म मेकिंग इन द पार्ट ऑफ इट, यू नो आई वॉन्टेड टू बिकम अ डायरेक्टर, लेकिन ये अपनी तारीफ करके मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि आपको क्या कमी लगती है कि आजकल की मूवीज में क्या लैकिंग है?
1: कई सारी मूवीज में मेरे को आजकल लगता है कि बस बन गए। अभी रिसेंटली जो मेरे को लगी अच्छी जो मेरे को पसंद थी आवारापन 2 एंड दैट इज ओनली बिकॉज मैंने आवारापन 1 देखी और वो स्टोरी और वो कैरेक्टर का कंटिन्यूएशन है, बट देन अगर एज अ स्टैंड अलोन आवारापन 2 अगर उसकी बात करूं मैं तो इट वाजंट एज गुड एज द 1, ठीक है। तो ये सारी मूवी मतलब क्लासिक मूवीज जो एक जमाने में बनती थी 12 एंग्री मैन द मैन फ्रॉम अर्थ ऐसी मूवीज जिसमें स्टोरी है दैट यू नो दैट गेट्स यू हुक्ड ऑन टू द सीट। अभी आज का ऊपर से नेटफ्लिक्स और यू नो प्राइम का जमाना है कि भाई यू वॉच अ मूवी उतनी ग्रिपिंग नहीं रह रही जैसे पहले हुआ करती थी, मतलब यू कैन ऑलवेज पॉज बट ये जो मूवीज है जो 12 एंग्री मैन या यू नो द मैन फ्रॉम अर्थ, यू डोंट वांट टू पॉज देम, यू जस्ट

0: want the story to go on, कि भाई आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो वो मेरे हिसाब से मिसिंग है.
1: ओके, मुझे ऐसे भी लगता है कि आई थिंक जो यंग लिखने वाले हैं वो सीरीज की तरफ चले गए हैं. देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ राइटर्स जो लोग बॉलीवुड के लिए मेजर मूवीज राइट कर रहे हैं. वो जिम्मा दे दिया गया है उन लोगों को जो वेटरन्स कहलाते हैं. आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि लैक ऑफ आइडिएशन बहुत ज्यादा है जो आई थिंक वेस्ट में नहीं है. क्या कहते हैं?
0: बिल्कुल, आई वुड एग्री टू दैट. आई वुड टोटली एग्री टू दैट.
1: ओके, तो इदायत भाई, नाउ द प्रोफेशनल सीन. कोई ऐसा प्रोफेशन आपको कतर में लगता है कि बड़ा कूल लगता है कि यार ये बड़ा कूल सा प्रोफेशन है, क्या करते होंगे लोग?
0: पायलट्स.
1: अच्छा,
0: हाँ, आई मीन कूल है, उड़ते हैं लोग इन लोग, बिकॉज व्हेनेवर जब भी हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो दे द वे व्हेन मतलब उनका जो यूनिफॉर्म है, जब वो लोग गुजरते हैं आपके सामने से, तो यू नो ओके दिस गाय इज गोइंग टू टेक मी टू माय डेस्टिनेशन. एंड फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट जो जिम्मेदारी है लोगों को लेके जाने की, सही सलामत, तो वो जबरदस्त तरीके से जो करते हैं, तो वो मेरे को बहुत कूल लगता. और आसमान में उड़ना, सबको उड़ाना, तो दैट्स लाइक रियली इंट्रीगिंग. बट वो दौर गया पायलट बनने का, तो अभी तो हम एचआर का काम ही कर रहे हैं.
1: ओके, और कतर में जो नए नए लोग आएंगे अभी, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? हिदायत भाई क्या बोलेंगे उन्हें जो जस्ट अभी लैंड कर रहे होंगे, हो सकता है आपको सुनते हुए अभी गाड़ी में हो, एयरपोर्ट से जा रहे होंगे कहीं पे, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम?
0: तो ऑन अ लाइटर नोट, हिदायत किसी को नहीं मिल सकती क्योंकि हिदायत मेरी बेगम ले चुकी है.
1: गुड वन भाई, क्या बात है.
0: ऑन अ सीरियस नोट, मतलब हार नहीं मानना, ऑलवेज गो गेट इट एटीट्यूड रखना मुश्किल है, बट कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ कोशिश करते रहे तो यू विल डेफिनेटली गेट देयर. एंड लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज़, मुश्किलें आती है, बट हाउ यू ओवरकम दैट्स व्हाट शेप्स यू एज अ पर्सन. तो उस हिसाब से कीप गोइंग.
1: वेरी नाइस. एंड लास्ट हिदायत भाई, आपसे सवाल पूछूंगा, अगर सेम अमाउंट आपको मिल जाए और कहा जाए हिदायत भाई हैदराबाद में रहो, बढ़िया, आपको इतना ही पैसा मिलेगा और कोई टेंशन नहीं है भाई, तो क्या आपका क्या रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर टू इट?
0: मैं बोलूंगा भाई मुझसे तू दुगना ले ले, पर मुझे कतर में रहना
1: है. अच्छा, ओके.
0: That's so much I love
1: Qatar. ठीक है, तो बाकी हैदराबादियों का इस बात पे क्या कहना है वो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. अपने अपने सवाल 666-22107 पे बोल सकते हैं सवाल, जवाब जो भी है. बट हिदायत भाई, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया. मुझे कहना नहीं चाहिए शुक्रिया, हमारे बीच फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी थैंक यू मेरा भाई कि आपने जो है रेडी हुए.
0: आपका शुक्रिया भाई, आपने मुझे कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया एज यूजुअल.
1: यही तो दोस्ती है भाई, यही असली दोस्ती है, ऐसी ही बनी रहनी चाहिए. मैं दिल से दुआ करता हूँ जो आप सोचते हैं आपके एम्बिशन से, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे और आप बहुत जल्दी जो आप अचीव करना चाह रहे हो अचीव कर लें, बिकॉज आई नो यू विल डू इट इवेंचुअली, वो मुझे पता है. बस दुआएं ऊपर से एक और लेयर चढ़ा दी, बस यू समझ लीजिए. तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया मेरा भाई.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कबीर. और दुआओं में और दावतों में याद रखना हमेशा, साइन ऑफ करने से पहले मेरा तकिया खराब है.
1: तो हिदायत भाई, ऑन दैट वेरी नोट, दिस इज दोहा वाला कबीर ऑल्सो साइनिंग ऑफ. आप सबसे ज्यादा चाहूंगा अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलामा.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इन्वेस्टिंग की. बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है. लेकिन मॉडर्न फिनेंशियल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये है माइक्रो इन्वेस्टिंग. अब माइक्रो इन्वेस्टिंग है क्या? देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ वेल्थ बिल्ड की जा सके. इस कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टिंग को आम लोगों, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है. माइक्रो इन्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है बड़ा ही सिंपल है. आपको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती. आप रोजाना, हफ्तावार या महीने बेसिस पर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये अमाउंट $5, $10 या इससे भी कम हो सकती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को देखता है. बहुत से बिगनर्स इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तब करेंगे. यहाँ माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है. जब लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं और ये हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है. देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कंपाउंड ग्रोथ या फिर कंपाउंड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है. कंपाउंड ग्रोथ का क्या मतलब है? कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न अर्न करती है वो फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे. यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट अर्न करते हैं. चलिए एक मिसाल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई शख्स हर महीने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट को कई सालों तक कंटिन्यू रखे तो कंपाउंड ग्रोथ की वजह से उसकी टोटल वेल्थ एक्सपेक्टेड से भी काफी ज्यादा हो जाती है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स उसे अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल डिसिप्लिन. जब मार्केट टेम्परेली डाउन हो तो पैनिक करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी

0: फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करे। इसीलिए बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स सेविंग्स के साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। बस अब जाते जाते मैं यही कहूँगी कि माइक्रो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाएं, तो वक्त के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। कंपाउंड ग्रोथ, पेशेंस और डिसिप्लिन माइक्रो इन्वेस्टिंग के ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे पेशेंट एंड लेट टाइम वर्क फॉर यू। तो फिलहाल अब मैं आपसे यहाँ पर इस टॉपिक पर इजाजत लूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। और भाई बहुत जरूरी वेबसाइट्स हैं आज भी, बहुत काम की वेबसाइट्स हैं। ये ढूंढ ढूंढ कर मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बता भी रहा हूँ तो फायदा आपको हो रहा है, इसमें मुझे खुशी हो रही है। ये अलग ही किस्म का खुशी का आदान प्रदान है, विच आई एम रियली रियली ग्लैड इट्स हैपनिंग। सो बढ़िया है, तो मैं आपको बहुत जरूरी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ। नंबर वन ऑन द लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए है जिनका पीडीएफ का बड़ा काम रहता है। बहुत मतलब मैं परेशान हूँ, बहुत सारे पीडीएफ टूल्स काम नहीं करते, एंड नाउ फाइनली देयर आर वेबसाइट जो कि बहुत हेल्पफुल है और एकदम फ्री है। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है pdffly.com, pdffly.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो पीडीएफ के सारे टूल्स एकदम फ्री 100% आपको मिलेंगे। बताता हूं एग्जांपल, पीडीएफ से कोई और फाइल की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टू वर्ड करना है या वर्ड टू पीडीएफ करना है, किसी भी फाइल से पीडीएफ तक जाना है, पीडीएफ से किसी भी फाइल तक जाना है, किसी भी फॉर्मेट तक जाना है, बेसिकली यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के ऊपर का जो वाटरमार्क होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं, ये वेबसाइट आप फैला दो कॉर्पोरेट जगत में भाई जबान दिया जाएगी। जिन्हें नहीं पता ना उनका काम बहुत आसान होने वाला है, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेटिंग चीज लगती है वो जब एडिट करना होता है ना पीडीएफ फाइल को, भाई साहब। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप वो भी कर सकते हैं, एंड एक्सट्रीमली इजी। मैं दोबारा से बता देता हूं नाम इसका, pdffly.com। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब अगली वेबसाइट जो है ये भी बड़ी कमाल की है। ये भी उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जो फोटो एडिटर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई थोड़ा सा मुफ्त में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम है opencut.app। ठीक है, opencut.app, opencut.app। इस वेबसाइट पर चले जाइएगा आप, आपको कैप कट का क्लोज कजन मिल जाएगा और ये एकदम फ्री है। आप इस पर स्टिकर्स, एडिटिंग टूल्स, सब कुछ देख सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। आपका बेसिक से जो ऊपर का काम है जो कि काफी है, हालांकि प्रोफेशनल है आज के जमाने में, वो सारा का सारा काम हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको जरूर जरूर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो भाई अगली वेबसाइट का नाम है reccloud.com, reccloud.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे AI जनरेटर्स नजर आएंगे, AI वीडियो जनरेटर्स नजर आएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं हर एक का नाम लेने बैठूंगा तो फिर अगली अपडेट तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करने वाला हूं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करें, एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड आई थिंक आपको बहुत बहुत बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, अब जरा बढ़ते खबरों की तरफ, क्योंकि हम अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास एप्पल की अपडेट आ चुकी है, तो वो अपडेट मैं दे देता हूं। जो उसके प्रोडक्ट डिजाइन से तो वाकिफ है, लेकिन अंदरूनी चीजों के बारे में उन्हें शायद कम पता हो। शुरू करते हैं। तो देखो, रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल फोन आईफोन टीओ, जो 23 अक्टूबर को मार्केट को हिट भी कर जाएगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ऑब्वियसली इसका प्राइस अप किया गया है और बाकी आईफोन्स के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाएगा। अब लोगों का सवाल ये रहता है कि ये है कैसा, मतलब फोल्डेबल है क्या ये सैमसंग कॉम्पिटिशन में? देखो, सैमसंग ने अभी आगे निकल गया, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगा। हालांकि एप्पल ने कुछ चीजें करी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिनमें इन्होंने जो अपने डुओ पे काम किया है, ये लोग अभी फेस आईडी तो लगा नहीं पाए, ऑब्वियसली मुश्किल था लगाना, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको जो है इनविजिबल एक बार वो दे देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपना वेबसाइट। साइड बटन दिया है फॉर अनलॉकिंग बेसिकली, और जो केस है वो इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो कैमराज बड़े हुए हैं, हालांकि कैमराज का काफी बेसिक है। और एक चीज जो अच्छी है फोल्डेबल दुनिया में फोन के साथ, वो ये है कि इन्होंने हिंजिस पे बहुत बढ़िया काम किया है, एंड आई थिंक प्राइस इसका कम तो नहीं होगा, पर जो भी लेगा उसको प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आएगा। इसी के बेसिस पे एप्पल अपना फोन बेचता है, एंड अगेन हिस्ट्री विल रिपीट इट्स।

0: ये थी अपडेट, मैं दूहा वाला कबीर, FM 107 पे स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: सामईन किराम।

0: ورحمة الله وبركاته.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही رابطہ करें, आज ही رابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का एक नया दिन और एक नया एपिसोड। ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं आपको बचाता हूं और किन तरीकों से लोग आपको फ्रॉड करते हैं, लोग आपको स्कैम करते हैं। हर रोज नए और यूनिक स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको इत्तला करता हूं। तो आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपके ऑफिस में ही स्कैम होता है, आपके ऑफिस के लोगों के थ्रू या आपके ऑफिस के लोग यू नो उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या स्कैम है, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये स्कैम है डिसग्रंटल कलीग एक्सटॉर्शन। वर्क प्लेस के अंदर होने वाला ये एक ऐसा इंटरनल थ्रेट है जो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्कैम में कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई नाराज, जेलस या मलिशियस कलीग शामिल होता है जो आपसे बदला लेना चाहता है या रातों रात पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि हर शख्स के दिमाग में जल्दी और तेज पैसा कमाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी उसको फ्रॉड में शामिल कर देती है। ये काम कैसे करता है? ये कलीग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाता है। वो बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से आपके वर्कप्लेस सीक्रेट या आपकी किसी छोटी सी गलती को टारगेट करता है। होता यह है कि वो मलिशियस कलीग सीक्रेटली आपकी किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। ऑफिस लैपटॉप या शेयर्ड नेटवर्क पर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स या फोटोज ढूंढ निकालता है या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी बड़ी मिस्टेक का टेक्निकल प्रूफ वो कलेक्ट कर लेता है। इन बातों को नॉर्मल चैनल के जरिए मैनेजमेंट के पास ले जाने के बजाय वो इंसान आपको ब्लैकमेलिंग करता है। वो आपको अकेले में थ्रेट करेगा कि अगर आपने उसे एक बड़ी अमाउंट कैश में नहीं दी या फिर उसके हिस्से का सारा ऑफिस वर्क और प्रोजेक्ट खुद नहीं संभाला, तो वो ये सेंसिटिव फाइल्स पूरी कंपनी के बोर्ड, आपके एचआर और आपके परिवार के बीच लीक कर देगा। कई बार 99% ऑफ द टाइम ये शख्स एनोनिमसली आपके प्रोफाइल पे आपसे यू नो फेक नंबर से चैट करता है और ये सारी बातें आपसे कह रहा होता है। एम्प्लॉई ऐसे में डर जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी ऐसा सोचता है, सोसाइटी में बेइज्जती होगी, इसलिए वो उस डिसग्रंटल कलीग के दबाव में आकर उनकी डिमांड्स पूरी करने लगता है, जो आगे चलकर एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जाए। सबसे पहले जीरो कंप्लायंस पॉलिसी, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ब्लैकमेलर की डिमांड को पूरा करना सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उनका हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई कलीग आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई शख्स अपने सारे आपके सारे डिटेल्स लेकर अपने मोबाइल से या यू नो फोन नंबर से आपसे चैट कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सारी डिटेल्स एचआर को दे देगा या फिर बोर्ड के सामने खोल देगा, तो उन्हें एक भी रुपया ना दे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया वहां आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, उस कलीग के साथ हुई हर एक डिजिटल इंटरेक्शन का प्रूफ कलेक्ट करें, उनके ब्लैकमेलिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट या फिजिकल नोट्स के क्लियर स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स लेकर मल्टीपल सेफ प्लेसेस जैसे कि पर्सनल ड्राइव या हार्ड डिस्क पर बैकअप बनाएं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट एचआर और लीगल एस्केलेशन। इस सारे कलेक्टेड एविडेंस को लेकर बिना किसी डर के सीधे अपनी कंपनी के एचआर हेड और लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। कॉर्पोरेट लॉज के तहत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। एचआर तुरंत इन्वेस्टिगेशन सेटअप करेगा और उस एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन इस तरीके के होने वाले फ्रॉड से बचने के ये तीन तरीके आपको फ्रॉड से बचा लेंगे, आपके जेब से जो पैसा है उसे खर्च होने से बचा लेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी बारे में बात करते हुए, फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: एक रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेशनल इंडस्ट्री के तौर पर समझने वाले हैं।
1: हाँ, और आज हम बात करेंगे द ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री की। ई स्पोर्ट्स यानी कॉम्पिटिटिव गेमिंग, वो गेमिंग जहाँ सिर्फ गेम जीतना ही गोल नहीं होता, बल्कि प्लेयर्स प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, टीम्स बनाते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं, प्रोफेशनल कोचेस के साथ स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल करियर बिल्ड करते हैं।
0: और भाई, कतर और वाइडर जीसीसी रीजन्स में भी गेमिंग का सीन काफी डायनेमिक और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ये बताती चलूं कि लोकल टूर्नामेंट्स, गेमिंग कम्युनिटीज, प्रोफेशनल टीम्स, लाइव स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन और मैसिव ई स्पोर्ट्स इवेंट्स ने गेमिंग को एक प्रॉपर इकोनॉमिक इकोसिस्टम की तरफ पुश किया है।
1: यस, और आज हम इस कंप्लीट इकोसिस्टम को डिफरेंट एंगल से डीपली एक्सप्लोर करेंगे। और व्हाट्स ट्रेंडिंग में हम बात करेंगे, बात होगी इनफैक्ट जीसीसी रीजन में कॉम्पिटिटिव गेम और टूर्नामेंट्स के रैपिड ग्रोथ की, और ये कैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ कम्पीट कर रहा है, वी विल टॉक डीपली।
0: और साथियों, स्टार्टअप स्टोरीज में हम ये जानेंगे कि कतर की क्वेस्ट ई स्पोर्ट्स जैसे डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह लोकल गेमिंग इकोसिस्टम, टैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूर्नामेंट प्रोडक्शन को बॉटम अप डेवलप करने में रोल प्ले कर रहे हैं।
1: टेक टॉक में हम समझेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, हम बात करेंगे क्लाउड गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स, सर्वर एज आर्किटेक्चर और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हार्डवेयर की।
0: और भाई, स्किल अप में भी हमारे पास बहुत कुछ है। स्किल अप में हम एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे।
1: हाँ,
0: वो क्या है? वो ये है कि क्या वीडियो गेम से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग, हाई प्रेशर टीम वर्क और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रियल लाइफ में डेवलप हो सकते हैं कि नहीं?
1: Yes, और अगर आप गेमर नहीं भी है ना, तो भी आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सो डोंट स्किप इट। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के पीछे जो मैसिव टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स, कंटेंट इकोसिस्टम और करियर अपॉर्चुनिटीज है ना, वो हर यंग प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है।
0: बिल्कुल अमिता, मैं ये बात मानती हूँ। और आज का गेमर कल के गेम डिजाइनर, ई स्पोर्ट्स ऑपरेशंस मैनेजर, लाइव स्ट्रीमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कमेंटेटर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर या टेक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं।
1: हाँ, तो चलिए फिर अपने कंट्रोलर्स रेडी रखिए, अपने इमेजिनेशंस को फुल ऑन कीजिए और एंटर करते हैं नेक्स्ट जेन की डिजिटल दुनिया में।
0: तो भाई साथियों, एफएम 107 पर नेक्स्ट जेन का ये स्पेशल सेगमेंट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है।
1: सफा, जब हम गेमिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बच्चों का, वो कहते हैं ना, बच्चों की चीज है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री अब फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के कंबाइंड रेवेन्यू से भी बड़ी हो चुकी है भाई।
0: अच्छा, मजे की बात है कि ये एक ऐसा स्टैटिक है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की ये इंडस्ट्री हजारों नए जॉब्स और स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है हर साल।
1: क्या बात है! और इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सिर्फ एक्साइटिंग है बल्कि आज के यूथ के लिए करियर पर्सपेक्टिव से समझना भी बेहद जरूरी है। और हम देखेंगे कि ये जो जनरेटिव टूल्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्रिएटिव स्टार्टअप्स कैसे बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मेजर लिमिटेशंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी यंग जनरेशन को कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर मार्केट में रिप्लेस ना हो सके बल्कि लीड करे।
0: तो भाई साथियों, कहीं मत जाइएगा, मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ इस जर्नी पर चलें, इस जर्नी को एंजॉय करें।
1: और अब वक्त है हमारे ब्रांड न्यू सेगमेंट का, जो कि सबसे पहला सेगमेंट है हमारे शो का, एंड दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग। सफा, अगर हम आज की यंग जनरेशन से पूछें कि गेमिंग उनके लिए क्या है, तो हर किसी का आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। किसी के लिए गेमिंग रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ है, और किसी के लिए टफ कंपटीशन है, किसी के लिए सोशल कनेक्शन है, और किसी के लिए लाइफ लॉन्ग करियर है।
0: और भाई, यही गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल और इंटरेस्टिंग बात है। गेमिंग अब सिर्फ एक बंद कमरे में कंप्यूटर या कंसोल पर बैठकर अकेले गेम खेलने का नाम नहीं रहा। नो, इसके अराउंड एक कंप्लीट मल्टीफेस इंडस्ट्री और ग्लोबल सब कल्चर डेवलप हो चुका है। अच्छा, गेम्स पहले डिजाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोड से डेवलप होते हैं, ग्लोबल लेवल पर मार्केट उनकी बनती है, थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स उन्हें स्ट्रीम करते हैं, जाइगेंटिक टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम मैनेज होती हैं और हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग

0: ही जाती है भाई।
1: क्या बात कही सफा आपने। और ई स्पोर्ट्स ने ना गेमिंग को एक ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह डायनेमिक स्ट्रक्चर दिया है। जिस तरह ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में फुटबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट के ग्रैंड टूर्नामेंट्स होते हैं ना, स्टेडियम में हजारों लोग स्पेक्टेटर्स होते हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स में वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स के मेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन भी होते हैं।
0: अच्छा, मजे की बात ये कि जीसीसी रीजन में भी कम्पिटिटिव गेमिंग का पैशन और इन्वेस्टमेंट डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। अगर स्केल देखा जाए ना तो वो बढ़ रहा है। कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई और बाकी गल्फ नेशंस में रीजनल गेमिंग कम्युनिटीज और हाई प्रोफाइल ई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए पब्लिक और प्राइवेट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं। कतर में भी रीजनल और लोकल टूर्नामेंट्स ने डोमेस्टिक गेमर्स को एक हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट और क्लियर प्रोग्रेशन पाथवे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है भाई।
1: क्या बिल्कुल सही। और इस कॉन्टेक्स्ट में ना कतर में इलेक्ट्रॉनिक कतर स्टार्स लीग्स का एग्जांपल बेहद प्रोमिनेंस रखता है। 2026 में इस प्रेस्टीजियस कंपटीशन के थर्ड एडिशन में कतर के 12 टॉप फुटबॉल क्लब्स ने EA स्पोर्ट्स FC26 में कम्पीट किया था। नाउ ये टूर्नामेंट सिर्फ बेसिक वीडियो गेमिंग एक्टिविटी नहीं था, इस प्रोजेक्ट का फंडामेंटल विजन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिजिटल स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स पाथवे बिल्ड करना था।
0: अच्छा, और हाँ, यहाँ एक बेहद इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जब किसी नेशन में गेमिंग टूर्नामेंट्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो उससे सिर्फ प्रो गेमर्स या प्लेयर्स को ही फाइनेंशियल और करियर बेनिफिट नहीं मिलता। इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, एक्सपर्ट शाउटकास्टर्स और कमेंटेटर्स चाहिए होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर्स, नेटवर्क टेक्निकल टीम्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, मीडिया वीडियोग्राफर्स और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप लीड्स और टूर्नामेंट स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होते हैं।
1: यानी एक हाई प्रोफाइल लाइव ई स्पोर्ट्स मैच के बैकग्राउंड में ना एक 50 से 100 लोगों की बैकएंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स एक्टिव होती है भाई।
0: और भाई एग्जैक्टली बात तो यही है कि ऑडियंस को स्क्रीन या मेन स्टेज पर सिर्फ मैच खेलने वाले 5-10 प्लेयर नजर आते हैं, है ना?
1: हाँ जी।
0: लेकिन बैक स्टेज पर रियल टाइम हाई डेंसिटी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। देखिए ना, डेडिकेटेड सर्वर्स कॉन्फ़िगर हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन स्केड्यूल्स मिनट बाय मिनट कोऑर्डिनेट किए जा रहे होते हैं, टूर्नामेंट्स रूल और एंटी चीट प्रोटोकॉल्स मॉनिटर हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट फीड मैनेज हो रही होती है और ऑडियंस इंटरैक्टिवली स्ट्रीम की जा रही होती है।
1: और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेमिंग का कम्युनिटी और सोशल एस्पेक्ट भी इक्वली वाइटल है। मॉडर्न ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग ने ग्लोबल बाउंड्रीज को ना क्रॉस करते हुए यंग जनरेशन को एक यूनिफाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क पर कनेक्ट किया है। आप दोहा में अपने रूम में बैठकर ना टोक्यो, लंदन या रियाद के प्लेयर के साथ रियल टाइम स्क्वाड बनाकर प्ले कर सकते हैं।
0: लेकिन भाई इधर एक बात है, देखो भाई, लेकिन इंटेंस कंपटीशन और कनेक्टिविटी के साथ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है भाई। ये चीज भी सामने आती है। हेल्दी गेमिंग रूटीन्स, स्ट्रक्चर्ड टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन और स्ट्रिक्ट डिजिटल सेफ्टी हैबिट्स उतनी ही जरूरी हैं जितना के गेम के कंट्रोल स्किल्स।
1: बिल्कुल सही कह रही हो सफा। और गेमिंग को ना प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए पर्सनल रूटीन, बैलेंस, फाउंडेशन रिक्वायरमेंट बहुत बहुत बहुत जरूरी है। और गेमिंग आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस, हेल्दी स्लीप साइकिल्स, ओके आई विल रिपीट, हेल्दी स्लीप साइकिल्स, फिर फिजिकल एक्टिविटीज और पर्सनल फैमिली टाइम को कंप्लीटली डिसरप्ट कर रही है। मतलब ये होता है क्योंकि स्पेशली जब गेमर्स खेलते हैं तो नींदें उड़ी होती है, रात रात भर गेम चल रहे होते हैं, तो वहाँ इशू गेमिंग एज अ मीडियम नहीं है बल्कि ओवरऑल सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का होता है जो हम नहीं कर पाते हैं।
0: एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर गेमिंग को पर्पसफुल डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए ना, तो ये यूथ में लेवल हाई या कह लें कि हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करती है। टैक्टिकल टीम बेस्ड गेम्स में स्प्लिट सेकंड्स पार्शियल अवेयरनेस, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन और हाई स्ट्रेस कोऑर्डिनेशन डेली प्रैक्टिस होती है।
1: इसीलिए मॉडर्न ई स्पोर्ट्स को ना मेरे ख्याल से सिर्फ एंटरटेनमेंट या वीडियो गेम्स के नैरो व्यू से नहीं देखा जा सकता। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव डिजिटल

0: डिजाइन, मीडिया प्रोडक्शन, कमर्शियल बिजनेस, एथलेटिक मेंटल डिसिप्लिन और यूथ क्रिएटिव कल्चर का यूनिक कन्वर्जेंस पॉइंट बन चुका है।
1: और हाँ, कतर में इस इकोसिस्टम के ग्रोइंग मैच्योरिटी की सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अब ग्रास रूट यूथ कॉम्पिटिशन्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंगेजमेंट का स्केल इंक्रीज हो रहा है।
0: हाँ जी,
1: देखिए भाई, क्वेस्ट ई स्पोर्ट जैसे फॉरवर्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कतर प्राइवेट स्कूल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसी स्ट्रक्चर इनिशिएटिव के जरिए यंग स्कूल स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया है।
0: Yes, और इसका मतलब ये हुआ कि गेमिंग के हवाले से सोशल कॉन्वर्सेशंस अब नैरो होम एनवायरनमेंट से निकलकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्राइज सेक्टर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फर्म्स और नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज तक रीच कर रहे हैं भाई।
1: और भाई, यही हमारे व्हाट्स ट्रेंडिंग सेगमेंट के कोर टेक अवे हैं। गेमिंग इज नो लॉन्गर जस्ट अ पास्ट टाइम ट्रेंड, इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंडस्ट्री।
0: क्या बात कही सपा।

0: ये हर किसी की बन रही है. सो जो लोग पहले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थे, अब उनमें से बहुत से प्रोफेशनल गेम डिजाइन स्टूडियो सेटअप करने का ड्रीम देख रहे हैं.
1: और एक और बात, टूर्नामेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस पूरे प्रोसेस को फर्दर एक्सेसिबल बना दिया.
0: Yeah.
1: पहले अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता था ना, तो वो सिर्फ उसके दोस्तों को पता था कि हाँ भाई ये Yeah. अच्छा प्लेयर है.
0: True.
1: अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हैं. अब कितने तो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ भाई ये वाला फलाना वाला प्लेयर है ना, इससे आप नहीं लड़ सकते, इससे नहीं खेल सकते, क्योंकि बहुत सुपर प्लेयर है.
0: एब्सोल्युटली सही कह रही हो सफा. और इसी ना स्ट्रीमिंग कल्चर ने गेमिंग कमेंटेटर्स, शो होस्ट्स और कंटेंट एनालिसिस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी है. वॉइस मॉड्यूलेशन, मैच एनालिसिस और एंटरटेनिंग कमेंट्री अब स्पेशलाइज्ड स्किल्स बन चुकी है जनाब.
1: तो भाई अगर हम समराइज करें ना, व्हाट्स ट्रेंडिंग में हमने ये जाना कि ई स्पोर्ट्स एक डायनेमिक मीडिया पावर हाउस बन चुका है.
0: एब्सोल्युटली,
1: जिसे हार्नेस करना हम सब के लिए एक अमेजिंग स्टेप हो सकता है.
0: बिल्कुल सही बात कही. तो व्हाट्स ट्रेंडिंग में अभी यही था, आगे हम स्टार्टअप स्टोरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना जाएं, बने रहे एफएम 107 पर, दिल से देसी.
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अनीता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही.
0: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं अमिता आपके साथ और हमारी सफा, हम दोनों आपके साथ और आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जेन शो. और अब नेक्स्ट जेन में हमारे स्पेशलाइज सेगमेंट का टाइम हो चुका है, दैट इज स्टार्टअप स्टोरीज. और आज हम कतर की एक ऐसी आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी की बात करेंगे जिसका नाम रीजनल ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के एक्सपेंशन के साथ क्लोजली लिंक्ड है, एंड दैट इज क्वेस्ट ई स्पोर्ट्स.
1: साथियों, क्वेस्ट ई स्पोर्ट्स एक प्रोमिनेंट कतर बेस्ड ई स्पोर्ट्स पावर हाउस ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रीमियर टूर्नामेंट ऑपरेशंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेटिव टीम मैनेजमेंट, टैलेंट डिस्कवरी, हाई एंड ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और भी है, एजुकेशनल ई स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे मल्टी डायमेंशनल वर्टिकल डोमेन्स में एक्टिवली वर्क कर रहा है. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल डाटा के मुताबिक इन्होंने 2019 से कतर, लेबनान और तुर्की में रीजनल ई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर करने में ऑपरेशनल लीड रोल प्ले किया है. तो भाई साथियों, आज हम जिन तीन फंडामेंटल कोर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो होंगी क्लाउड गेमिंग आर्किटेक्चर, लेटेंसी, लेटेंसी नेटवर्क्स यानी कि लो लेटेंसी, और डिस्प्लेइंग हाई रिफ्रेश रेट्स.
0: सो पहले स्टेप पर क्लाउड गेमिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में व्यू में समझते हैं. लेगेसी गेमिंग वर्कफ्लो में जब आप कोई अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स लेवल गेम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्स 3D मैथ कॉम्पिटेशंस, फिजिक्स इंजन रेंडरिंग और फ्रेम सिंथेसिस को प्रोसेस करने के लिए आपके लोकल डेस्कटॉप PC या कंसोल में हाई एंड GPU और CPU प्रोसेसिंग पावर मैंडेटरी होती है.
1: अच्छा, लेकिन क्लाउड गेमिंग पैराडिग्म शिफ्ट इस प्रोसेस को टोटली इन्वर्ट कर देता है. देखिए, हैवी रियल टाइम ग्राफिकल रेंडरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग और गेम इंजन प्रोसेसिंग डिस्टेंट अल्ट्रा पावरफुल क्लाउड डाटा सेंटर्स सर्वर्स पर रन होती है. प्लेयर के हैंडहेल्ड मोबाइल डिवाइस या लो स्पेक लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू डायरेक्ट एनकोडेड हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम होती है. प्लेयर अपने इनपुट कंट्रोलर से जॉयस्टिक या की प्रेस एग्जीक्यूट करता है, वो डाटा सर्वर पर फास्ट ट्रेवल करता है, कंप्यूट होता है और इंस्टेंट आउटपुट फ्रेम्स डिस्प्ले पर स्ट्रीम होते हैं.
0: इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाए. सो सोचिए, जब आप 4K वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर ऑनलाइन मूवी वॉच करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मूवी देखते हैं, तो कंप्लीट मूवी फाइल आपके मोबाइल स्टोरेज पर लोकलाइज कंप्यूट नहीं हो रही होती है, बल्कि नेटवर्क बैंडविड्थ पर बल्कि नेटवर्क बैंडविड्थ से डायरेक्ट रेंडर होकर प्ले हो रही होती है. सो

0: क्लाउड गेमिंग मैकेनिक्स भी अंडरलाइंग बेसलाइन लेवल पर इसी मीडिया स्ट्रीमिंग प्रोसेस की एक्सटेंडेड रियल लाइफ इंटरैक्टिव वर्जन है.
1: लेकिन भाई यहाँ सबसे डेंजरस टेक्निकल चैलेंज लेटेंसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का होता है.
0: हाँ, और टेक्निकल टर्म्स में नेटवर्क लेटेंसी का मतलब है मैनुअल प्लेयर इनपुट कमांड प्रेस होने से लेकर फिजिकल स्क्रीन आउटपुट विजिबल एनिमेशन एक्शन एग्जीक्यूशन के दरमियान होने वाला टेम्पोरल मिलीसेकंड डिले. ठीक है, अगर प्लेयर कंट्रोलर का ट्रिगर प्रेस करे और स्क्रीन एक्शन पर नॉन एक्सेप्टेबल मिलीसेकंड लैग ऑब्जर्व हो तो फिर भाई फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में एनवायरमेंट अनप्लेएबल हो जाता है.
1: अच्छा, स्पेसिफिकली टेक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर या हाई स्पीड रेसिंग स्टिमुलेशंस में अगर एनिमी टारगेट स्क्रीन पर फास्ट मूव कर रहा है और आपका इनपुट स्ट्रीम सिस्टम पिंग लेटेंसी डिले फेस कर रहा है तो भाई माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शनल मिलीसेकंड लैग मैच लॉस का डायरेक्ट रीजन बन सकता है.
0: Yes, और इसी फंडामेंटल बैरियर को कॉन्कर करने के लिए अल्ट्रा लो लेटेंसी फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स और हाई स्पीड 5G कनेक्टिविटी नेटवर्क्स ई स्पोर्ट्स और क्लाउड गेमिंग इकोसिस्टम का सेंट्रल बैकबोन बन चुके हैं. लोकलाइज्ड एज डेटा सर्वर्स कंप्यूट नोड्स को फिजिकल एंड यूजर लोकेशन के जितने करीब लाएंगे फिजिकल पैकेट ट्रैवल डिस्टेंस रन टाइम भी उतना ही कम होगा, रिजल्टेंटली पिंग लेटेंसी ड्रॉप हो जाएगी.
1: तो भाई साथियों, गेम डिजाइन सीखने वाले यूथ कल को स्मार्ट सिटी आर्किटेक्चुरल विजुलाइजेशन में भी अपनी स्किल्स यूज कर सकते हैं.
0: तो इस डायनेमिक टेक्निकल नॉलेज ब्रिज को बिल्ड करना ही हमारे शो का कोर टारगेट एलिमेंट है.
1: तो भाई चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और डेवलप करते हैं प्रैक्टिकल एवरीडे कैपेबिलिटीज इन स्किल अप.
0: अब वक्त है नेक्स्ट जेन के एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्शनेबल सेगमेंट स्किल अप का. आज हम बात करेंगे 3 हाई वैल्यू लाइफ स्किल्स की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टीम वर्क और हाई प्रेशर कम्युनिकेशन. ये स्किल्स सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन, करियर और एवरीडे लाइफ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है.
1: साथियों, कॉम्पिटिटिव गेमिंग में स्ट्रेटेजी हर गेम के जेनर के मुताबिक चेंज होती है. रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स में रिसोर्स और प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है. देखिए, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना गेम्स में रोल्स और टीम वर्क मैटर करते हैं, जबकि टैक्टिकल शूटर गेम में मैप अवेयरनेस, पोजीशनिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल होती है. लेकिन इन सब के पीछे एक कॉमन स्किल है, पता है क्या? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग.
0: यस, और रियल लाइफ में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है सिचुएशन को समझना, अवेलेबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, रिस्क्स और पॉसिबल रिजल्ट्स को कंपेयर करना और फिर स्मार्ट डिसीजंस लेना. एक स्टूडेंट को एग्जाम की प्रिपरेशन प्लान करते वक्त डिसाइड करना होता है कि किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दे, है ना? ये सब हमने भी फील किया है. नाउ इसी तरह एक स्टार्टअप फाउंडर को डिसाइड करना होता है कि ये लिमिटेड बजट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में.
1: अच्छा, गेमिंग में ये डिसीजंस कभी कभी सेकंड्स में लेने पड़ते हैं. इसी वजह से कॉम्पिटिटिव गेमिंग क्विक एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि सिर्फ गेम्स खेलने से लाइफ स्किल्स ऑटोमेटिकली डिवेलप नहीं होती. आप किस तरह गेम खेलते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है.
0: बिल्कुल, और अगर प्लेयर टीम वर्क के बजाय ब्लेम करे, टॉक्सिक लैंग्वेज यूज करे या हर सिचुएशन में रेकलेस डिसीजंस ले तो नेगेटिव हैबिट्स भी रीइंफोर्स हो सकती हैं. सो गेमिंग एक टूल है, उस टूल का रिजल्ट आपके बिहेवियर और माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है.
1: अच्छा, टीम बेस्ड गेम्स में कम्युनिकेशन भी क्रिटिकल होता है.
0: राइट,
1: हाई प्रेशर सिचुएशन में टीममेट्स को शॉर्ट, क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होती है. अगर हर प्लेयर एक साथ बोल रहा हो तो भाई क्या होगा, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी ना. तो स्ट्रेटेजी क्विकली ब्रेक डाउन हो सकती है.
0: Yes, और यही लेसन वर्कप्लेस में भी अप्लाई होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता, इसका मतलब है राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पर क्लियर और रिस्पेक्टफुल वे में डिलीवर करना होता है. और कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्टिव लिसनिंग.
1: अच्छा, अब मुझे बात याद आती है आपकी एक्टिव लिसनिंग से लीडरशिप की बात. लीडरशिप भी इसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है. देखिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, नो, वो सिचुएशंस को समझता है, प्रेशर में काम रहता है, टीम का मोरल मेंटेन करता है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और टीम मेंबर्स को बेटर परफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है.
0: लेकिन गेमिंग का एक और इम्पोर्टेंट लेसन है फेलियर से

0: कॉम्पिटिटिव गेमिंग में हर मैच विन नहीं होता है, मिस्टेक्स होती हैं, सो स्ट्रेटजीज फेल होती हैं और डिफीट्स भी होती हैं।
1: अच्छा भाई, रियल लाइफ में भी ना रिजेक्शंस और फेलियर्स नॉर्मल होते हैं। जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शन मिलती है तो हम क्या होता है, हम लर्निंग हमारे लिए पॉइंट होता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम अपनी मिस्टेक्स को। बिजनेस आइडियाज फेल हों तो एनालाइज करें कि प्रॉब्लम कहाँ थी। एग्जाम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए तो स्टडी स्ट्रेटजी इम्प्रूव करते हैं ना। देखिए, टेम्परेरी सेटबैक को परमानेंट फेलियर समझना जरूरी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग।
0: एब्सोल्युटली, और हाई परफॉर्मेंस गेमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों फीडबैक और परफॉर्मेंस एनालिसिस को सीरियसली लेते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि रिजल्ट क्या था, बल्कि ये भी देखते हैं कि रिजल्ट क्यों आया और नेक्स्ट टाइम क्या बेटर किया जा सकता है।
1: अब इसीलिए आज का स्किल अप चैलेंज बहुत सिंपल है, अगली बार जब आप मल्टीप्लेयर गेम खेलें सिर्फ विन या लॉस के ऊपर फोकस ना करें, अपनी कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करें, टीममेट्स की बात एक्टिवली सुने, अपनी स्ट्रेटजी इवैल्यूएट करें और मैच के बाद एक मिनट का रिव्यू जरूरी होता है भाई। तो भाई इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट जेन के एपिसोड की एंडिंग की तरफ। देखिए भाई, हमने गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के एंगल से नहीं देखना, हमने समझना है कि एक रैपिडली डेवलपिंग ग्लोबल इंडस्ट्री है ये, जिसमें टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, बिजनेस, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन और प्रोफेशनल करियर के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करते हैं।
0: एब्सोल्युटली, एंड ऑन दिस नोट मैं आपसे कहूंगी कि मुझे और सफा को दीजिए इजाजत, क्योंकि अब अगले हफ्ते भी हम कुछ ऐसा आपके लिए लेकर आएंगे जो कहते हैं ना कि हमारी आज की जनरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। और आप हमसे जुड़ सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर। इस नंबर के जरिए आप आपके जो भी सजेशंस हैं, व्यूज हैं, या आप चाहते हैं कि सफा अमिता ये वाला टॉपिक भी आप अपने शो पर कवर करें, तो हमसे जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे FM 107 के, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और आगे जाने से पहले सफा कुछ कहना चाहेंगी?
1: तो भाई, टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं करें, समझने की कोशिश भी करें और सुनते रहें FM 107,
0: दिल से देसी।

0: कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाएं। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी

0: जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं?

0: कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं जानना चाहोगे अपने मैदान-ए-अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालें सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम मरहबा आप सुन रहे हैं FM 107 मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता तो कैसे हैं आप सब हां आज आप सभी का बहुत-बहुत इस्तकबाल है स्टोरीज अनटोल्ड हमारे शो में और आज स्टोरीज अनटोल्ड में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन को लेकर एक ऐसा कैंपेन शुरू किया कि कोई भी उनको फॉर्मल एजुकेशन देने से पीछे नहीं हटा यस वैसे अगर हम एजुकेशन पढ़ाई की बात करें तो ये हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वो कहते हैं ना कि तरक्की करने के लिए गरीबी को मिटाने के लिए बहुत जरूरी होती है और जब आप एजुकेटेड होते हैं पढ़े लिखे होते हैं तो खुद पर विश्वास भी होता है तो अगर हम बात करें आज के ज़माने के कतर की जो कि हर एक दौर से इम्प्रूव होते जा रहा है डेवलप होते जा रहा है स्ट्रक्चर्ड होते जा रहा है और दुनिया भर में अपना नाम कमा रहा है तो कतर के जो माइलस्टोन्स हैं उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है लेकिन पुराने ज़माने में इतना आसान नहीं था डेफिनेटली महिलाओं को एजुकेशन तो मिल सकती थी लेकिन वो मिलना उतना आसान नहीं था अब ऐसे में किसी एक को तो खड़े होना ही था तो एक बहादुर शख्सियत एक बहादुर महिला इन सब ऑड्स के अगेंस्ट खड़ी हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि एक फॉर्मल एजुकेशन लड़कियों को तो मिलनी ही चाहिए और इस शख्सियत का नाम था आमना महमूद अल जायदा ये नाम काफी रेप्यूटेबल नाम है और रेप्यूटेबल टीचर्स की लिस्ट में सबसे पहले इनका ये नाम आता है जिन्होंने अपना खुद का कुतुब शुरू किया था वैसे किसी भी स्कूल में पढ़ाई जब शुरू होती है तो इनका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता सो आमना महमूद अल जायदा काफी फियर्स लेडी थी और इन्होंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़कियों को उनका हक मिलना चाहिए और इसीलिए इन्होंने पढ़ाई को लेकर फॉर्मल एजुकेशन को लेकर एक कैंपेन की शुरुआत की वैसे अगर पुरातन काल में जाए यानी कि हिस्ट्री में जाए या यूं कहें तारीख में जाए तो अलग अलग लोगों की जुबानी इनकी कहानी सुनने को मिलती है कि ये क्या कमाल की टीचर थी इनफैक्ट इनके कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट करती थी जिस तरह से पढ़ाती थी जिस तरह से अपने आप को कैरी करती थी हमेशा से लोग उन्हें उनके स्टूडेंट्स उन्हें एडमायर करते थे और उनकी तरह तरक्की करना चाहते थे वेल आमना महमूद अल जायदा किस तरह से लोगों को कन्विंस कर पाएं कि भाई लड़कियों की फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है बताऊंगी कुछ ही देर में तो आपने कहीं नहीं जाना है बने रहना है FM 107 पर दिल से देसी

वेलकम वंस अगेन. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज हम स्टोरीज अनटोल्ड में बात कर रहे हैं कतर की सबसे पहली एजुकेटर आमना महमूद अल जायदा के बारे में. तो शुरू से शुरू करते हैं कि किस तरह से कतर में लड़कियों के एजुकेशन की शुरुआत हुई और कैसे ये बात मुश्किल से आसान हो गई. So, कहा जाता है कि 1950s का वो टाइम था कि उसके पहले की अगर हम बात करें तो तब तक लड़कियों के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम नहीं था. ऑब्वियसली कुतब की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई स्कूल नहीं था, बट लड़कों के लिए स्कूल एस्टैब्लिश था. अब इस डीले के कई सारे कारण हो सकते हैं जिसका जिक्र करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि 19th और 20th सेंचुरी वो टाइम थी जब दुनिया भर में बदलाव आ रहे थे और मिडल ईस्ट में भी देखा जाए तो जो लेडीज़ थीं, विमेन थीं, विमेन एजुकेटर्स, वो कल्चरल, सोशल एंड पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इन बातों से लेकर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही थी और उन्हें भी लग रहा था कि पढ़ाई या यूँ कहें एजुकेशन उनका हक है. और ऐसे में 19th सेंचुरी में कतर में कुतब सिस्टम की शुरुआत हुई जो कि एक कम्युनल लर्निंग थी मेल्स और फीमेल्स के लिए जहाँ पर दीनी तालीम होती थी. अब धीरे धीरे इस कुतब को आगे बढ़ाना भी था तो ऐसे में आमना महमूद अल जायदा ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और बदला जाए और बच्चों को और भी नई चीज़ें सिखाई जाए पर एट द सेम टाइम लड़कियों को उनका हक मिलना चाहिए. वेल 1957 ये वो टाइम माना जाता है, ये वो साल माना जाता है जहाँ पर आमना महमूद अल जायदा की जो ये मेहनत थी वो रंग लाई और उनका जो कुतब था उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया.

द दोहा प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स. और फिर क्या था, यूं कहें तो इस कदम की शुरुआत होनी थी और फिर कतर में लड़कियों के लिए ऑफिशियल स्कूल्स की, जैसे कहते हैं ना, झड़ी सी लग गई. हर जगह स्कूल्स खोले जाने लगे, हर जगह लड़कियों ने तालीम लेना शुरू कर दी थी. वैसे ओवर द ईयर्स की बात करें सो आमना महमूद अलजायदा की जो ये मेहनत थी वो रंग लाई कि हर एक फील्ड में कतर की विमेन पार्टिसिपेट करने लग गए एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे. उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाने लग गया. अब जितने भी कल्चरल सेक्टर्स की बात हो या फिर वो कहते हैं ना कि कतरी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल फील्ड्स हो, हर जगह पर उनके कंट्रीब्यूशंस देखे जाने लगे. और यूं कहें जिस तरह से महिलाओं के स्कूल्स की शुरुआत हुई उसी तरह से महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था कतर के डेवलपमेंट के लिए वो भी दिखाई देने लग गया. सो यस, हैट्स ऑफ टू आमना महमूद अलजायदा जिनकी वजह से आज लड़कियां इतने आगे बढ़ सकी. वैसे इतना ही नहीं, कुछ खास बातें हैं उनकी लेगेसी को लेकर जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर दिल से देसी.

पढ़ाई को लेकर काफी मेहनत की और उनकी मेहनत ऐसे रंग लाई कि आज हर एक फील्ड में हम विमेन को या उनके पावर को देख सकते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कतर की सबसे पहली एजुकेटर आमना महमूद अल जायदा. यस, अगर एजुकेशन की बात करें तो कहते हैं कि ये इतना कोर है जिंदगी का कि इसके बिना किसी भी तरह की फाउंडेशन नहीं बन सकती. और हमारे जो बुजुर्ग हैं, प्रेडिसेसर्स हैं, यूं कहें एंसेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने इस तरह की तालीम, इस तरह की चीजें हमें दी नहीं होती थी, उनके तौर तरीके सिखाए नहीं होते थे, तो शायद आज हम उस जगह पर नहीं बैठे होते थे. जैसे कि अगर हम आमना महमूद अल जायदा की बात करें, जिन्होंने 1930s में कुतुब की शुरुआत की, जो कि एक तरह का एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल था, जहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाने लग गया. 50s का दशक वो था, यानी कि 1951-53 की बात करें तो कई सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज ने आमना महमूद अल जायदा के कुतुब को सुपरविजन में ले लिया. उसके बाद 1955 में सबसे पहला फॉर्मल स्कूल गर्ल्स का कतर में खुला, आमना महमूद अल जायदा के घर में. फिर 1956 में, क्योंकि अब जगह थोड़ी कम होने लगी थी, लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो उनके उस स्कूल को शिफ्ट किया गया और एक बिल्डिंग को रेंट किया गया मोजा दरविश में, और फिर दोहा प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हो गई. 1956-61 में वो दौर था जब लड़कियों की एजुकेशन को लेकर डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो अब जो दोहा प्राइमरी स्कूल था इसे मूव करना पड़ गया, जो कि करंट साइट है मुशरफ में. अब इसे लिवान डिजाइन स्टूडियो एंड लैब्स के नाम से भी जाना जाता है. और दूसरा स्कूल लड़कियों के लिए था जिसका नाम था उम अल मोमिनीन, जिसे अल बिद्दा में खोला गया. तो 1960s और 1970s में उम अल मोमिनीन को बंद किया और सारे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर किया मुशरफ में. 1970s में एक परमानेंट लाइब्रेरी को ऐड किया गया स्कूल में, और आमना महमूद अल जायदा का वर्क चलता ही रहा स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके सजेशंस, उनका गाइडेंस नॉन स्टॉप रहा जब तक वो रिटायर नहीं हो गई. वैसे कुछ भी कहें, उनकी ये जो लेगेसी है आज भी चलते चली आ रही है. फिर आगे इस पर्टिकुलर स्कूल में काफ़ी सारे इनोवेशंस, रेनोवेशंस होते चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्होंने एक पिलर को स्थापित कर दिया, एक पिलर की शुरुआत की एज एन एजुकेशन, आज वो हर लड़की का हक है. और कतर की हर लड़की गर्व से कह सकती है कि आमना महमूद अल जायदा अगर ना होती तो इतना आसान नहीं होता हमारे लिए पढ़ाई की या एजुकेशन की दुनिया में कदम रखना. सो सल्यूट करते हैं आज हम आमना महमूद अल जायदा के इस एफर्ट को लेकर, और इसी तरह से दुआ करते हैं कि एजुकेशन एज अ राइट हर एक लड़की को मिलता रहे. और इसी के साथ अब मैं कहूँगी कि आप मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त हो गया है मेरे जाने का, और अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में स्टोरीज अनटोल्ड के. तो अगर आपके कोई सजेशंस हैं और कोई फीडबैक है, आपको हमारा शो कैसा लगा, ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. और इसी के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 से भी आप जुड़ सकते हैं, और आरजे मीता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं. और अभी के लिए मैं कह दूं, मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा. स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज हम आपको नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाएंगे जब वो अपनी कौम को तूफान से नजात दिलाकर कश्ती से उतरने वाले थे। इस मौके पर उन्होंने आजिजी से अपने रब से अर्ज किया,

0: इसमें मेहनत के साथ हंसना, बातचीत और यादें भी शामिल होती हैं। कतरी दस्तरखान हमें ये दर्ज देता है कि खाना सिर्फ जायके का नाम नहीं, इसमें मोहब्बत, मेहनत, शुक्र, मेहमान नवाजी और एक दूसरे का ख्याल भी शामिल होता है। जो खाना मिलकर खाया जाए वो अक्सर खूबसूरत याद बन जाता है। तो लिसनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

असलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 1986 का फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टेंशन हाई, क्राउड क्रेजी और डियेगो माराडोना फुल मोड में। लेकिन फिर हुआ वो जो फुटबॉल हिस्ट्री में कॉमेडी और कॉन्ट्रोवर्सी का कॉकटेल बन गया। मैच चल रहा था, इंग्लैंड की डिफेंस टाइट थी, लेकिन माराडोना ने सोचा फुट से गोल करने की क्या जरूरत है जब हाथ ही काफी है। एक क्रॉस आया, गोलकीपर जंप कर रहा था और उसी वक्त माराडोना ने चीकी स्टाइल में हाथ उठाया, बॉल नेट में और इट वाज वन अप फॉर अर्जेंटीना, यानी गोल मिल गया। रेफरी ने आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, गोल दे दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चीख चीख कर बोला कि ये हाथ था और हाथ था लेकिन रेफरी नजरअंदाज कर दिया इस बात को। लेकिन इसके बाद भी रेफरी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लीगल लगा और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए एंड उनको भी लगा कि ये क्या हेडर था या हाथ से। और दूसरा कमेंटेटर को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि नहीं, वो तो लग रहा है कि वो थप्पड़ था, बॉल के ऊपर थप्पड़ मारा गया था। बाद में जब माराडोना से पूछा गया कि ये क्या सीन था भाई, तो हुजूर ने स्माइल देके बोला, थोड़ा माराडोना का सर और थोड़ा हैंड ऑफ गॉड। पूरे इंग्लैंड फैंस जो मौजूद थे वो थोड़ा सा क्रेजी हो गए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए, और वहीं अर्जेंटीना खुश। और मीम्स जो है अगर उस वक्त होते तो आज तक वायरल हो रहे होते। और एक फैन ने लिखा था, गॉड ने हैंड यूज किया, रेफरी ने आईज बंद कर दी। And that was such an interesting anecdote, अगर मैं कहूँ, एक brilliant caption of Maradona's hand of God goal जो 1986 World Cup में हुआ था, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। And how it turned out to be a goal आज भी एक mystery है। England के खिलाड़ी शायद अब तक उस referee को WhatsApp पे block किए बैठे हैं। और Maradona वो legend बन गया, और goal illegal था लेकिन confidence 100% legal था। इस मैच ने हमें दिखाया कि कभी कभी फुट नहीं बल्कि फेथ चाहिए होता है, और थोड़ी सी चलाकी जो माराडोना के पास था। और आज भी इस बात पे हर कोई कहता है कि क्या डियेगो माराडोना वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ, क्या डियेगो माराडोना का वो गोल जिससे उन्होंने हाथ से किया था, पीटर शिल्टन को बीट किया था, क्या उस गोल को ऑफिशियली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जा सकता है। There are a lot of debates. आज भी है 1986 और ये है 2026. तो 40 साल में आज भी लोग ये कहते हैं, फैंस भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा उस वक्त भी it was not that powerful, कैमरा टेक्नोलॉजी was not that, लेकिन जो क्लोज इन फोटोग्राफ्स है आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पता चलेगा एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली डियेगो माराडोना का हाथ जो है उस गेंद पर हवा में, वो गेंद है, और पीटर शिल्टन इंग्लैंड के मशहूर गोलकीपर उस बॉल को लपकने के लिए वो भी डिड अ स्पॉट जंप, और माराडोना भी डिड अ स्पॉट जंप, और

मिड एयर में माराडोना का हाथ दिख रहा था कि वो गेंद पर यानी बॉल पर चपट लगाते हुए, एंड यही चीज लाइन्समैन यानी उस टाइम में लाइन्समैन कहते थे असिस्टेंट रेफरी भी नजरअंदाज किया। नजरअंदाज के साथ साथ रेफरी को भी उन्होंने बताया कि भाई नहीं नहीं ये गोल है, क्योंकि बॉल जो है ये नेट पर ऑलरेडी एट मेड इट्स एंट्री एंड दैट वाज अ गोल। एंड जिस वक्त ये गोल हुआ, अब माराडोना के जो वो सेलिब्रेशन जिस स्टाइल में वो सेलिब्रेट करते थे, टच लाइन पर जाकर थोड़ा सा डांस करना एंड अर्जेंटीनियन फैंस के साथ यू नो पार्टिसिपेट करना, उससे ये एक कंप्लीट ड्रामा को यू नो सबके सामने एक रियल बना दिया था। एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी जो आज भी हम कहते हैं कि हैंड ऑफ गॉड, इट वाज नॉट हैंड ऑफ माराडोना एज माराडोना सेड, ये हैंड ऑफ गॉड था और मैंने तो सिर्फ चापट मार। एंड आज भी इस बात को लेकर काफी डिस्कशन होते हैं फुटबॉल के महफिल में, फुटबॉल के टॉपिक जब भी इस गोल को लेकर होता कि जो कंट्रोवर्शियल गोल्स हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, तो माराडोना का गोल जो है ये सबसे ऊपर एंड ऊपर है, मींस ये एक माराडोना से हुआ है। एंड माराडोना आपको पता है कि माराडोना इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम ड्यूरिंग हिज एरा, मोस्ट स्किलफुल प्लेयर अगर कहें तो। इसमें कंट्रोवर्सी के साथ ये भी है कि माराडोना के साथ कंपेयर किया जाता है विद लियोनेल मेसी, विद पेले, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन माराडोना वाज माराडोना। इस गोल को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें कि हाँ भाई इन्होंने अपने करियर में कुछ इस तरह के हरकतें किए, अदरवाइज माराडोना वाज अ ट्रूली लेजेंडरी प्लेयर। इनफैक्ट अगर इस गोल को अगर देखें तो वो गोल भी फेमस हो गया, वो गोल भी इनफेमस नहीं बल्कि फेमस है। माराडोना को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो फैंस हैं आज के दौर में जो नौजवान फॉलोअर्स हैं वो भी माराडोना के जानते, अच्छा वो ही खिलाड़ी था जिन्होंने हाथ से गोल किया था। एनीवे माराडोना इज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और आज भी हम इस गोल को याद करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: What's up, Ellie?

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए खबरदार कर देने वाला हो। वो जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं न जिला सकते हैं न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मनघड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घर लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में उसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और वो उसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि इसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और न मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो, देखो कैसी कैसी हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुटला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी तो ये उसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे, और जब ये दस्तो पाबस्ता उसमें एक तंग जगह ठोंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो।

और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी और दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो न इनको नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों और जमीन के दरमियान है, फिर आप ही अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये दावत इनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग और एक चमकता चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे।